0: अभी आप सुन रहे थे संतूर पर बजाया राग नटभैरव। कलाकार थे प्रभात मुखोपाध्याय। इसके साथ ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। श्री तो लाम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी पढ़ने लिखने और गणनक क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में कहा कि जीवाश्म ईंधन के सर्वोत्तम विकल्पों के उपयोग और जनता के बीच इसके प्रचार प्रसार के लिए व्यापक शोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण हो रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए की लागत से देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ होने की संभावना है।
2: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी के मौसम के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को भी मंजूरी प्रदान की। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की टिप्पणियों को अराजक बताया। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि

0: advancing social security systems, formalization of labor markets, and enhancing women's participation in the workforce. In IPL cricket, Chennai Super Kings defeated Delhi Capitals by 8 wickets at Arun Jaitley Stadium in Delhi last night as Sanju Samson slammed an unbeaten 87 and Karthik Sharma contributed with 41. Today, Sunrisers Hyderabad and Punjab Kings will clash at Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 6:10 हुए हैं। अब वक्त है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। कहते हैं कि जब मन अशांत हो और राह न दिखे तो ईश्वर का ध्यान ही है जो अंधेरे में रोशनी दिखाता है। आज की वंदना का आरंभ इस गणेश वंदना से।

प्रार्थना वो नहीं जो हम भगवान से मांगते हैं, प्रार्थना वो है जो हमें भगवान के करीब ले आती है। इसी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आइए वंदना के अगले भजन की ओर अग्रसर होते हैं।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। दोस्तों, अक्सर हम बाहर की दुनिया के शोर शराबे में इतना खो जाते हैं कि अपने अंदर की आवाज को सुनना ही भूल जाते हैं। हमारे ये कार्यक्रम वंदना इसी रूहानी सफर में आपसे बात करता है। किसी ने क्या खूब कहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तो बस पते हैं, ईश्वर का असली घर तो इंसान का दिल है। हम ईश्वर को पत्थरों में ढूंढते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग सिखाता है कि जिस दिन हम खुद को पहचान लेंगे, उस दिन हम परमात्मा को भी पा लेंगे। आध्यात्म कोई धर्म नहीं, बल्कि खुद से खुद की मुलाकात है। आज का एक छोटा सा सूत्र, एक फॉर्मूला याद रखिए, स्वीकार भाव। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, जो आने वाला है वो हमारे वश में नहीं है, लेकिन जो अभी है उसे अगर हम प्रेम से स्वीकार कर लें तो उसी पल मन के सारे संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। समर्पण ही शांति का द्वार है, और शायद इसी सुकून के एहसास के साथ हम जीते हैं, और यही सबसे बड़ा सुकून है। आज के इस वंदना कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं, आप ही का दोस्त नवीन सक्सेना। बहुत ही खूबसूरत भजनों के साथ आज हम और ये आप ये रूहानी सफर तय कर रहे हैं।

आपको वो सभी उत्तर मिल जाएंगे जो आपको शोर में नहीं मिल पाए। ईश्वर की अनिसीम अनुकंपा के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं संपन्न कर रखे हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। 6:40 होने को हैं। आइए सुनते हैं चिंतन।

एक दिन एक युवक महात्मा ईसा के पास आया। उनका अभिवादन करने के बाद उसने प्रार्थना की, महात्मन, मुझे अपना जीवन सफल बनाने के सरल उपाय बताइए। प्रभु ईसा ने कहा, जैसा तुम अपने साथ व्यवहार करवाना चाहते हो, उसी तरह का व्यवहार औरों के साथ करो। तमाम बुराइयों से इसी तरह तुम बच सकोगे। युवक ने कहा, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। ईसा बोले, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब क्या चाहोगे? उस युवक ने कहा, मैं चाहूंगा बुढ़ापे में मुझे कष्ट और अभाव नहीं हो, अभावों से जीना दुभर ना हो जाए। ईसा ने उसे प्रेरणा दी, अच्छा तो तुम आज से ही अपने माता पिता की सेवा शुरू कर दो, उन्हें किसी चीज का अभाव ना होने दो, बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद भी तुम्हारा ध्यान रखेगी। ईसा ने आगे कहा, तुम आनंद पूर्वक जीना चाहते हो तो दूसरों को भी जीने दो, किसी की हत्या करने और कष्ट पहुंचाने की कल्पना भी ना करो। इन चंद बातों का पालन कर तुम अपना जीवन सार्थक कर सकते हो, और इन गुणों को जीवन में अपना कर वो व्यक्ति ईसा मसीह का सबसे प्यारा शिष्य बन गया। एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय इलाहाबाद में मंदिर पैदल जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने सड़क पर एक वृद्ध महिला को कराहते हुए देखा। वो उसके पास रुके और उस महिला को उठाकर तांगे में बिठाकर उसे अस्पताल ले गए। उन्होंने डॉक्टरों से उसका इलाज करवाया। इसी बीच उनका एक परिचित वहां पहुंच गया और बोला, पंडित जी, मैं आपके घर गया था, वहां जाकर पता चला कि आप भगवान के दर्शनों के लिए मंदिर गए हैं, आपने भगवान के दर्शन कर लिए? इस पर पंडित जी ने जवाब दिया, भैया, भगवान के दर्शन तो मैंने इस बीमार और वृद्ध महिला में ही कर लिए, इसकी सेवा से बड़ा धर्म और क्या होगा। एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय हरिद्वार में एक समारोह में पधारे। आर्य समाज के लोगों ने उन्हें गुरुकुल कांगड़ी के एक समारोह में सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया। गुरुकुल के आचार्य ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि मालवीय जी, तथा हमारे विचारों और राहों में कुछ फर्क हो सकता है, किंतु दोनों ही भारतीय संस्कृति के मान बिंदुओं और भारत की शिक्षा प्रणाली के प्रचार प्रसार को भारत में फैलाने वाले एक ही पथ के राही हैं। मालवीय जी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, बस मैं तो आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई बुजुर्ग आपके सामने आए तो उनका सर झुकाकर अभिवादन करें। जो भी व्यक्ति समाज में अपने बुजुर्गों का, माता पिता व गुरु का सम्मान करता है या अभिवादन करता है, वो स्वयं अभिवादनशील बनता है। ऐसा करने वालों की आयु, विद्या, यश तथा शक्ति अवश्य बढ़ती है। उनका ऐसा कहना था कि पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा।

अभी आप चिंतन कार्यक्रम सुन रखे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। हम अपने सुनने वालों को बता दें, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे रामचरित मानस से

श्री रामचरित के विविध प्रकरणों की व्याख्या करने के पार्वती के अनुरोध पर सुख स्वरूप भगवान शंकर ने श्री राम की लीलाओं का सांगोपांग वर्णन किया। बोले, जिनके नाम के उच्चारण के साथ काशी में मरते हुए प्राणी को मैं शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु जड़ चेतन के स्वामी और सबका अंतर्मन जानने वाले हैं। पार्वती का प्रश्न सहज था, तब उन्होंने किस कारण मनुष्य का शरीर धारण किया? उमापति ने तब निर्मल रामचरितमानस की वो मंगलमय कथा सुनाई जिसे काकभुशुंडी ने विस्तार से पक्षीराज गरुड़ को सुनाया था। वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है उसके बारे में ये नहीं कहा जा सका कि वो कारण बस यही है। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षसों का प्रकोप बढ़ जाता है, तब तब प्रभु विविध रूपों में शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं।

0: श्री रामचरित मानस से संगीत में प्रस्तुति। आज आपने सुना बालकांड भाग 47। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रखे गए। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतिना टोलैम इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक संबंधेषु अपि च परस्पर हितानां क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विस्तृतं चर्चां करिष्यतः। वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतिः भारतस्य त्रिदिवसीया यात्रायां ह्यः नवदिल्ल्यां सम्प्राप्तवान्। तेन सह वियतनाम सर्वकारस्य अनेकेषां मन्त्रिणां वरिष्ठाधिकारिणां च उच्चस्तरीयः प्रतिनिधिमण्डलम् अस्ति। सहैव एकं प्रबलं वाणिज्य प्रतिनिधिमण्डलमपि समूहेन सह अस्ति। अस्मिन् वर्षे अप्रैल मासे वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतिरूपेण निर्वाचनानन्तरं राष्ट्रपत्युः टोलैम वर्यस्य भारतस्य एषा प्रथमा राजकीय यात्रा अस्ति। भारतस्य कर्पासक्षेत्रस्य बाधायाः निवारणाय, विकासे न्यूनतायाः समाधानाय, गुणवत्तायाः चिन्तायै च केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन कर्पास उत्पादकता अभियान कपासकान्ति इत्यस्य कृते 600,000,000 रूप्यकाणि स्वीकृतानि। ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचनाप्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इदम् अभियानं सर्वकारस्य फार्म टु फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन इति 5F विषयैः सह संरेखितमस्ति। कर्पासस्य उत्पादकतां वर्धयितुं च केन्द्रितमस्ति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन आपत्कालीन ऋण रेखा प्रत्याभूति योजना 0.5 अनुमोदिता। योजनायाः अन्तर्गतं MSME इत्येतेषां कृते 100% ऋण प्रत्याभूतिः प्रदीयते। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन भारत सेमीकण्डक्टर मिशन इत्यस्यान्तर्गतम् इतोपि द्वे सेमीकण्डक्टर परियोजने अनुमोदिते।
2: दो नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से दो में कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकंड वाले का। और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
1: एतेषु सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सौकर्येण सह गैलियम नाइट्राइड तंत्रज्ञानस्य आधारे देशस्य प्रथमा वाणिज्य लघु माइक्रो LED प्रदर्शन सौविध्यम् अन्तर्भवति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या संशोधन विधेयकं 20/26 संसदि उपस्थापयितुं प्रस्तावोऽपि स्वीकृतः। श्री वैष्णवः अवदत् यत् एतत् विधेयकं सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या अधिनियमः 59/56 इत्यस्य संशोधनं कर्तुं प्रयतते।
2: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं, और ये जजेस बढ़ाए गए।
1: पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पदात् स्वत्यागपत्र प्रदानाय निराकृतवती। तस्याः अनुसारं मतानि बलात् लुण्ठितानि, मतदान प्रक्रियायां च कपटम् अभवत्। पश्चिमबंगस्य निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इत्यस्याः व्याख्यायाः प्रतिक्रियारूपेण भाजपेति दलेन उक्तं यत् भारतं लोकतन्त्रमस्ति तथा च सर्वदा तस्य सम्मानं करणीयम्। श्री संबित पात्रा अवदत् यत् एतत् भाजपेति दलस्य उपरि आक्रमणं नास्ति, अपितु लोकतन्त्रस्य संविधानस्य च उपरि आक्रमणमस्ति। IPL क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दिल्ल्याः अरुण जेटलीति क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलं 8 पराजितम्।

अद्य सायं सार्धसप्तवादने सनराइजर्स हैदराबाद पंजाब किंग्स दलयोः मध्ये हैदराबादे स्पर्धा भविष्यति इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। श्री तो लाम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों में पढ़ने लिखने और गणना की बुनियादी क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में कहा कि जीवाश्म ईंधन के सर्वोत्तम विकल्पों के उपयोग और जनता के बीच इसके प्रचार प्रसार के लिए व्यापक शोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पास भेजे जाने के साथ ही औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है। इसके साथ ही नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। आयोग ने बताया कि परिणाम घोषित होने के बाद अधिसूचना जारी करना एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कदम है और इसके साथ ही निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सरकार गठन के अगले चरण शुरू किए जा सकेंगे। मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। अधिसूचना से निर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण और राज्य में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान और मतगणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेरा फेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की इन टिप्पणियों को अराजक बताया। पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया है। इस षड्यंत्र का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को रिसिन नामक घातक जैविक विष देना था। रिसिन अरंडी के बीजों से प्राप्त होता है और रासायनिक हथियार अनुसूची में ये सूचीबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने बताया कि हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण ये निर्णय लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने

0: is for goods. In IPL cricket, Chennai Super Kings defeated Delhi Capitals by 8 wickets at the Arun Jaitley Stadium in Delhi last night. Today, Sunrisers Hyderabad and Punjab Kings will clash at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर 7:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं स्तुति तिवारी के गाए कुछ भजन। लीजिए, सबसे पहले प्रस्तुत है कबीर दास की रचना, बोल हैं माटी कहे कुम्हार से।

संगीति का कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं स्तुति तिवारी के गाए कुछ भजन। आइए अब सुनते हैं मीराबाई की रचना। बोल है मनवा राम नाम रस पीजे।

अभी आप ये एक पारंपरिक रचना सुन रहे थे। स्वर स्तुति तिवारी का था। इसके साथ ही संगीतिका कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:30 हुए हैं। अब वक्त हो चला है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। गीतों भरी गुड मॉर्निंग के आज के इस एपिसोड में मैं हूं आपका दोस्त नवीन सक्सेना, कुछ सदाबहार गीतों को आपके साथ जोड़ने के लिए। और आप इसे अपनी आवाज़ में, अपने अंदाज में थोड़ा सा गुनगुना भी सकते हैं सुबह सवेरे। तो आज हम लेकर आए हैं वो नगमे जो वक्त की धूल में खोए नहीं बल्कि और चमक उठे। कुछ सुरीले स्वर, कुछ सुरीले अंदाज में, और उन्हीं में एक आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की। शुरुआत इस बेहतरीन गीत के साथ शायद हम कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: रफ़ी साहब की आवाज़ का वो जादू सीधे दिल पर दस्तक देता है। लेकिन दोस्तों, जब तारीफ ज़ुबान पर होती है तो अंदाज थोड़ा सा नटखट हो ही जाता है। आशा जी की चुलबुली आवाज़ कुछ ऐसी ही थी, लेकिन उनके कुछ संजीदा गीत भी हैं जो बताते हैं वो कितने खूबसूरत अंदाज में अपनी बात कह दिया करती थी। अगला गीत जो इस समय हम आपको सुनवाएंगे वो है फिल्म मोहब्बत इसको कहते हैं। आशा भोसले की आवाज़ है, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत है और खयाम का संगीत है।
1: अच्छा, तुम इतना हसीन
2: अजी, तुम कित

वक्त पहले भी वही था, वक्त अब भी वही है। वक्त पहले भी वही था, वक्त अब भी वही है। वक्त पहले निकल आता था, अब वक्त निकाला नहीं करते। What is

सुंदरता की बात चली है तो फिर हम चांद को कैसे भूल सकते हैं। लेकिन सुबह सुबह चांद की बात करें ये भी बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन दोस्तों चांद कभी छुपता नहीं है, सूरज की रोशनी के सामने थोड़ा सा दब सा जाता है। लेकिन सूरज की रोशनी भी कब तक रहेगी? देखिए ना, जब सूरज थमेगा, सूरज छुपेगा, तो चांद अपने आप ही सामने निकल आएगा। और फिर उसकी खूबसूरती असीम है। देखिए ना क्या खूब कहा है

कभी कभी सोचा है कि आपने सिर्फ चलते जाएं और मंजिल कभी ना आए बस। और वो तब होता है जब बहुत ही खूबसूरत रास्ता आपका इंतज़ार कर रहा होता है। आपको मालूम है कि आपकी मंजिल वहाँ है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो मंजिल कभी ना आए, ये रास्ता कभी ख़त्म ही ना हो। एक ऐसा सफ़र जो बे इंतहा हो, एक ऐसा सफ़र जिसमें मंजिल तो हो लेकिन जैसे ही आप चलते जाएं वो दूर चलती जाए, वो दूर होती जाए, लेकिन फिर भी वो सफ़र कितना खूबसूरत हो कि आप कभी अपने मुकाम तक पहुंच ही ना पाए। कभी महसूस कीजिएगा इस चीज़ को और फिर देखिएगा कि कितना उड़ान भरता है आपका दिल। फिल्म नदिया के पार, हेमलता की आवाज और उनके साथ में जसपाल सिंह, रविंद्र का संगीत, रविंद्र का गीत।

अक्सर लोग पूछते हैं कि पुरानी चीज़ों में ऐसा क्या खास है जो आप इनको इतना प्यार करते हैं। कोई इनको क्या बताए जो बात पुरानी चीज़ों में है वो नई चीज़ों में कहाँ। जो प्रेम है, जो खलिश है, जो खूबसूरती है। अब देखिए ना, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है फिल्म ताजमहल का, रोशन का संगीत है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है और बोल हैं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, एंजॉय कीजिए।

और चलते चलते आज की महफिल का, आज के इस खूबसूरत सफर का एक आखिरी गीत भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक ऐसा रिश्ता जिसे शब्दों की ज़रूरत नहीं, बस सुरों का साथ काफ़ी है। एंजॉय कीजिए इस गीत के साथ और इजाज़त दीजिए अपने दोस्त नवीन को आज के इस कार्यक्रम को यहीं यहीं यहीं समाप्त करने की।

0: अभी आप सुन रहे थे गीतों भरे गुड मॉर्निंग। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात।

0: आपके साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी की योजना प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोका जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम का आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रस्मी स्वागत किया जाएगा। वे राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में श्री तो लैम के साथ बैठक करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। श्री तो लैम आज 56वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी देंगे। आज की वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और भारत वियतनाम सहयोग के नए अवसर खोलने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री तो लैम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही इन राज्यों में औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है और नई सरकार के गठन का रास्ता अब साफ हो गया है। आयोग ने बताया कि मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सिर्फ मतदान और मतगणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की इन टिप्पणियों को अराजक बताया है। श्री पात्रा ने कहा कि ये टिप्पणियां चिंताजनक हैं, क्योंकि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण सदैव शांतिपूर्ण तरीके से होता आया है।
2: ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात, यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर है। ममता बनर्जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं है और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे।
0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां अब तेज हो गई हैं।

0: पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के लिए नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके के नेता जोसेफ विजय आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर से मुलाकात करेंगे और राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए पार्टी को 10 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। केरलम में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष NIA अदालत में पेश किया गया है। रिसिन अरंडी के बीजों से हासिल एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है, जिसे रासायनिक हथियार की अनुसूची में वर्गीकृत किया गया है। मामला मूल रूप से गुजरात आतंकरोधी दस्ते द्वारा नवंबर 2025 में डॉक्टर मोहिउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति निपुण भारत मिशन के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें माता पिता, शिक्षकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समुदाय के सदस्य को एक साथ लाने पर जोर दिया गया है। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। वे नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।
1: ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से चल रहा है। सेकेंड थिंग रिसर्च भी चल रहा है। ये बायो बिटुमिन तैयार किया, अब इथेनॉल से आइसोबिटेनॉल तैयार हुआ। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अभी बायोमास से बायो CNG बनाने का काम। तो अब ये किसान एक प्रकार से अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता, और आगे अब हम किसानों को हाइड्रोजन दाता बनाना चाहते हैं। हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर।
0: पंजाब में अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और BSF परिसरों के बाहर हुए 2 धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देश सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को उन्नत बनाने, श्रम बाजारों को औपचारिक रूप देने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित कर देने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए व्यापक समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण ये निर्णय लिया गया है। रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की थी। श्री ट्रंप ने कहा था कि दुनिया भर के देशों ने इस जलमार्ग से अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए सहायता का अनुरोध किया था।
2: ये हमले अमेरिका द्वारा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने के कुछ ही घंटे बाद 4 मई को शुरू हुए, जो खाड़ी में फंसे वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकालने के लिए सैन्य

0: सुरक्षा के साथ चलाया जाने वाला अभियान था। ईरान जिसने फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने के बाद से जलडमरू मध्य पर नियंत्रण करने की कोशिश की है, उसने अमरीकी नौसेना के जहाजों और अमरीकी संरक्षण में चल रहे वाणिज्यिक जहाजों पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला करके जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद उसने संयुक्त अरब अमीरात पर निशाना साधते हुए नागरिक स्थलों और सुविधाओं पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोन दागे। वायु रक्षा प्रणालियों ने अधिकांश मिसाइलों को रोक दिया, लेकिन फुजैरा में एक तेल संयंत्र पर ड्रोन हमले से आग लग गई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक मामूली रूप से घायल हो गए। कई देशों ने तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और बढ़ते तनाव के लिए पूरी तरह से तेहरान को जिम्मेदार ठहराया। कई देशों ने यह भी संकेत दिया है कि वे ईरान के प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा के बाद आज वैश्विक तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड 1.21% गिरकर करीब $108 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। हालांकि व्यापक तेल बाजारों में भी तंगी बनी हुई है। संघर्ष शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा पंजाब किंग्स से। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार और पश्चिम बंगाल में और गंगा के मैदानी इलाकों में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में रविवार तक बारिश का अनुमान है, जबकि कोंकण और गोवा में रविवार तक गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों, जनहित याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी और बंगाल में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद के नाटकीय घटनाक्रम से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। देशबंधु की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले। अखबार ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तस्वीर सहित बॉक्स में छापा है। 3900 करोड़ की लागत से 2 नई सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को विस्तार से प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, केंद्रीय कैबिनेट के 10 फैसले। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाए जाने और गन्ने का लाभकारी मूल्य 10 रुपये बढ़ाने को सुर्खियों में जगह दी है। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, जनहित याचिका अब पैसा हित याचिका बनी। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, एससी बोला, गैर आस्थावान लोगों की ओर से मंदिर की परंपराओं को चुनौती देना गंभीर मुद्दा। दैनिक भास्कर ने संपादकीय को शीर्षक दिया है, दीवारों पर लिखी इबारत पढ़ने से चूक गई टीएमसी। पत्र की राय में टीएमसी के मतदाता भाजपा की ओर चले गए, जिसे समय रहते टीएमसी भाप नहीं सकी। पत्र ने बंगाल के घटनाक्रम को ही शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, बंगाल में हिंसा, ममता बोली इस्तीफा नहीं दूंगी। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, नया पैतरा, भाजपा चुनाव आयोग पर आरोप। पत्र ने चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी के ऐलान को भी प्रमुखता से छापा है, हारे नहीं हराए गए, सड़क पर संघर्ष करूंगी। अमर उजाला ने विधानसभा चुनावों में जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से मिले बधाई संदेश को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
1: और लीजिए अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लॉम से बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश के आरोप में 3 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के सदर तोलाम के साथ बातचीत करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्तों से कहा है कि वो चुनाव के बाद के तशद्दुद को हरगिज बर्दाश्त न करने का उसूल लागू करें। इंतखाबी कमीशन ने इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद मगरबी बंगाल, आसाम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई असेंबलियों की तश्कील के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। एनआईए ने आईएसआईएस के राबते वाली बायो टेरर साजिश में एक डॉक्टर और दो दीगर को बड़े पैमाने पर लोगों को जहर देने के इल्ज़ाम में माखूज़ किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम, जो आबनाए हुरमुज में फंसे हुए जहाज़ों को बहिफाजत निकालने के लिए शुरू किया गया है, उसे मुख्तसर वक्फे के लिए रोका जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के सदर तोलाम के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे पर वसी बातचीत करेंगे। वो बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर भी बातचीत करेंगे। वियतनाम के सदर कल भारत के 3 रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल उमूर दाखिला के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने किया। उनके हमराह वियतनाम हुकूमत के बहुत से वजीरों और सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल आला सतही वफद भी आया है। उनके साथ सरकर्दा ताजिरों का एक वफद भी है। सदर तोलाम का इस साल अप्रैल में वियतनाम के सदर के तौर पर चुने जाने के बाद भारत का ये पहला सरकारी दौरा है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: वियतनाम के सदर तोलाम को आज राष्ट्रपति भवन के अहाते में बाज़ाब्ता रस्मी इस्तकबालिया दिया जाएगा। वो राजघाट में महात्मा गांधी को गुलाए अकीदत नजर करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर के दरमियान बातचीत के बाद कई मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए जाएंगे और उनका तबादला किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू वियतनाम के अपने हमनसब के साथ आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दौरे पर आए मेहमान से मिलने जाएंगे। वियतनाम के सदर आज इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के जेर एहतमाम 56वां सप्रू हाउस लेक्चर भी देंगे। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: भारत के इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज को इंतखाबात के बाद किसी भी किस्म के तशद्दुद को कतई बर्दाश्त न किए जाने को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। ज़मीनी सतह पर सूरत हाल का जायजा लिए जाने के बाद जारी किए गए एक हुक्मनामे में कमीशन ने सख्त और फौरी इकदाम की ज़रूरत पर जोर दिया, ताकि असेंबली इंतखाबात के नतीज के बाद अमन व कानून को बरकरार रखा जाए। इंतखाबी कमीशन ने रियासती इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसियों से कहा है कि वो इंतखाबी नतीज के ताल्लुक से डराने धमकाने, बदले या टकराव की किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम करें। कमीशन ने हुक्काम को यह भी हिदायत दी है कि वो तमाम शहरियों, खुसूसन कमज़ोर ग्रुपों और सियासी कारकुनान की हिफाजत व सलामती को यकीनी बनाएं और हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की नुमाया मौजूदगी को बरकरार रखें। सीनियर अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो चौकस रहें और रियासत में होने वाले किसी भी वाकये की इत्तला मिलने पर फौरी कार्रवाई करें। ये हिदायत तशद्दुद के उन अलग अलग वाकयात के बारे में तश्वीश के दौरान जारी की गई हैं, जिनकी इत्तला नतीज के ऐलान के बाद दी गई थी, जो इंतखाबात के बाद रियासत के इलाकों में बार बार उभरने वाला मामला है। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल, आसाम, केरला, तमिलनाडु और पुदुचेरी में इंतखाबी अमल मुकम्मल हो जाने के बाद नई असम्बलियाँ तश्कील दिए जाने की गरज से नोटिफिकेशन जारी किए हैं। ये नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबी अमल के इख्तिताम पजीर होने और नई सरकारों की तश्कील के मकसद से रियासतों के गवर्नर्स और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिबान को भेजे गए हैं। इंतखाबी कमीशन के एक सीनियर अहदेदार ने कहा कि नोटिफिकेशन का इजरा चुनाव नतीज के ऐलान के बाद एक कलीदी आइनी कदम है और इसके साथ ही इंतखाबी कमीशन की जानिब से नई असम्बलियाँ तश्कील दिए जाने का अमल मुकम्मल हो चुका है। अहदेदार ने यह भी कहा कि कमीशन ने असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के दौरान सभी जाब्तों पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया है। पोलिंग से लेकर वोटों की गिनती तक पूरा अमल कानूनी फ्रेमवर्क के मुताबिक आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ तरीके से अंजाम दिया गया है। नोटिफिकेशन से रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मुंतखबा नुमाइंदों की हलफ बर्दारी और नई सरकारों की तश्कील की राह हमवार हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि भारत एक जमहूरियत है और इसका हमेशा एहतराम किया जाना चाहिए। मगरबी बंगाल की सुबुकदोश होने वाली वजीर आला ममता बनर्जी की मुबैना राय जनी पर रद्द अमल जाहिर करते हुए बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने इस तबसरे को इंतशार पैदा करने वाला करार दिया और ममता बनर्जी पर जोर दिया कि वो इस किस्म के बयान देते हुए तहम्मुल का मुजाहरा करें। जनाब पात्रा ने कहा कि ये तबसरे तशवीश का बाइस हैं क्योंकि मुल्क की जमहूरियत में इक्तदार की मुंतकली हमेशा पुरम तरीके से हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई बीजेपी पर हमला नहीं है बल्कि ये जमहूरियत और मुल्क के आईन पर हमला है।
2: ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात, यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर है। ममता बनर्जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं है और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे।
0: बीजेपी ने सीनियर पार्टी लीडर और मरकजी वजीर अमित शाह को मगरबी बंगाल में लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर के इंतखाब के लिए मरकजी मुशाहिद मुकर्रर किया है, जबकि ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी को रियासत में मरकजी मुआविन मुशाहिद मुकर्रर किया गया है। मरकजी वजीर जेपी नड्डा को आसाम में लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब करने के लिए मरकजी मुशाहिद मुकर्रर किया गया है। हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी को रियासत में मुआविन मुशाहिद मुकर्रर किया गया है। मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया और पुदुचेरी में बीजेपी के इंचार्ज निर्मल कुमार सुराना को पुदुचेरी में मरकजी मुशाहिदीन मुकर्रर किया गया है। बीजेपी के पार्लियामानी बोर्ड ने मरकजी मुशाहिदीन के लिए इन नामों की मंजूरी दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हालिया असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत पर मुबारकबाद दी है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कुश देसाई ने कहा कि सदर ट्रंप ने वजीर आजम मोदी को हालिया तारीखी और फैसला कुन इंतखाबी जीत पर मुबारकबाद दी है। बीजेपी ने 294 रुकनी बंगाल असेंबली में 206 सीटें जीती हैं, जबकि ममता बनर्जी की क्यादत वाली तृणमूल कांग्रेस ने महज 80 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। इधर आसाम में बीजेपी ने मुसलसल तीसरी मरतबा अपना इकतदार बरकरार रखा है, जबकि पुदुचेरी में एनडीए ने 30 से 18 सीटें जीतकर वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली है। तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात में एक वाहिद बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने वाली टीवीके रियासत में हुकूमत साजी का दावा पेश करेगी। पार्टी का कहना है कि उसके लीडर जोसेफ विजय आज गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात करके रियासत में नई हुकूमत तश्कील देने के लिए पार्टी का दावा पेश करेंगे। टीवीके को रियासती असेंबली में अक्सरियत हासिल करने के लिए मजीद 10 अरकान असेंबली की हिमायत की ज़रूरत है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने एक डॉक्टर समेत 3 अफराद के खिलाफ एक फर्द जुर्म दाखिल की है। ये फर्द जुर्म अवामी मकामात पर लोगों को एक बायोलॉजिकल जहर देने की ISIS की एक साजिश में इन लोगों के मुलव्वस होने के सिलसिले में दाखिल की गई है। हैदराबाद में मुकीम डॉक्टर सैयद अहमद मुहीउद्दीन और उत्तर प्रदेश के साथी मुलजिम आज़ाद और मोहम्मद सुहेल को गुजरात के शहर अहमदाबाद में NIA की खसूसी अदालत के सामने ये फर्द जुर्म पेश की गई है। मुलजमीन ने दौलत इस्लामिया से वाबस्ता बैरून मुल्क मुकीम अपने आकाओं की हिदायत में काम करते हुए अपने आकाओं की तरफ से कमज़ोर नौजवानों को इंतहा पसंद बनाकर भर्ती करने के लिए उनसे मिलजुल कर काम किया था ताकि जिहाद में मदद दी जा सके और ममनू हथियारों नीज बायो टेररिज्म के जरिए दहशत फैलाई जा सके। उन्होंने एक इंतहाई जहरीले मादे रिसिन या अरन के इस्तेमाल की मंसूबाबंदी की थी, जिसे कीमियावी हथियारों के कन्वेंशन की पहली फहरिस्त में शामिल किया गया है। इन लोगों का मकसद ISIS के इन नफरत अंगेज एजेंडे को आगे बढ़ाना था। यह केस इब्तदाई तौर पर चीन के एक MBBS डॉक्टर मुहीउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद दहशतगर्दी की रोकथाम के गुजरात स्क्वाड ने दर्ज किया था। मुहीउद्दीन गैर कानूनी हथियार एक टोल प्लाजा से गुजारते हुए पकड़ा गया था। उसके पास से नवंबर 2025 को अरंड के 4 लीटर तेल पर मुश्तमिल एक बोतल और मुजरिमाना नौयत की कुछ दीगर चीज़ें बरामद की गई थीं। ATS ने तफ्तीश के बाद उसी दिन मजीद 2 मुलजिमों को भी गिरफ्तार किया था। पंजाब में कल शाम जालंधर में सरहदी

हिफाजती फोर्स बीएसएफ के फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स के सख्त हिफाजती इंतजामात वाले मरकजी दरवाजे के करीब एक धमाका होने से इलाके में खौफ हिरास और तश्वीश पैदा हो गई। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब ऑनलाइन सामान डिलीवरी कंपनी में काम करने वाला एक डिलीवरी बॉय बीएसएफ एहलकारों को पार्सल पहुंचाने आया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम, जो आबनाए हुरमुज में फंसे हुए जहाजों की रहनुमाई करने वाला एक

0: रोका जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब ट्रंप ने कहा कि महाजराई को ख़त्म करने के लिए ईरान के नुमाइंदों के साथ एक जामे मुआहदा किए जाने की तरफ बड़ी पेशरफ हुई है। उन्होंने वजाहत की कि हालिया फौजी कार्रवाई और सिफारती बातचीत की पेशरफ की रोशनी में प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत एक मुख्तसर वक्फे के लिए आबनाई हुरमुज में जहाज़ों की इस कार्रवाई को रोकने का एक बाहमी फैसला किया गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस वक्फे से इस बात पर गौर वखोस करने का वक्त मिल जाएगा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक कतई मुआहदा किया जा सकता है। अमरीकी सदर ने यह ऐलान वजीर खारजा मार्को रूबियो की तरफ से ये कहे जाने के बाद किया है कि ईरान में अमेरिका इसराइल के इब्तदाई हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इस कार्रवाई के मकासद हासिल हो जाने के बाद ख़त्म कर दिए गए हैं। इतवार को ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया था। एक और सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर के ममालिक ने अमरीकी मदद के लिए दरख्वास्त की थी कि उनके जहाज़ों को लड़ाई में फंसे हुए जहाज़ों को बहिफाजत निकाल लिया जाए। आईपीएल क्रिकेट में कल रात नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन के नॉट आउट 87 रन और कार्तिक शर्मा के 41 रन की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए दरकार 156 रन के लिए खेलते हुए नई चेन्नई सुपर किंग्स ने 17 ओवर्स और तीन गेंदों में 2 विकेट के नुकसान पर जीत का हदफ हासिल कर लिया। संजू सैमसन को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने आज बिहार और मगरबी बंगाल के गंगा की तराई वाले इलाके में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने कहा है कि इन खित्तों में कल तक 60 किलोमीटर फी घंटे तक की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का भी इम्कान है। महकमे ने यह भी बताया है कि आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय और सिक्किम में भी शदीद बारिश हो सकती है। इसके अलावा महकमे मौसमियात ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में इतवार तक मूसलाधार बारिश की भी पेशगोई की है। इस दौरान महकमे ने मगरबी राजस्थान में हफ्ते से पहर तक इक्का दुक्का मकामात पर शदीद गर्मी पड़ने की भी पेशगोई की है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक।
1: शुक्रिया कौनैन। कौमी राजधानी से छाया होने वाले आज के रोज़नामा इनकलाब, प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस के अलावा दीगर अखबारात ने भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले की सख्त मजम्मत किए जाने की खबर को अपने सफ़े अव्वल पर शाया किया है। भारत और जापान का सेहत के शोबे में तआवुन को मजबूत करने पर जोर, इस खबर को हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने अपने सफ़े अव्वल पर शाया किया है। बीजेपी सदर नितिन नबीन के इस बयान को भी आज के अखबारात ने अहमियत के साथ शाया किया है कि वजीर अजम नरेंद्र मोदी मगरबी बंगाल और आसाम समेत पूरे मुल्क को तरक्की देंगे। बीजेपी ने अमित शाह को मगरबी बंगाल और जेपी नड्डा को आसाम का मुबसर मुकर्रर किया है। इस खबर को तकरीबन सभी अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर अहमियत के साथ शाया किया है।
0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के सदर तोलाम के साथ बातचीत करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्तों से कहा है कि वो चुनाव के बाद के तशद्दुद को हरगिज बर्दाश्त न करने का उसूल लागू करें। इंतखाबी कमीशन ने इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद मगरबी बंगाल, आसाम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में नई असम्बलियों की तश्कील के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। एनआईए ने आईएसआईएस के राबते वाली बायो टेरर साजिश में एक डॉक्टर और दो दीगर को बड़े पैमाने पर लोगों को जहर देने के इल्ज़ाम में माखूज किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम, जो आबनाई हुरमुज में फंसे हुए जहाज़ों को बहिफाजत निकालने के लिए शुरू किया गया है, उसे मुख्तसर वक्फे के लिए रोका जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर 8:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग विभास में ख्याल। कलाकार हैं शिव प्रसाद राव।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रही थी शिवप्रसाद राव का गाया राग विभास में ख्याल। इसके साथ ही स्वरगंगा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम साइंस मैगजीन।

अभी आप साइंस मैगजीन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लैके मैं हाजर हाँ शमिंदर कलेर। अज के इस प्रोग्राम च कलम दे तनी लड़ी तहत करतार सिंह दुगल विषय ते वार्ता सुनवाई जाएगी। इस तो इलावा कुछ गीत भी सुनवाए जाएंगे, पर इस तो पहला गल करदे हां नारी दे सन्मान दी। नारी समाज च रहिंदे होए मां, भैण, पत्नी ते होर पता नहीं किन्ने कु रिश्ते निभाउंदी है। उस सृष्टि दी जननी है ते उस तो बिना परिवार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस तो बिना समाज अधूरा है। अज महिलावां हर खेत्र च मर्दा दे मोढ़े दे नाल मोढ़ा जोड़ के काम कर रही ने। भावें उह विज्ञान होवे, कला होवे जां खेडां दा खेत्र, हर पासे महिलावां ने अपनी कामयाबी दे झंडे गड्डे ने। अज औरत अबला नहीं सबला बन चुकी है, जो हर खेत्र च मल्ला मार रही है। समाज च रहिंदे होए सानू औरतों का सन्मान करना चाहिए है, क्योंकि औरत सिर्फ परिवारक जिम्मेवारियां ही नहीं निभा रही, बल्कि अज दी नारी दफ्तर दे कम्मां दे नाल नाल वड्डे वड्डे अहुदियां ते काम कर रही है ते समाज दे विकास च बराबर दा योगदान दे रही है। ते ए पढ़ियां लिखियां महिलावां अपने हक लैणा बाखूबी जाणदियां ने। पर हाले भी कई थाई कुछ लोगों की मानसिकता अजिही है जिथे औरतों नूं मर्दां दे बराबर समान अधिकार नहीं दिते जांदे, जिस कारण उह समाज च पिछड़ जांदियां ने। कई थावां ते उहनां नूं शोषण, दाज प्रथा ते होर कुरीतियां दे नाल जूझणा वी पैंदा है। मर्द ते औरत इक्को साइकल दे दो पहियां वांग ने। जे इन्हां विचों इक वी पहिया ठीक काम ना करे तां जिंदगी रूपी साइकल नहीं चल पाउंदी। नारी दा सन्मान करदे होए सानू उसनू उसदे अधिकार देने चाहिए ने, तां जो समाज दे विकास च उह वी अपना योगदान पा सके। जे तुहाडे घर धी जन्म लैंदी है तां पुत्रां वांग उसदे जन्म दीआं खुशियां मनाओ, क्योंकि धीआं अपने मापिआं दा ज़्यादा मोह करदीआं ने। जे तुसीं महिलावां नूं आदर सत्कार ते प्यार दोगे तां उह वी बदले च तुहाडे सुपनिआं ते उम्मीदां ते खरीआं उतरनगीआं। उन्हां नूं माण सन्मान दे के तां वेखो, फिर वेखिओ उह किवें हर सुपने नूं साकार करदीआं ने, समाज च तुहाडा नाम रोशन करदीआं ने। इह तां सी गल नारी दे सन्मान दी। ते आओ हुण सुणदे हाँ कलम दे तनी लड़ी तहत करतार सिंह दुगल विषय ते वार्ता, ते वार्ताकार ने डॉक्टर कुलदीप कौर पावा।
1: करतार सिंह दुगल एक सर्बांगी लेखक है। उसने साहित दियां वख-वख विधावां जिवें कविता, कहानी, नॉवल, नाटक तो अलावा स्वै जीवनी की रचना करके पंजाबी साहित नूं भरपूर किया है। भावें दुग्गल ने साहित दे वख-वख खेत्रां विच भरपूर रचना कीती है, पर उस दी विशेष पछाण कहानीकार दे तौर ते ही बनी है। करतार सिंह दुग्गल दा जन्म 1 मार्च 1917 नूं सांझे पंजाब दे रावलपिंडी जिले दे पिंड तमियाल विच सरदार जीवन सिंह दे घर होया। दुग्गल ने पंजाबी ऑनर्स अते एमए अंग्रेजी तक दी उच्च विद्या प्राप्त कीती। उसने अपने जीवन काल विच बहुत उच्चे सरकारी अहुदियां उत्ते काम कीता। सन 1965 विच करतार सिंह दुग्गल नूं उसदे कहानी संग्रह एक छिट चानण दी उपर भारतीय साहित्य अकादमी दा पुरस्कार मिलिया। करतार सिंह दुग्गल नूं होर भी अनेका मान सम्मान प्राप्त होए। करतार सिंह दुग्गल दी साहित रचना दे सफर दी शुरुआत 1941 तों हुंदी है। इह उह वेला सी जदों उसदे अंदर पंजाबी साहित प्रति सिरजनात्मक सूझ पैदा हुई। उसे साल उसने साहित दीआं 4 वख-वख विधावां विच रचना करके पंजाबी साहित नूं नवीन दिशा प्रदान कीती। इह पुस्तकां सन आंद्रा नॉवल, स्वेर सार कहानी संग्रह, कंडे कंडे काव्य संग्रह अते 1 00 रेडियो नाटक। 1940-41 तों पंजाबी साहित दी सिरजना विच जुटिया करतार सिंह दुग्गल जदों 2012 विच संसार तों विदा लैंदा है तां आधुनिक काल दे मुढ़ले दौर तों उह 21वीं सदी अते उत्तर आधुनिक दौर दा भागीदार भी अते साखीकार भी हो निबड़दा है। सो उह आधुनिकता दे मुढ़ तों चरम तक दा चश्मदीद भी है अते पेशकार भी। जदों करतार सिंह दुग्गल ने लिखना शुरू कीता तां पंजाबी साहित चेतना संक्रांति काल विचों लंघदिआं पछमी विज्ञानक चेतना अते पूंजीवादी सरोकारां दे दखल नाल परिवर्तित होण लग पई सी। इस संक्रांति काल दी

आधुनिक चेतना लई पछमी ज्ञान विज्ञान अते पूंजीवादी वर्तारा बेशक आधारभूत कारज निभाउंदा है, पर इस दे अंतर्गत निहित मध्यकाली भारतीय पदार्थवादी अते लौकिक चेतना जो कि अध्यात्मवादी आदर्शवादी महाचेतना दे समानंतर चल रही सी तो भी इनकार नहीं किया जा सकता। पर जदों आधुनिक पंजाबी गल्प दे दूजे दौर अते 20वीं सदी दे चौथे दहाके विच करतार सिंह दुग्गल अपनी रचना नाल प्रवेश करता है तो असल विच पंजाबी साहित्य नवीन चेतना अते बिरतांतक रचना दृष्टि करके विशेष रूप विच पंजाबी गल्प जगत विच अपनी पैठ कायम करती है। दुग्गल दी साहित्य रचना उस वेले दी परिवर्तित साहित्य चेतना दी सूचक बनती है जिसका आधार उस काल विशेष विच बदलदियां राजसी आर्थिक समाजक अते मनोविज्ञानक स्थितियां बनदियां हन। दुग्गल दी साहित्यकारी उस समुचे वैश्विक वर्तारे दे ज्ञान विज्ञान अते विचारधारा प्रति चेतन है जो मानव जाति नूं वधेरे बुद्धि न्या विवेक अते तर्क नाल जोड़दी है। जदों करतार सिंह दुग्गल इस पूरे महादृश विच प्रगट हुंदा है तां यथार्थ प्रति प्रगतिवादी सोच नूं वधेरे सार्थकता मिलदी है। इस दौरान पंजाबी साहित्य विशेष करके गल्प रचना मनुखी जीवन दे बारीक अते सूखम मनोभावी वेरवियां नूं विशा बना के पेश करदी है जिस नाल पंजाबी साहित्य विच मानवी जीवन दे समग्र यथार्थ नूं वधेरे कलात्मक रूप विच प्रस्तुत करन वल रुचि वधदी है। फ्रायड दे मनोविज्ञान अते कला दे सहजात्मक पक्ष दा वर्णन दुग्गल दीआं कहानियां दा सही आधार बनदे हन। ओह गल्लां जिन्हां नूं मन दीआं गहराइयां तक महदूद समझिया जांदा सी प्रतीकात्मक विधि नाल सहज मूलक ढंग नाल गल्पी बिंब विच टल के दुग्गल दीआं रचनावां विच पेश होईआं। करतार सिंह दुग्गल पंजाबी विच सब तों वध कहानियां लिखण वाला कहानीकार है, पर साहित्यक निपुणता पक्खों भी उस दी कहानी कला किसे पास्यों घट नहीं। करतार सिंह दुग्गल दीआं कहानियां विच पेश यथार्थ एक अजिहे सोहजात्मक पक्ष वजों पेश होया जिस नूं गल्पी यथार्थ दे मॉडल वजों पछाणिया जाण लगा। विधागत गुणात्मकता वाली अते संकेतात्मक कलात्मकता वाली कहानी लिख के दुग्गल ने पंजाबी कहानी नूं अमीर बना दिता। उस दी कहानी रचना दा वेरवा इस प्रकार है जिस विच 5 कहानी संग्रह मूल अते 5 चोणवियां कहानियां दे संग्रह हन। सवेर सार, पिपल पत्तियां, कुड़ी कहानी कर दी गई, डंगर, कच्चा दुध, अग खाण वाले, नवा घर, नवा आदमी, लड़ाई नहीं, फुल तोड़ना मना है, करामात, गौरज, पारे मैरे, एक छिट चानण दी, सबे सांझी वाल सदायण, माजा नहीं मोया, सुनार बंगला, टोया होया बूहा, इकरारा वाली रात, त्रिकाला वेले, हंसा आदमी, पैणगे वैण डूंगे, भाभी जान, मौत एक गुंचे दी, अते चोणवियां कहानियां विचों टोए टिब्बे, सिलवट्टे, मील पत्थर, तिल छट, मेरियां श्रेष्ठ कहानियां आदि हन। पंजाबी गल्प दे खेतर विच करतार सिंह दुग्गल ने नावल भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उस दे प्रसिद्ध नावलों विच आंदरा, नौ ते मास, उस दियां चूड़ियां, एक दिल विकाऊ है, दिल दरिया, हाल मुरीदां दा, मन परदेसी, अब ना बसो एह गाँव, माँ प्यो जाए, सर्द पुन्या दी रात, अम्मी नू की हो गया, दर्द न जाने कोई, मैं तो प्रेम दीवानी, फुल्लां दा साथ, जल की प्यास न जाए, पुत सपुत करेन अते त्रै लड़ी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा पला आदि शामिल हन। त्रै लड़ी नावल दी सिजना नाल दुग्गल ने महाकाव्यक नावल दी परंपरा नू विकसित किया है। उस दे नावलां दा मुख विशा भी कहानी वांग मनुखी होंद नाल जुड़े मसलियां दी मनोविश्लेषणी विधि नाल संबंधित है। उस दे नावलां विच देश वंड, पुनर्वसेबा अते शहरी जीवन दे भरवें दृश्यां नू मनोविज्ञानक दृष्टि तो पेश किया गया है। फुल्लां दा साथ नावल विच पंजाब संकट दा चित्रण भी इसे परिपेख विच किया मिलता है। मनोविश्लेषणी रचना दृष्टि करके दुग्गल दी रचना विच कई थाई कामुक चित्रण दी रुचि नू भी वेख्या जा सकता है, पर असल विच दुग्गल यथार्थवादी दृष्टि तो ही मनोविज्ञानक विश्लेषण करता है, इसलिए मनुखी मन दे अंतरीव सच नू पेश कर सकता है। इसे ही दृष्टि तो असी करतार सिंह दुग्गल दे नाटकां दा भी अध्ययन कर सकते हाँ। 1941 विच नाटक 100 अते आत्मकात तो बाद दुग्गल दे 8 होर नाटक वक् वक् समय विच प्रकाशित होए। उस दे कुछ नाटक रेडियो नाटकां दे तौर ते आकाशवाणी तो भी प्रसारित होए।
ਸਨ 1998 ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਦੋ ਨਾਟਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੁੱਗਲ ਦੇ ਨਾਟਕ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੁੱਗਲ ਦੇ ਨਾਟਕ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਟਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਗਏ ਸਾਜਨ ਉਹ ਗਏ, 15 ਅਗਸਤ, 3 ਨਾਟਕ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, 7 ਨਾਟਕ, ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ, ਕੋਹਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ

0: कंडे कंडे बंद दरवाजे अते 20वीं सदी उस दी कविता विच मनुख दे निजी पावां नूं खास पोठोहारी भाषाई लहजे विच पेश कीता गया है। कविता विच भाव अते मनो अभिव्यक्ति सरोदी अते प्रगीतक विधि नाल कीती गई है जिस नाल कावक गुणा दी पेशकारी कलात्मकता नाल होई मिलती है। कविता तो बिना करतार सिंह दुग्गल ने अपनी स्वय जीवनी किस पै खोलो गंठड़ी दी रचना 1985 विच कीती जिस विच उसने अपने निजी अते साहित्यक जीवन दे वेरवे गल्पी जुगतां दी मदद नाल बयान कीते। उस दी स्वय जीवनी भी नावल नाटक अते कहानी वांग उत्तम साहित्यक गुणा नाल भरपूर है। असल विच करतार सिंह दुग्गल पंजाबी साहित दा एक अजिहा सिरमौर लेखक है जिसने पंजाबी साहित नूं पहली वारी मानवी यथार्थ दियां बारीकियां नाल रूबरू करवाया। विश्व वर्तारे विच उपजे नवीन ज्ञान सदका मनुखी मन दियां मनोविज्ञानक गुंझलां अते प्रवृत्तियां नूं अपनियां रचनावां दा आधार बनाया अते बड़ी बेबाकी नाल खुल के कलात्मक सूझ नाल साहित्यक बिंब विच ढाल के पेश कीता।
1: कलम दे धनी लड़ी तहत वार्ता तुसी सुन रहे सी करतार सिंह दुग्गल विषय ते वार्ताकार सन डॉक्टर कुलदीप कौर पावा। ते आओ हुण प्रोग्राम दे सिलसिले नूं अगे वधाउंदे होए सुनदे आं हरभजन मान दी आवाज़ च गाए इस गीत नाल आ सोणियां वे जग जिउंदियां दे मेले। गीत नूं संगीतबद्ध कीता है संगीत सम्राट चरणजीत आहूजा ने ते गीत दे बोल लिखे ने विजेता मीने।

सचिए ज्योंदियां दे ही मेले हुंदे ने। ते हुणे तुसी जिंदगी दी सच्चाई नू बयान करदा ये गीत सुन रहे सी हरभजन मान दी आवाज़। ते हुण अगला गीत तुहाडी नज़र ए नी मैं दिल मर जाने नू अड़ियो मर्ज़ इश्क दी लाली। गायक ने हरजीत हरमन। गीत नू संगीतबद्ध कीता ए अतुल शर्मा ने।

सरबजीत की आवाज़ च ये लोग गीत तुसी सुन रहे सी। आस है कि मिट्टी की महक प्रोग्राम तुहानू पसंद आया होगा। इस दे नाल ही मिट्टी की महक प्रोग्राम का समा हुण खत्म हुंदा है। हुण शिवेंद्र कलेर नूं इजाज़त दिओ।

0: अभी आप पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 10 बजने को हैं, कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति कल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उनका स्वागत किया। उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी उनके साथ आया है। इस वर्ष अप्रैल में वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद राष्ट्रपति तो लैम की ये भारत की पहली राजकीय यात्रा है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही इन राज्यों में औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है और नई

0: सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। आयोग ने बताया कि इसके साथ ही निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सरकार गठन के अगले चरण शुरू किए जा सकेंगे। मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की इन टिप्पणियों को अराजक बताया। श्री पात्रा ने कहा कि ये टिप्पणियां चिंताजनक हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता आया है।
1: ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात, यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर है। ममता बनर्जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं है और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे।
0: पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों की रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क बढ़ेगा और परिचालन क्षमता में सुधार होगा। इसके साथ ही देश के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल कर सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मुहियुद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सोहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण ये निर्णय लिया गया है। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. President of Vietnam Tho Lam was accorded a ceremonial welcome at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The Vietnamese leader was received by President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi upon his arrival at Rashtrapati Bhavan. Union ministers, including Piyush Goyal, Ashwini Vaishnav and Dr. Jitendra Singh, were present on the occasion. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the Vietnamese president in New Delhi today. Both leaders will hold wide-ranging discussions across the spectrum of bilateral relations, as also on regional and global issues of mutual interest. Prime Minister Narendra Modi has welcomed the Cabinet's approval of railways projects covering 19 districts across Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. In a series of social media posts, Mr. Modi said that the projects will enhance connectivity and improve operational efficiency,

गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। मैं कुसुम, आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद में, संगीत की एक खूबसूरत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं दोस्तों, संगीत वो जादू है जो बिना कुछ कहे दिल की हर बात कह देता है। कभी हमें बीते हुए सुनहरे पलों की याद दिलाता है, कभी थके हुए मन को सुकून दे जाता है, और कभी जीवन में नई उमंग और नई रोशनी भर देता है। तो इसी सुरों, भावनाओं और यादों से जो सजी ये हमारी जो प्रोग्राम है, गीत संगीत का कार्यक्रम है, आपकी पसंद के जो हम कार्यक्रम लेकर आए हैं, आपके पसंद के जो गीत नगमे हम सुनवाएंगे, आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद, इस कार्यक्रम में आपका

बहुत बहुत स्वागत है। इसमें सुनाएंगे हम वो सदाबहार नगमे जो बरसों बाद भी दिलों में अपनी मिठास बनाए रखते हैं, वो गीत जो कभी मन में खुशबू बिखेरते हैं तो कभी दोस्ती, उम्मीद और ज़िंदगी की राहों में हम सफ़र बन जाते हैं। संगीत की दुनिया ऐसी ही है दोस्तों। आपके पसंद के जो गाने हैं, गीत संगीत हैं, बहुत सुरीले हैं और वो हम सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। ये है फिल्म जीने की राह से और अपनी आवाज़ से सजाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

दोस्तों, आप अपनी पसंद के सदाबहार गीत सुन रहे हैं, और जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन करा है, आपके लिए एक बार फिर से हम बता देते हैं, हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। जो भी नए जुड़े हैं वो हमें मेल कर सकते हैं, और जिनको हमारा ईमेल आईडी पता है उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस मेल किए हैं। और

अब बारी है आप सभी की, और हम आपके जो भी आप सभी श्रोता जो दोस्त हमसे जुड़े हैं, आप सभी के ढेरों मैसेजेस, ढेरों ईमेल हमारे पास आए हैं। ये मैसेज आया है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से, राशिद हुसैन अंसारी, नसीर अंसारी, नौरीन, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी और समस्त परिवार का। साथ ही ये संदेश आया है छोटी बलिया फिल्म नगरी मुंबई से, अहमद भाई फूलवाले, जूही इकबाल, इमरान अहमद फूलवाले और कापस हेड़ा बॉर्डर दिल्ली से, नई दिल्ली से बिटिया आसमा, नसरीन आसमा परी, राबिया आशु अहमद फूलवाले। और ये मैसेज आया है पंकज शर्मा जी का, ये कह रहे हैं कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दें। इसके साथ ही एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रजिता खुराना और केशु खुराना का हमें मैसेज आया है। उत्तम सिंह जंघेल का ये संदेश आया है आर्यनगर कोका भिलाई से, साथ ही मोरस जंघेल, अनिल, अजीत, आयुष और नंदनी और समस्त परिवार का मैसेज में हमें मिला है। अमित जंगेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि भी इनमें शामिल हैं। आप सभी ने फरमाइश की है, अपने मनपसंद गीत सुनना चाहते हैं। इसके अलावा टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, इन सभी का हमने मैसेज शामिल किया है और आपकी पसंद का गीत हम सुनवाने जा रहे हैं। और एक मैसेज और ले लेते हैं, ये है अकुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमांश का मैसेज आया है। इसके साथ ही ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से भी हमें मैसेज आया है। तो आपका पसंद का ये गीत लीजिए, सुनिए।

दोस्तों, अभी आप लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ में सुन रहे थे अपना फरमाइशी गीत, फिल्म थी झुक गया आसमान। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संगीत की, तो संगीत ब्रह्मांड को आत्मा देता है, मन को पंख देता है, कल्पना को उड़ान देता है और हर चीज़ को जीवन प्रदान करता है। संगीत उन भावनाओं को व्यक्त करता है जिन शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हमें शब्द ही नहीं मिलते कई बार, तो उन शब्दों को संगीत के माध्यम से बहुत ही खूबसूरती के साथ हम कह सकते हैं और सुनने वाला समझ भी जाता है। और जिसे मौन नहीं रखा जा सकता संगीत को, सच्चाई सिर्फ संगीत में ही है। और संगीत रोज़मर्रा की ज़िंदगी की धूल को संगीत के माध्यम से धो देता है। तो आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद। हमें ढेरों आपके मैसेजेस आए हैं और अगली फरमाइश के लिए, अगली फरमाइश की है जो हम गीत बजाने वाले हैं, उसकी फरमाइश करने वाले हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा, पूजा परिहार और कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय का हमें मैसेज आया है। ग्राम नागर कोहरा, जिला राज नांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज का मैसेज आया है। साथ ही टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और पाकुड़ झारखंड से ये मैसेज आया है। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, अर्णव सत्यम और समस्त परिवार, बोहड़ा गाछी पश्चिम विहार से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत का हमें मैसेज आया है। इसके साथ ही चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा का हमें मैसेज आया है और अपनी पसंद का फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं। मुबीन अब्बासी, सिकंदर, अनल अब्बासी, सुहेल और समस्त अब्बासी परिवार, मारहरा दरवाज़ा एटा से। पंकज शर्मा जी का भी मैसेज हमें मिला है, ये इन्होंने भी अगले गीत की फरमाइश की है। इसके अलावा हमारे पास खेल बाज़ार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिव जी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का, डुगू भाविक सिक्का का मैसेज आया है। और ये मैसेज आया है उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश और गीतिका का। नासिर शेख जी का भी मैसेज हमें मिला है जो उन्होंने फरमाइश की है। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश और समस्त परिवार का ये मैसेज आया। अशोक डले जी का, इसके अलावा शिव मंदिर हकीकत हकीकत पूरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन कृष्णा, पीहू स्वर्णकार का भी मैसेज आया है। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कीर्ति आर्यन वर्मा का भी मैसेज आया है और ये इन्होंने फरमाइश की है अगले गीत की जो आप सुनने वाले हैं। इसके अलावा किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी का मैसेज आया है। हरजिंदर सिंह भाटिया जी का भी मैसेज आया है और मोहम्मद सादिक खत्री जी भी मैसेज कर रहे हैं और ये इन्होंने फरमाइशी गीत सुनना चाह रहे हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान और पूजा परिहार का मैसेज आया। इसके अलावा हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी वोडखे, श्रीमती चंदनदा, हनुमान वोडखे और उत्तम

के का भी मैसेज आया है जिन्होंने फरमाइश की है गीत की, जो आप कुछ ही देर में सुनेंगे। और यह है बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा चैतन्य, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना का। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये फरमाइशी गीत।

दोस्तों, अभी आप मोहम्मद रफ़ी की सुरीली आवाज़ में सुन रहे थे अपनी पसंद का गीत, फिल्म थी सूरज। और अगले गीत की फरमाइश की है हमसे दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र नोखिल वर्मा का। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेग रियाज, मोहम्मद समरीन, माहिरा नूर का मैसेज आया जसपुर उत्तराखंड से। और साथ ही ये हमें मैसेज आया रज़ाक मोहम्मद, शमीम, इमरान, इरफान और उनके समस्त परिवार का हनुमानगढ़ राजस्थान से। पांडववाड़ा ज़िला यवतमाल महाराष्ट्र से अनिल बुराड़े, उषा, अनुश्री और समस्त परिवार का ये मैसेज है। किशनगंज बिहार से भी मैसेज आया है रविंद्र और आशा देवी का। और ये मैसेज है जसवीर सिंह, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और समस्त परिवार का, गांव व डाकघर नेमनाबाद ज़िला जिंद हरियाणा से। ग्राम ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश।

कश्यप, शीतल कश्यप और समस्त कश्यप परिवार का ये मैसेज आए। साथ ही ये मैसेज है पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से अनिल मोहन, उषा टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक का। और ये मैसेज आया है नितिन और मयंक नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा का, कलानौर से। साथ ही हमें मैसेज भेजा है पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी आलम और असाद अंसारी का। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकोस्टा, रोज डिकोस्टा, पर्ल डिकोस्टा और विलिस डिकोस्टा का मैसेज हमें मिला है। इसके अलावा ये मैसेज आया है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण और साहिल विश्वकर्मा और उनके समस्त परिवार का। और ये मैसेज है कृष्ण कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी और समस्त परिवार का। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बनने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा और समस्त परिवार का। ग्राम पंचायत कालेगांव से शिव सुधाकर राज्य और समस्त परिवार की तरफ से ये मैसेज आया है। और इसके अलावा समस्त राधे जाधव देशमुख वायाल परिवार की तरफ से ये मैसेज आया है, जिन्होंने अगले गाने की फरमाइश की है। मालियान सरधना मेरठ अनिल जैन, जैन संयम जैन, मुस्कान जैन और समस्त जैन परिवार का ये मैसेज आया है। लीजिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये अगला गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को और फिल्म थी आरजू। क्या आपको पता है दोस्तों कि ना संगीत का जो असर है ना केवल इंसानों पर नहीं होता बल्कि पेड़ पौधों पर भी जादुई असर पड़ता है। कुछ शोध बताते हैं कि संगीत सुनने वाले पौधे जल्दी बढ़ने लगते हैं और नियमित संगीत सुनने से हमारे दिमाग की जो भौतिक संरचना होती है ना दोस्तों उसमें भी सकारात्मक बदलाव आ जाता है और हमारा मन दिलो दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। और आपने भी महसूस किया होगा संगीत को ना योग के समान माना गया है क्योंकि ये दिमाग और शरीर के बीच ना संतुलन बनाकर रखता है। और कभी कभी ये कहते हैं ना कि कोई गाना दिमाग में बैठ जाता है, हम बार बार गुनगुनाने लगते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कोई ख़ास गाना जो आपको बहुत पसंद आता है तो एक बार सुनते हैं फिर बार बार आप उसी को फॉरवर्ड बैकवर्ड करके सुनते जाते हैं। तो उसे कहते हैं ईयर वॉर्म का जादू, यानी जिसे आपका कान बार बार सुनना चाहता है, कान का कीड़ा कहा जाता है वैसे तो। मन करता है हमें बार बार उस गाने को सुनने की। तो संगीत में कितनी जादुई शक्ति है ये हम सभी जानते हैं और संगीत के ज़रिए ही, संगीत के माध्यम से ही तो हमारी दोस्ती भी हुई है, हम एक दूसरे को जानते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे और अगले गीत की फरमाइश की है घनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू और उनके समस्त परिवार का। हरजिंदर सिंह भाटिया जी का मैसेज आया है हमें स्टेशन रोड से जमशेदपुर से। इसके अलावा हमें मैसेज आया है सुदर्शन मुखी जी का शांति नगर सोनीपत से, आदर्श नगर मलोट पंजाब से, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरव, साइना का भी मैसेज आया है। इसके अलावा एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा और समस्त परिवार का मैसेज है। जय जिनेंद्र श्रोता संघ पर भणी महाराष्ट्र से रुपेश संघाई और समस्त संघाई परिवार का ये मैसेज आया। जसपुर उत्तराखंड से भी हमें मैसेज मिला है और इसके अलावा वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा का मैसेज आया है। जसपुर उत्तराखंड से भी मैसेज आया है हमें। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा और समस्त वर्मा परिवार का मैसेज आया है। और ये मैसेज आया है हनुमानगढ़ राजस्थान से रज़ाक मोहम्मद और समस्त परिवार का। साथ ही पांडवगढ़ा जिला यवतमाल महाराष्ट्र से अनिल बुराड़े और समस्त परिवार का मैसेज है। किशनगंज बिहार से भी मैसेज आया है और ये मैसेज आया है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन और टिल्लू नायक का। और आप सभी के ढेरों मैसेजेस आ रहे हैं और ये मैसेज आया है जो अगली गीत की फरमाइश की है गांव व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया और समस्त परिवार का। इसके अलावा रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी समस्त परिवार का मैसेज आया है। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद पुष्पेंद्र कुमार डूडी का भी मैसेज मिला है हमें। और ये मैसेज आया है मुसरत जहां नाज शिक्षिका तलत जहां फरहत जहां और समस्त परिवार का। गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से भी स्वर्ण सिंह गिल और समस्त परिवार का हमें मैसेज प्राप्त हुआ है। शास्त्री नगर बीड शहर से किसान सबकाल, आशा सबकाल, सोनिया सबकाल और विशाल सबकाल का हमें मैसेज आया है। पटेल नगर मलोट रमेश कुमार जलजोरिया, गीता रानी और गगनदीप जलजोरिया का मैसेज आया है। इसके अलावा ये मैसेज आया है ग्राम पंचायत काले गांव से श्री सुधाकर राजे जाधव और समस्त जाधव परिवार का। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, श्वनी और विपुल कांबड़े का भी मैसेज हमें मिला है। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, आप सभी की फरमाइश से का ये जो गीत है अगला गीत आप सभी के लिए।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ज्वेल थीफ से आप ये अपने पसंद का गीत सुन रहे थे हमें, और फरमाइश भेजी है, अगले गीत की फरमाइश भेजी है हमें किशन वनजानी ने। इसके अलावा गांव ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह और समस्त परिवार का मैसेज आया है। किशन जी का भी मैसेज है, संदीप मकर जी, ज्योति मकर और समस्त परिवार का मैसेज आया है जालंधर से। और ये मैसेज है गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधे श्याम, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा का। चौधरी गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम सतौड़ जी का मैसेज आया है। संदीप मकर जी का मैसेज आया है। इसके अलावा हमें ये मैसेज आया है वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम और समस्त परिवार का, नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से। सहारनपुर से एके नारंग, आशा नारंग और समस्त नारंग परिवार का मैसेज मिला है। और इसके अलावा ये मैसेज आया है डीबी राणा जी का, नेहरू विहार दिल्ली से। आदर्श नगर मालोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा और समस्त परिवार का ये मैसेज आया है। उसके अलावा उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल और समस्त बघेल परिवार का मैसेज है लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। ग्राम व पोस्ट मुंगिसापुर कानपुर देहात से भी मैसेज आया उमाकांती कठेरिया और कमलेश कठेरिया रामेश्वर जी का। लाल गिरी जी का मैसेज आया है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। और ये मैसेज है, इसके अलावा ये मैसेज आया है आप सभी का, अनारकली बाजार जगराओं से सुनीता पाठक, कमला पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक का। लीजिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

तो इसी के साथ हमारा आज का ये संगीतमय सफ़र यहीं हम विराम देना चाहेंगे। बातें तो बहुत सारी हैं संगीत से जुड़ी हुई, और संगीत तो देखिए, संगीत तो दिल की धड़कन है हमारी, भावनात्मक संबंध होता है संगीत से, और अक्सर संगीत में यादें इतनी गहरी होती हैं कि पुरानी यादें भूली हुई यादों को याद करती हैं, और मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ी होती, मानसिक स्वास्थ्य का भी उपचार होता है संगीत के ज़रिए। तो संगीत के ज़रिए हम बहुत कुछ पा सकते हैं। संगीत हमारे लिए कहते हैं ना कि एक जीवनदायिनी औषधि है। तो लेकिन हम विराम देना चाहेंगे, इजाज़त लेना चाहेंगे। मैं कुसुम पवार आपसे इजाज़त लेती हूँ। आप सुनते रहिए हमारा ये प्यारा सा गीत, सुनते रहिए इंद्रप्रस्थ के कार्यक्रम, और हम विदा लेते हैं आपके कार्यक्रम से, आपकी पसंद से। मुझे दीजिए इजाज़त अपनी होस्ट और दोस्त कुसुम पवार को। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और जाते जाते हम आपको एक और प्यारा सा नगमा सुना जाते हैं। फिल्म है वक्त, और अपने सुरों से सजाया है आशा भोसले ने।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। 11 बजने को हैं, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में श्री तो लैम के साथ बैठक करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। श्री तो लैम आज 56वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी देंगे। आज की वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और भारत वियतनाम सहयोग के नए अवसर खोलने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: इससे पहले वियतनाम के राष्ट्रपति का आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति तो लाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके जारी होने से निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सरकार गठन के अगले चरण शुरू किया जा सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। यह आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके के नेता जोसेफ विजय आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात करेंगे और राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए पार्टी को 10 और विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है। उधर केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और भाजपा के पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को पुदुचेरी में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों को कवर करने वाली रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोइनुद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया है। पंजाब और अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और बीएसएफ परिसरों के बाहर हुए 2 धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण यह निर्णय लिया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President of Vietnam, Tho Lam, was accorded a ceremonial welcome at the Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The Vietnamese leader was received by President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi upon his arrival at the Rashtrapati Bhavan. Union ministers including Piyush Goyal, Ashwini Vaishnav and Dr. Jitendra Singh were also present on the occasion. Prime Minister Modi will hold talks with the Vietnamese President in New Delhi this afternoon. Both leaders will hold wide-ranging discussions across the spectrum of bilateral relations, as also on regional and global issues of mutual interest. We have a report.
2: After the talks between Prime Minister Narendra Modi and the President of Vietnam, several MOUs will be signed and exchanged. President Draupadi Murmu will have a meeting with her Vietnamese counterpart at Rashtrapati Bhavan this evening. Lok Sabha Speaker Om Birla will call on the visiting dignitary. Mr. Tho Lam will also deliver the 56th Sapru House Lecture today, organized by Indian Council of World Affairs. President Tho Lam's visit coincides with the special occasion of the two countries marking their 10th anniversary of the elevation of relations to a comprehensive strategic partnership agreed during the visit of Prime Minister Modi to Vietnam in 2016. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
3: Prime Minister Narendra Modi has welcomed the Cabinet's approval of railways projects covering 19 districts across Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. In a series of social media posts, Mr. Modi said that the projects will

अभी आप सबरस सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यमंजरी, जिसमें आप सुनेंगे डॉक्टर संघमित्रा चक्रवर्ती से राग मियाँ की तोड़ी।

अभी आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी में सुन रहे थे डॉक्टर संघमित्रा चक्रवर्ती से राग मियाँ की तोड़ी।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर 12 बजने को है। कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की उम्मीद है। इससे पहले भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति तो लाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। यह आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने भी इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीट जीतकर टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बहुमत के लिए 118 सीट की जरूरत है। पार्टी कांग्रेस सहित कई अन्य दलों से बातचीत कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गिरीश चोंडकर ने कहा है कि बैठक के बाद टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया जाएगा। उधर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की लीमा रोज ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवीके को समर्थन देने के बारे में बातचीत कर रही है। उधर केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पे श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहियुद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष NIA अदालत में पेश किया गया है। पंजाब में अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और BSF परिसरों के बाहर हुए 2 धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल एक संशोधित वीडियो का खंडन किया है। इसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया है कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर हुर्मुज जल डमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष विराम समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने हुर्मुज जल डमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हुर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं से हुई प्रगति के कारण यह निर्णय लिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 105 अंक बढ़कर 77,123 पर, जबकि निफ्टी 65 अंक की वृद्धि के साथ 24,098 पर था। IPL क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi is holding talks with visiting Vietnamese President Tho Lam in New Delhi. Both the leaders, the Vietnamese leader, was received by President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi upon his arrival at Rashtrapati Bhavan. We have a report.
2: After the talks between Prime Minister Narendra Modi and the President of Vietnam, several MOUs will be signed and exchanged. President Draupadi Murmu will have a meeting with her Vietnamese counterpart at Rashtrapati Bhavan this evening. Lok Sabha Speaker Om Birla will call on the visiting dignitary. Mr. Tho Lam will also deliver the 56th Sapru House lecture today, organized by Indian Council of World Affairs. President Tho Lam's visit coincides with the special occasion of the two countries marking their 10th anniversary of the elevation of relations to a comprehensive strategic partnership agreed during the visit of Prime Minister Modi to Vietnam in 2016. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
1: The Prime Minister has welcomed the Cabinet's approval of railway projects covering 19 districts across Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. In a series of social media posts, Mr. Modi said that the projects will enhance connectivity and improve operational efficiency while boosting the country's infrastructure and economic growth. Mr. Modi also appreciated the Cabinet's decision to increase the strength of judges in the Supreme Court from 33 to 37. He said that the decision will strengthen the judicial infrastructure of the nation and will ensure speedy justice for people. Education Minister Dharmendra Pradhan has condemned the alleged remarks of Trinamool Congress Chief Mamata Banerjee that she will not resign and tender her resignation to the governor as the outgoing chief minister. In a social media post, he accused that resistance to accountability and the refusal to accept the public's mandate by Trinamool Congress is an example of compromised democracy in Bengal. He said that she is not just rejecting the people's mandate, but also attempting to erode the credibility of institutions like the Election Commission and security forces, undermining the pillars that ensure free, fair and secure elections. In Tamil Nadu politics, the single largest party TVK, which has 108 assembly constituencies, is short of 11 MLAs to reach the majority of 118. TVK is in discussion with parties, including Congress. Congress spokesperson Girish Chodankar has said that it will be decided after the meeting to give support to TVK. Lima Rose, the winning candidate from AIADMK, said that her party is in discussion to lend support to TVK. The government has debunked a digitally altered video circulating on social media, which features Defence Secretary Rajesh Kumar Singh claiming that Pakistan jammed India's systems on 10th of May last year. In a social media post, the fact-check unit of PIB clarified that the video is an AI-generated deepfake and is being circulated by Pakistani propaganda accounts to spread misinformation. The unit has also urged the citizens to not fall prey to such videos and report such suspicious content on 8799-711-259 or mail at factcheck@pib.gov.in. In Iran, 8 people have been killed and 36 other injured in a fire incident at a shopping center near capital Tehran. The state TV has reported that the fire started yesterday in the Arghavan shopping center in Andesheh town in Tehran province. However, cause of the blaze is still unknown. In IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad will take on Punjab Kings this evening. The match will begin at 7:30 p.m. Yesterday, Chennai Super Kings defeated Delhi Capitals by 8 wickets in Delhi. Sensex and Nifty are trading marginally higher in the forenoon session. The Sensex rose 105 points to 77,123, while the Nifty added 65 points to 24,098 when reports last came in. On the sectoral front, gains in pharma, chemicals and auto stocks are driving the market up. And that is the end of this news bulletin.

0: और आंगन।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।

0: घर आंगन।
1: साथियों, खेल की दुनिया हो, सामाजिक उद्यमिता की बात हो या प्रकृति का सरोकार, सब में एक रूपता इस बात की है कि जब भी कोई बड़ी सफलता हासिल होती है तो उसके पीछे टीम काम करती है। जैसे उड़ते हुए पंछियों के झुंड लगातार दिशा निर्देश के मोहताज नहीं होते, बल्कि पूरी टोली के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि हर पक्षी हवा की दिशा समझता है, ताल को महसूस करता है और समूह के साथ सरलता से उड़ता जाता है। और यही है सच्ची टीम भावना, यानी कार्य संस्कृति की खूबसूरती। नमस्कार, घर आंगन का सफर है आज FM गोल्ड 100.1 MHz पर मेरे यानी मनीषा बोस के साथ। हमारे कार्यक्रम को इंद्रप्रस्थ चैनल के मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 KHz और YouTube चैनल AIR लाइव न्यूज 24x7

पर भी सुन सकते हैं आप। तो आप सभी का सत्कार, ढेर सारा प्यार। और ये सच है साथियों कि अकेला इंसान तेज चल सकता है, लेकिन टोली साथ हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। और उसे ही कहते हैं टीम भावना। अदृश्य धागे की तरह है जो आपस में बांधकर संस्कृति की प्रेरक शक्ति बन हम सबको दिशा देती है। सोचिए, क्रिकेट का मैच, परिवार की जिम्मेदारी या ऑफिस का प्रोजेक्ट, जीत सिर्फ स्टार खिलाड़ी की नहीं होती बल्कि पूरी टीम के तालमेल से जीत मिलती है। इसीलिए टीम भावना में मैं से ऊपर उठकर हम बनना हमें सिखलाया जाता है, है ना। हम जानते हैं कि एक ईंट दीवार नहीं बना सकती, लेकिन कई ईंटें मिलकर मजबूत घर को शक्ल जरूर देती हैं। टीम वर्क, जिससे न सिर्फ उत्पादकता बढ़ती है बल्कि संचार, नवाचार और समस्या का समाधान भी सरलता से मिलता जाता है, है ना। क्योंकि टीम वही जीतती है दोस्तों जिसमें हर सदस्य दूसरे की ताकत बनता है, जैसा हमारा ये रेडियो परिवार, हम और हमारे श्रोताओं का ये प्यारा सा संसार।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में रंगोली फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। और दोस्तों, आज की तारीख भारतीय इतिहास में ख़ास है, क्योंकि आज स्वतंत्र भारत की नींव रखने वाले और स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू जी की आज जयंती है। उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं। साथ ही आज का दिन ख़ास इसलिए भी है क्योंकि कोल्हापुर के दूरदर्शी मराठा शासक और महान समाज सुधारक महर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज की पुण्यतिथि का दिन भी है। आज 6 मई 1922 को पंचतत्व में विलीन इस मराठा

शासक ने दलितों, पिछड़ों के उत्थान और उनके शिक्षा के लिए काम किया। सच्चे प्रजावत्सल समाज सुधारक इस शासक को राजर्षि की उपाधि भी इसीलिए दी गई थी। उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें अपनी पूरी टीम की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अब आपसे कहना चाहती हूँ, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की वो पंक्तियाँ जो हम सभी के लिए हमारे जीवन में बहुत प्रभावशाली हो सकती हैं, और वो कहते हैं कि गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ बने रहें FM गोल्ड 100.1 पर, घर आंगन में चलते रहें, गुनगुनाते रहें हमारे साथ।

साजन बिना सुहागन। इस फिल्म से आप यशोदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गीत सुन रहे थे। दोस्तों, एफएम गोल्ड 100.1 पर घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, और कार्यक्रम से जुड़कर आप कैसा महसूस करते हैं, क्या कहना चाहते हैं हमसे, ये सब बातें हम भी जानना चाहते हैं। और ये सभी बातें आप हमसे कह सकते हैं अपने संदेश के माध्यम से, और संदेश के

लिए आपके पास हमारा जो रास्ता है वो रास्ता होता है मेल का, जो है fmgoldga@gmail.com पर। तो यहाँ पर आपके संदेशों की प्रतीक्षा है हमें, और आपसे कहना चाहती हूँ जिस तरह बोलना एक कला है उसी तरह सुनना भी एक कला है, और वो कला हमारे श्रोताओं को बखूबी आती है ना। हम दिन भर कितने लोगों को सुनते हैं दोस्तों, और सच में ध्यान से कितने को सुनते हैं ज़रा सोचिएगा। और जानते हैं, हम जो सुनते हैं उसका 25% भी याद नहीं रख पाते, क्योंकि हम सुनते हुए भी सोच रहे होते हैं कि अब क्या बोलना है। क्यों, सच कहा ना मैंने? इसीलिए सुनने और ध्यान से सुनने में ना बहुत अंतर होता है। और ध्यान से सुनने में हम सिर्फ कान को नहीं बल्कि अपने मन को, मस्तिष्क को और हमारी संवेदनाओं को भी जोड़ते हैं। अध्ययन भी बताते हैं साथियों कि अच्छे श्रोता वो होते हैं और जो सुनते हैं उनमें नेतृत्व के गुण आ जाते हैं, और उनमें संबंधों को अच्छे से बना के रखना भी बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि कई बार समाधान बोलने में नहीं अच्छे श्रोता बनने में छिपा होता है। इसीलिए पहले सुनिए फिर समझिए, क्योंकि हर कहानी सुनी जाना चाहती है। जैसे आप हमारे अच्छे श्रोता साथी हैं और आप हमें अच्छे से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, और फिर अपनी बात हम तक पहुंचाते हैं।

यशुदास और हेमलता की ये सुरीली सी आवाज़ में आप सुन रहे हैं चिच्चोर फिल्म का ये गीत। और साथियों, एक कहावत है कि हुनरमंद हर जगह पूजा जाता है, और बात हम कर लेते हैं हुनर की। चली है तो हुनर और कौशल से भरपूर उस ताकत की, जहां हुनर ऑनलाइन है और अवसर ग्लोबल। जी हाँ, बदलाव की असली चाबी है डिजिटल स्किल्स में। कंप्यूटर, एआई, डेटा, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन उद्यमिता जैसी क्षमताएं भारत के हर युवा को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही हैं। तकनीकी युग में मोबाइल फोन जो सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है दोस्तों, बल्कि रोजगार का साधन भी बन रहा है ना। ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन डिजाइनिंग, डेटा एंट्री जैसे डिजिटल कौशल के कार्यों से घर बैठे भी कमाई के नए नए रास्ते खुल रहे हैं। डिजिटल स्किल्स जिसे सीखने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता दोस्तों, बस आपका फोन, इंटरनेट और सीखने का जज्बा। और जानते हैं, इसके लिए हमारी सरकार की स्किल इंडिया डिजिटल पहल ने स्किलिंग, रोजगार और उद्यमिता को एक डिजिटल मंच भी दिया है। सरकार ने डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए कई आधिकारिक मोबाइल ऐप और प्लेटफॉर्म्स भी लॉन्च किए हैं, जहाँ फ्री सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग दी जा रही है। फ्यूचर स्किल्स प्राइम जैसे कार्यक्रम AI, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत बना रहे हैं। और स्किल इंडिया डिजिटल हब यानी कि SIDH ऐप, दीक्षा ऐप, फ्यूचर स्किल्स प्राइम स्वयं प्लेटफॉर्म, फीचर्स कर्मयोगी और ई पाठशाला जैसे लर्निंग ऐप हैं, जहां आप सर्च कर सकते हैं और इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी भी ले सकते हैं और सीखने की दिशा में अपना अगला कदम भी आप बढ़ा सकते हैं।

आशा भोसले की आवाज़ में नरम गरम फिल्म से आप सुन रहे थे ये खूबसूरत सा गीत। और हमारे इस कार्यक्रम को सुनने वाले हमारे श्रोता साथी भी हमारे साथ हैं, जो सुनना चाहते हैं अपनी बात जिसको उन्होंने हम तक पहुंचाया है। और ये पहला संदेश है मेरे पास गौरी शंकर नांगलोई जी का, जिन्होंने कहा है राम राम जी, राम राम आपको भी। और उन्होंने कहा कार्यक्रम उन्हें अच्छा लग रहा है और शिक्षाप्रद जानकारियां उन्हें मिल रही हैं। सुदर्शन मुखी हमारे साथ हैं, अनिता मुखी, सिमरन मुखी हैं शांति नगर सोनीपत से। कार्यक्रम उन्हें भी अच्छा लग रहा है। उन्होंने अपनी एक बात कही है कि बोलना कला है तो सुनना भी एक कला है। सुनने के लिए प्रभु ने कान दो दिए हैं और बोलने के लिए मुंह एक दिया है। जी बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि हमें सुनना ज़्यादा गौर से चाहिए। और हमारे एक और श्रोता साथी हैं, वो हैं उग्रसेन यादव जो नई दिल्ली से हैं। कार्यक्रम उन्हें अच्छा लग रहा है। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे एक और श्रोता साथी हैं, वो हैं नवीन भाटिया जी मोतीनगर दिल्ली से। कार्यक्रम उन्हें भी अच्छा लग रहा है और कार्यक्रम के गीत भी उन्हें अच्छे लग रहे हैं। जी हमें भी अच्छा लगता है जब आप हमें सुन रहे होते हैं। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। घर आंगन कार्यक्रम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेरों जानकारियाँ, ढेरों बातें और ऐसा काम, ऐसी बातें, ऐसी जानकारी जिसको सुनकर आपके जीवन में भी हो जाए कायाकल्प। दोस्तों हमारे समाज में चारों तरफ जो बयार बह रही है वो लैंगिक समानता के अधिकारों को और पुख्ता बनाने के लिए चल रही है। देखो ना आज जो सारा क्षेत्र है उसमें आधी आबादी जो है उसका सशक्त हस्ताक्षर हमें दिख रहा है। क्या कहते हैं आप? और जानते हैं नारी शक्ति की परिभाषा को नया आयाम देने वाले लोगों में एक नाम आता है जिनके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और वो नाम है स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, साहित्यकार और महिला अधिकारों की प्रखर प्रहरी डॉक्टर हंसा मेहता का। पूरी दुनिया की सोच बदलने वाली वे भारत की संविधान सभा की उन चुनिंदा 15 महिलाओं में शामिल रही हैं जिन्होंने नए भारत की नींव गढ़ी। कैसे बताऊं आपको? दरअसल 1947 से 1948 के दौरान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में महिला अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करते हुए घोषणा पत्र में उन्होंने ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल को बदला कर ऑल ह्यूमन

आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल करवाया, यानी अधिकार सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, हर इंसान के लिए समान है। शिक्षा, महिला अधिकार और सामाजिक न्याय डॉक्टर हंसा मेहता के लिए मिशन थे। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस से जुड़कर महिला अधिकार चार्टर तैयार कर उन्होंने भारत में बराबरी की सोच को नई दिशा दी। उनकी दूरदृष्टि ने दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में महिलाओं को उनकी पहचान और अधिकार से जोड़ा। और ये सच है दोस्तों कि नारी कलम उठाकर इतिहास बदल सकती है। और तब तो हंसा मेहता एक थी, लेकिन आज देश के कोने कोने से कई हंसा मेहता, यानी कई हंसा हैं जो अपने हस्ताक्षर गढ़ रही हैं। तो उम्मीद है इस जानकारी ने आप में भी जोश बढ़ाया होगा। बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें हमारे इस कार्यक्रम को। और ये खूबसूरत

पैगाम इस फिल्म से आप सुमन कल्याणपुर, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में इस खूबसूरत से नगमे को सुन रहे थे। और दोस्तों, गर्मी का जो मौसम है वो हालांकि अभी थोड़ी थोड़ी बारिश कहीं हो रही है, कहीं बादलों ने अपना थोड़ा सा रंग दिखाया है और हमें थोड़ी सी राहत पहुंचाई है, लेकिन बावजूद उसके मौसम तो गर्मी का है ही ना। और ऐसे में गर्मी से बचने के लिए हम तमाम उपाय कर ही रहे होते हैं, है ना। कभी कूलर के सामने बैठे होते हैं, पंखों के सामने होते हैं, एसी, ठंडा पानी, आइसक्रीम, ठंडई, सूती कपड़े, ऐसे तमाम उपायों को हम अपना रहे होते हैं गर्मी से राहत के लिए, है ना। पर सूरज देवता की सीधी दृष्टि गर्मी की तपिश को और बढ़ाती ही जाती है। तो चलिए, गर्मी के दिनों में जब सूरज देवता रहम नहीं करते हैं, तो ऐसे में हमें शरीर के स्मार्ट कूलिंग को ऑन कर देना चाहिए। जानते हैं ये क्या है? स्मार्ट कूलिंग जो बिना पंखे, बिना एसी के हमें ठंडा बनाकर रखता है, क्योंकि प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। हमारे शरीर को एक कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है। जानते हैं, जब शरीर का तापमान बढ़ता है दोस्तों, तो हमारा जो दिमाग है उसमें खास तौर पर हाइपोथैलेमस नामक हिस्सा तुरंत एक्शन में आ जाता है। नतीजा पसीना आता है, और पसीना जब त्वचा से उड़ता है तो शरीर की गर्मी भी अपने साथ ले जाता है, और यही है नेचुरल इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। और साथियों, इस तरीके से हमारी जो त्वचा है उसकी रक्त नलिकाएं भी गर्मी लगने पर फैल जाती हैं, ताकि ज़्यादा गर्मी त्वचा के ज़रिए बाहर निकल सके। और इसीलिए तो गर्मी में हमारा जो चेहरा है वो लाल हो जाता है, देखा होगा आपने भी। दरअसल शरीर की सुरक्षा रणनीति के तहत ये सारे इंतजामात हमारा शरीर खुद करता है, लेकिन ध्यान रहे, उसके लिए हमें भी शरीर

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में आपने सुना पारस मणि फिल्म से इस गीत को। साथियों, प्रकृति है तो हम हैं, है ना। और किसी की एक बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। उन्होंने क्या खूब कहा है, गौर कीजिएगा आप सभी, कि एक पतली पगडंडी, मैंने नन्ही पीढ़ी से कहा, देखो यहीं थी कभी गांव की नदी, आगे देख जमीन पर बड़ी सी दरार, मैंने कहा इसी में समा गए सारे पहाड़। नन्ही पीढ़ी दौड़ी और बोली, हम आ गए बाजार। क्या क्या लेना है, पूछने लगा दुकानदार। कहा, भैया थोड़ी बारिश, थोड़ी गीली मिट्टी, एक बोतल नदी, दो डिब्बा बंद पहाड़, उधर दीवार पर टंगी एक प्रकृति भी दे दो। और ये बारिश इतनी महंगी क्यों, उसने कहा, नमी यहाँ की नहीं, दूसरे ग्रह से आई है, मंदी है, छटाक भर मंगाई है। जी हाँ दोस्तों, इन पंक्तियों ने जिस दृश्य को हमारे सामने रखा है वो बतलाते हैं कि प्रकृति में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। जैसे जंगल में गिरा पत्ता कचरा नहीं बनता, बल्कि मिट्टी का पोषण करता है, उसे उपजाऊ बना देता है। विज्ञान इसे प्रकृति का रिसाइकलिंग सिस्टम कहता है, यानी कि पुनर्चक्रण, जहां पेड़ पौधे जीव जंतु मिट्टी पानी और सूक्ष्म जीव मिलकर हर तत्व को फिर से उपयोगी बना देते हैं।

है ना। हमारे पारिस्थितिकी की विज्ञान के अनुसार जो अपघटन या विघटन की प्रक्रिया है और जो पोषक तत्व चक्रण की प्रक्रिया है, वो हमारी धरती के लिए जीवन चक्र की बुनियाद की तरह है। दोस्तों, इस्तेमाल करें और फेंकें, यानी यूज़ एंड थ्रो नहीं, यूज़ एंड ट्रांसफॉर्म पर चलने की बात और संदेश हमारी प्रकृति हमें हमेशा देती आई है। इसीलिए तो सूखे पत्ते खाद बनते हैं, बारिश का पानी धरती को रिचार्ज करता है और एक जीव का अवशेष दूसरे जीवन का आधार बनता है। लेकिन जब हम इंसान अपनी सुविधाओं के लिए और सुविधा भोगी बन जाते हैं, तो इसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ने लगता है। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना जरूरी है ना। ऐसे में कचरा कम करना, वस्तुओं का बार बार उपयोग करना और पुरानी चीज़ों को नया रूप देना, यानी कि उसे रीपर्पस करना, ये सब बातें कार्बन उत्सर्जन को, प्रदूषण को कम करने और संसाधनों को बचाने के लिए आज समय की मांग है। इसीलिए सस्टेनेबल लिविंग आज की ज़रूरत है दोस्तों। प्रकृति की तरह जीना, हर चीज़ का मान करना, कुछ भी व्यर्थ ना करना और हमारे रिश्तों को इसी तरीके से हम मजबूत करते हुए अपनी जिंदगी को, अपनी धरती को सुंदर बनाते जाते हैं।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में आपने सुना चोरी चोरी फिल्म से इस गीत को। और दोस्तों, अब एक प्रेरक कहानी आपके लिए। एक कहानी है जिसमें एक स्त्री बस में चढ़ती है। एक पुरुष के बगल वाली सीट में बैठते समय उसके बैग से पुरुष को चोट लग जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, खामोश रहता है। इस पर उस महिला से रहा नहीं जाता और वो उससे पूछ लेती है कि आपको मेरी वजह से चोट लगी, फिर भी आपने शिकायत क्यों नहीं की। तब पुरुष मुस्कुराकर उसे जवाब देता है और कहता है कि इतनी छोटी सी बात पर नाराज होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारी साथ की यात्रा बहुत छोटी है, मुझे अगले स्टॉप पर ही उतरना है। उत्तर सुनकर महिला भावुक होती है और माफी मांगती है और मन ही मन सोचती है कि सच में यात्रा बहुत छोटी है, किसी जीवन सूत्र से कम नहीं है ना। दरअसल कहानी का मर्म ये है दोस्तों कि जीवन अनमोल है, उससे भी अनमोल है समय, जिसे नाहक ही बहस करके ईर्ष्या, द्वेष और घृणा करके हम बेजा खराब नहीं कर सकते। दूसरों को माफ ना करके और असंतोष पाल के वास्तव में हम अपना समय और ऊर्जा दोनों ही व्यर्थ करते जाते हैं। इसीलिए किसी ने मन दुखाया तो शांत रहिए, क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है। किसी ने धोखा दिया, धमकाया, अपमान किया तो प्रतिकार करके तनाव ना पालिए, क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है। किसी ने बेवजह अपमान किया, नज़रअंदाज कीजिए, उन्हें अपनी दुआओं में रखिए और निःस्वार्थ प्रेम कीजिए, यात्रा बहुत छोटी है। दोस्तों याद रखिए, समस्या तभी तक समस्या है जब उसे हम अपने मन में रखते हैं। साथ का सफ़र बहुत छोटा है साथियों, इसलिए कृतज्ञता और आनंद से भरकर जीवन को अपनाइए, मुस्कुराइए, क्योंकि ये यात्रा हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत है।

साथियों, छोटी सी ये दुनिया है, सच में हम फिर मिलेंगे। रंगोली फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में इस गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ हमारे कार्यक्रम में। बस आज तक यहीं तक, तब तक के लिए अपनी दोस्त अपनी होस्ट को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आंगन।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।
0: घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता जारी है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की उम्मीद है। भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति तो लाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। ये आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीट जीतकर टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बहुमत के लिए 118 सीट की जरूरत है। पार्टी कांग्रेस सहित कई अन्य दलों से बातचीत कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गिरीश चोडनकर ने कहा है कि बैठक के बाद टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया जाएगा। उधर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की लीमा रोज ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवीके को समर्थन देने के बारे में बातचीत कर रही है। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राजभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया है। इसके बाद राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता खुल गया है। इससे पहले असम के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग गोयल ने राज्यपाल को नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों की आधिकारिक सूची सौंपी। हाल ही में सम्पन्न विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 126 में से 102 सीट जीतकर निर्णायक जनादेश प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री

ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार कराने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष NIA अदालत में पेश किया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तान द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई है। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिका में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस वर्ष नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी एमी एक्टिन से होगा। अगर वे चुने जाते हैं तो वे लुइसियाना में बॉबी जिंदल और दक्षिण कैरोलिना में निकी हेली के बाद अमेरिका में तीसरे भारतीय गवर्नर बन सकते हैं। IPL क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: धड़कन कहती है।
1: और जी हाँ, आप भी इस प्रोग्राम में आ गए हैं, ये आपके संदेश कहते हैं, पहुंच रहे हैं आपके संदेश सही जवाब के साथ। आपको बता दें कि आज हम 1958 की एक खूबसूरत सी फिल्म लाजवंती लेकर आए हैं, जिसमें नरगिस और बलराज साहनी ने बहुत खूबसूरत सा अभिनय किया था और जिसका निर्देशन किया था नरेंद्र सूरी ने। ये फिल्म वैवाहिक गलतफहमी और एक महिला के सम्मान के लिए संघर्ष पर केंद्रित है। इसे 1959 के कान फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी की ओर से नामांकित भी किया गया था और 1958 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भी इसे योग्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था। लाजवंती 1958 की बनी एक भारतीय ड्रामा फिल्म, जैसा कि हमने आपको बताया कि नरेंद्र सूरी ने इस फिल्म को निर्देशित किया था और ये एक सामाजिक और भावनात्मक हिंदी फिल्म थी जो कि डिलेक्स फिल्म के बैनर तले इसका निर्माण हुआ था। और नरगिस और बलराज साहनी के अलावा इस फिल्म में प्रभुदयाल, मनोरमा, मुमताज़ बेगम, लीला मिश्रा जैसे कलाकार नजर आए थे। सुनते हैं इसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत।

आशा जी की आवाज़ में इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत था। फिल्म की कहानी एक ऐसे दंपति के इर्द गिर्द घूमती है जिनके रिश्ते में प्रेम तो है लेकिन परिस्थितियां उनके जीवन में कठिन मोड़ ला देती हैं। बलराज साहनी ने एक संवेदनशील पति का किरदार निभाया जबकि नरगिस ने एक ऐसी पत्नी का रोल निभाया जो जीवन की कठिनाइयों और समाज की कसौटी पर खरी उतरने की कोशिश करती है। नरगिस ने लाजवंती के किरदार में नारी के धैर्य, संवेदना और आत्मसम्मान को बखूबी निभाया। वही बलराज साहनी ने एक ऐसे पति की भूमिका निभाई जो भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच उलझा हुआ दिखाई देता है। यानी कि फिल्म रिश्तों की नाजुकता, विश्वास और समाज की सोच को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है।

0: ए लो बच्चों आन मिले हम फूल से जैसे मिलती है शबनम। तुम हो हमारे हम है तुम्हारे कैसे न मिलते चांद सितारे।
1: माफ हमें मामा जी करना तुमको पड़ा है नीचे।

0: मामा जी एक बात बताना, सच सच कहना, कुछ न छुपाना। हम तो तुम्हें थे रोज बुलाते, रोज तुम्हारे गीत थे गाते, और कभी तो तुम न आए, आज तुम्हें हम कैसे भाए।
1: अच्छा अच्छा बतलाता हूँ, बिल्कुल सच्ची सच्ची, ठहरो पीछे बतलाऊंगा, पहले दो एक पप्पी।

0: अम्मा जी नजदीक तो आओ, ये बुढ़िया है कौन बताओ, टुक टुक हमको ताक रही है, बैठी चरखा काट रही है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ ना ना, यूँ ताना मत मारो, ये तो मेरी माँ है प्यारो।
0: मेरी माँ भी मामा प्यारे, रहती है अब देश तुम्हारे, उससे तुम एक बार मिला दो, उसको मेरे पास बुला दो।
1: हाँ हाँ मुन्नी।

एक तू ही क्या मुझको भी अब होगी ना मजबूरी, बच्चा माता मामा सबकी मिट जाएगी दूरी।

जी सुपर डुपर हिट गीत इस फिल्म का, मन्ना डे, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में इतना मधुर गीत कि मन करता है इस गीत को बार बार सुना जाए। लेकिन और भी गीत हैं इस फिल्म के जो अपने आप में इतने मधुर हैं कि जिस जो मिठास उस वक्त थी जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, इतने सालों बाद आज भी वही मिठास कायम रखते हैं। फिल्म का संगीत दिया था मशहूर संगीतकार एस डी बर्मन ने और गीत लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने। इस फिल्म के गीत मधुर भी हैं और अर्थपूर्ण भी थे। उस दौर में गीत कहानी को आगे बढ़ाने का माध्यम हुआ करते थे और लाजवंती इसका सुंदर उदाहरण है। अगर हम अभिनय की बात करें तो यह फिल्म दो महान कलाकारों की अदाकारी का एक शानदार उदाहरण है। बलराज साहनी अपने सहज अभिनय के लिए जाने जाते हैं। उनके संवाद बोलने का अंदाज इतना स्वाभाविक था कि लगता ही नहीं था कि वे अभिनय कर रहे हैं। वहीं नरगिस ने हर भाव को आंखों से जिया। दुख, खुशी, मौन, पीड़ा, सब कुछ उन्होंने बड़ी खूबसूरती से निभाया था। और आपको एक बात बता दूं कि ये फिल्म मानवीय रिश्तों पर आधारित गंभीर विषय को लेकर आई थी, इसीलिए इसे समीक्षकों ने भी खूब सहारा था। नरगिस उस समय सामाजिक और भावनात्मक भूमिकाओं के लिए बेहद प्रसिद्ध थी और इस फिल्म में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। तो बलराज साहनी साहब कैसे पीछे रह सकते थे? उन्होंने अपने किरदार को वास्तविक बनाने के लिए बहुत तैयारी की, इसीलिए उनके अभिनय में सहजता दिखती है।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही फिल्म से और आज हम लेकर आए हैं 1958 की फिल्म लाजवंती। कहा जाता है कि इस फिल्म की कहानी सीधे तौर पर मशहूर लेखक राजेंद्र सिंह बेदी की एक संवेदनशील कहानी से प्रेरित थी। ये कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद के हालात और खासकर महिलाओं की स्थिति को लेकर लिखी गई थी। अब दिलचस्प बात यह है कि उस समय इस तरह के विषय पर फिल्म बनाना काफ़ी साहस की बात मानी जाती थी। समाज में ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात नहीं होती थी, लेकिन निर्देशक नरेंद्र सूरी ने इसे बड़े संवेदनशील तरीके से पर्दे पर उतारने का जोखिम लिया और उनके इस जोखिम को दर्शकों ने बहुत सारा प्रेम दिया। फिल्म के दौरान नरगिस अपने किरदार में इतनी डूब जाती थी कि कई बार सीन खत्म होने के बाद भी वे उसी भाव में रहती थी। यूनिट के लोग बताते हैं कि एक इमोशनल सीन के बाद सेट पर कुछ देर के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया था, इतना असरदार था उनका अभिनय, यानी कि नरगिस जी का। इस फिल्म की खासियत सिर्फ इसकी कहानी नहीं है बल्कि उसका साहस भी है। उस दौर में जब हल्की फुल्की मनोरंजन वाली फिल्में ज़्यादा बनती थीं, लाजवंती ने गंभीर सामाजिक मुद्दे को छूकर दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया था। आपके ढेर सारे संदेश भी आ रहे हैं, बस अब वक्त है उन संदेशों को मैं शामिल करूँ।

बीरनगांव गुजरात से अजीत भापसर प्रमिला भापसर जी हमारे साथ हमेशा की तरह ढेर सारी जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। नितेश कुमार देवानगन दुर्गा प्रसाद पराग ये हमारे साथ पलारी छत्तीसगढ़ से हैं। और अगला संदेश हमारे पास जो पहुंचा है वो गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी सौरभ प्रमोद जी का आया है। और नेहरू चौक पैठण से सुरेश अनीता सोनल जाधव जी हमारे साथ हैं। राजू अग्रवाल केशव प्रियांशी चौधरी बास हिसार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवशंकर तामुरी अजय देव मास्टर अलकवि रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। दिग्दर्शन गौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जो अगला संदेश हम तक पहुंचा है ये नागरकोरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी प्रेम पूजा दुष्यंत और पूरा परिवार इनके साथ है। सुदर्शन मुखी अनीता सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से जुड़ चुके हैं। ईणामणि वर्मा दतरंगी भाटापारा से हमारे साथ हैं। विलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवानगन कौशल्या हेमलता और डिम्पल जी हमारे साथ हैं। गाँव हीरावाली फालसिका पंजाब से सुभाष गोदारा बिमला इंदु पार्वती जी हमारे साथ हैं। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी सोनाली सोनम जी हिंदुस्तान रेडियो मित्र बनने बुजुर्ग परेरा टीकमगढ़ से जुड़े हुए हैं। मलियाना सरदना मेरठ से अनिल जैन और संयम मुस्कान जी हमारे साथ हैं। श्रीनगर कश्मीर से साहिल डार उर्फी यूसरा जान इम्तियाज जी हमारे साथ हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम समलडी नवापारा से मुकेश अदिति श्रद्धा राधे और दीपक जी हैं। दतरंगी से भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती वर्मा विनीता रुद्र जी हैं। वचिनखेड़ा से पंजाब से मिंटू टोमस पिंकी लवली आरती जी हैं। और अगला जो संदेश हमारे पास पहुंचा है वो कनाट प्लेस दिल्ली से माहिरा मलिक हिवा आयसा जो जोया जी का है। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक कमल गाव्या मल्होत्रा जी जुड़े हुए हैं। ये संदेश छोटी बलिया करजस से अहमद बाई दुखनी जी जुड़े हुए हैं। बेवली मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर सुनीता हार्दिक जी हमारे साथ हैं। संदीप मक्कर जी ज्योति मक्कर जी के साथ जालंधर से जुड़े हुए हैं। ऊपरकोट मोहला चौकुंडी बुलसन से मोहम्मद सिद्धवासी निगत परवीन शेनवास सरफराज परिवार के सभी सदस्य हैं हमारे साथ। चंडीगढ़ से सतीश विमला अनेजा जी हमारे साथ हैं। और इसके बाद कुछ संदेश रिपीट हो रहे हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद जी हैं। नरवेश नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नोहान का निर्मला विशाल जी हैं। अनिल मोहन उषा मोहन टीलू नायक पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से केथल से मधु नायक जी हैं। और भी हमारे ढेर सारे संदेश हम तक पहुँच रहे हैं। श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज की फिल्म लाजवंती जिसकी कहानी में स्त्री की गरिमा और समाज की नज़रिए को जिस तरीके से दिखाया गया है वो अपने समय से काफ़ी आगे था। और यही वजह है कि आज भी जब पुरानी संवेदनशील फिल्मों की बात होती है तो लाजवंती का नाम ज़रूर लिया जाता है। तो इसी के साथ अब अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए, फिर अगले प्रोग्राम में एक नई फिल्म लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: समाचार।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली च वियतनाम दे राष्ट्रपति तोलाम नाल गलबात कर रहे ने। तमिलनाडु विच टीवीके दे संस्थापक सी जोशव विजय दी अगुवाई च नवी सरकार बनाउण लई राजनीतिक गलबात तेज होई। असाम च मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा सरमा ने अज राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य नूं अपना अस्तीफा सौंपिया। सिख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री दे अहुदे तों अस्तीफा ना देण बारे तृणमूल कांग्रेस मुखी ममता बैनर्जी दे बयान दी आलोचना कीती। पंजाब पुलिस मुखी ने सूबे च होए दोहरे धमाकियां लई पाकिस्तान दी ISI नूं जिम्मेवार दस्या। IPL क्रिकेट विच पंजाब किंग्स दा मुकाबला हैदराबाद च शामी 7:30 सनराइजर्स हैदराबाद नाल होवेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली च वियतनाम दे राष्ट्रपति तोलाम नाल गलबात कर रहे ने। दोवां आगुआं वल्लों दुवल्ले संबंधां दे वख-वख पहलुआं दे नालों नाल आपसी हित दे खेतरी ते आलमी मुद्दयां ते व्यापक चर्चा करन दी उम्मीद है। भारत दे 3 दिना दौरे ते आए तोलाम दा राष्ट्रपति भवन विखे रस्मी स्वागत कीता गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हां दा स्वागत कीता। इस मौके पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव ते डॉ जितेंद्र सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति तोलाम ने राजघाट ते महात्मा गांधी नूं श्रद्धांजलि भी भेंट कीती। साडे पत्रकार ने दस्सिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते वियतनाम दे राष्ट्रपति दरम्यान गल्लबात तों बाद कई समझौतियां ते दस्तखत कीते जाण दी उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज शाम राष्ट्रपति भवन विखे अपने वियतनाम दे हमरुतबा नाल मुलाकात करनगे। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला भी मेहमान नाल मुलाकात करनगे। श्री लाम अज इंडियन कौंसल आफ वर्ल्ड अफेयर वल्लों आयोजित 56वें सप्रू हाउस भाषण नूं वी देणगे। राष्ट्रपति लाम दी इह फेरी दोवां मुल्कां दे संबंधां नूं इक व्यापक रणनीतिक भाईवाली तक उचा चुक्कण दी 10वीं वरेगंढ दे विशेष मौके नाल मेल खांदी है, जिसते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी 2016 च वियतनाम फेरी दौरान सहमति बनी सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ते तेलंगाना दे 19 जिलों च रेलवे प्रोजेक्टां नूं मंत्रिमंडल दी प्रवानगी दा स्वागत कीता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट संपर्क वधाउणगे ते संचालन कुशलता विच सुधार करनगे, नाल ही देश दे बुनियादी ढांचे ते आर्थिक विकास नूं भी उत्साहित करनगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रोजेक्ट देश भर दे प्रमुख सैर सपाटा स्थानां तक पहुंच नूं होर बेहतर बनाउणगे। श्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट विच जजां दी गिनती 33 तों वधा के

0: जाएगी। 4 दिनों की यात्रा की समाप्ति 9 मई फतहगढ़ साहब च की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया से वायरल एक वीडियो का खंडन किया जिस विच रक्षा सकत्तर राजेश कुमार सिंह नूं यह दावा करदिआं दिखाया गया कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई भारत के सिस्टम नूं जाम कर दिता सी। पत्र सूचना ब्यूरो की तत्थां की जांच बारे इकाई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच यह स्पष्ट किया कि यह वीडियो एक आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस वल्लों तैयार किया गया डीप फेक है अते पाकिस्तान प्रचार खात्यां राहीं गलत जानकारी फैलाउण वास्ते इस नूं प्रसारित किया जा रहा है। इकाई ने नागरिकां नूं अजिहे वीडियोज़ दे झांसे विच ना आउण दी अपील कीती है। अमरीका विच भारतीय मूल दे रिपब्लिकन नेता विवेक रामस्वामी ने ओहियो दे गवर्नर दे अहुदे लई अपनी नामजदगी दाखिल कीती है। रामस्वामी नूं 87% वोटां मिलियां ने। उन्होंने केशी पुच नूं हराया। उन्हां दा सामना इस साल नवंबर च डेमोक्रेट एमी एक्टन नाल होवेगा। जेकर उह चुणे जांदे ने तां उह लुसियाना च बॉबी जिंदल ते दक्षिणी कैरोलीना विच निक्की हेली तों बाद अमरीका विच तीजे भारतीय गवर्नर बन सकदे ने। आईपीएल क्रिकेट विच अज पंजाब किंग्स का मुकाबला हैदराबाद च शामी 7:30 सनराइजर्स हैदराबाद नाल होवेगा। ते आखर च खास खबरां एक बार फिर तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली च वियतनाम दे राष्ट्रपति तो लाम नाल गलबात कर रहे ने। तमिलनाडु च टीवीके दे संस्थापक सी जोसफ विजय की अगुवाई च नवी सरकार बनाउण लई राजनीतिक गलबात तेज हुई। सिख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री दे अहुदे तों अस्तीफा ना देण बारे तृणमूल कांग्रेस मुखी ममता बैनर्जी दे बयान की आलोचना की। पंजाब पुलिस मुखी ने सूबे च होए दोहरे धमाकियां लई पाकिस्तान की ISI नूं जिम्मेवार दस्या। आईपीएल क्रिकेट विच पंजाब किंग्स का मुकाबला हैदराबाद च शामी 7:30 सनराइजर्स हैदराबाद नाल होवेगा। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरां दा इह बुलेटिन खत्म हुंदा है। प्रदेशक खबरां दा अगला बुलेटिन तुसीं सुणोगे शाम 6:20 ते। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वियतनाम के सदर के साथ बातचीत कर रहे हैं। कई मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। असेंबली इंतखाबात के नतीजों के बाद 4 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके में हुकूमत की तश्कील के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में TVK आज शाम हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश करेगी। आसाम के वज़ीर-ए-आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने 15वीं रियासती असेंबली को तहलील किए जाने के बाद अपना इस्तीफा सौंपा। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज शाम आसाम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में दौरे पर आए हुए वियतनाम के सदर तोलाम के साथ बातचीत कर रहे हैं। तवक्कु है कि दोनों रहनुमा बाहमी उमूर के बहुत से पहलुओं पर तबादले ख्याल कर रहे हैं और कई मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। जनाब तोलाम भारत के 3 दिन के दौरे पर हैं। उन्हें आज सुबह राष्ट्रपति भवन में बाजाब्ता इस्तकबालिया दिया गया। राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनका खैर मकदम किया। तमिलनाडु में TVK के बानी सी जोसफ विजय की सरबराही में नई सरकार की तश्कील के लिए सियासी बातचीत तेज हो गई है। उनकी पार्टी 118 के अक्सरियत के निशाने से कम है। रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सहपहर केरला से चेन्नई पहुंचने वाले हैं। जनाब सी जोसफ विजय आज शाम गवर्नर से मुलाकात करेंगे और हुकूमत तश्कील देने के लिए दावा पेश करेंगे। कांग्रेस ने, जिसके पास 5 MLAs हैं, TVK को हिमायत देने का फैसला किया है। यह फैसला असेंबली के 9 मुंतखब अरकान की एक मीटिंग के बाद किया गया। इस दौरान किल्योर असेंबली हलके से 3 मरतबा कांग्रेस MLA राजेश कुमार को रियासती असेंबली में कांग्रेस का रहनुमा मुंतखब किया गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस MP कार्ति चिदम्बरम ने आज कहा कि कांग्रेस पार्टी TVK की क्यादत वाली सरकार की हिमायत करेगी। तमिलनाडु में TVK को कांग्रेस की जानिब से हिमायत दिए जाने के बारे में DMK की रहनुमा और तर्जुमान कनिमोजी सोमू ने कहा कि अगर कांग्रेस ने ऐसा किया है तो ये DMK के साथ एक बड़ा धोखा है। उन्होंने कहा कि DMK हर मुश्किल घड़ी में कांग्रेस के साथ खड़ी रही है। तमिलनाडु में वाहिद सबसे बड़ी पार्टी TVK को, जिसने 108 असेंबली सीटें जीती हैं, अक्सरियत के निशाने 118 तक पहुंचने के लिए 11 अरकान असेंबली की जरूरत है। TVK कांग्रेस समेत दिगर पार्टियों के साथ इस सिलसिले में बातचीत कर रही है। कांग्रेस के तर्जुमान गिरीश चोडंकर ने कहा कि ਟੀਵੀ

0: को हिमायत दिए जाने का फैसला मीटिंग के बाद किया जाएगा। मगरबी बंगाल में चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद और नई हुकूमत की हलफबरदारी से पहले रियासती इंतजामिया की तैयारियां उरूज पर हैं। बीजेपी ज़राए के मुताबिक मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं और मुमकिन है कि वो नौ मुंतखब बीजेपी अरकान असम्बली से मुलाकात के बाद बीजेपी कानून साज पार्टी के लीडर के नाम का ऐलान करेंगे। हलफबरदारी की तकरीब जल्द ही मुतवक्के है। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: हुकूमत की तशकील का आईनी अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है। मगरबी बंगाल के आला इंतखाबी अफसर मनोज कुमार अग्रवाल ने चुनाव कमीशन के नुमाइंदों के साथ आज गवर्नर से मुलाकात की और रियासत की तमाम 293 असम्बली सीटों के नतायज का गजट नोटिफिकेशन पेश किया। नई हुकूमत की तश्कील का बाकायदा अमल उस वक्त शुरू होगा जब गवर्नर को सरकारी इंतखाबी नतायज मौसूल होंगे। गवर्नर इस बात पर भी फैसला कर सकते हैं कि नई हुकूमत के बाजाबता हलफ उठाने तक अबूरी इंतजामी निज़ाम किस तरह काम करेगा। इसी दौरान सुबकदोश होने वाली वजीर आला ममता बनर्जी के मौकिफ ने सूरतहाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। ममता बनर्जी ने मंगल के रोज़ वादे किया कि वो इस्तीफ़ा देने के लिए लोक भवन नहीं जाएंगी। इस सियासी कशीदगी के पस मंज़र में बंगाल में इंतजामी मुंतकली की तैयारियां अब एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा ने आज असम्बली इंतखाबात के अमल के मुकम्मल होने के बाद गुवाहाटी में बाकी राजभवन में गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। इंतखाबी नतीजों के ऐलान के बाद उनके इस इस्तीफे से रियासत में नई हुकूमत की तश्कील के लिए राह हमवार हो गई है। इससे कबल आसाम के आला इंतखाबी अफसर अनुराग गोयल ने असम्बली इंतखाबात के नतीज बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नर को पेश किए और नौ मुंतखब अरकान असम्बली की फहरिस्त भी उन्हें सौंपी। हालिया असम्बली इंतखाबात में एनडीए ने 126 में से 102 सीटें जीतकर वाज़े अक्सरियत हासिल की है। बीजेपी 82 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि उसके इत्तेहादी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट और आसाम गण परिषद ने 10-10 सीटें हासिल की हैं। कांग्रेस 19 सीटें जीतकर दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।
2: जब तक नया मंत्रिसभा का गठन नहीं होते है, तब तक मुझे और मेरा मंत्रिसभा को केयर टेकर रूप से काम चलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिया। बीते 5 साल सरकार चलाने में हमारे राज्यपाल महोदय ने हमें जो मार्गदर्शन किया, इसके लिए भी मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद और हमारा ओर से अपना ग्रेटिट्यूड भी प्रस्तुत किया।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी के इस मुबैना बयान की मजम्मत की है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की जानिब से जवाबदेही की मजाहमत और आवाम के फैसले को कबूल करने से इनकार करना बंगाल में जमहूरी निज़ाम को कमजोर करने की एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि वो न सिर्फ आवाम के फैसले को मुस्तरद कर रही हैं, बल्कि चुनाव कमीशन और सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे इदारों की साख को भी कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों का अहाता करने वाले रेलवे प्रोजेक्टों के लिए मरकजी काबीना की मंजूरी का खैर मकदम किया है। सिलसिलेवार सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स रेलवे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे, कामकाज की कारकर्दगी में इजाफा करेंगे, नीज मुल्क के बुनियादी ढांचे और इक्तसादी तरक्की को भी फरोग देंगे। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स से मुल्क भर के अहम सियाहती मकामात तक पहुंचना मजीद आसान होगा। वजीर आजम ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने का काबीना के फैसले को भी सराहा। कौमी तफ्तीशी एजेंसी एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 अफराद के खिलाफ एक फर्द जुर्म दाखिल की है। ये फर्द जुर्म अवामी मकामात पर लोगों को बायोलॉजिकल जहर देने की आईएसआईएस की एक साजिश में इन लोगों के मुलविस होने के सिलसिले में दाखिल की गई है। अमेरिका में भारत निजाद रिपब्लिकन रहनुमा विवेक रामास्वामी ने ओहियो के गवर्नर के लिए रिपब्लिकन नामजद 87% वोट हासिल करके जीत ली है। उन्होंने केसी पुत्श को शिकस्त दी। अब आइंदा नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार एमी एक्सटन से होगा। रामास्वामी ने 2024 में मुख्तसर अरसे के लिए ट्रंप के खिलाफ इंतखाबी मुहिम चलाई थी, बाद में उनकी हिमायत का ऐलान किया। यूक्रेन के मशरकी इलाकों में रात भर होने वाले रूस के हमलों में 27 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। ये हमले इस एकतरफा जंगबंदी से चंद घंटे कबल हुए जो यूक्रेन की जानिब से तजवीज की गई थी और आधी रात से नाफिज होना था। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, केरला, माहे, मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी इलाके, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के बाज मकामात पर शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने अंडमान व निकोबार, जजायर, आसाम, मेघालय, मशरकी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के बाज मकामात पर गरज चमक और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल नई दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वियतनाम के सदर के साथ बातचीत की। कई मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। असेंबली इंतखाबात के नतीजों के बाद 4 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम एक इलाके में हुकूमत की तश्कील के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में TVK आज शाम हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश करेगी। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा सरमा ने 15वीं रियासती असेंबली को तहलील किए जाने के बाद अपना इस्तीफा सौंपा। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज आसाम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi. Several MOUs exchanged in the fields of digital technology, rare earth and medical product regulations. Hectic parleys continue in Tamil Nadu among parties as TVK is set to stake claim for forming government despite lack of majority figure. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma tenders resignation. Swearing-in ceremony of the new government to take place after 11th of May. India and European Union launch joint initiative to strengthen EV battery recycling capacity. IMD forecasts heavy rainfall over Assam, Bihar, Keralam, Tamil Nadu and Puducherry today. And in IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad to take on Punjab Kings in the evening. And now the news in detail. India and Vietnam today inked several MOUs in the fields of digital technology, rare earths, medical products regulation, public sector audit, digital payment system and culture and tourism. The agreements were signed after the talks between Prime Minister Narendra Modi and President of Vietnam Tho Lam in New Delhi this afternoon. During the talks, both leaders held wide-ranging discussions across the spectrum of bilateral relations as also on regional and global issues of mutual interest. We now go over live at Hyderabad House, where Prime Minister Narendra Modi is briefing the media on the outcomes of the talks.
4: Fast payment system bhi jald hi link hone ja rahe hain. Saath hi, ab hum dono desho ke beech, state to state aur city to city cooperation ko bhi majboot karne ja rahe hain. Friends, Vietnam, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और बीजन महासागर का एक मुख्य स्तंभ है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी हमारा कॉमन आउटलुक है। हम अपनी सुदृढ़ होती हुई रक्षा और सुरक्षा सहयोग से रूल ऑफ लॉ, शांति, स्थिरता और समृद्धि के प्रति योगदान देते रहेंगे। वियतनाम के सहयोग से भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को भी और व्यापक बनाएगा। योर एक्सेलेंसी, पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के विरुद्ध हमारे संघर्ष में साथ खड़े रहने के लिए हम वियतनाम के आभारी हैं। वैश्विक उथल पुथल और आर्थिक चुनौतियों के इस दौर में अपने टैलेंट, गुड गवर्नेंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बल पर भारत और वियतनाम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज के रूप में उभर रहे हैं। अब हमारी एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से हम एक दूसरे की रैपिड ग्रोथ के सहायक बनेंगे। जैसा कि बुद्ध की शिक्षाओं की भावना है कि यदि आप किसी और के लिए दीप जलाते हैं तो वह आपके अपने मार्ग को भी प्रकाशमान करता है।
3: In Tamil Nadu, political parleys to form a new government under Tamilaga Vetri Kadagam, TVK founder C. Joseph Vijay has intensified as his party is short of majority figure of 118. State Governor Rajendra Vishwanath Arlekar is to arrive in Chennai later this afternoon from Kerala. The Chief Minister designate C. Joseph Vijay will be meeting the Governor and submitting the letter to stake a claim to form the government later this evening. As the leftover supporting Vijay-led TVK government in Tamil Nadu is growing amidst parties, long-time alliance between DMK and Congress is on a thin line. Congress, which has 5 MLAs, has decided to support the TVK. The decision was taken after a meeting of the newly elected members to the assembly from the Congress party, led by Tamil Nadu in charge, Girish Chodankar. Rajesh Kumar from Killiur Assembly constituency, a 3-time Congress MLA, has been elected as the leader of the Congress in the State Assembly. This reduces the number from the DMK alliance and has been added to the TVK, which has 107 MLAs. Still, 6 more MLAs are needed for a majority. Speaking to media, Congress MP Karthi Chidambaram today said that the Congress party will formally support a government headed by Vijay's TVK.
5: The TVK has got 108 seats. So clearly the people of Tamil Nadu want a formation to be headed by the TVK. And it's now incumbent upon the TVK to put together a workable majority. And they have reached out to the Congress party formally. They've written a letter. And that letter has been taken into cognizance. And unanimously the Congress party has decided to support a government headed by the TVK. So we are only aiding and assisting the TVK to put together a secular and stable government in Tamil Nadu. How they will get the other numbers is really up to them, because as they have reached out to us, I'm sure they are reaching out to other political parties.
3: On Congress supporting TVK in Tamil Nadu, DMK leader and spokesperson Kanimudi NV and Somu said, if the Congress has done this, it is a big stab on DMK. She said DMK stood with Congress in all odd hours.
6: It is a big stabbing what Congress have done to DMK, because we have stood by them in all the odd hours. When they had a crisis in the India bloc, it was DMK and our leader which stood up to their level, and we had holded them high up. I think they should think of all those things what we have done. If still they are doing it, it's a big backstabbing what the Congress is doing.
3: In West Bengal, preparations within the state administration have reached a peak following the declaration of the election results and ahead of the swearing-in of the new government. According to party sources, Union Home Minister Amit Shah is arriving in Kolkata today and may announce the name of the leader of the BJP Legislative Party after holding a meeting with the newly elected BJP MLAs. The swearing-in ceremony is likely to follow soon after. More from our correspondent.
7: The constitutional process of government formation is moving swiftly. The Chief Electoral Officer of West Bengal, Manoj Kumar Agarwal, along with representatives of the Election Commission, today met the Governor with the gazette notification of the results of all 293 assembly constituencies in the state. The formal process of forming the new government begins only after the Governor receives the official election results. The Governor may also take a decision on how the interim administrative arrangement will function until the new government is formally sworn in. At the same time, the stand taken by outgoing Chief Minister Mamata Banerjee has added a layer of complexity to the situation. Mamata on Tuesday made it clear that she would not go to Raj Bhavan to resign. Against the backdrop of political confrontation, preparations for the administrative transition in Bengal have now entered a decisive phase. Sandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
3: Education Minister Dharmendra Pradhan has condemned the alleged remarks of Trinamool Congress Chief Mamata Banerjee that she will not resign and tender her resignation to the Governor as the outgoing Chief Minister. In a social media post, he accused that resistance to accountability and the refusal to accept the public's mandate by the Trinamool Congress is an example of compromised democracy in Bengal. In Assam, Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma today tendered his resignation to Governor Lakshman Prasad Acharya at the Lok Bhavan in Guwahati

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों और चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन के क्षेत्र में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तमिलनाडु में टीवीके पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने त्यागपत्र दिया। नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया। मौसम विभाग का असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद किए गए। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के एक महीने के भीतर ही राष्ट्रपति तो लाम की भारत की पहली राजकीय यात्रा ये दर्शाती है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं।
1: वियतनाम के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक महीने के भीतर ही है उनका भारत आना और एक हाई लेवल डेलीगेशन समेत कई बिजनेस लीडर्स के साथ आना, यह स्पष्ट करता है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की यात्रा की शुरुआत बोध गया से की। यह हमारे दोनों देशों की साझा सभ्यतागत और आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और वियतनाम अपने संबंधों का और विस्तार करेंगे।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार दोगुना हुआ है।
1: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड

0: पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। हमने भारत आसियान ट्रेड एग्रीमेंट आईटीगा को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कृषि, मत्स्य पालन और पशु उत्पादों का वियतनाम को निर्यात भी सुगम होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए आज दोनों पक्षों ने केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन ओशन का एक प्रमुख स्तंभ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्य प्रशासन में तैयारियां चरम पर पहुंच गई हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक के बाद भाजपा विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा कर सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह इसके तुरंत बाद होने की संभावना है।
2: सरकार बनाने के संवैधानिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने आज चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने राज्य की सभी 293 विधानसभा सीटों का चुनाव परिणामों को आधिकारिक अधिसूचना राज्यपाल को सौंपी। राज्यपाल निर्णय ले सकते हैं कि नई सरकार के औपचारिक शपथ ग्रहण तक अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था कैसे कार्य करेगी। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख से स्थिति और जटिल हो गई है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वे इस्तीफा नहीं देगी। इस राजनीतिक टकराव के माहौल में बंगाल में प्रशासनिक बदलाव की तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। संदीप अंदास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। ये आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से आधिकारिक सुरक्षा के महत्व को दोहराया है। असम में मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा ने आज गुवाहाटी के लोक भवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया। राज्य में अब नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बाद में मीडिया से बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने बताया कि राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और वर्तमान विधानसभा को भंग कर दिया है।
3: जब तक नया मंत्रिसभा का गठन नहीं होते है, तब तक मुझे और मेरा मंत्रिसभा को केयर टेकर रूप से काम चलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिया। बीते 5 साल सरकार चलाने में हमारे राज्यपाल महोदय ने हमें जो मार्गदर्शन किया, इसके लिए भी मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद और हमारा ओर से अपना ग्रेटिट्यूड भी प्रस्तुत किया।
1: श्री शर्मा ने बताया कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 11 मई के बाद होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समारोह में आमंत्रित किया गया है। राज्य के अगले मुख्यमंत्री के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा दल नेतृत्व का निर्णय करेगी, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेदरी कड़गम टीवी के नेता सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में नई सरकार बनाने के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी को सरकार बनाने के लिए 10 और सदस्यों की आवश्यकता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज चेन्नई पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सी जोसेफ विजय आज शाम राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: राज्य में कांग्रेस के 5 विधायकों ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है। यह निर्णय तमिलनाडु के प्रभारी गिरीश चुडंकर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नव निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की बैठक में लिया गया। किल्लियोर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के कांग्रेस विधायक राजेश कुमार को राज्य विधानसभा में कांग्रेस का नेता चुना गया है। इससे डीएमके गठबंधन के विधायकों की संख्या कम हो गई है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार को औपचारिक रूप से

0: देगी। उधर तमिलनाडु में टीवीके को कांग्रेस के समर्थन पर डीएमके नेता और प्रवक्ता कनिमोई एनवीएन सोमो ने कहा, अगर कांग्रेस ने ऐसा किया है तो ये डीएमके पर एक बड़ा प्रहार है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: केरलम विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त यूडीएफ गठबंधन सरकार बनाने को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मोर्चे का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस पहले मुख्यमंत्री का चयन करेगी, इसके बाद आगे की चर्चा होगी।
2: केरल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जाएगी। ये बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पर्यवेक्षकों द्वारा की जाने वाली अनौपचारिक चर्चाओं के बाद होगी। पर्यवेक्षक आज शाम राजधानी पहुंचने वाले हैं। केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा है कि मुख्यमंत्री के संबंध में निर्णय विधायकों के विचार जानने के बाद ही लिया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद यूडीएफ विधायक दल की बैठक भी आयोजित की जाएगी। इन बैठकों के बाद गठबंधन के नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लीपुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को यह दावा करते हुए दिखाया गया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तान द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। पंजाब में कल रात जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय और अमृतसर के खासा में सेना के एक प्रतिष्ठान के बाहर दो विस्फोट हुए। ये पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के नापाक मंसूबों का एक हिस्सा है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने सेना और अन्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ अमृतसर के खासा स्थित विस्फोट स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार दोनों स्थानों पर आईईडी का इस्तेमाल किया गया था।
3: खालिस्तान लिबरेशन आर्मी एस सारे नॉन एग्जिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आईएसआई की कोशिश है, वो एक फेक नैरेटिव बना रहे हैं जिया कि पंजाब डिस्टर्ब्ड है। एक एफआईआर रजिस्टर की गई है अंडर द रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ ते इन्वेस्टिगेशन जड़ा हैगा दैट इज बीइंग कैरीड आउट इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द आर्मी एंड अदर एजेंसीज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR या न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने भारत यूरोपीय ऊर्जा व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद कार्य समूह के अंतर्गत ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए 169 करोड़ रुपए की संयुक्त पहल शुरू की है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा है कि यह पहल भारत यूरोपीय ऊर्जा रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने कहा कि देश के ईवी बाजार के तेजी से विस्तार के साथ संसाधन सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के लिए एक मजबूत घरेलू पुनर्चक्रण प्रणाली का निर्माण आवश्यक है। मूडीज रेटिंग्स के अनुसार भारत पिछले 5 वर्ष में सबसे बड़ी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। अपनी हाल की रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा है कि भारत मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, एक स्थिर और पूर्वानुमानित नीतिगत ढांचा तथा मजबूत घरेलू पूंजी बाजार के साथ भविष्य के वैश्विक झटकों को झेलने के लिए अपने अधिकांश समकक्षों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब व्यापार को लेकर तनाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता के बीच वैश्विक वित्तीय बाजार अस्थिर बने हुए हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस वर्ष नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी एमी एक्टन से होगा। अगर वे चुने जाते हैं तो वे लुसियाना में बॉबी जिंदल और दक्षिण कैरोलिना में निकी हेली के बाद अमरीका में तीसरे भारतीय गवर्नर बन सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने होर्मुज जलडमरू मध्य

नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल और तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में कुछ स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। आज हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सा उत्पादों से जुड़े विनियमन के क्षेत्र में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने त्यागपत्र दिया। नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया। मौसम विभाग का असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 2:30 और पूरे 15 सेकंड हुए हैं। वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। दोस्तों, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल किसी हीरो के जैसे नहीं होते हैं, ना ही उनकी आवाज़ में वो भारीपन होता है, मगर जब भी वो पर्दे पर आते हैं तो ठहर जाती है हर एक नज़र। वो कभी मुनीम जी बनकर हिसाब मांगते तो कभी लालची साहूकार बनकर आंखें दिखाते, मगर असल में वो अपनी सादगी से हर दिल को जीत ले जाते। जी दोस्तों, कार्यक्रम एक ही कलाकार में आप सभी सुनने वालों का स्वागत खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी, और कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज एक ऐसे कलाकार को याद करेंगे हम जिसके बिना बॉलीवुड का वो सुनहरा दौर अधूरा सा लगता है। एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी नेजल वॉइस से, यानी कि नाक वाली आवाज़ से, और अपने एक अलग ही अनोखे अंदाज से छोटे छोटे किरदारों को भी असरदार बना दिया। वो किरदार कभी बहुत बड़े रूप में फिल्मों में नहीं आया, छोटे छोटे उसने किरदार निभाए, लेकिन वो छोटे छोटे किरदार भी उसकी एक पहचान बन गए। जी दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम उसी कलाकार के नाम, उस कलाकार का नाम चंद्रशेखर दुबे, यानी कि हम सबके चहे थे सी.एस. दुबे साहब।

जी दोस्तों, जब भी सीएस दुबे साहब के बारे में सोचते हैं या उनका नाम आता है तो जहन में कैसे शख्स की छवि उभर आती है जो या तो पर्दे पर डांट खा रहा होता है या फिर किसी के सामने कुछ चालाकी से कुछ हरकतें कर रहा होता है। लेकिन आपने कभी गौर किया, उनकी डायलॉग डिलीवरी में एक लय था। वो शब्दों को कुछ इस तरह से चबा करके बोलते थे कि दर्शक कभी उन्हें भूल ही नहीं पाए और ना ही भूल पाएंगे। आप देखिए, जब भी वो सिल्वर स्क्रीन पर नज़र आते तो उनको देखने के बाद में या तो हमारे जहन में उनके लिए नफ़रत आ जाती थी या उनको देख के हंसी आ जाती थी, क्योंकि वो किरदार में इस कदर डूब जाते थे कि वो किरदार बिल्कुल रियल जैसा लगता था। चाहे शोले का वो दृश्य हो जहाँ पे वो गांव वालों के बीच में खड़े थे, या नमक हलाल, जंजीर, शान जैसी बहुत सी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार निभाए। उन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर राजेश खन्ना तक हर बड़े सितारे के साथ एक अलग लाइन में काम किया। वो एक ऐसे अभिनेता थे, अभिनेता कहना शायद मतलब एक उनके लिए कुछ कम शब्द होंगे, उनके लिए कह सकते हैं कि वो एक अभिनय की संस्था थे जहाँ पर बहुत कुछ सीखने के लिए था। और वो उन चंद कलाकारों में से थे जिन्हें संवाद रटने की ज़रूरत नहीं होती थी, बल्कि वो किरदार को पूरी तरह से जीते थे। आज के दौर में अगर हम कैरेक्टर आर्टिस्ट के बारे में बात करें तो जो दुबे साहब हैं उनका नाम उस फहरिस्त में सबसे ऊपर होगा।

जी दोस्तों, जुड़े हैं आप कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ और हम बात कर रहे हैं सीएस दुबे साहब के बारे में। सीएस दुबे साहब के फिल्मी सफ़र के शुरुआत की जो कहानी है वो भी बहुत दिलचस्प है। जितना उनका अभिनय दिलचस्प रहा उतना ही उनका ये फिल्मी सफ़र रहा। दोस्तों, जो सीएस दुबे साहब हैं वो बिल्कुल भी अभिनेता नहीं बनना चाहते थे। वो बहुत ज़्यादा सोशल सर्विस किया करते थे, लोगों की मदद करना ये उनका पसंदीदा काम था। रंगमंच भी वो किया करते थे, थिएटर उनको ज़्यादा पसंद था। और फिल्मों में आने से पहले उन्होंने इप्टा यानी कि इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ज्वाइन किया और मशहूर पृथ्वी थिएटर में सालों तक उन्होंने काम किया। पृथ्वीराज कपूर साहब के साथ उन्होंने अभिनय की जो बारीकियाँ सीखी वो पूरा टाइम आगे पूरी ज़िंदगी उनके काम आई और वही उनकी पहचान बनी। पहला ब्रेक जो उनको मिला फिल्मों में वो सन 1950 में मिला और उसके बाद उनकी फिल्म आई पतिता 1953 में, जिसमें उनके साथ देवानंद और सुचित्रा सेन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। और फिल्म पतिता के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। हालांकि उन्हें जो असली पहचान मिली वो मिली 60 और 70 के दशक में, जब मसाला फिल्मों का काफ़ी बड़ा बाजार था और वहाँ पर उन्होंने कभी विलन के चमचे का रोल, कभी चालाक मुनीम का किरदार निभाया। और दोस्तों, जो सपना उन्होंने देखा कि मुंबई आएंगे, काम करेंगे, वो सफ़र उन्हें बहुत आसानी से नहीं मिला, बल्कि उसके लिए उन्होंने किया काफ़ी सारा स्ट्रगल। जब वो मुंबई आए तो उनके पास ना तो कोई गॉडफादर था और ना ही खूबसूरत सा चॉकलेटी लुक। उनके पास थी तो बस वो अपनी अलग सी अनोखी सी आवाज़। करेंगे इस बारे में और भी बातें, लेकिन पहले सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत उन्हीं की फिल्म से।

जी दोस्तों, जुड़े हैं आप कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ और हम बात कर रहे हैं सी एस दुबे जी के बारे में। मुंबई आए बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी पीछे सपोर्ट के। शुरुआत में छोटे छोटे रोल उन्हें मिले और उस दौरान कभी भीड़ का हिस्सा भी बने और कभी सिर्फ एक लाइन बोली। लेकिन उनकी प्रतिभा जो थी वो ऐसी नहीं थी कि कोई रोके रोक सके, और शायद यही वजह थी कि निर्देशक विमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी जैसे दिग्गज निर्देशकों ने भी उन्हें नोटिस किया। नोटिस करने पर मजबूर किया उनकी कलाकारी ने, उनकी अदाकारी ने, और धीरे धीरे वो हर बड़े डायरेक्टर की पहली पसंद बन गए। फिल्म में अगर किसी ऐसे किरदार की ज़रूरत होती जो कि चालाक भी हो, जिसकी शक्ल पे चालाकी नज़र आए लेकिन उसे देखकर हंसी भी आए और गुस्सा भी आए, तो बस समझ जाइए कि वो किरदार सिर्फ और सिर्फ सी एस दुबे साहब के लिए लिखा गया है। और 60, 70 और 80 के दशक में शायद ही कोई ऐसी बड़ी फिल्म होगी जिसमें दुबे साहब का चेहरा नज़र ना आया हो। उन्होंने अपने इस लंबे फिल्मी सफ़र में 250 से लेकर 300 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया, और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो कभी मेन विलन थे ही नहीं। जी हाँ, मेन विलन वो कभी नहीं रहे, उन्होंने हमेशा विलन का दायां हाथ बनना पसंद किया, या उनका चालाक जो सलाहकार होता था, जो उन्हें सलाह देता था, जिसके बिना विलन का कोई भी प्लान काम ही नहीं करता था। और शायद यही वजह थी कि हर फिल्म में विलन के साथ में नज़र आते थे सी एस दुबे साहब।

जी हाँ दोस्तों, फिल्में अगर कोई भी आती थी उस दौरान में पर्दे पर, अगर सीएस दुबे ना हो किसी फिल्म में तो उस फिल्म में नूर ही नहीं होता था। जी हाँ, राज कपूर, देवानंद, सभी के साथ उन्होंने काम किया, अभिनय की बारीकियों को समझा। राजेश खन्ना साहब के दौर में वो फिल्मों का एक ऐसा ज़रूरी हिस्सा बन गए कि उनके बिना फिल्म बने ऐसा हो ही नहीं सकता। और अमिताभ बच्चन साहब का जब एंग्री यंग मैन वाला दौर आया तो दुबे साहब जी अक्सर उन किरदारों में नज़र आते थे जो बेचारे होते थे, एकदम सिस्टम की मार झेलते हुए, या फिर ऐसे खड़ूस या ऐसे काइया लोग बनते कि जो सिस्टम का फ़ायदा उठाते थे। और छोटे छोटे दृश्यों में, छोटी छोटी जगहों पर वो आते थे, लेकिन उन छोटे से बीच में भी वो अपनी एक अलग सी छाप छोड़ देते थे। कभी भी उन्होंने होड़ नहीं की कि वो एक बड़े कलाकार बने या पूरी फिल्म में उनको बड़ा रोल मिले। और शायद यही वजह थी कि अभिनय के स्कूल ऑफ ड्रामा का जो स्कूल है उसमें बच्चों के लिए वो एक मिसाल के रूप में आते हैं, क्योंकि कोई भी फिल्म है उस फिल्म में उनका किरदार एक ऐसा किरदार होता है जिसके बिना उस फिल्म की कोई अहमियत नहीं होती है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है फिल्म का। वैसे ही जैसे हमारे इस कार्यक्रम का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं हमारे सभी लिसनर्स, और उन्हीं के संदेश हमारे सामने रखे हुए हैं जिन्हें हम ले लेते हैं। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन। हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा पीहू स्वर्णकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। छत्तीसगढ़ पलारी से जुड़े हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल, यशस्वी वर्मा। और मेरठ से दिग्दर्शन कविता गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हीरामणि वर्मा, दतरंगी भट्टापारा से हमारे साथ जुड़े हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, अशफाक और अल्ताफ हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके साथ हैं खतीजा बेगम, आफरीन कौसर और नीलिमा फातिमा। शाहजी बोड़खे हमारे साथ जुड़े हैं, श्रीमती नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, उत्तम जामदाड़े के साथ हिंगोली महाराष्ट्र से। चिरमिरी कुरासिया कालरी से जुड़े हैं इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद और कालिंद्री लहरे। बहुत बड़ा सा संदेश हम तक पहुंचाया है अनिल मोहन जी ने, और ये संदेश इन्होंने पहुंचाया कैथल हरियाणा से। लिखते हैं कि शायद बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि सी एस दुबे जी डायरेक्टर भी थे, और सन 1961 में आई फिल्म किस्मत पलट के देख, जिसमें अनूप कुमार और प्रीति बाला लीड रोल में थे, वो सी एस दुबे जी ने ही बनाई थी। बहुत खूब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी अनिल जी, और बहुत सारी इन्होंने हम तक जानकारी दी है, लेकिन वक्त की कमी है तो क्षमा चाहूँगी अनिल जी कि ये संदेश पूरा नहीं पढ़ पाऊँगी, लेकिन आपने जानकारी बहुत अच्छी दी है। अगला संदेश तुलसी मस्कीन जी ने हम तक पहुँचाया, एवरग्रीन रेडियो ग्रुप, बिहारी कॉलोनी, शाहदरा, दिल्ली से। वीना मस्कीन, आशीष, राजा चैतन्य मस्कीन, मेघा, और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित, केशव, रिधान खुराना जी के साथ ये जुड़े हुए हैं। अगला संदेश हम तक आया और उसको पहुंचाने वाले हैं जगराम साहू जी, बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू के साथ। और ये संदेश इन्होंने भेजा है हम तक ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ से। अगला संदेश हम तक पहुंचाया है और इसको पहुंचाने वाले हैं, ये संदेश भेजा है देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, मास्टर अल कबीर जी ने, कबीर रेडियो श्रोता संघ, डोंडी लोहारा, बालोद, छत्तीसगढ़ से। अगला संदेश हम तक पहुंचाने वाले हैं अनिल मोहन जी एक बार फिर से, नलेश्वर नगर, नरविल, महाराष्ट्र से पीएस नववानकर, निर्मला विशाल नववानकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपरकोट मोहम्मला चौकटी बुलंदशहर से। निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों के साथ। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक कुमार सहगल जी के साथ। चंडीगढ़ सिटी से हमारे साथ जुड़े हैं सतीश अनेजा, विमल अनेजा के साथ। कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
सुदर्शन मुखी, अनीता, सिमरन मुखी जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से। गांव फरा से जिला हिसार से जुड़े हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी। और ये अगला संदेश हम तक एक बार फिर से पहुंचाया तुलसी मस्कीन जी ने। और दोस्तों ये थे वो संदेश। स्वर्ण सिंह जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से। दोस्तों जो कार्यक्रम है इसमें आज आपने बात की सीएस दुबे जी के बारे में, वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब भी आप किसी पुरानी फिल्म में उस टेढ़ी सी मुस्कान या अलग सी आवाज़ को डायलॉग बोलते हुए देखेंगे ना, तो याद रखिए वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि सिनेमा के उस गोल्डन पीरियड की वो कड़ी है जिसने उस वक्त को जोड़े रखा है। तो दोस्तों जाते जाते बस इतना ही कहूँगी कि कलाकार मरते हैं लेकिन कला उन्हें अमर रखती है, और दुबे साहब ने हमें बिल्कुल यही सिखाया है कि पर्दे पर आप भले ही कुछ पलों के लिए आएँ वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उन चंद पलों में, उन कुछ मिनटों में आप लोगों के दिलों पर कितनी गहरी छाप छोड़ते हैं। तो दोस्तों आज का ये सफ़र बस इतना ही। मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की। अपना ख्याल रखिए, अपनों का साथ निभाइए, सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम। मुझे दीजिए अनुमति, छोड़ जाती हूँ आप सभी के लिए ये खूबसूरत सा गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। लीजिए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश
3: और मैं हूं आपका साथी अजीत। नमस्कार। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे, सुमांशु पांडे जी ने सुविचार भेजते हुए बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं,
2: शिक्षा से अधिक शक्तिशाली कोई और माध्यम नहीं है जिसने मानवता और पूरे विश्व का उपकार किया है। अच्छी शिक्षा ही हमें सही अर्थों में मानवता सिखाती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। श्रोताओं, इस संदर्भ में मुझे महान भौतिक विज्ञानी सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक प्रसिद्ध कथन याद आता है। उन्होंने कहा था,
2: शिक्षा केवल कुछ तथ्यों को याद करना नहीं है, लेकिन ये मन और मस्तिष्क को नवाचारी ढंग से सोचने के लिए विकसित करना है।
3: जी, तो श्रोताओं आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।
3: और संबलपुर कांकेर छत्तीसगढ़ से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी अवाना, प्रियांशी अवाना, रियांशी अवाना, ओजस अवाना, अनाया अवाना, गुरदीप अवाना और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी एवं अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। 1 अप्रैल 2026 के कार्यक्रम में सुश्रुत के जीवन एवं उपलब्धियों के साथ साथ यमुना नदी के उद्गम और बकरवाल जनजाति के जीवन पर दी गई जानकारी अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई। भविष्य में भी ऐसे ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों की हमें आपसे अपेक्षा है।
2: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में।
3: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की।
2: कल हमने बुनियादी जानकारी ली थी सागर और महासागर की और इनके बीच के अंतर को जाना था। आज जानेंगे एक और रोचक बात। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को बताइए ना कि वो रोचक बात क्या है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे।
3: विमलेश जी, बहुत पहले इसी कार्यक्रम में मैंने अपना संस्मरण बताया था, आपको याद होगा
2: जी।
3: और वो ये था कि जब मैं पहली बार चेन्नई के समुद्री तट मरीना बीच पर गया था तो समुद्र की विशालता को देखकर मैं चकित रह गया था। लेकिन आपको याद तो जरूर होगा कि मैंने वहाँ क्या किया था सबसे पहले।
2: अजीत जी, मुझे

0: अच्छी तरह से याद है, आपने सबसे पहले समुद्र के पानी को चखा था।
1: जी आपको बिल्कुल याद है, पाठ्य पुस्तकों में तो पढ़ा था कि समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन इसका अनुभव मैंने जीवन में पहली बार किया था।
0: तो फिर क्यों ना आज चर्चा की जाए कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है।
1: अरे वाह, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली बिमलेश जी। तो फिर आइए सबसे पहले जाने की शुरुआत कहाँ से होती है।
0: शुरुआत होती है वर्षा से। वर्षा का पानी जब धरती पर गिरता है, ये पानी मिट्टी और चट्टानों के संपर्क में आता है।
1: जी
0: मिट्टी और चट्टानों में कई प्रकार के खनिज होते हैं जो वर्षा के पानी में घुल जाते हैं। मुख्य खनिज है सोडियम क्लोराइड।
1: जी जी नमक का रासायनिक नाम भी सोडियम क्लोराइड ही तो है।
0: बिल्कुल। फिर होता यह है कि वर्षा का जल या भूमिगत झरनों का जल बहता हुआ नदियों में मिल जाता है। नदियां इन घुले हुए खनिजों को बहाकर समुद्र तक ले जाती हैं। सैकड़ों नदियां यदि अपवाद छोड़ दें तो समुद्र में ही मिलती हैं।
1: तो फिर इस तरह हर दिन, हर घंटे, हर मिनट थोड़ी थोड़ी मात्रा में नमक समुद्र में जमा होता रहता है।
0: बिल्कुल।
1: अब विमलेश जी, हम बड़ी आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रक्रिया कोई एक दो दिनों की तो होती नहीं है, ये तो लाखों करोड़ों वर्षों से चल रही है ना।
0: जी जी जी फिर तो जाहिर है कि लाखों करोड़ों वर्षों में नदियों ने कितना नमक समुद्र में जमा कर दिया होगा। चलिए अब एक दूसरे आयाम को समझते हैं। दूसरा आयाम है वाष्पीकरण।
1: तो दूसरे आयाम को जरा आप ही विस्तार से समझाइए।
0: जी जरूर। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन नमक नहीं उड़ता, नमक वहीं रह जाता है। एक उदाहरण देती हूँ।
1: जी
0: यदि आप किसी बर्तन के पानी में नमक घोलकर उस पानी को गर्म करें तो पानी तो भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन नमक वहीं रह जाएगा। यही प्रक्रिया समुद्र में भी होती है।
1: विमलेश जी, श्रोताओं को बता दें कि एक और भी बहुत बड़ा कारण है
0: जी
1: समुद्र के पानी के खारा होने का,
0: बताइए।
1: और वो ये है कि समुद्र के अंदर ज्वालामुखी और पानी के अन्य स्रोत भी तो होते हैं
0: जी
1: जो पानी में नमक मिलाते हैं, यानी नमक सिर्फ नदियों से ही नहीं लेकिन समुद्र के अंदर से भी आता है।
0: जी ये बात तो है, लेकिन अजीत जी मेरे मन में एक और प्रश्न है। वो ये है कि इस प्रकार तो नमक बढ़ता ही रहेगा, फिर पानी कहाँ बचेगा? वो तो नमक का गाढ़ा घोल बन जाएगा, लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ।
1: वाह, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने विमलेश जी, यही तो कमाल है प्रकृति का। दरअसल होता यह है कि कुछ नमक समुद्री जीव उपयोग कर लेते हैं जैसे कोरल, और कुछ नमक समुद्र की तलहटी में ही रह जाता है,
0: जी
1: तभी तो समुद्र में नमक की मात्रा में संतुलन बना रहता है।
0: जी सचमुच अद्भुत है प्रकृति। इस संतुलन को आंकड़ों में ऐसे समझना चाहिए कि औसतन समुद्र के पानी में 3.5% नमक होता है, यानी 1 लीटर पानी में लगभग 35 ग्राम नमक।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी।
0: जी
1: तो श्रोताओ, अब ये भी जानिए, श्रृंखला में आज की चर्चा हम यहीं पर करते हैं समाप्त। आशा है कि आपको आज की जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
0: प्रश्न है, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ई मेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है द स्मार्ट मंकी।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से एक बंदर की मजेदार गतिविधियों के बारे में बताते हुए पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया है, और विशेषकर कूड़े के समुचित निपटान की चर्चा की गई है।
2: One day, Anju and Farida went to the market. Anju bought a bag and Farida bought a water bottle. Later, they went to a shop and bought a packet of groundnuts and a bottle of juice. They felt tired. They sat on a bench under a tree to rest. There was a monkey on the branch of the tree above them. Farida and Anju did not see the monkey. They took out their food from the bag and began to eat.

0: सुनी आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम
2: राग देसी।
1: राग रस पर से श्रृंखला के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में राग देसी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे राग देसी की व्युत्पत्ति, थाट, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में।

राग देसी। राग देसी की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसमें कोमल गंधार और कोमल निषाद अर्थात कोमल ग और कोमल नी का प्रयोग किया जाता है। राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए कभी-कभी इसमें कोमल धैवत अर्थात कोमल ध का प्रयोग कर लिया जाता है। इसके आरोह में गंधार और धैवत यानी ग और ध ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर पंचम यानी प है और संवादी स्वर ऋषभ यानी रे है। इसका गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है। राग देसी के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

राग देसी की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग देसी की स्वर मालिका की स्थाई

राग देसी की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, आजादी का ध्वज लहराया। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: तो श्रोताओ,
1: अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहें हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3:30 होने को हैं और लीजिए वक्त हुआ है कार्यक्रम उर्दू मजलिस का, जिसमें सुनेंगे आज आप अक्षय आदाब।

0: सामईन की खिदमत में फरहीन इकबाल का पुरखलूस आदाब। पेश है प्रोग्राम अक्से अदब। सामईन, अदीब व शायर हमारे माशरे का ही अक्कास होता है। इर्द गिर्द के माहौल से वो इतना मुतासिर होता है कि वो उन सब हालात को कलमबंद कर देता है, और अदीब व शायर के ये ख्यालात हमारे सामने नज़्म और नसर की शक्ल में रोनुमा होते हैं। आइए सामाइन सुनते हैं जनाब मोहिदुर रहमान से उनकी तकरीर। मौजू है उर्दू में तंज़ो मज़ा की मयार बंदी।
1: आज की मेरी इस गुफ्तगू का मौजू है उर्दू में तंज़ो मज़ाह के नए अदब की मयार बंदी। तंज़ो मज़ाह एक कदीम और आलमी अदबी रिवायत है। इसमें जिद्दत और नुदरत असरी हिस्सियत के गहरे इदराक से पैदा होती है। रिवायती तर्ज फिक्र और ख़त्ते मुस्तकीम पर चलने वाले तर्ज हयात की यबूसत से इनहराफ के नतीजे में तंज़ो मज़ाह वजूद में आता है। जमूद और इकसानियत का शऊर और उसकी तख्लीकियत से भरपूर निशानदेही नाबगा का खासा है। तंज़ो मज़ाह निगार माशी, समाजी, तहजीबी, सियासी पेचीदगियों, दाखली व बैरूनी तजादात का अपनी तीशा नज़री से मुशाहिदा करता है। उन असबाब व अवामिल के बदलते तनाजुरात से तंज़ो मज़ाह निगार अपना मवाद कशीद करता है। तंज़ो मज़ाह का हवाला महज हंसना हंसाना नहीं है, बल्कि इर्तिकाज़ ताकत की कली खोलना है। मुक्तदिरा जिस शक्ल में अपने नाज़ो अदा का इजहार करता है, तंज़ो मज़ाह अपने मलीह व बलीग रम्ज से उसकी बुनियादों को मुतज़लज़ल कर देता है। ख्वाह वह सियासी मुक्तदिरा हो या तहजीबी, मजहबी मुक्तदिरा हो या माशी, सिन्फी मुक्तदिरा हो या अदबी, तंज़ो मज़ाह के खंजर से किसी को मफर नहीं। तंज़ो मज़ाह के नए अदब का शनाख्त नामा व तर्ज़ फ़िक्र है जो ग्लोबलाइजेशन के ज़ेर असर वजूद में आया। साइंसी तरक्यात के नतीजे में जो तर्ज हयात हमारा लाजमा बन चुका है, उरूसुल बिलाद के मसाइल, कॉरपोरेट कल्चर, फ्लैट कल्चर, न्यूक्लियर ख़ानदानी निज़ाम, मर्द व ज़न के मसावात का मगरबी तसव्वुर, सार्फियत और मादियत के होशरुबा मनाजिर, मुक्तदिरा के हाथों सदाकत की लिसानी तश्कील, सोशल मीडिया का गलबा, रोज़मर्रा की ज़रूरियात की तश्कील में इश्तहारात का अमल दखल, ये वो कलीदी अनासिर हैं जो मौज तहनशी की तरह 21वीं सदी और माजी करीब के तंज़िया व मज़ाहिया अदब में सिरायत किए हुए हैं। इस अहद के तंज़ो मज़ाह के मोतबर शायर पापुलर मेरठी, जो कई तंज़िया व मज़ाहिया मजमुओं के खालिक हैं, ज़नो शौहर के माबैन तनाज़ुआती मुकालमा तंज़िया व मज़ाहिया शायरी का मारूफ मौजू है। इस अहद का एक मारूफ तंज़ो मज़ाह का शायर अहमद अलवी इस मौजू को सोशल मीडिया की इस्तलाहात की मदद से कितना पुरलुत्फ़ बना देता है, मुलाहिजा कीजिए। नज़्म का उन्वान है पेन ड्राइव। गुस्से में बीवी ये बोली शौहर से, तुमने तो बस जुल्म मुझी पर ढाए हैं, मैं ही तुमको फूटी आंख नहीं भाती, तुमने सबसे प्यार के पेच लड़ाए हैं। शौहर बोला, बात अगर ये सच्ची है, फिर ये बच्चे किसके घर से आए हैं? बंटी, बबलू, सोनू, मोनू, क्या तुमने इंटरनेट से डाउनलोड कराए हैं? इतना भी मालूम नहीं है क्या तुमको, फूल ये किसकी कोशिश ने महकाए हैं? इंटरनेट का सर्वर कब से डाउन है? सारे बच्चे पेन ड्राइव से आए हैं? माजी करीब के एक तंज़ो मज़ाक के शायर नश्तर अमरोही हैं। उनकी

0: एक गज़ल से चंद अशार मुलाहिज़ा कीजिए। जनाब भूत लंगोटी भी छोड़ भागेगा जो देख ले बिना मेकअप के इन हसीनों को। आईने के सामने घंटों की तैयारी के बाद तुम हंसी लगती हो कितनी दुश्वारी के बाद। नश्तर साहब ने तंजिया व मजाहिया उसलूब में किस तरह अरबाब नाज़ो अदा के हुस्न जमाल की कली खोली है, इस मौके पर बेसाख्ता गालिब का वो शेर याद आ जाता है, पूछ मत रुसवाइये अंदाज़े इस्तगनाए हुस्न, दस्त मरहून हिना रुखसार रहने गाजा था। तंजो मजाह एक और मोतबर व मुस्तनद शायर प्रोफेसर खालिद महमूद हैं, जो शायरी और नसर दोनों में तंजो मजाह के अदब तख्लीक करते हैं। उनकी एक नज़्म है दर मधे आम, मुलाहिज़ा कीजिए कि शाह अवध से फ़ोन पे कल मैंने बात की, इसमें ग्रामी शाह का अब्दुस सलाम है, पूछा कि लखनऊ में है, मैंने कहा कि हाँ, बोले कि ये बताइए कै दिन क़याम है, मैंने कहा कि आज ही आया हूँ या अखी, यूँ तो खुलू से शाह में किसको कलाम है, लेकिन ये आने वाले से जाने का पूछना, क्या इसमें कोई राज है या कुछ प्याम है। बोले कि राज वाज तो कुछ भी नहीं है, बस संडे की शाम 5 बजे इज़्ने आम है, मैं तुमको लेने वक्त पे पहुँचूंगा और तुम मिलना सड़क पे जो कि तुम्हारा मकाम है। मैंने कहा कि मैं भी तो बोले कि हाँ ज़रूर, ये क्यों समझ रहे हो कि इज़्ने ताम है, होता अगर ताम तुम्हें कौन पूछता, इस फसल में बस आम ही गुठली के दाम है। तुमने तकल्लुफन भी जो इनकार कर दिया, गालिब का वो जवाब बज़हन आवाम है। खालिद महमूद साहब ने कसीदे के तर्ज पर तशबीब गुरेज से अपने कलाम को पुरलुत्फ बनाया है, रियायतों के इस्तेमाल से जहाँ मानी आबाद करने की सही की है। तंज़ो मज़ाह के इजहार की एक सूरत पेरोडी है। मुतअद्दिद तंज़ो मज़ाह के शोरा ने क्लासिकी शोरा की ज़मीन में पेरोडियाँ कही हैं, शोरा के कलाम पर गिरह लगाए हैं। माजी करीब के एक शायर तालिब खुंद मेरी ने गालिब की ज़मीन में पेरोडी कही है। उनका इख्तसास ये है कि उन्होंने गालिब और कलाम गालिब को मरकज़ में रखकर मुतअद्दिद पेरोडियाँ तख्लीक की हैं। सिन्फी और फ़नी एतबार से तख्लीकी नादिराकारी का मुजाहरा किया है। उनकी तंजिया व मजाहिया शायरी का एक मजमुआ सुखन के पर्दे में के उन्वान से मंजर आम पर आ चुका है। तज़मीन बर गज़ल गालिब के उन्वान से उनकी एक मुखम्मस है, उससे दो बंद मुलाहिजा कीजिए। तेरी गली का कोई गदागर नहीं हूँ मैं, जासूस भी किसी का सरासर नहीं हूँ मैं, दरबां भी तेरे घर का मुकर्रर नहीं हूँ मैं, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं, पीरी में कैसे जहरा जबीनों पे आए दिल, इस सिन में आशिकी के कहाँ गुल खिलाए दिल, कब तक दयार हुस्न के चक्कर लगाए दिल, क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ प्याला और सागर नहीं हूँ मैं। गालिब की ज़मीन में पेरोडी तख्लीक करने वाले एक तंज़ो मज़ाह निगार का नाम TN राज है। दुर्गत, गालिब और दुर्गत उनके तंजिया व मजाहिया शेरी मजमूए हैं। TN राज का कमाल और इख्तसास ये है कि उन्होंने गालिब और दुर्गत में दीवान गालिब की हर गज़ल की ज़मीन में तंजिया व मजाहिया गज़लें और नज़में तख्लीक की हैं। TN राज की तख्लीकी गुलकारी का एक नमूना मुलाहिज़ा कीजिए। जब तरक्की पाई तो साथी हमारा जल गया, हमने उसका क्या बिगाड़ा था कि साला जल गया, आशिक़े जांसोज का क्या वैद जी से हो इलाज, नबस देखी थी ज़रा और हाथ उनका जल गया। बतौर नमूना मुश्त अज़ खरवारे 21वीं सदी और माजी करीब की तंजिया व मजाहिया शायरी की एक झलक पेश की गई है। इस अहद में शायरी के साथ साथ नसर में भी तंज़ो मजाह के उम्दा नमूने देखने को मिलते हैं। यूसुफ नाजिम, मुश्तबा हुसैन, नुसरत जहीर, खालिद महमूद, परवेज़ यदुल्ला मेहदी, असद रज़ा जो अखबार में तंजिया व मजाहिया कॉलम लिखते थे, नुमाया नाम है। इस अहद में तंजिया मजाहिया शोरा की एक काबिल ज़िक्र तादाद है। अनस फैज़ी, इकबाल फिरदौसी, फ़याज़ फैज़ी, अंजुम फिरदौसी, जहाज़ दियोबंदी, आसिम पीरज़ादा वगैरह शोरा इस सिन्फ को अपनी शनाख्त का हिस्सा समझाने पर इसरार करते हैं। जहाँ तक तंजिया मजाहिया अदब की मेयारबंदी की बात है तो यह एक पेचीदा मसला है। मेयारबंदी और इस्तेनाद का मसला हमेशा से मुतनाज़ फ़ी रहा है। इब्राहिम ज़ौक कभी मलिकुश्शोरा करार पाते हैं, लेकिन वक्त का मुनसिफ उन्हें हाशिए पर धकेल देता है। गालिब कभी मुश्किल और मावराए फहम गर्दाने गए, लेकिन इम्तदाद ज़माना ने उन्हें उर्दू शायरी का जुज़्व गालिब बना दिया। आज थियरीज़ के इस बात और इस्तदलाल के लिए कलाम गालिब ही ज़्यादा से ज़्यादा हवाला बन रहे हैं। शायरी वही अजीम कहलाएगी जिसमें इस्तियारा हो, अलामत हो, कौले मुहाल हो, पैकर हो। इस तरह के उसूल से हम शायरी के एक बड़े हिस्से को टाट बाहर करने के मुर्तकिब करार पाएंगे। माँ बाप जदीद तसव्वुर अदब हर तरह के उसूल, कुल्लियों और तारीफ़ात की तरदीद करता है। कैनोनाइजेशन जबर को फ़रोग देता है। ये ज़माना तख्लीक को सेलिब्रेट करने का है। अगर तख्लीक में तवानाई हो, उसमें रूह असर को गिरफ्त में लेने, उससे मुकालमा कायम करने की सिफत हो, संजीदा बाज़ौक और तरबियत याफ्ता कारी के एक बड़े तबके को जमालियाती हज अता करने की सलाहियत से बहरावर हो, तो वह तख्लीक ज़मानो मकान से मावरा हो जाती है, ख़्वाह वो तंजिया व मज़ाहिया अदब ही क्यों ना हो। साइंसी इजादात की कसरत, सार्फियत और मादियत के गलबे के सबब इंसान की बेचैनी जितनी बढ़ती जाएगी, उसी कदर वो अदब और ख़ास कर तंजिया व मज़ाहिया अदब से करीब होता जाएगा।
1: सामईन, अभी आप सुन रहे थे जनाब मोहिदुर्रहमान से उनकी तकरीर। मौजू था उर्दू में तंज व मज़ा की मैार बंदी। तो आइए सामईन, चलते हैं मौसीकी की तरफ और सुनते हैं बशीर बद्र का ये कलाम जगजीत सिंह की आवाज़ में।

0: सामईन, अभी आप जगजीत सिंह की आवाज़ में बशीर बद्र का कलाम सुन रहे थे। सामईन, शायरी वो एहसास है जो दिल से निकलता है, दिल तक पहुंचता है। शायर अपने अल्फाज को इतनी खूबसूरती से पिरोता है कि सुनने वाले की रूह तक मुअत्तर हो जाती है, जो अपनी मिसाल आप है।
1: आइए सामईन सुनते हैं प्रोग्राम नवाए शायर के तहत जनाब इकबाल फिरदौसी से उनका मजाहिया कलाम।
2: मुलाहिज़ा करें कि तज़मीन, मोहब्बत करने का तुमको तरीका क्या

0: बताएं हम।
1: क्या बात,
0: सबक ये भाई मेरे याद करवाया नहीं जाता, यकीन मेरा ना आए तो किसी मजनू से पूछो तुम, नहीं जाता।
2: शोला खुद भड़क उठता है,
0: भड़काया नहीं जाता कि मोहब्बत करने का तुमको तरीका क्या बताएं हम। सबक ये भाई मेरे याद करवाया नहीं जाता, ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। और ये कतई पेश कर रहा हूँ, मुलाजा करें
2: इरशाद
0: के, हाय तहजीब इस जमाने की दिया आपी।
2: वाह।
0: और बोला शोहर ये अपनी बीवी से, आप जब से हसीन लगने लगी, देख कर लड़कियां तो जलती थीं और अब रोटियां भी जलने लगी।
2: वाह वाह वाह।
0: बोला शोहर ये अपनी बीवी से,
2: वाह वाह।
0: गालिब की जमीन में गजल पेश कर रहा हूँ,
2: इरशाद
0: मुलाजा करें। मतलब है, पैद से बीवी की जब शोहर खुला, उछला यूं जैसे कोई बंदर खुला।
2: वाह वाह
1: वाह।
0: और शेर मुलाहिज़ा फरमाए, नौकरानी किसके गम में घुल गई। नौकरानी किसके गम में घुल गई, खूब पीटा तब कहीं नौकर खुला।
2: वाह।
0: मेरी महबूबा का पीछा छोड़ दे, वरना फिर तू देख ये हंटर खुला।
2: वाह वाह वाह।
0: और यूं उड़ाता फिर रहा हूं टोपियां।
2: वाह।
0: शेर मुलाहिज़ा करें
1: इरशाद,
0: कि यूं उड़ाता फिर रहा हूं टोपियां, आदमी रखता है अपना सर खुला, और जल्दी जल्दी प्यार कर लो डार्लिंग।
1: जल्दी जल्दी प्यार कर लो डार्लिंग,
0: जल्दी जल्दी प्यार कर लो डार्लिंग, छोड़कर आया हूं मैं दफ्तर खुला। नींद उसको खुद ब खुद आने लगी, उसने देखा जब मेरा बिस्तर खुला।
2: वाह वाह।
0: नींद उसको खुद ब खुद आने लगी, जाने कैसी मुझमें ताकत आ गई।
1: जाने कैसी मुझमें ताकत आ गई,
0: जाने कैसी मुझमें ताकत आ गई, एक ही घूसे में उसका सर खुला। एक ही घूसे में उसका सर खुला, और मेहरबानी किस पे मटके की हुई।
1: मेहरबानी किस पे मटके की हुई,
0: मेहरबानी किस पे मटके की हुई, आज जाने कौन सा नंबर खुला। और ये शेर भी मुलाहिजा करें, जीती कुश्ती हार बैठा हूँ मियां, लड़ते लड़ते जब मेरा लंगर खुला। जीती कुश्ती, जीती कुश्ती हार बैठा हूँ मियां,
2: लड़ते लड़ते
0: लड़ते लड़ते जब मेरा लंगर खुला। और आखिरी शेर के, इतना कपड़ा था दबाव में जनाब,
1: इतना कपड़ा था दबाव में जनाब,
0: इतना कपड़ा था दबाव में जनाब, बन गई पतलून जब नेकर खुला।
1: वाह वाह वाह।
0: इतना कपड़ा था दबाव में जनाब, बन गई पतलून जब नेकर खुला।
2: वाह क्या काफिला है नेकर।
0: शुक्रिया। कैद से बीवी की जब शोहर खुला, उछला यूं जैसे कोई बंदर खुला।
2: वाह वाह।
1: बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत।
0: बस इतनी बात पर के तरन्नुम है शानदार।
2: वाह।
1: बस इतनी बात पर
2: के तरन्नुम है,
0: बस इतनी बात पर के तरन्नुम है शानदार, गीत और गजल रटाए गए उनको बेशुमार।
2: वाह। गीत और गजल,
0: बस इतनी बात पर के तरन्नुम है शानदार, गीत और गजल रटाए गए उनको बेशुमार, और महफिल की जान हो गए शायर वो बावकार, लेते हैं एक मुशायरा पढ़ने के 10,000। हालांकि रिश्तेदार थे वो एक सुनार के, शायर बना दिया है उन्हें मार मार के।
2: हालांकि रिश्तेदार थे
0: वो एक सुनार के, शायर बना दिया है उन्हें मार मार
2: मार मार मार। वाह।
0: दूसरा बंद मुलाहिज़ा फरमाए
2: इरशाद,
0: कि मुझको यकीन है मेरी ना होगी खता बड़ी।
2: मुझको यकीन है,
0: मुझको यकीन है मेरी ना होगी खता बड़ी, तस्लीम कर ले जा मेरी अपनी खता बड़ी।
2: वाह।
0: मुझको यकीन है मेरी ना होगी खता बड़ी, तस्लीम कर ले जा मेरी अपनी खता बड़ी, या फिर किसी से पूछ है किसकी खता बड़ी।
2: वाह।
0: तेरी खता बड़ी है कि मेरी खता बड़ी, बड़ी।
1: क्या बात।
0: मैंने तो सिर्फ झूठा तेरा गाल कर दिया।
2: वाह।
0: और तूने तो मार मार के मुंह लाल कर दिया।
1: वाह। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।
2: मार मार के मुंह लाल कर,
0: मैंने तो सिर्फ झूठा तेरा गाल कर दिया।
2: वाह।
0: तूने तो मार मार के मुंह लाल कर दिया।
2: वाह वाह वाह।
1: बहुत उम्दा।
0: एक कथा पेश कर रहा हूँ, तजमीन है कि एक उल्लू ये बोला इंसान से,
1: एक उल्लू ये
0: इंसान से, छोड़ दे मेरा पीछा बदजाती।
2: वाह।
0: एक उल्लू ये बोला इंसान से, छोड़ दे मेरा पीछा बदजाती।
2: वाह।
0: मरते दम तक नहीं बताऊंगा नींद क्यों रात भर नहीं आती।
1: वाह वाह।
0: एक उल्लू ये बोला इंसान से, छोड़ दे मेरा पीछा बदजाती।
2: वाह।
0: मरते दम तक नहीं बताऊंगा।
2: बहुत हुआ।
0: और चार मिसरे पेश कर रहा हूँ,
2: अता कीजिए।
0: किस लिए हूँ मैं इतना परेशान,
1: आज
0: सबको बताना पड़ा है, उनके पीछे मैं जब से पड़ा हूँ, मेरे पीछे जमाना पड़ा हूँ मैं इतना परेशान।
1: वाह।
0: आज सबको बताना पड़ा है, उनके पीछे मैं जब से पड़ा हूँ, मेरे पीछे जमाना पड़ा है।
2: वाह वाह वाह।
0: एक नज्म है, ऐसा कोई कलाम हो तंजो मिजाह में, ऐसा कोई कलाम हो तंजो मिजाह में, अपना भी थोड़ा नाम हो तंजो मिजाह में।
1: बहुत अच्छा।
0: ऐसा कोई कलाम हो तंजो मिजाह में, अपना भी थोड़ा नाम हो तंज। इलाहाबाद के अकबर नहीं है हम, फिर भी खुदाए पाक दे ऐसा हमें कलम।
2: वाह वाह।
0: आ जाए बूम सा मेरी गजलों में कुछ असर, ये सोच सोच कर किए मेरठ के भी सफर। वो कह कहे कलाम में फिर भी ना आए हैं, वो कह कहे कलाम में फिर भी ना आए हैं, जा जा के लखनऊ के ही माचिस जलाए हैं।
2: वाह। माचिस
0: आए हैं।
1: बहुत अच्छा।
0: जा जा के लखनऊ के ही माचिस जलाए हैं।
2: बहुत हो।
0: और दुनियाए फन में ऐसा ही कुछ काम हो मेरा, दुनियाए फन में ऐसा ही कुछ काम हो मेरा, अहमक फपूंद वी की तरह नाम हो मेरा, और बेतुक मजाक ये नहीं है मेरी इल्तिजा, कर दे जरीफ जैसी जराफत मुझे अता।
2: वाह वाह।
0: बेतुक मजाक ये नहीं।
1: बहुत अच्छा है।
0: और जितने भी शेर कहने थे बोगस में कह चुका।
2: वाह वाह।
0: जितने भी शेर कहने थे बोगस में कह चुका, फिर भी गुमान ये है कि चौकस में कह चुका, रहता हूँ फिक्र शेर में पीकर सिगार में।
2: वाह।
0: हसरत है बन ही जाऊं दिलावर फिगार में।
2: वाह वाह।
0: रहता हूँ फिक्र शेर में पीकर सिगार में, हसरत है बन ही जाऊं दिलावर फिगार में, ये सोचता हूँ साजे जराफत को देखकर, अपना लू मैं भी हजरत शहबाज की डगर।
2: वाह वाह।
0: शेरो सुखन का एक सरापा बना के रख।
2: वाह।
0: शेरो सुखन का एक सरापा बना के रख, यूसुफ की तरह मुझको भी पापा बना के रख। जादू बया में फिक्र में असगर में पीता रहता हूँ भर भर के सुबह शाम।
2: वाह वाह।
0: नाजिर की तरह जीतू सभी सामयी का दिल, आदिल की तरह ऐसी चलाऊ में साइकिल।
2: वाह वाह।
0: नाजिर की तरह जीत की तरह ऐसी चलाऊ में साइकिल, छा छा के शेर मैं पढ़ूं यलगार की तरह, सोचों में तंज पा रहे हूं असरार की तरह। शिकवा जबां पे है ये दिले बेकरार का। शिकवा जबां पे है ये दिले बेकरार का, डर है के बन न जाऊं मैं बाजिग बिहार का। डर है के बन न जाऊं मैं बाजिग बिहार का, और जीरो से हीरो बनने के निकले कोई तो राह।
2: जीरो से हीरो बनने,
0: जीरो से हीरो बनने के निकले कोई तो राह। जीरो से हीरो बनने के निकले कोई तो राह, दिल में ख्याल आ गया बस यूं ही ख्वाब खा, और कुछ इस तरह के तंज के तेवर दिखाऊं मैं,
2: कुछ इस तरह
0: दिखाऊं मैं, अलवी की तरह खूब तमाचे उड़ाऊं मैं।
2: वाह वाह।
0: कुछ इस तरह से तंज के तेवर दिखाऊं मैं, अलवी की तरह खूब तमाचे उड़ाऊं मैं, राजा करे के हर एक मुशायरे में पढ़ूं शेर मोतबर, मोहम्मल कलाम पढ़ के ना हो जाऊं पॉपुलर।
2: वाह वाह।
0: हर एक मुशायरे में पढ़ूं शेर मोतबर,
1: बहुत अच्छा,
0: मोहम्मल कमाल नश्तर चलाऊं दिल पे गजल जब भी मैं पढ़ूं।
2: वाह
1: वाह।
0: निश्तर पढ़ाऊं, निश्तर चलाऊं दिल पे गजल जब भी मैं पढ़ूं, तेरी रजा जो हो तो रजी की तरह बनूं।
2: वाह वाह।
0: और तेरी रजा जो हो तो रजी की तरह बनूं, और दिलकश ख्याल अच्छी हजल अच्छा हो कलाम।
2: वाह वाह।
0: दिलकश ख्याल अच्छी हजल अच्छा हो कलाम।
2: वाह।
0: दिलकश ख्याल अच्छी हजल अच्छा हो कलाम, रुस्तम की शायरी को तो बस दूर से सलाम, और झंझट की झंझटी से रहूं दूर मैं सदा, दूर मैं सदा, गड़बड़ की गड़बड़ी से बचा ले मुझे खुदा। झंझट की झंझटी से रहूं दूर मैं सदा, गड़बड़ की गड़बड़ी से बचा ले मुझे खुदा, जलवा इनायतों का मुझे भी दिखा कभी, फेमस की तरह भारी और भरकम बना कभी।
2: फेमस की तरह भारी,
0: जलवा इनायतों का मुझे भी दिखा कभी, फेमस की तरह, शेरों में जान है न तरन्नुम है काम का।
2: वाह।
0: शेरों में जान है न तरन्नुम है काम का, उससे परे ही रखियो जो सुंदर है नाम का।
2: वाह।
0: उससे परे ही रखियो जो सुंदर है नाम का,
2: सुंदर है नाम का।
0: एक मैं के सोचता हूँ कि आए हुनर सभी।
2: वाह।
0: एक मैं के सोचता हूँ कि आए हुनर सभी, एक वो कलीम कहते हैं जिसको समर सभी। तो दिला मुशायरे अब तो मुझे नवाज, मुझको भी हो अता कोई उड़ता हुआ जहाज।
2: वाह।
3: सामईन, अभी आप नवाए शायर के तहत सुन रहे थे जनाब इकबाल फिरदौसी से उनका मजाहिया कलाम। तो सामईन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अक्से अदब। तो इसी के साथ अपने मेज़बान फरहीन इकबाल को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में कई

0: संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने संबंधों का विस्तार करेंगे।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो चुका है।
1: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। हमने भारत आसियान ट्रेड एग्रीमेंट आईटीगा को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। श्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वियतनाम की राष्ट्रपति तो लाम की यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी और अटूट मित्रता को दर्शाती है। श्री पुरी ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों का परिचायक है। श्री लाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित औपचारिक स्वागत समारोह में भी शामिल हुए। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक के बाद विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा कर सकते हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने आज गुवाहाटी में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया। राज्य में अब नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। वहीं तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके को सरकार बनाने के लिए 10 और सदस्यों की जरूरत है। कांग्रेस के 5 विधायकों ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सी जोसेफ विजय आज राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। केरलम यूडीएफ गठबंधन सरकार गठन को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है। कांग्रेस पहले मुख्यमंत्री का चयन करेगी, इसके बाद आगे की चर्चा होगी। भारत और यूरोपीय संघ ने भारत यूरोपीय ऊर्जा व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद कार्य समूह 2 के अंतर्गत ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए 169 करोड़ रुपए की संयुक्त पहल शुरू की है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा है कि ये पहल ऊर्जा रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स ने 40 दृष्टिबाधित व्यक्तियों को एआई वाले स्मार्ट विजन चश्मे वितरित किए हैं। इससे वे ध्वनि के माध्यम से अपने आसपास के वातावरण को समझ सकेंगे। प्रत्येक चश्मे की कीमत लगभग 35,000 रुपए है। इन्हें निःशुल्क प्रदान किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर और निफ्टी 298 अंक बढ़कर 24,331 पर बंद हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा होने की आशंका व्यक्त की है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी राजस्थान, चंडीगढ़ और दिल्ली में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. India and Vietnam today inked several MOUs in the fields of digital technology, rare earths, medical products regulation, public sector audit, digital payment system, and culture and tourism. The agreements were signed following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and President

0: of Vietnam to Lam in New Delhi this afternoon. During the talks, both the leaders held wide-ranging discussions across the spectrum of bilateral relations. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two countries today decided to elevate bilateral ties to enhanced comprehensive strategic partnership.
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। फ्रेंड्स, भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर $16 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $25 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
0: मिस्टर मोदी सेड इंडियाज एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड एनिमल प्रोडक्ट्स विल आल्सो सी स्मूथर एक्सपोर्ट्स टू वियतनाम। He said to boost financial connectivity, today both sides have decided to enhance cooperation between the central banks. The Prime Minister said India's UPI and Vietnam's fast payment system are also going to be linked soon. He said both sides share a common outlook in the Indo-Pacific region as well. Mr. Modi said India is grateful to Vietnam for strongly condemning the Pahalgam terror attack and standing with the people of India in the fight against terrorism. President Thu Lam said that Vietnam attaches great importance to the outcome of 50 years of relations with India, as well as 10 years of the comprehensive strategic partnership. The government has informed that domestic LPG distribution across the country is normal and no dry out has been reported at any LPG distributor. During the interministerial media briefing in New Delhi, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, informed that amidst the West Asia crisis, the government is making all-out efforts to ensure 100% supply of domestic LPG to the consumers for cooking and up to 70% to consumers of commercial cylinders. With regard to natural gas, the Joint Secretary informed that about 6,31,000 new PNG connections have been gasified and infrastructure has also been created for an additional 2.67 lakh connections. She said so far 6,93,000 consumers are registered for PNG connections. Director in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma has said that all Indian seafarers continue to remain safe in the region, with no incidents involving Indian-flagged vessels reported in the past 48 hours. India and the European Union have launched a 169 crore rupee joint initiative to strengthen EV battery recycling capacity under the Inter-EU Trade and Technology Council Working Group 2. Principal Scientific Advisor to the Government of India, Ajay Kumar Sood, said this launch is a pivotal moment in the India-EU strategic partnership. In Tamil Nadu, political parlays to form a new government under Tamaraga Vetri Karagam or TVK founder C. Joseph Vijay has intensified as his party is short of the majority figure of 118. Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar reached Chennai from Kerala this afternoon. Interacting with media, he said that he had received an email stating that TVK, which has won 108 constituencies, has sought an appointment with him. Party had also requested 2 weeks to prove its majority in the letter. The governor added that after receiving the formal letter staking claim to form the government, he will take a decision within a day or two on inviting TVK to form the government. In another development, a section of elected MLAs from AIADMK wants the party leadership to support TVK. Congress, which has 5 MLAs, has decided to support TVK. And benchmark domestic equity indices surged over 1% today amid hopes of de-escalation in West Asia. BSE Sensex climbed 941 points to close at 77,959. Nifty rose 298 points to settle at 24,331. And that is the end of this news bulletin.
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 4:10 और पूरे 20 सेकंड हुए हैं। लीजिए सुनते हैं गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी। खोए हुए व्यक्ति का नाम है आशा गौतम। पुत्री स्वर्गीय श्री मदन सिंह। ये 26 मार्च 2026 को घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनकी उम्र 27 वर्ष है, कद 162 सेंटीमीटर, इनके होठ के नीचे तिल है। इनके बारे में कोई भी सूचना अगर आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं प्रभारी निरीक्षक थाना लोनी बॉर्डर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद से। इनके विषय में कोई भी सूचना देने पर 2000 रुपये की पुरस्कार राशि रखी गई है। अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है पूनम, पत्नी अजय, उम्र 34 वर्ष, शरीर की बनावट पतली, कद 5 फीट, इनके नाक पर तिल है। इनके बारे में कोई भी सूचना अगर आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं उपनिरीक्षक नीरज कुमार थाना लोनी गाजियाबाद से। सूचना के लिए आप मोबाइल फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं, मोबाइल नंबर है 8755091004। नंबर एक बार फिर से नोट करें, 8755091004। अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है सीमा शर्मा। इनके विषय में सूचना दी है लक्की तुली ने, जो कि पुत्र हैं विजय तुली के, निवासी ज्वालानगर मेरठ से। गुमशुदा व्यक्ति की उम्र है 34 वर्ष, बाल काले, चेहरा गोल, रंग गेहुआ, शरीर की बनावट औसत है। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं थाना टीपी नगर जनपद मेरठ से। अगली गुमशुदा व्यक्ति हैं श्रीमती सीमा, पत्नी रोहित, निवासी बहसुमा मेरठ, उम्र 35 वर्ष, कद 5 फीट 6 इंच, लंबे काले बाल, शरीर की बनावट सामान्य, आंखें गोल और काले रंग की, रंग गेहुआ, इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। संतरी रंग के सूट सलवार इन्होंने पहने हुए हैं और पैरों में चप्पल है। इनके विषय में अगर आपको कोई भी सूचना मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं प्रतिभा सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना बहसुमा मेरठ। अगले गुमशुदा व्यक्ति हैं रजत, पुत्र श्री सुनील, निवासी सेक्टर 1, शताब्दी नगर, निकट स्वामी विवेकानंद स्कूल, रिझानी थाना परतापुर मेरठ। गुमशुदा व्यक्ति की उम्र 12 वर्ष है, कद 5 फीट, चेहरा सामान्य, इकहरा बदन, आँख नाक कान औसत, बाल काले, रंग गेहुआ। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं अजय शुक्ला, थाना अध्यक्ष थाना परतापुर मेरठ से। अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है शगुफ्ता, पत्नी अनीस, निवासी दुर्गा कॉलोनी, कस्बा परीक्षितगढ़ से। इनकी उम्र 14 वर्ष है, कद 5 फीट है, आँखों का रंग काला, बाल काले, शरीर की बनावट औसत और रंग गोरा है। इनके चेहरे पर तिल है, सलवार सूट इन्होंने पहना हुआ है, काले रंग का बैग इनके पास में है। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं।

सुधीश सिंह थानाध्यक्ष थाना परीक्षितगढ़ मेरठ से। अगले गुमशुदा व्यक्ति हैं नेहा पुत्री सतीश निवासी ग्राम सैफपुर फिरोजपुर थाना भैसूमा। इनका रंग गेहुआ है, उम्र 17 वर्ष, बाल काले, कद 5 फीट 2 इंच, चेहरा पतला, इकहरा बदन। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। प्रतिभा सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना भैसूमा जनपद मेरठ से। अगली गुमशुदा व्यक्ति हैं अनुष्का पुत्री अमरीका निवासी ग्राम सैदा थाना चकरभाता जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़। उम्र 15 वर्ष, कद 5 फीट, चेहरा गोल, बालों का रंग काला, आंखें काली, रंग सांवला, लाल रंग की टी शर्ट और लाल रंग का लोवर इन्होंने पहना हुआ है। इनके विषय में कोई भी सूचना अगर आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के लिए आप थाना सदर बाजार मेरठ से संपर्क कर सकते हैं।

0: अभी आपने सुनी गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए सुनते हैं आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 4:20 पर आप सुन सकेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज। शाम 4:30 पर सुनेंगे देश विदेश की खबरों को समेटे हुए कार्यक्रम परिक्रमा। 5:10 पर लोक संगीत का कार्यक्रम होगा, जिसमें आप सुन सकेंगे लोक संगीत कार्यक्रम है लोकरंजनी। 5:30 पर होगा दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। 6:10 पर आप सुन सकेंगे हिंदी वार्ता, भेंट वार्ता, सोशल मीडिया और संबंधों का मनोविज्ञान। बातचीत होगी डॉक्टर लोकेश सिंह शेखावत से, संतोष द्विवेदी मनुज की बातचीत। 6:30 पर वक्त होता है कार्यक्रम ग्राम संसार का। 7:05 पर होगा कार्यक्रम कृषि जगत और 7:30 पर वक्त होता है गजल और कव्वाली के कार्यक्रम का। अभी आप सुन रहे थे आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 4:20 होने को हैं, लीजिए सुनते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज।
2: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel, and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with
3: the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, Government of India, Ministry of Personnel, Public

0: पटना उच्च न्यायालय में कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट समूह सी के 48 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रहेगी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक, कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम 6 माह का डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र तथा टाइपिंग दक्षता। प्रमाण पत्र अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 17 अप्रैल 2026 थी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 16 मई 2026 और ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 19 मई 2026। विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए पटना उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। वरिष्ठ पब्लिक प्रोसिक्यूटर कुल 7 पद तथा पब्लिक प्रोसिक्यूटर कुल 14 पद। योग्यता, अनुभव एवं पात्रता शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.nia.gov.in। CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहट असम इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। मल्टीटास्किंग स्टाफ कुल 9 पद, ड्राइवर गैर तकनीकी 1 पद। विस्तृत विज्ञापन के लिए आप देख सकते हैं संस्थान की वेबसाइट www.neist.res.in। भारत सरकार का उद्यम आयुध निर्माणी देहू रोड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। कार्यकाल आधारित ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं यदि आपके पास मैकेनिकल तथा केमिकल क्षेत्रों में डिग्री और डिप्लोमा उपलब्ध है। मैकेनिकल के लिए कुल पदों की संख्या 7 है जबकि केमिकल के लिए पदों की संख्या 6 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट munitionsindia.in/career अथवा ddpdoo.gov.in पर जाकर करियर टैब के अंतर्गत देखिए OF देहू रोड। रावी एवं व्यास जल अधिकरण कोर्ट मास्टर के 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट jalshakti-dowr.gov.in। नेशनल बाल भवन कोटला रोड दिल्ली आमंत्रित कर रहा है सहायक लेखा अधिकारी के 1 पद के लिए आवेदन। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.nationalbalbhavan.nic.in। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन निदेशक नेशनल बाल भवन कोटला रोड नई दिल्ली 110002 को भेजे जाने चाहिए। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इंजीनियरिंग विभाग केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आमंत्रित कर रहा है अधीक्षण अभियंता सिविल के 1 पद के लिए आवेदन। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट chandigarh.gov.in/public-notice। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।

0: शाम ढली तो यादों के दिए जल उठे, दिल के सन्नाटे में कुछ किस्से पल उठे।
1: यादें माजी आजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफसा मेरा। जो बरसों से भुलाया जा रहा है वही क्यों याद आ रहा है फरहत? आई थिंक सो इट एक्चुअली होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी रियली नेवर ह्यूमंस नेवर रियली फॉरगेट एनीथिंग। वी जस्ट ट्राई टू काइंड ऑफ यू नो कवर इट अप विद द अदर थिंग्स, अपने आप को आप मसरूफ़ कर लेते हैं। लेकिन चाहे वो आपका पुराना घर हो या आपके पेरेंट्स जो आपके साथ अब नहीं हैं या कोई बिछड़ा हुआ प्यार, यू रियली नेवर फॉरगेट एनीथिंग।
0: बिल्कुल सारा, फिर तो सुवर मुझे माजी में लिए जा रहा है, दर्द दिल दर्द जिगर ताज़ा हुआ जा रहा है। तो कुछ ऐसी ही होती है शाम जब हम कुछ याद करते हैं और माजी में चले जाते हैं तो जो यादों के पन्ने हैं वो अपने आप ही खुलने लगते हैं।
1: दैट्स राइट। लेकिन पता है फरहत, बहुत से राइटर्स दे एक्चुअली आर्ग्यू दैट देयर इज नथिंग लाइक प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बिकॉज ऑल दीज फेजेस ऑफ लाइफ वेदर यू नो वी आर दे ऑलवेज लिविंग विद अस इन द प्रेजेंट मोमेंट। कई बार बैठे बैठे अगर चाय पी रही हैं आपको, कब जो है मम्मी के साथ चाय पीना याद आ जाए तो आप फॉरन माजी में पहुंच जाती है। सो देर इज नो यू कैन से द बॉर्डर्स आर वेरी फ्लूड बिटवीन ऑल दीज थ्री फेजेस।
0: बिल्कुल सारा, क्योंकि यादों को समेटना बहुत ही मुश्किल होता है और वो कभी भी कहीं भी किसी मोड़ पर आ जाती हैं।
1: दैट्स राइट। बट हम लोग परिक्रमा में माजी की नहीं अपने आज की बात करेंगे बिकॉज हम लोग लाते हैं ताज़ा तरीन खबरें। एंड ऑफकोर्स अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस दिस इज द शो विच इज कॉल्ड परिक्रमा, तो हज़्ब दस्तूर वील डू द परिक्रमा ऑफ द कंट्री। विल गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सी वॉट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैव फ्रॉम देयर। ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट रफली हाफ एन आवर। Why not start with the headlines first?
0: जी बिल्कुल सारा, सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं मुख्य समाचारों से। तो सबसे पहले पीएम की खबर सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है आज वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात की।
1: That's right. Prime Minister Modi holds talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi. Several MOUs exchanged in the fields of digital technology, rare earth, medical products regulations.
0: Tamil Nadu में TVK party के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज।
1: Assam Chief Minister Hemant Biswa Sarma tenders resignation. Swearing in ceremony of the new government to take place after 11th of May.
0: भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया।
1: आईएमडी फोरकास्ट हैवी रेनफॉल ओवर असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु एंड पुदुचेरी टुडे।
0: और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। तो श्रोताओं आइए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। और अब बात डेडलाइन इंडिया की।
1: That's right, and in our segment Dateline India, we take a look at the developments that take place at the national or global level. And today we're going to talk about Mission for Cotton Productivity.
0: खैर, हम सब सभी जानते हैं कि हमारा पसंदीदा कॉटन शर्ट हो या फिर कॉटन कुर्ती की यात्रा किसी शॉपिंग मॉल से शुरू नहीं होती, यहाँ तक कि किसी फैक्ट्री से भी नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत भारत की मिट्टी से होती है। और आज ये यात्रा कुछ इस तरह से बदल रही है जो दुनिया के भारत के कॉटन को देखने के नजरियों को पूरी तरह से बदल सकती है।
1: That's right, Farhad. So let's talk about something very important because it connects the lives of farmers, workers, exporters and all of us. The government of India has launched a 5,659 crore rupees Mission for Cotton Productivity, which is aimed at making India self-reliant in cotton and globally competitive by 2030-31. But the question is, why cotton?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि कपास केवल एक फसल ही नहीं है बल्कि ये भारत की कपड़ा अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ है। ये गांवों को वैश्विक बाजारों से जोड़ती है। लेकिन हमारे श्रोता शायद ये सोच रहे होंगे कि अगर भारत पहले से ही कपास के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है तो फिर हमें इस तरह के किसी मिशन की जरूरत आखिर क्यों है?
1: Well, the reason lies in the challenges we've been facing, such as falling productivity, pest attacks, and concerns around quality. And rather than letting these issues grow, India is choosing to confront them with intent.
0: Saira, to zameeni star par kya badlega? Aaiye is tarah samajhte hain ki jo ekdam asli lage. Maharashtra ki ek kisan ki kalpana kijiye. Pehle kiton ke achanak hamle aur kam paidawar wale bijon ki wajah se uski aamdani anishchit rehti thi. Ab use zyada paidawar dene wale jalvayu ke hisab se mazboot aur kiton ka muqabla karne wale beej mil rahe hain.
1: Well, that actually means more output, better income and less stress for the farmer. And that's not all. To make farming smarter and not harder,

0: Techniques such as high-density planting systems and better crop management, yields are set to improve noticeably. This goes far beyond the traditional way of farming.
1: और अब आइए खेतों से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अतीत में चलते हैं और कपास प्रोसेसिंग यूनिट्स में गुणवत्ता का एक जैसा ना होना अक्सर वैश्विक मांग पर असर डालता है। आधुनिक जिनिंग फैक्ट्रियों और बेहतर टेस्टिंग सुविधाओं के साथ भारतीय कपास अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए तैयार है।
0: And the real highlight for her of this story unfolds when Indian cotton earns its place as a global brand. That's the idea behind Kasturi Cotton Bharat, to create cotton that is premium, traceable and trusted internationally. That will not just be a cotton but a signature of quality.
1: जी सायरा, और अगर हम सोचें कि इन सबसे फायदा किसे होता है तो ये सिर्फ किसी एक समूह को नहीं होता है, हम आपको बता दें, बल्कि लगभग 32 लाख किसानों को सीधे तौर पर फायदा होने की उम्मीद है और अप्रत्यक्ष रूप से इसका असर बहुत व्यापक है। पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की अगर बात की जाए, या फिर कपड़ा उद्योगों की, या फिर निर्यात बाजारों तक, साथ ही कपास के कचरे की रिसाइकलिंग और बांस और सन जैसे टिकाऊ रेशे को बढ़ावा देने से पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा और इसीलिए ये कोई अंधाधुंध विकास नहीं है बल्कि ये असल में एक जिम्मेदार प्रगति है।
0: That's right, Farhad. The mission will be implemented by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and the Ministry of Textiles, involving 10 institutes of Indian Council of Agricultural Research, 1 Institute of Council for Scientific and Industrial Research, and 10 centers of All India Coordinated Research Project on Cotton, operating in different state agricultural universities of major cotton growing states.
1: और अब इस प्रोसेस की बात कर लेते हैं, इस योजना में क्या क्या किया जाएगा। शुरुआत में 14 राज्यों के 140 जिलों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए राज्य कृषि विभाग और ICAR की मदद से टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा और 2000 जीनिंग प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां इससे स्थापित की जाएंगी। अब यहाँ एक ऐसा जबरदस्त विजन है जिस पर गौर करना जरूरी है। भारत का लक्ष्य कपास की उत्पादकता को 440 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 755 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंचाना है और ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और उत्पादन के 498 लाख गांठों तक पहुंचने की उम्मीद है। ये कपास के क्षेत्र में सच्ची आत्मनिर्भरता की दिशा में एक स्पष्ट कदम है।
0: Well, Farhad, the mission also aligns with the 5F vision. And if you're thinking, listeners, what is the 5F vision? Well, it's farm to fiber, to factory, to fashion, to foreign. So it's not just a slogan, Farhad. It's a complete story of value creation. From the farmer's field to the global fashion runway. Next time we reach for a cotton outfit in dazzling shopping mall, do let a thought cross your mind about the journey that this outfit took, the lives that it touched, and how is India reshaping that journey today?
1: बिल्कुल सारा, क्योंकि ये सफर यकीनन कपास से कहीं आगे तक जाता है और ये हमारे आत्मविश्वास को दर्शाता है, ये हमारी क्षमता को दिखाता है और ये कैसे देश की कहानी कहता है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी ताकत तलाश रहा है।
0: And maybe the most important question is that if this is what's happening in one sector, what does the future of India truly looks like?
1: बिल्कुल, और हम भी उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से ये एक ऐसा भविष्य जो अधिक मजबूत होगा, अधिक समझदार होगा और गर्व से आत्मनिर्भर होगा।
0: And to make a very important announcement, Farhad, as part of our series People's Padma on Akashvani, in our upcoming episode, we speak to Shiva Shankari, an eminent writer. She'll be honored with the prestigious Padma Shri.

0: और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर।
1: उससे
0: और
1: पहले हम बता दें कि फरहत, ये जो
0: जी
1: जितने भी पद्म अवॉर्डीज हैं, व्हेन वी लिसन टू देम वी रियली गेट
0: हाँ, समय बताना
1: इंस्पायर्ड।
0: बहुत ही जरूरी है, मैं भूल गई थी कुछ समय जो है, ताकि हमारे जो लिसनर्स हैं वो
1: यस,
0: हमसे जुड़ सकें।
1: सो इन ऑर्डर टू लिसन टू द फुल कॉन्वर्सेशन प्लीज ट्यून इन टू 100.1 आकाशवाणी गोल टुडे एंड लाइक यू नो
0: जी
1: एट 5:10 PM, दैट इज 10 मिनट्स आफ्टर परिक्रमा, एंड यू कैन लिसन टू इट ऑन न्यूज ऑन AR app as well, also on our YouTube channel News on AR Official. It will also be broadcast tomorrow morning at 9:10 AM.
0: तो चलिए, सारा ने कार्यक्रम का समय तो बता दिया है, और अब रुक कर लेते हैं हमारे क्षेत्रीय संवाददाताओं का, जहां वो जानकारी देंगे उनके पास क्या है विशेष।
1: एंड वी आर स्टार्टिंग अप परिक्रमा जर्नी विद माय favorite state, Farhad. We are starting our journey from Goa. Well, turning rural youth into skilled professionals was the focus of a major regional summit in Panaji, with states coming together to refine training and placement. We have a report on the latest push for rural employment.
2: A two-day regional workshop concluded yesterday in Goa, focusing on the second phase of two major national initiatives, the Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushalya Yojana and Rural Self-Employment Training Institute. These programs, known as DDU-GKY and RACTI, are designed to bridge the gap between rural talent and the modern job market. DDU-GKY acts as a placement-linked training scheme where youth learn specific trades for corporate jobs, while RACTI focuses on creating entrepreneurs through district level training centers. Representatives from eight states, including Uttar Pradesh and Bihar, met to coordinate action plans and improve training quality. Rajya Sabha member Sadanand Tanawade emphasized that strong cooperation between government and the industry is vital for rural development. Officials also reviewed the Management Information System, or MIS, which is the digital platform used to track student progress and financial management. The gathering aimed to ensure that rural training programs align with the national goal of a developed India by 2047. फॉर परिक्रमा निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी न्यूज, पणजी।
0: चलिए सर, अब आपको चिड़ियाघर की सैर करवाते हैं।
1: अच्छा, चिड़ियाघर चलिए।
0: नहीं,
1: कौन से, किस राज्य के चिड़ियाघर
0: जी? हम पटना जा रहे हैं सीधा। राजधानी पटना के चिड़ियाघर में अब पर्यटकों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी, और यहाँ जल्द ही आगंतुकों को ट्री टॉप वॉकवे जैसी खास पहल देखने को मिलेगी। तो क्या है ये पहल, आइए जानते हैं।
3: पटना चिड़ियाघर अब पर्यटकों के लिए और भी आकर्षक बनने जा रहा है। यहां जल्द ही कदमों के नीचे ही नहीं बल्कि पेड़ों की ऊंचाइयों पर भी रास्ते होंगे, जहां इंसान प्रकृति के और करीब होगा। पटना चिड़ियाघर के निदेशक हेमंत पाटिल कहते हैं कि पर्यटक यहां जल्द ही टॉय ट्रेन और ट्री टॉप वॉकवे जैसी खास पहल का आनंद उठा सकेंगे। वे बताते हैं कि वॉकवे के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजा गया है।
4: देखिए, पटना जो है देश का इकलौता ऐसा जो है जहां पे 80% से ज्यादा हरियाली उपलब्ध है, तो ये तो हम लोग जैसे नीचे घूमते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है। बट जो हम लोग जैसे देखेंगे गेट संख्या 1 से 2 के बीच में कुसुम का एक अच्छा से लाइन लगा हुआ है, उसमें जो पेड़ के ऊपर की जो एक इकोसिस्टम रहती है वो अगर बच्चों को देखनी है तो उसके लिए ट्री टॉप वॉक जो है एक अनोखा पहल होगा। इसके ऊपर वर्तमान हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक फॉक महोदय एवं शासी निकाय के जो भी सदस्य थे, इनके ऊपर गहन चर्चा हुई और इसी के मद्देनजर ट्री टॉप वॉक का निर्माण का एक प्रस्ताव है, ताकि बच्चों को ये अलग एहसास महसूस हो कि एक ट्री के टॉप में क्या इकोसिस्टम रहती है, किस प्रकार के जीव जंतु रहते हैं।

0: बचते हैं। साथ ही नेचर लाइब्रेरी की खामोशी, 3D थिएटर की रोशनी और जल उद्यान की ठंडक मिलकर इस चिड़ियाघर में अनुभवों का एक खूबसूरत संसार बनाते हैं। उम्मीद है कि ये नए कदम पटना जू में सिर्फ सुविधाओं में इजाफा ही नहीं करेंगे बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच एक नया रिश्ता भी गढ़ेंगे। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: So Farhat, the tree top walkway in Patna Zoo, it really sounds intriguing. So, but let's move on to another place. And now we are heading up north to Ladakh. Well, in Leh district of Union Territory of Ladakh, vibrant cultural evening yesterday highlighted the fourth day of Sacred Relics Exposition. The cultural evenings are being organized at the main market in Leh, drawing audiences across sections of the society. Let's hear more from our correspondent.
2: The fourth day of the sacred exposition of the holy relics of Lord Buddha in the Union Territory of Ladakh was marked by a vibrant cultural evening showcasing a diverse range of performances from across the country along with local artistic traditions. The evening is being organized by the administration of UT Ladakh in collaboration with the Ministry of Culture, Government of India and the North Zone Cultural Center, Patiala, and is scheduled to continue till May 13, 2026. The last evening commenced with a welcome and the introductory address, followed by a presentation of Larna, highlighting aspects of Ladakh's cultural heritage. The program then featured a performance by Gyamiru artists presenting their traditional Chapshkyang song and dance. Cultural troupes from Orissa and Gujarat presented a series of performances reflecting the rich diversity of regional dance and music traditions. The performances were interspersed through the evening, ensuring a balanced and engaging program flow. The LECS Cultural group presented the Spau dance, adding a distinct local cultural element to the evening. A Ladakhi folk song performances by local artists were among the highlights, receiving an appreciative response from the audience. The cultural evenings being held daily as part of the exposition continue to attract participation from residents, visitors, tourists and officials, reflecting the blend of spiritual significance and cultural outreach associated with the Sacred Relics Exposition. For Parikrama, this is Rigzanangmo from
3: और सारा, अब सरकारी अस्पतालों की बात कर लेते हैं। वहाँ पर रक्तदान शिविर का जो है वो महत्व बताया गया है और इसके अलावा डेंगू रोगियों के लिए निःशुल्क सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की व्यवस्था भी की जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में डेंगू रोगियों के लिए निःशुल्क सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की शुरुआत करने वाला हरियाणा उत्तरी क्षेत्र में पहला राज्य बन गया है। कुरुक्षेत्र के लाडवा में केंद्रीय ऊर्जा और आवासन मंत्री श्री मनोहर लाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित रक्तदान शिविर में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने ये जानकारी दी और उन्होंने बताया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, ऐसा हमारा शास्त्रों में कहा गया है। रक्तदान इसी भावना का सर्वोच्च उदाहरण है और जब कोई व्यक्ति अपने रक्त का दान करता है तो वो न केवल एक जीवन को बचाता है बल्कि उस परिवार को भी खुशियों से भर देता है जो अपने प्रियजन को खोने के कगार पर होता है। और उन्होंने कहा है कि आज विज्ञान ने अद्भुत प्रगति कर ली है, हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं और नई नई तकनीकों का आविष्कार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज रक्त की जरूरत तेजी से बढ़ रही है, चाहे वो किसी दुर्घटना का शिकार व्यक्ति हो या फिर कैंसर से।
4: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज विज्ञान ने अद्भुत प्रगति कर ली है, हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं और नई नई तकनीकों का आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन आज भी रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प उपलब्ध नहीं है। इसका अर्थ ये है कि एक इंसान ही दूसरे इंसान के जीवन का सहारा बन सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज रक्त की आवश्यकता तेजी से बढ़ी है, चाहे वह किसी दुर्घटना का शिकार व्यक्ति हो, कैंसर से जूझ रहा मरीज, सर्जरी से गुजर रहा कोई व्यक्ति हो या फिर थैलेसीमिया और हीमोफीलिया जैसे रोगों से पीड़ित बच्चे, इन सभी के लिए रक्त जीवन का आधार है। आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में हर 2 सेकंड में किसी न किसी व्यक्ति को रक्त की जरूरत पड़ती है और अस्पताल में भर्ती हर 10 में से 1 मरीज को खून की जरूरत होती है। ये एक गंभीर स्थिति है जो हम सभी से सामूहिक प्रयास की मांग करती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कुल 154 रक्त केंद्र हैं। सरकार ने पिछले वर्ष तय लक्ष्य 3,30,000 यूनिट रक्त से बढ़कर 4,50,000 यूनिट से भी अधिक रक्त एकत्रित किया है। केंद्र सरकार से हरियाणा को वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक रक्तदान हेतु रक्तदान में उत्कृष्टता के लिए लगातार दूसरे वर्ष पुरस्कार भी मिला है। परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा।
1: And another very good thing happened in the field of healthcare, especially in Delhi. Well, All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, New Delhi, distributed artificial intelligence-enabled smart vision glasses to 40 visually impaired individuals, enabling them

0: them to interpret their surroundings through sound. आप देखिए AI को अगर हम लोग जो है लोग उससे कुछ लोग डर भी रहे हैं, बट AI is a revolution, I would say. And अगर उसके जो है बहुत ही सूझबूझ से अच्छी तरह उसको यूज़ किया जाए, so it can actually provide a lot of solutions that we can't even think of. Imagine आप जो चश्मा लगा रहे हैं उसमें आपको जो है AI enabled sounds भी आ रही हैं. So I think that's so helpful for the visually impaired. And each glass that cost around 35,000 rupees, it was provided free of cost under the CSR initiative at a function that was held at Dr. R.P. Center of Ophthalmic Sciences. Let's hear more from our correspondent.
1: These AI-enabled glasses convert visual information into spoken term and also identify objects, recognize faces, detect obstacles, and assist with navigation. The device helps visually impaired persons manage their daily tasks independently, from identifying currency notes to locating doorways. Dr. Praveen Vasish, in charge community of ophthalmology, said that AIIMS has planned to distribute around 1,700 such AI-enabled glasses to the persons with low visibility already identified from Delhi NCR schools. He said, such glasses will help them know about their surroundings so that they can lead a normal life. Sharing his experience with Akashvani News, a beneficiary hailed AIIMS initiative for providing the smart vision glasses, saying that they will be helpful for them in their daily life.
2: Smart vision glasses से जो मुझे फेस करनी पड़ी प्रॉब्लम 9 to 12th में, वो मेरे आने वाले साथियों को फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि स्मार्ट विजन ग्लासेस के सहायता से वो बोर्ड पर क्या लिख चुके हैं टीचर, क्या है ब्लैक बोर्ड पर, क्या क्वेश्चंस है, क्या टॉपिक्स है, वो खुद ही देख करके समझ सकते हैं. अब जैसे कॉलेज में भी बहुत सारी ऐसी किताबें होती हैं जो कि ऑडियो में और ब्रेल में अवेलेबल नहीं होती, लेकिन हम प्रिंट बुक लेकर के अपने दोस्त की भी हम खुद स्मार्ट विजन प्रीमियम से पढ़ सकते हैं. लेकिन स्मार्ट विजन ग्लासेस हमारे फ़ोन से कनेक्टेड होता है और हम चश्मे के थ्रू ही करेंसी निकाल करके जो स्मार्ट विजन ग्लास से हम करेंसी को देख सकते हैं.
1: Earlier, AIIMS had distributed

0: और सारा आप खेलों में आईपीएल क्रिकेट की बात कर लेते हैं। आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया।
1: In business news, benchmark domestic equity indices surged over 1% today amid hopes of de-escalation in West Asia. BSE Sensex climbed 941 points to close at 77,959. NSE Nifty rose 298 points to settle at 24,331.
0: और श्रोताओं, हम सीधे चलते हैं आजादी के सफर पर।
2: आज हम शहीद शक्तिदान को याद करते हैं। उनका जन्म 6 मई 1824 को जोधपुर में हुआ था। वो असम के जागीरदार के छोटे भाई थे। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया। शक्तिदान अन्य जागीरदारों के साथ ब्रिटिश भारतीय सेना के विद्रोही सैनिकों में शामिल हो गए।
3: विद्रोहियों ने आउवा में सितंबर 1857 में और फिर जनवरी 1858 में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ब्रिटिश सेना ने आउवा किले पर कब्जा कर लिया और शक्तिदान को पकड़ लिया। नजरबंदी के दौरान ही शक्तिदान की मृत्यु हो गई। इस वीर शहीद को नमन।
2: आज हम
0: और श्रोता, अब हम बढ़ते अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को। तो सारा, सबसे पहले हम किसे याद कर रहे हैं?
1: Well, we are remembering Shiv Kumar Batalwi today, and we all know that he is a poet, a writer, and a great romantic at heart.
0: जी बिल्कुल, मोहब्बत जो है उनके लिए सब कुछ थी। ये एक ऐसे शायर और कवि थे जो एक छोटी सी जिंदगी में इतना नाम बना गए जो आज भारत में हर नौजवान के सीनों में धड़कता है। वो कहते थे, गुम है गुम है गुम है एक कुड़ी जिहदा नाम मोहब्बत है।
1: That's right. He was the youngest recipient of the Sahitya Akademi Award, and he gave a beautiful interview. We have a snippet from it. Let's listen to it.
4: और मुझे नहीं पता कि मैं शायर काहे को हो गया।
5: ठेस लगी हो आपको?
4: काहे की ठेस?
5: क्योंकि बहुत सारे शायर ऐसे हैं जिन्होंने शायरी की है, कविता लिखी है, नाउमीद होकर, दुखी होकर, कभी
4: जिंदगी
5: प्यार में दुख पाया।
4: इंदिरा जी, ऐसा नहीं था। ना तो मोहब्बत का फर्क रहा। हजारों औरतें जिंदगी में आईं, उनको स्वीकार ही नहीं किया।
5: क्यों?
4: ऐसी क्या बात थी? मुझे कोई दुख नहीं है मोहब्बत का या किसी बात का। जितनी शायद मुझे मोहब्बत मिली है, पंजाब के किसी शायर को नहीं मिली है।
5: तो आपने किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी तस्वीर से प्यार किया है?
4: वो तस्वीर बनी नहीं मेरे से, कभी बालों से किसी के, किसी उंगलियों से, किसी के होंठों से, किसी के पैरों से।
5: तो जाहिर है कि आपने रोमांटिक कविता भी लिखी हो।
4: लिखी, पहले तो सारी रोमांटिक है।
5: एक आध हमको भी सुनाइए।
4: जरूर, गा के सुनो।
5: गा के सुनाइए। वाह क्या बात,
4: मंजूर है तो मैं किताब ले लूं?
5: जरूर लीजिए।
4: तो सुनिएगा, एक गीत है छोटा सा कि

0: और सारा इनके गीत हिंदी में ना आकर भी बहुत लोकप्रिय हो गए.
1: That's right, and as I had mentioned earlier for her, that he was the youngest recipient of the Sahitya Akademi Award in the year 1967 for his magnum opus, the verse play Luna.
0: और अब आइए आगे बढ़ते हैं. भोजपुरी फिल्म निर्देशक गोविंद मुनीस की आज पुण्यतिथि है. हम सबने सुपरहिट फिल्म नदिया के पार जरूर देखी होगी, लेकिन इस सुपरहिट फिल्म को निर्देशित किया था गोविंद मुनीस ने, और वो फिल्म आज काफी हिट भी साबित हुई है. और इसके अलावा गोविंद मुनीस की फिल्म आंसू बन गए फूल से जो है एक प्यारा सा गीत हम लेकर आए हैं आशा भोसले और अशोक कुमार की आवाज में. आइए सुनते हैं.

0: Today, Farhad, we are also remembering Orson Welles on his birth anniversary, an American actor and filmmaker. Remembered for his innovative work in film, radio and theatre, he's considered among the greatest and most influential filmmakers of all time. And of course, we know that he was just 21 when he directed the high-profile stage productions for Federal Theatre Project in New York City, starting with the celebrated 1936 adaptation of Macbeth and ending with the political musical The Cradle Will Rock in the year 1937. Of course, we also remember his first film in 1941, Citizen Kane, which he co-wrote, produced, directed and starred in as the title character, Charles Foster Kane. It has been consistently ranked as one of the greatest films ever made.
1: You were only 25, weren't you? I mean, everybody knows that you had the most astonishing contract that Hollywood has ever provided.
2: Yes.
1: Ever.
2: Not financially speaking, in terms of authority and rights. Financially, it wasn't extraordinary in any way at all. It was extraordinary in the control it gave me over my own material.
0: And Farhad, just to tell a trivia about Orson Welles, कि उन्होंने बहुत से लोगों को even India में काफी filmmakers को inspire किया. Guru Dutt खास तौर से अपनी अगर आप देखें ना उनकी जो lighting होती थी natural light use करते थे. That was because he was inspired by Orson Welles.
3: और अब घड़ी में बज चुके हैं 4:59:41 और वक्त हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का. तो सारा और फरहत को इजाजत दीजिए.
0: नमस्कार.
4: नमस्कार. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती. तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है. तमिलगा वित्री कजगम टीवी के प्रमुख श्री विजय ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर तमिलनाडु में अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया है. विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके को बहुमत के 118 आंकड़े तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 सीट की आवश्यकता है. अब श्री विजय को सदन में अपनी सरकार का बहुमत साबित करना होगा. वहीं अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम AIADMK के निर्वाचित विधायकों के एक वर्ग ने पार्टी नेतृत्व से टीवीके को समर्थन देने की इच्छा व्यक्त की है. 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया है. संवाददाताओं से बातचीत में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी श्री विजय की टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार को औपचारिक समर्थन देगी. वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक के बाद विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा करने की बात कही है. राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है. असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने आज गुवाहाटी में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया. राज्य में अब नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है. भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति

0: तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और हान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। उन्होंने कहा कि औषधि प्राधिकरणों के साथ समझौता ज्ञापन के बाद वियतनाम में भारत की दवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत के कृषि, मत्स्य पालन और पशु उत्पादों का वियतनाम को निर्यात भी सुगम होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए भारत वियतनाम का आभारी है। जापान की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओनोडा किमी ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से स्वास्थ्य और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। सरकार ने बताया है कि देश भर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति में कमी की कोई खबर नहीं है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
2: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
0: और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना पंजाब किंग्स से होगा। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से हैदराबाद में खेला जाएगा। अंक तालिका में पंजाब किंग्स शीर्ष पर और सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। TVK Chief Vijay has staked claim to form the next government in Tamil Nadu in a meeting with Governor Rajendra Vishwanath Arlekar today. His party, Tamilaga Vetri Karagam TVK, which emerged as the single largest party after the assembly election, needs at least 10 seats to hit the majority mark of 118. The next step is for Vijay to prove his government's majority in the House. Earlier, the Tamil Nadu governor reached Chennai from Kerala this afternoon. Interacting with media, he said he had received an email stating that TVK, which has won 108 constituencies, had sought an appointment with him. The party had also requested 2 weeks to prove its majority in the letter. In another development, a section of the elected MLAs from the AIADMK wants the party leadership to support the TVK. The Congress, which has 5 MLAs, has also decided to support the TVK. The decision was taken after a meeting of the newly elected assembly members from the Congress party, led by Tamil Nadu in charge Girish Chodankar. Speaking to media, Congress MP Karthi Chidambaram today said the Congress party will formally support a government headed by Vijay's TVK. The swearing-in ceremony of the new BJP government in West Bengal will be held on the 9th of May at Brigade Parade Ground. State BJP President Shaumik Bhattacharya told reporters that the ceremony will start from 10 a.m. According to party sources, The event is expected to be attended by Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and several chief ministers from BJP-ruled states, making it a significant political gathering. The choice of venue is symbolic as Brigade Parade Ground has historically been a site for major political rallies and mass mobilizations in Bengal. The presence of top national leaders underscores the importance the BJP is placing on this transition. India and Vietnam today inked several MOUs in the fields of digital technology, rare earths, medical products regulation, public sector audit, digital payment system and culture and tourism. The agreements were signed following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and President of Vietnam Tho Lam in New Delhi this afternoon. During the talks, both leaders held wide-ranging discussions across the spectrum of bilateral relations. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two countries today decided to elevate bilateral ties to enhanced comprehensive strategic partnership.
1: Aaj hum apne sambandhon ko enhance comprehensive strategic partnership ke star par le ja rahe hain. Ab hum apni saajhedari ko aur unche lakshyon ki or agrasar karenge. Culture, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा. फ्रेंड्स, भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है. 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए.
3: President Tho Lam said Vietnam attaches great importance to the outcome of 50 years of relations with India as well as 10 years of the comprehensive strategic partnership. The government has informed that domestic LPG distribution across the country is normal and no dry out has been reported at any LPG distributor. During the interministerial media briefing in New Delhi, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, informed that amidst the West Asia crisis, the government is making all-out efforts to ensure 100% supply of domestic LPG to the consumers for cooking and up to 70% to consumers of commercial cylinders. With regard to natural gas, the Joint Secretary informed that about 6,31,000 new PNG connections have been gasified and infrastructure has also been created for an additional 2.67 lakh connections. She said so far 6,93,000 consumers are registered for PNG connections. Director in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma, said all Indian seafarers continue to remain safe in the region with no incidents involving Indian-flagged vessels reported in the past 48 hours. And with that, we end this news bulletin.
4: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर. शाम के 5:10 हुए हैं. आइए सुनते हैं लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी.

0: लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोकरंजनी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। लोकेंद्र भाई,
1: हाँ प्रीति बहन,
0: कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। तो सबसे पहले किनको सुनवाने जा रहे हैं हम?
1: प्रीति बहन अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं सचिन शर्मा और ईशान सिंह से, और सुनवाते हैं ये लोकगीत।

0: प्रीति बहन
1: जी,
0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे ये लोकगीत कलाकार थे सचिन शर्मा और ईशान सिंह से।
1: और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये रागनी सचिन शर्मा और ईशान सिंह से।

0: अभी आपने ये रागिनी सुनी सचिन शर्मा और ईशम सिंह से, और आइए
1: चलते चलते एक और रागिनी सुनवाते हैं। कलाकार हैं आपके सचिन शर्मा और ईशम सिंह।

0: तो अभी आपने सचिन और ईशम सिंह से सुना ये रागनी को, और इसी के साथ कार्यक्रम लोक रंजनी यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार, खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और मेरे साथ हैं
3: अभिनव कुमार झा। नमस्कार श्रोताओं।
2: अभिनव, आज हम चर्चा करेंगे चीन के शंघाई में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण की, जहां पुरुष कंपाउंड टीम कांस्य पदक के काफी करीब पहुंची लेकिन कड़े मुकाबले में उसे बाहर होना पड़ा। महिला कंपाउंड टीम भी क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ सकी है। व्यक्तिगत दौर में जरूर भारतीय खिलाड़ी से उम्मीद की जा रही है कि वो अच्छा प्रदर्शन करके भारत को पदक दिलाने में सफल रहेंगे। बात मुक्केबाजी की करें तो ताशकंद में चल रही अंडर 15 और अंडर 17 में प्रतियोगिता में भारतीय बॉक्सर अपने पंच का दम दिखा रहे हैं। इसके अलावा बात हम इस कार्यक्रम में करेंगे लंदन में चल रही वर्ल्ड टेबल टेनिस की, जहां भारत की पुरुष महिला टीमें ग्रुप दौर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही थी लेकिन नॉकआउट दौर में उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं रहा। राउंड 32 के मुकाबले दोनों वर्गों में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। बात आईपीएल की होगी, जहां कल चेन्नई सुपर किंग ने दिल्ली कैपिटल को उसके घरेलू मैदान में 8 विकेट से पराजित कर दिया। संजू सैमसन ने नाबाद 87 रन की पारी खेली और जो आज मुकाबला खेला जाना है अभिनव, वो हैदराबाद और पंजाब के बीच है और ये मुकाबला भी काफ़ी रोमांचक होने की संभावना है। बात अंडर 17 महिला एएफसी फुटबॉल की भी करेंगे, जहां भारतीय टीम को चीन में चल रहे टूर्नामेंट में जापान के हाथों 3-0 से हार का सामना करना पड़ा है। अंडर 17 टीम पुरुष को भी आज सऊदी अरब के जेदा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला खेलना है। ये मुकाबला रात 9:30 बजे से खेला जाएगा और यहाँ उम्मीद है कि

भारतीय टीम अपने तीन टीमों के ग्रुप में अच्छा प्रदर्शन करके अंडर 17 फीफा विश्व कप के लिए अपनी दस्तक देगी। बैडमिंटन से भी अच्छी खबर है कि युवा शटलर उन्नति हुड्डा शीर्ष 20 में पहुंच गई हैं, और खबर इसलिए अच्छी है क्योंकि साइना नेहवाल, पीवी संधू, सरी की जो भारतीय स्टार शटलर हैं, उन्होंने पहले ये शीर्ष 20 रैंकिंग जो एकल रैंकिंग है उसमें जगह बनाई थी, और अब उन्नति हुड्डा उनके नक्शे कदम पर आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। और इसके अलावा बात मिस्र में चल रहे विश्व जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप की भी होगी, जहां भारत के यश ने रजत पदक हासिल कर लिया है। तो अभिनव, सबसे पहले बात करते हैं तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण की। शंघाई में चल रहा है, भारतीय टीम ने आज पुरुष कंपाउंड वर्ग में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन सेमीफाइनल में अमेरिका से हार मिली और उसके बाद कड़े मुकाबले में उसे शूट ऑफ में हार का सामना करना पड़ा और कांस्य पदक के बेहद करीब पहुंचकर भारतीय टीम पदक हासिल नहीं कर सकी। बहरहाल, क्या है ये रिपोर्ट, आइए पेश है ये खास रिपोर्ट। चीन के शंघाई में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारत की पुरुष कंपाउंड टीम पदक की दहलीज तक पहुंची, लेकिन चीन के खिलाफ शूट ऑफ तक चले बेहद कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। एक समान 234-234 के स्कोर के साथ शूट ऑफ का सहारा लिया गया। इससे पहले भारतीय टीम को सेमीफाइनल में अमेरिका के खिलाफ एक अंक के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। स्कोर रहा 235-234। भारतीय पुरुष टीम में ओजस देवताले, साहिल जाधव और कुशल दलाल शामिल थे। कंपाउंड पुरुष टीम को तीसरी वैधता मिली थी, पहले राउंड में बाई मिला, दूसरे में जर्मनी को 238-230 से हराया, क्वार्टर फाइनल में चीन ताइपे को 233-231 से हराया, सेमीफाइनल में सातवीं वरीयता प्राप्त अमेरिका की टीम से 235-234 से हार गए। कांस्य पदक के लिए चीन से मुकाबला हुआ, पांच सीरीज के बाद स्कोर 234-234 था, फिर मुकाबला शूट ऑफ तक पहुंचा जहां दोनों देशों के तीनों तीरंदाजों ने 10-10 अंक बनाए, लेकिन चीनी तीरंदाजों के निशाने बुलाइव के ज्यादा नजदीक थे। तुर्की और अमेरिका की टीम फाइनल में पहुंच गई है। महिला कंपाउंड टीम ने पिछले माह मैक्सिको में हुए पहले चरण में स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन शंघाई में अदिति स्वामी, प्रगति और ज्योति सुरेखा वैनम की तिकड़ी को तुर्की की टीम ने क्वार्टर फाइनल में हरा दिया। अदिति, प्रगति और ज्योति की टीम ने सिंगापुर को 228-227 से पराजित किया। क्वार्टर फाइनल में तुर्की ने 227 के मुकाबले 233 अंकों से हरा दिया। मिश्र टीम में अदिति और ओजस को पहले राउंड में बाई मिला है, दूसरे राउंड में भारतीय टीम का मुकाबला चीन ताइपे या हांगकांग से हो सकता है। पुरुष वर्ग की तरह महिला वर्ग में भी कंपाउंड टीम फाइनल तुर्की और अमेरिका के बीच होगा। कंपाउंड पुरुष व्यक्तिगत मुकाबलों की बात करें तो ओजस देवताले को सातवीं वरीयता मिली है, साहिल जाधव को आठवीं, कुशल दलाल को 18वीं और अभिषेक वर्मा को 25वीं सीडिंग मिली है। पहले राउंड में भारत के चारों तीरंदाजों को बाई मिला है, दूसरे राउंड में ओजस और साहिल जाधव फिर से बाई हासिल करने में सफल रहे हैं। सेकेंड राउंड में अभिषेक ने स्लोवाकिया के अल्जाज मतीजा को शूट आउट में 147-147 से हराया, जबकि कुशल ने तुर्की के एरन किरसा को 148 के मुकाबले 146 से हराया। राउंड थ्री में अब अभिषेक के सामने भारत के ही साहिल जाधव, जबकि ओजस देवताले के सामने एस्टोनिया के रोबिन जातमा होंगे। कंपाउंड महिला टीम की बात करें तो अदिति स्वामी को 13वीं वरीयता मिली है, प्रगति को 19वीं, ज्योति सुरेखा को 21वीं, मधुरा दामानगेनकर को 33वीं वरीयता मिली है। पहले राउंड में भारत की चारों महिला तीरंदाजों को बाई मिला है। सेकंड राउंड में मधुरा चीन की वांग युई को 148-147 से हराने में सफल रही। ज्योति ने कजाकिस्तान की डायना यूनुसोवा को 150-145 से हराया। अदिति ने ग्रेट ब्रिटेन की इजाबेल को 147-143 से पराजित किया। प्रगति ने सिंगापुर की ओंग ज्यूली को 143-142 से मात दी। तीसरे राउंड में मधुरा के सामने शेषवरीय यूएसए की एलेक्सिस रोइज होंगी, ज्योति के सामने एस्टोनिया की मेरी मिरिता, जबकि अदिति के सामने कजाकिस्तानी की विक्टोरिया लियोन होंगी। प्रगति अपना मुकाबला तुर्की की चकमक के खिलाफ खेलेंगी। रिकर्व क्वालिफिकेशन की बात करें तो धीरज को सातवीं वरीयता मिली, धरणदीप को 29वीं, यशदीप संजय भोगे को 54वीं और रतानु दास को 67वीं वरीयता मिली है। महिला रिकर्व में अंकिता भगत को 10वीं, कुमकुम अनिल को 11वीं, सिमरनजीत को 15वीं और दीपिका को 14वीं वरीयता मिली है। पुरुष टीम को 8वीं वरीयता मिली है, जिसमें यशदीप, तरुणदीप और धीरज शामिल है। महिला टीम में भारत को 4थी वरीयता मिली है, जिसमें अंकिता भगत, दीपिका और कुमकुम शामिल है। मिश्र टीम 6थे वरीयता हासिल करने में सफल रही है, इसमें धीरज और अंकिता हैं। एलिमिनेशन राउंड शुरू हो चुके हैं। व्यक्तिगत में तरुणदीप ने उज्बेकिस्तान के तीरंदाज को 6-2 से पराजित किया, अतानु दास को बांग्लादेश के मोहम्मद मिशाद ने पराजित किया, यशदीप ने स्पेन के प्रतिद्वंदी को पहले राउंड में हराया, धीरज को पहले दो राउंड में बाई मिली है। दूसरे

0: में तरुणदीप का मुकाबला सऊदी के अब्दुल्ला से होगा। यशदीप के सामने तुर्की के मेटा गोजेज की मुश्किल चुनौती होगी, जो कि टोक्यो ओलंपिक के चैंपियन रहे हैं। महिला रिकर्व व्यक्तिगत मुकाबलों की बात करें तो अंकिता कुमकुम दीपिका सिमरनजीत को पहले राउंड में बाई मिला है। अब बात पुरुष टीम की, पहले राउंड में बाई मिला है, दूसरे में बांग्लादेश से खेलना है। महिला टीम को पहले राउंड में उज्बेकिस्तान से खेलना होगा। भारत को चौथी जबकि उज्बेकिस्तान की 13वीं वरीयता है। मिश्रित टीम को 6ठी वरीयता है, पहले राउंड में बाई मिला है। सिंगापुर और ब्राजील से मुकाबला हो सकता है।
1: भारतीय तीरंदाजों के प्रदर्शन पर हमने बात की साई के कोच लोकेश चंद्र से।
2: हमने ये जानना चाहा कि आज कंपाउंड टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, पदक की दहलीज तक पहुंची, लेकिन पराजित हो गई बेहद कड़े मुकाबले में, शूट ऑफ में चीन से, और अमेरिका के खिलाफ भी एक अंक के अंतर से सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। तो सर, अगर पुरुष टीम के प्रदर्शन की बात करें तो पदक के काफी नजदीक आके चूक गई, क्या कहेंगे?
3: मैं कह सकता हूँ कि पदक के बहुत क्लोज थे, और जो सेमीफाइनल या फाइनल्स होते हैं वो बहुत क्लोज मुकाबले होते हैं, और इस बार भी वैसे ही देखने को मिला। पहले हम अमेरिका से हारे, वो एक पॉइंट का मार्जिन था, एंड देन फिर होम कंट्री जो चाइना थी उसके अगेंस्ट हमने ब्रॉन्ज मेडल लूज किया, वो भी टाई शॉट में जाकर किया। तो इट्स अ डिसअपॉइंटिंग, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। वो तो खेल में होता है कि कभी हम हारते हैं और कभी जीतते हैं, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हारते तो कभी नहीं है, कभी सीखते हैं और कभी जीतते हैं। तो एक नई टीम, एक युवा टीम थी, एक्सपीरियंस खिलाड़ी बाहर थे इस समय, तो उसका एक इफेक्ट है। बाकी आने वाले वर्ल्ड कप हमारे और अच्छे होंगे, मेरा तो मानना है। ओवरऑल देखा जाए, कुल मिलाकर देखा जाए, ये सीजन अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है, और जो बाकी अभी इंडिविजुअल मुकाबले हैं उसमें हमारे खिलाड़ी बने हुए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। व्यक्तिगत मुकाबलों में हमारे सारे खिलाड़ी इस समय टॉप प्लेइंग चार्ट में हैं, अवेलेबल हैं, तो कोई भी ऐसा खिलाड़ी बाहर नहीं हुआ है कि मैं कहूंगी कोई भी रेस से बाहर है। और आर्चरी में क्या है कि ये आपका डे होता है, जिस दिन आपके तीर चलते हैं, जिस दिन आपका बहुत अच्छा फैक्टर बैठता है, बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। इट्स अ काइंड ऑफ फॉर्म, जैसे सचिन की जिस दिन फॉर्म होती है तो उसके लिए 200 भी कुछ नहीं होता। तो अगर किसी खिलाड़ी की फॉर्म कल बहुत अच्छी रही तो ऑब्वियसली आप परसों उसको आप फाइनल में देखेंगे।
0: विश्व तीरंदाजी कप के दूसरे चरण में 44 देशों के 320 से ज्यादा तीरंदाज हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष एची नगोया में एशियाई खेल होने हैं, इसलिए भी एशियाई देशों की भागीदारी बढ़ी है। इन एशियाई देशों में किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और सऊदी अरब शामिल हैं। युनशेन स्टेडियम में चल रही प्रतियोगिता में विजेता तीरंदाज मेक्सिको में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। बहरहाल अभी जिस तरह अभी कंपाउंड तीरंदाज और रिकर्व में अच्छा कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आगे शायद बेहतर करके भारत को पदक दिलाने में सफल रहेंगे। अब बात करते हैं तीरंदाजी के बाद बॉक्सिंग की, और ताशकंद में प्रतियोगिता चल रही है जहां भारत के अंडर 15 और अंडर 17 के मुक्केबाज अपना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और क्वार्टर फाइनल तक पहुंच चुके हैं। बरल, क्या अभिनव क्या बताने चाहेंगे इस बारे में?
4: ताशकंद में चल रहे एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप अंडर 15 और अंडर 17 में आज अंडर 15 कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए। भारतीय दृष्टिकोण से अगर आज के क्वार्टर फाइनल्स मुकाबलों पर नजर डालें तो 5 भारतीय खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। 30 से 33 किलोग्राम भार वर्ग में यश कुमार पहुंचे थे, जिन्होंने तजाकिस्तान के खिलाड़ी को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। 35 किलोग्राम भार वर्ग में रोहित पुथीना ने मंगोलिया के खिलाड़ी को 4-1 से शिकस्त दी। सास्था वसंत अशोक 37 किलोग्राम भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे, जिनका मुकाबला यूएई के खिलाड़ी के साथ था, जहां दूसरे राउंड के समापन से पहले ही रेफरी ने मैच रोका और आरएससी के तहत भारतीय खिलाड़ी के जीत की घोषणा की। नितिन ने भी 40 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान के खिलाफ आरएससी के जरिए जीत दर्ज की, और समीर बोहरा ने 43 किलोग्राम भार वर्ग में थाईलैंड के खिलाड़ी को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत के पांच खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे और पांचों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि यहां से कितने खिलाड़ी अपने जीत के सिलसिले को जारी रखते हैं और भारत को पदक दिलाते हैं। अब बात करते हैं कल शाम खेले गए मुकाबलों की। कल शाम ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के दौरान भारतीय मुक्केबाजों ने रिंग में अपनी आक्रामकता और तकनीकी कौशल का जबरदस्त संगम पेश किया। भारतीय दृष्टिकोण से शाम का सत्र बेहद सफल रहा, जहां मुक्केबाजों ने न केवल जीत दर्ज की बल्कि अपने विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाया। शाम के सत्र में अंडर 17 वर्ग में निवेश पाल ने 54 किलोग्राम भार वर्ग के अपने दूसरे मुकाबले में कजाकिस्तान के मुक्केबाज के खिलाफ गजब का नियंत्रण दिखाया। उन्होंने अपनी लंबी रीच का फायदा उठाते हुए सटीक जेब्स लगाए और सर्वसम्मति से 5-0 से जीत अपने नाम की। अंडर 17 वर्ग में ही लक्ष्य फोगाट ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका के खिलाड़ी को संभलने का मौका ही नहीं दिया। रेफरी ने उनकी आक्रामकता को देखते हुए पहले ही राउंड में मुकाबला रोककर उन्हें अबेंडॉनमेंट के जरिए विजेता घोषित कर दिया। रणवीर ने 66 किलोग्राम भार वर्ग में चीनी ताइपे के मुक्केबाज के खिलाफ इतनी मजबूत पकड़ बनाई कि विपक्षी खिलाड़ी ने मैच के बीच में ही हार मान ली, जो भारतीय मुक्केबाजों के बढ़ते खौफ को दर्शाता है। हालांकि शाम के सत्र में सभी परिणाम भारत के पक्ष में नहीं रहे। प्रदीप और जयदीप सिंह ने अपने अपने भार वर्ग में कड़ा संघर्ष किया, लेकिन कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मजबूत प्रतिद्वंदियों के खिलाफ उन्होंने 5-0 से हार का सामना करना पड़ा। इन मुकाबलों में हार के बावजूद भारतीय मुक्केबाजों के जुझारूपन ने दर्शकों की वाहवाही लूटी। अब बात करें क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की, तो अंडर 17 कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे।
0: जी हाँ, ये सिग्नेचर ट्रेन आईपीएल की है और आईपीएल में कल मुकाबला जो खेला गया वहाँ चेन्नई सुपर किंग ने दिल्ली कैपिटल को पराजित कर दिया। उसके मैदान में एक मुश्किल विकेट लग रही थी, लेकिन संजू सैमसन जिस लय में चल रहे हैं, जितनी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, उन्होंने बता दिया कि पिच कैसी हो, चुनौती कैसी हो, और चाहे प्रतिद्वंदी टीम का घरेलू मैदान हो, लेकिन उनका बल्ला नहीं रुकेगा और उन्होंने शानदार पारी खेलकर टीम को जिताने में मदद की। तो क्या कहेंगे अभिनव इस मुकाबले पर, चेन्नई और दिल्ली के मुकाबले पर?
4: जी बिल्कुल नवीन जी, कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2026 के 48वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन सीएसके के गेंदबाजों, विशेषकर स्पिनर नूर अहमद और अकील हुसैन की कसी हुई गेंदबाजी के सामने दिल्ली का मध्यक्रम पूरी तरह लड़खड़ा गया और टीम ने 69 रन पर ही 5 विकेट गंवा दिए। अंत में समीर रिजवी, जिन्होंने 40 रन की नाबाद पारी खेली, और ट्रिस्टन स्टब्स, जिन्होंने 38 रन बनाए, उन दोनों के बीच हुए 65 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी और आशुतोष शर्मा के कैमियों की बदौलत दिल्ली की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 155 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकी। लेकिन जवाब में 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत धीमी रही और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी पवेलियन लौट गए। इसके बाद संजू सैमसन ने मोर्चा संभाला और अपनी बेहतरीन फॉर्म को जारी रखते हुए मात्र 52 गेंदों में 7 चौकों और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 87 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। उन्होंने कार्तिक शर्मा के साथ शानदार साथ मिला, जिन्होंने 41 रन बनाए और दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 114 रनों की नाबाद साझेदारी कर सीएसके को 17.3 ओवर में ही जीत दिला दी। इस जीत के साथ चेन्नई ने

0: Try to stick to the basics, and you trust your hands to do the job in this format. So I think I've been trying to do that from last 2-3 months. I've been working a bit on my initial movement a bit, and it has been coming off nice. Honestly, sir, I think looking at what we were chasing and how the wicket was behaving, I felt that even if we have like 30-35 runs for no loss or one wicket, we could easily, like knowing what I could do against the spin and in the middle overs also, I know my game plan pretty well. So I thought even if I take some extra time in the power play with the type of shots which I have, I think I can capitalize in the middle overs. So that was the plan, and sometimes it comes off nicely. So today it came off, very happy. Oh, hundreds are always special, sir. I think so. But I was like, I had to be a bit too selfish to get that. So I thought, let's win the game. And the partner was batting really well. So I didn't want to tell him, make single, they are my sova banata. So I didn't say that. So I think really enjoyed. I think coming not out, finishing off the game gives you a better satisfaction. So I just enjoyed it. And few more games to go. Let's see if I get those three figures once again.
1: 100 बनाना हर खिलाड़ी का सपना होता है सर, लेकिन 100 से ऊपर है टीम की जीत, वही संजू सैमसन ने दिखाया। बहरहाल बात करते हैं आईपीएल में आज खेले जाने वाले मैच की। जो 49वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद अपने घरेलू मैदान राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में टेबल टॉपर पंजाब किंग्स की मेजबानी करेगी। पंजाब की टीम श्रेयस अय्यर की कप्तानी में 13 अंकों के साथ शीर्ष पर है, लेकिन पिछले दो मैचों में मिली हार के बाद वे फिर से जीत की लय हासिल करना चाहेंगे। दूसरी ओर पैट कमिंस की अगुवाई वाली हैदराबाद की टीम 12 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है और अपने घर में उनका रिकॉर्ड इस सीजन में बेहद शानदार रहा है। यह मुकाबला मुख्य रूप से हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाजी क्रम और पंजाब की संतुलित गेंदबाजी के बीच होगा। एसआरएच के लिए अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन जबरदस्त फॉर्म में हैं, जबकि पंजाब के पास कागिसो रबाडा और अर्शदीप सिंह जैसे घातक गेंदबाज हैं। हैदराबाद के पिच हमेशा की तरह हाई स्कोरिंग रहने की उम्मीद है, जहां टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी कर बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहेगी। दोनों ही टीमें प्लेऑफ की रेस में अपनी स्थिति और मजबूत करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी, जिससे क्रिकेट प्रशंसकों को एक रोमांचक भिड़ंत देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें पॉइंट्स टेबल की, तो पॉइंट्स टेबल में क्या कुछ है नवीन जी?
2: हाँ बिल्कुल, पंजाब की टीम अभी 9 मैचों में 6 जीत के साथ सबसे आगे चल रही है। उसके 13 अंक है और नेट रन रेट भी 0.855 की है, जबकि बंगलुरु की टीम दूसरे स्थान पर है। 9 मैच उसने खेले हैं, 6 जीत भी उसके खाते में हैं, लेकिन नेट रन रेट की अगर बात करें तो वहाँ वो पंजाब से थोड़ी पिछड़ी हुई है। हैदराबाद 10 मैचों में 6 जीत के साथ 4 हार हैं उसके खाते में, 12 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। राजस्थान 12 अंक के साथ 6 जीत में चौथे स्थान पर, उसके बाद गुजरात है 12 अंक 6 जीत के साथ, वो इस पाँचवें स्थान पर है। चेन्नई छठे स्थान पर है, उसके 10 अंक हैं। दिल्ली की टीम प्लेऑफ की उम्मीदों को उसको बड़ा झटका लगा है कल की हार से, और वो 4 मैच ही अभी 10 में से जीत पाई है। घरेलू मैदान पे तो उसने लगातार चौथा मुकाबला अपना गंवाया है और वो 8 अंक के साथ 8वें स्थान पर है। और कोलकाता उसके बाद है, 9 मैचों में 3 जीत हैं उसके खाते में, 7 अंक अभी तक उसने बटोरे हैं। मुंबई की टीम 10 मैचों में 3 जीत के साथ 6 अंक ले चुकी है, लेकिन अभी उसकी प्लेऑफ की उम्मीदें बिल्कुल एक धूमिल सी होती नजर आ रही हैं। लखनऊ तो सबसे निचले पायदान पर है, 9 मैचों में अभी तक 2 ही मुकाबले उसने जीते हैं और महज 4 अंक हैं।
1: और अब बात आईपीएल की ही करें तो एक और खबर आ रही है नवीन जी कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने क्वालिफायर, एलिमिनेटर और फाइनल मुकाबलों के स्टेडियम में बदलाव किया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब पहला क्वालिफायर मुकाबला 26 मई को धर्मशाला में खेला जाएगा, वहीं एलिमिनेटर 27 मई को और दूसरा क्वालिफायर मुकाबला 29 मई को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा और फाइनल मुकाबला 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।
2: बिल्कुल, T20 की बात हो रही है तो बात T20 रैंकिंग की करते हैं। भारतीय टीम ICC T20 में अपने शीर्ष स्थान पर कायम है। T20 विश्व कप चैंपियन भारतीय टीम का ICC रैंकिंग में दबदबा कायम है। भारत 275 अंक के साथ पहले स्थान पर है, जबकि इंग्लैंड 262 अंक लेकर दूसरे और ऑस्ट्रेलिया 258 अंक के साथ तीसरे पायदान पर चल रही है। बांग्लादेश एक पायदान ऊपर चढ़कर 8वें स्थान पर पहुंच गया है। श्रीलंका 9वें स्थान पर खिसक गया है। रैंकिंग मुशाबे टीमों की संख्या 102 से घटकर 98 हो गई है। नवीनतम रैंकिंग में मई 2025 के बाद खेले गए सभी मैचों को 100% और पिछले 2 वर्षों के मैचों को 50% अंक दिए गए हैं। आप

0: बात अब फुटबॉल की करते हैं तो भारत की अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम को चीन में खेले जा रहे टूर्नामेंट में जापान के हाथों 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। जापान ने उसे 3 गोल करके पराजित कर दिया। पहले हाफ में भारतीय टीम ने जापान को कोई गोल नहीं करने दिया था और अपना रक्षण काफी मजबूत रखा था, लेकिन मध्यांतर के बाद जापान ने 59वें, 76वें और 81वें मिनट में 3 गोल करके भारतीय महिला फुटबॉल टीम की वापसी के रास्ते बंद कर दिए। जापान के लिए युमी हयाशी के अलावा युजुहा इकेदा ने अंतिम दोनों गोल किए। गोलकीपर मुन्नी ने भारतीय टीम के लिए कई अच्छे बचाव किए, वरना हार का अंतराल और भी ज्यादा हो सकता था। भारतीय टीम को इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के हाथों 0-2 से हार मिली थी। लगातार 2 हार के बाद भारतीय टीम निचले पायदान पर है और उसे टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदें कायम रखने के लिए शुक्रवार को मजबूत लेबनान के खिलाफ होने वाले मैच को जीतना होगा। ग्रुप बी में जापान की टीम अपने दोनों मैच जीतकर शीर्ष पर है। ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैचों में से 1 मैच जीता है और 1 ड्रॉ खेला है। लेबनान को जापान के हाथों हार मिली है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने 1 ड्रॉ खेला है। अगर भारतीय अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम ग्रुप बी का अपना अंतिम मैच लेबनान के खिलाफ जीतने में सफल रहती है तो उसके पास तीसरे स्थान पर बेहतर टीम के तौर पर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का मौका रहेगा, क्योंकि उसका गोल अंतराल लेबनान से बेहतर है। भारत का गोल अंतराल -5 है जबकि लेबनान का -13 यानी -13 है। AFC अंडर 17 में कल खेले गए अन्य मुकाबलों में दक्षिण कोरिया ने चाइना ताइपे को 4-0 से और उत्तर कोरिया ने फिलीपींस को 8-0 से रौंदा। लेबनान की टीम ऑस्ट्रेलिया को 1-1 से ड्रॉ पर रोकने में सफल रही थी। भारतीय टीम के कप्तान अबिष्टा बैसनेट ने जापान के खिलाफ मुकाबले के बाद क्या कहा, आइए जानते हैं।
1: Well, this game was a very tough game for us. So we fought very well. Like we gave our everything, but due to some errors, so we conceded 3 goals. So like we'll try to improve in our next game. Our team was brilliant in the first half. I'll just say brilliant because there was no space for Japan to take a shot. Not even like many. We didn't concede any shots on target on the first half. So like we were very compact. We were in a good communication. So overall, we played very good in the first half. Like during the transition, we were like a bit slow. We weren't checking the opponent on the blank side, so that was the most error which we did. So that's all. So now we have a last game against Lebanon, so like we have a good chance to qualify, so we'll give our all in that game because it will be a great thing for us to qualify for quarterfinals. So we are gonna give our all and play more better than this and improve our mistakes.
0: जी हाँ, फुटबॉल की बात को जारी रखते हैं और बात करते हैं अंडर 17 पुरुष टीम की। भारतीय टीम को आज सऊदी अरब में शुरू हो रहे AFC एशियन कप में अपने पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है। कोच बिबियानो फर्नांडिस की टीम के सामने लक्ष्य इस साल कतर में होने वाले अंडर 17 फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करना है। आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मुकाबले के बाद भारत को 10 मई को उज्बेकिस्तान से खेलना है। भारतीय टीम ने पिछले साल अहमदाबाद में हुए AFC अंडर 17 एशियन कप के क्वालिफायर में ईरान जैसी मजबूत टीम को 2-1 से हराया था और चाइना ताइपे को 3-1 से मात देने में सफल रही थी। लेबनान के खिलाफ हालांकि उसे हार का सामना करना पड़ा था। भारत ग्रुप डी में टॉप पर रहकर मुख्य प्रतियोगिता में पहुंचा है। भारत के अलावा वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें क्वालिफायर्स के जरिए मुख्य टूर्नामेंट का टिकट पाने में सफल रही हैं। भारत को ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के साथ ग्रुप डी में रखा गया था, लेकिन नॉर्थ कोरिया हट गया है टूर्नामेंट से। ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी, जिससे फीफा अंडर 17 विश्व कप के लिए भी क्वालिफिकेशन पक्का हो जाएगा। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के लिए अच्छी तैयारियां की हैं और जेदा जाने से पहले ताजिकिस्तान, तुर्की, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कोरिया और कतर जैसी टीमों के खिलाफ मुकाबले खेले हैं और यहाँ आपने खेल में काफ़ी सुधार किया है। कोच बिबियानो फर्नांडिस के मार्गदर्शन में भारतीय पुरुष टीम AFC अंडर 17 अंडर 16 चैंपियनशिप 2018 और AFC अंडर 17 एशियाई कप 2023 में भी हिस्सा ले चुकी है। खिलाड़ियों से उनका अच्छा संवाद और तालमेल है और उम्मीद है भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के मजबूत चुनौती का डटकर सामना करेगी और एक शानदार परिणाम देने में सफल रहेगी। बात अब टेबल टेनिस की करते हैं तो लंदन में चल रही ITTF वर्ल्ड टीम टेबल टेनिस में भारत की पुरुष और महिला टीमें नॉकआउट चरण में बाहर हो गई हैं। पुरुष टीम राउंड 32 के मैच में ऑस्ट्रिया के खिलाफ 0-3 से हार गई तो महिला टीम को USA के खिलाफ 1-3 से पराजय का सामना करना पड़ा। पुरुष टीम में भारत के मानुष शाह को गार्दोस रॉबर्ट ने कड़े मुकाबले में 11-7, 11-3, 8-11, 13-11 से हराया। रॉबर्ट ने और मनुष ने 2 गेम जीते

पहला गेम जीतकर मानुष ने अच्छी शुरुआत की, लगातार दो गेम जीतकर वापसी की, लेकिन मानुष ने चौथा गेम जीतकर मैच को निर्णायक गेम की ओर मोड़ दिया, जहां रॉबर्ट ने 13-11 से बाजी मार ली। मानव ठक्कर की अगर बात करें तो प्रतिद्वंदी डेनियल को टक्कर नहीं दे सके और 7-11, 5-11, 6-11 से हार गए। जी सातियन को आंद्रियास लेवेंको ने 11-5, 11-8, 11 रनों से पराजित किया। ग्रुप दौर में भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही थी, जब ग्वाटेमाला ट्यूनिशिया के एक समान 3-0 से हराया था, उसके बाद स्लोवाकिया को 3-2 से मात दी थी, लेकिन नॉकआउट में टीम बाहर हो गई। महिला टीम को राउंड 32 में अमेरिका ने 3-2 से हराया। यशस्विनी गोरपड़े को मॉयलैंड सैली ने 11-8, 11-8, 11-7 से पराजित किया। मनिका बत्रा ने रेयस लाइट जेसिका को 11-2, 11-7, 8-11, 11-4 से हराया। दिया चीतले को झांग लेली ने 11-8, 11-7, 13-11 से मात दी, लेकिन मनिका उलट एकल में मॉयलैंड सैली से 12-10, 9-11, 3-11 और 11-13 से हार गई। ग्रुप दो दौर में भारतीय महिला टीम ने यूक्रेन को 3-2 से, रवांडा को 3-0 से हराया, जबकि युगांडा के खिलाफ रवांडा को 3-0 से हराया, जबकि युगांडा के खिलाफ वॉकओवर मिला था।

0: मिस्र में चल रही विश्व जूनियर वेटलिफ्टिंग में भारत के यश कारांगले ने 71 बार वर्ग में कुल 309 किलो वजन उठाकर रजत पदक हासिल किया। यश ने स्नेस में 140 और क्लीन एंड जर्क में 169 वजन उठाया। फिलीपीन के अल्बर्ट ने 326 किलो के साथ स्वर्ण और इक्वाडोर के जिमी लोपेज ने 301 किलो उठाकर कांस्य पदक लिया। बैडमिंटन में उन्नति हुड्डा ने महिला एकल रैंकिंग में शीर्ष 20 में जगह बना ली है। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के बाद ये मुकाम हासिल करने वाली वह भारत की तीसरी महिला शटलर हैं। उन्नति की मौजूदा रैंकिंग 19 है। साइना 2015 में दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी बनी थी, जबकि सिंधु की शेष रैंकिंग 2017 में दूसरे पायदान पर पहुंचकर उन्होंने हासिल की थी। उन्नति को लगातार अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है। हाल ही में उन्होंने पोलिश ओपन का खिताब जीता। भारतीय बैडमिंटन के लिए अच्छी खबर है कि साइना और सिंधु के बाद नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है। शीर्ष 50 की बात करें तो पुरुष वर्ग में 3 भारतीय हैं, जिनमें लक्ष्य सेन 15वें, आयुष सेठी 18वें और किरण जाट 30वें पायदान पर हैं। महिला एकल में सिंधु 15वें, उन्नति 19वें स्थान पर हैं। दोनों वर्ग में कुल 5 भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी शीर्ष 50 में शामिल हैं। बात महिला फुटबॉल लीग की करते हैं तो दिल्ली प्रीमियर महिला फुटबॉल लीग की शुरुआत कल से हो गई है। शुरुआती दिन मुकाबले के में जो खेले गए वहाँ सिग्नेचर एफसी का गढ़वाल यूनाइटेड और रॉयल रेंजर्स का एमई हीरोज से मुकाबला हुआ और तीसरा मुकाबला हंस क्लब बनाम टीम था। सिग्नेचर एफसी ने गढ़वाल यूनाइटेड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। रॉयल रेंजर्स ने एमई हीरोज को 13-1 से रौंदा। कंचन हेमलता और प्राप्ति ने हैट्रिक की। इसके अलावा ज्योति ने 2 अन्य गोल दिव्या और परमित कौर ने किए। इसके अलावा हंस क्लब ने टीम को 5-0 से हराया। मैच के बाद हमने बात की कन्वीनर सुनील दत्त से तो क्या कहा उन्होंने, आइए जानते हैं।
1: और अब बात करते हैं महिला प्रीमियर लीग की, जिसका कल से शुभारंभ हुआ दिल्ली के डॉक्टर बीआर अम्बेडकर स्टेडियम और मॉडर्न स्कूल बाराकंबर रोड में। 3 मुकाबले खेले गए और महिला प्रीमियर लीग धीरे धीरे काफ़ी लोकप्रिय हो रही है और अच्छा प्रतिभाएं सामने आ रही हैं और जो बालिका वर्ग में जो अच्छे टैलेंट है उसको एक अच्छा मौका मिल रहा है दिल्ली महिला प्रीमियर फुटबॉल लीग के जरिए। तो हमने मुलाकात की सुनील दत्त जी से, जो कि कन्वीनर हैं इस महिला प्रीमियर लीग के, और क्या कहा इस लीग के बारे में, कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं, क्या प्रारूप है। और
2: अभी हमने महिला प्रीमियर लीग की जो हमने शुरुआत करी है, इसमें दिल्ली की जो टॉप 14 टीमें थी हमने उनको इसमें खेलने का मौका दिया है। और आपने देखा ही होगा कि देखो बच्चियाँ किस बढ़िया स्थिति में और बढ़िया अच्छा खेल का प्रदर्शन कर रही हैं, वो बढ़ावा दी।
3: और श्रोताओं, अब आज घड़ी की सुई हमें और इजाज़त नहीं दे रही है। बहरहाल कल फिर मुलाकात होगी जब घड़ी की सुई इशारा करेगी 5:30 का, और समय होगा खेल खिलाड़ी कार्यक्रम का। तब तक के लिए प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ मुझे अभिनव कुमार झा और मेरे सहयोगी नवीन कुमार शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
4: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में तमिलगा वित्री कशगम टीवी

0: के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय ने राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं। श्री विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, इसलिए उन्हें 1 सीट से इस्तीफा देना होगा। आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोंडकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवीके प्रमुख से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक अन्य घटनाक्रम में विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवीके के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसी के डीएमके के साथ गठबंधन में है और इसके 2 विधायक हैं। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और नान ताऊ मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए भारत वियतनाम का आभारी है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति तो लाम ने व्यापक चर्चा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। भारतीय औषधि उद्योग में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए दोनों पक्षों ने वर्ष 2027 से वियतनाम के सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दवाओं की खरीद में भारतीय कंपनियों की संभावित भागीदारी के तरीकों को तलाशने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने इस बात की पुष्टि की कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग भारत और वियतनाम की व्यापक रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा प्रणालियों की खरीद को बढ़ाने का भी निर्णय लिया। सरकार ने कहा है कि देशभर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति में कमी की कोई खबर नहीं है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। झारखंड के लातेहार जिले में पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान के दौरान प्रतिबंधित संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद JJMP के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से हैदराबाद में खेला जाएगा। अंक तालिका में पंजाब किंग्स शीर्ष पर और सनराइजर्स हैदराबाद 3रे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay met Governor Vishwanath Arlekar and staked claim to form the new government in the state. The 51-year-old leader met the governor, along with senior leaders of the party, K. A. Sengottan, N. Anand, CTR Nirmal Kumar, Arun Raj and Adhav Arjuna. TVK has secured 108 seats, falling short of the majority mark by 10 seats. Vijay, who contested from two constituencies, will have to vacate one seat. Earlier in the day, Congress leader Girish Chodankar met Vijay and submitted a letter of support from five MLAs. In a related development, VCK chief told Tiruma Valavan said his party will soon decide on TVK's invitation to join its alliance. The VCK, which currently has two MLAs, is part of the DMK-led front. The governor had earlier told the media that he would take the final decision to call TVK to form the government in a day or two. The swearing-in ceremony of the new BJP government in West Bengal will be held on the 9th of this month at Brigade Parade Ground. According to party sources, the event is expected to be attended by Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and several chief ministers from BJP-ruled states, making it a significant political gathering. More from our correspondent.
3: The constitutional process of government formation is moving swiftly. The Chief Electoral Officer of West Bengal, Manoj Kumar Agarwal, along with representatives of the Election Commission, today met the governor with the gazette notification of the results of all 293 assembly constituencies in the state. The formal process of forming the new government begins only after the governor receives the official election results. The governor may also take a decision on how the interim administrative arrangement will function until the new government is formally sworn in. At the same time, the stand taken by outgoing Chief Minister Mamata Banerjee has added a layer of complexity to the situation. Mamata on Tuesday made it clear that she would not go to Raj Bhavan to resign. Against the backdrop of political confrontation, preparations for the administrative transition in Bengal have now entered a decisive phase. Shondipan Dashgupta, Akashbani News, Kolkata.
2: In Assam, Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sarma today tendered his resignation to Governor Lakshman Prasad Acharya at the Lok Bhavan in Guwahati following the completion of the assembly election process. The resignation has paved the way for the formation of a new government in the state after the declaration of results. Speaking to media later, Dr. Sarma said the governor has asked the outgoing Council of Ministers to continue as a caretaker government until a new government is formed. India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions.
1: Culture, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं
2: President Tho Lam said Vietnam attaches great importance to the outcome of 50 years of relations with India, as well as 10 years of the Comprehensive Strategic Partnership. The Securities and Exchange Board of India, SEBI, has formed a special task force called Cybersuraksha.ai to tackle rising cybersecurity risks linked to artificial intelligence. The move comes amid concerns that advanced AI tools such as Claude Mythos can rapidly identify and potentially exploit system vulnerabilities at scale. SEBI stressed the need for stronger coordination, real-time information sharing, and continuous monitoring to prevent large-scale cyber incidents in the interconnected securities market. And with that, we end this news bulletin.

हिंदी वार्ता कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे सोशल मीडिया और संबंधों का मनोविज्ञान विषय पर भेंट वार्ता। इसमें भाग ले रहे हैं डॉक्टर लोकेश सिंह शेखावत।

0: और संतोष द्विवेदी मनोज।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज एक नए विषय के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज का हमारा विषय है सोशल मीडिया और संबंधों का मनोविज्ञान। श्रोताओं, सोशल मीडिया ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है। कहीं पर इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं तो कहीं पे इसमें कुछ ऐसी त्रुटियां भी हैं जिससे कि संबंधों पर असर पड़ता है। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर लोकेश सिंह शेखावत जी को। डॉक्टर लोकेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: लोकेश जी। सोशल मीडिया जो आज के दौर में है, तो आज की जो पीढ़ी है उसके जीवन में कल्पना करना भी मुश्किल है कि सोशल मीडिया के बगैर भी दुनिया होती है। जैसे वो दुनिया आपने देखी है, हमने देखी है, हमारे सारे पूर्वजों ने देखी है, पर आज सुबह होती है तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जो कि अब एक्स है, उसके नोटिफिकेशन से, और रात होती है तो उससे। तो जीवन में जो बदलाव आया है उसको आप कैसे देखते हैं?
2: देखिए, वैसे तो सोशल मीडिया एक तरह से जरिया है लोगों से सोशलाइज करने का, कनेक्ट करने का, पर सबसे बड़ी समस्या ये हुई है कि सोशल मीडिया हमारा इतना समय जो है वो ले जाता है दिन का, कि उसमें जिन लोगों से हमारी संभावना थी भावनात्मक जुड़ाव करने की, वो नहीं हो पाता। कई बार लोग सोशल मीडिया से एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और उनको लगता है कि मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, पर जब उनसे पूछते हैं कि आप कितने लोगों से भावनात्मक रूप से, कितने लोगों से आपका मन का लगाव है और जिनके साथ आप अपने दिल की बातें, अपनी परेशानियाँ, अपनी तकलीफें, अपने सुख दुख की बातें शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा अपनी उंगलियों पर गिन पाना। तो सोशल मीडिया से एक ऊपरी तौर पर, सतही तौर पर रिश्ते बहुत नज़र आते हैं, परंतु जो भावनात्मक जुड़ाव जिनसे, जिनके साथ हम अपना समय बिता सकते हैं, वो अभी कम नज़र आता है।
1: मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि आज के जो रिश्ते हैं वो पहले जो आत्मीयता थी उसमें, वो कहीं ना कहीं अब सतही तौर पर हो गए, तो ऐसा क्यों हुआ है?
2: सबसे बड़ी बात क्या है, लोगों के पास समय कम है, काम बहुत करे जा रहे हैं। जो समय हम लोगों को सोशलाइज करके सामाजिक रिश्ते निभाने में बिताया जाता था, आजकल वो समय मोबाइल फ़ोन पे बिताया जाता है बहुत बार। और मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का लोगों ने उसको अपनी सेल्फ वर्थ, जिसको कहते हैं अपनी वैल्यू या अपना आत्मसम्मान, जिससे जैसे जुड़ा हुआ है कि किसी ने सोशल मीडिया पे अपना कुछ पोस्ट किया, कितने लोगों ने उसको लाइक किया, कितने लोगों ने नहीं किया, ये सब उनके दिमाग में चलने लगता है। वो लाइक करने वाले लोगों की लिस्ट वो देखते रहते हैं, वास्तव में कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे परिवार में, मेरे दोस्तों में, मेरी रिश्तेदारी में, जो मुझे वास्तव में पसंद करते हैं, बजाय कि जो सोशल मीडिया पे लाइक्स हैं। बड़ी समस्या एक और आई है कि लोग अपने आप को बूस्ट करने के लिए, सेल्फ वर्थ करने के लिए, लोगों को बताने के लिए मैं अभी कैसा काम कर रहा हूं या कैसा मेरा जो सामाजिक प्रतिष्ठा है मेरी कितनी बड़ी है, इन सब चीजों के लिए मैं कितना अच्छा काम कर सकता हूं, इन सब के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेने लगे हैं। आजकल सोशल मीडिया पे स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा लोग हैं, वो अपने इंपल्स में, आवेग में कुछ ऐसा कमेंट कर देते हैं कि वो रिश्तों को अच्छा करने की बजाय बिगाड़ देता है, तो बनाने की बजाय बिगड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। अब सोशल मीडिया पे बहुत पुराना दोस्त है, अगर स्कूल का एक साथी है और मिल गया आपको कहीं पे, तो जो आप एक बार उसके मिल के अपने ताजा करेंगे स्कूल के दिनों को, जो आपके चेहरे पे भाव आएगा, आंखों में चमक आएगी, जो आपका गले मिलने की इच्छा होगी और यादें साझा करेंगे, वो आपको वास्तव में कनेक्ट करता है, जोड़ता है और भावनात्मक लगाव बनाता है। पर वो आपकी सोशल मीडिया लिस्ट में तो 10 साल से हैं, पर कभी आपकी उससे चर्चा नहीं। सोशल मीडिया मैं नहीं मानता कि बहुत ही अच्छा जरिया है। हाँ, कभी अगर आपको पुराना दोस्त ढूंढना है, ये इसके लिए सोशल मीडिया काम आ सकता है।
1: शुरुआती दिनों की अगर हम बात करें, जब सोशल मीडिया शुरू हो रहा था, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे आपके ऐसे मित्र स्कूल समय के मिले होंगे जिनसे आपका कनेक्शन शायद नहीं रह पाया था, क्योंकि उन दिनों मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे, तो उनसे बना, ये तो इसका सकारात्मक पक्ष रहा। पर आज की तारीख में जब हम बात करते हैं तो एक नई प्रजाति का जन्म हुआ है, ट्रोलर्स जिन्हें बोलते हैं, वो आपको ऑनलाइन ट्रोल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कुछ विषय पे कोई आपकी अभिव्यक्ति दी, आपका वक्तव्य उन्हें नहीं अच्छा लगा, तो वो आपको कमेंट करते हैं, वो आपको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, वो कई बार अपशब्द तक लिख देते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपकी मानसिक शांति जाती है। अब इसमें है क्या, कोई व्यक्ति जो मानसिक तौर पर उतना मजबूत नहीं है वो उससे बहुत ही प्रभावित हो जाता है, तो आप बेहतर बता पाएंगे कि ये जो ऑनलाइन ट्रोलर्स हैं, लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं, कई बार तो अतिशयोक्ति के स्तर पर, या तो बहुत खुश हो जाते हैं प्रशंसा पा करके, या कई बार वो इतना ट्रोल हो जाते हैं कि मानसिक रूप से अवसाद का शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे?
2: देखिए, सबसे पहले तो मैं लोगों से ये सलाह देना चाहता हूँ कि फोन एक बहुत अच्छा जरिया है, कोशिश करें कि अपने दोस्तों से, अपने लोगों से फ़ोन पर

0: बात करें और उनसे मिलने का समय निकालें। सोशल मीडिया से आपका कभी भी स्ट्रांग बॉन्ड नहीं बन सकता है, वो बात नहीं बनेगी। दूसरा, जो वैल्यू है खुद की, उसको कभी भी सोशल मीडिया के लाइक्स और क्रिटिक्स से ना जोड़ें। अगर किसी ने आलोचना की है, ये उसका व्यू पॉइंट है, और किसी ने अगर आपको अच्छा कहा है, वो भी उसका व्यू पॉइंट है। उससे अपने आत्मसम्मान को नहीं जोड़ें। कभी कभी ऐसा देखा गया है, कुछ घटनाएं ऐसी हुई है, आपने भी सुना होगा, जिसमें किसी को इसलिए ट्रोल किया गया और उस ट्रोल से वो इतना परेशान हुआ कि उसने बहुत एक्सट्रीम स्टेप भी लोग गए हैं। इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म जब हो जाता है तो उनको आलोचना को पॉजिटिवली लेना चाहिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये दूसरे लोगों का व्यू पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है।
1: जी बिल्कुल। जैसे एक चीज़ और आजकल देखने में आती है डॉक्टर लोकेश, आपने देखा होगा कि कई बार मान लीजिए दो मित्र हैं, तो या तो ये है कि उनमें शायद गहराई मित्रता की उतनी नहीं है, पर सपोज दो मित्र हैं और वो आपस में देखते हैं कि फला व्यक्ति के रील पे इतने व्यूज आए, इतने कमेंट्स आए, तुलनात्मक रूप से वो देखते हैं, तुलना करते हैं वो, तो जो मित्रता है, मित्रता में कहीं ना कहीं वो असर डालता है। तो जो एक वास्तविक मित्र था, आपने एक आभासी दुनिया की एक घटना से, उसमें भी एक कंपटीशन एक पैदा हो गया है, ये ऐसा क्यों है?
0: मैं जनरली लोगों को कहता भी हूँ, हमारे जो भावनाएं हैं, जिसको कहते हैं ईर्ष्या और जलन, द्वेष, ये एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। अब क्या होता है कि जब दो दोस्तों में कहते हैं ना कि बहुत अच्छी गहराई है, पर एक अगर अच्छे मार्क्स ला रहा है, दूसरा कम ला रहा है, तो वो उसको लगता है कि मैं पीछे रह गया हूँ, ये कैसी दोस्ती हमारी। पर ये जो दूसरों के लाइक्स से कंपैरिजन करके और फिर हम दोस्ती के बीच में लाना, ईर्ष्या को बीच में लाना, उसको हमें हमेशा हटा के रखना होता है। दोस्तों के बीच में अगर ईर्ष्या आ जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, कई बार लोग किसी ट्रिप पे गए और अपना फोटो डाला, मुझे लगता है कि ये जो हमारा सिर्फ और सिर्फ कि हमने ये किया दूसरे लोगों को बताना, सोशल मीडिया के तौर पे दोस्तों को बताना अच्छा जरिया नहीं है लोगों तक मैसेज देने का। ज्यादातर लोग के मन में नेगेटिव इमोशंस आते हैं, इसकी बजाय मैं लोगों से ये सलाह देना चाहता हूँ कि वो कुछ सामाजिक मुद्दों पे, कुछ दोस्तों पे या अपने पारिवारिक मूल्यों पे, इस तरह की चीज़ों पर अगर वो कुछ अपना फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डालते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है।
1: जैसे कि आजकल हमने ये भी देखा है डॉक्टर साहब, कि जैसे कोई दिन विशेष आता है, माँ का दिवस, मदर्स डे, पिताजी के लिए कोई दिवस, फादर्स डे, तो ऐसे दिनों में एक होड़ सी आ जाती है सोशल मीडिया पे। हर किसी का सोशल मीडिया अकाउंट उसके माता पिता के तस्वीरों से भरा रहता है, पर वास्तविकता में अगर हम देखें तो ओल्ड एज होम्स में जितने लोग हैं, तो ये तो समाज की दूसरी तस्वीर बयां करता है। ये समाज ऐसा क्यों हो रहा है, इतना खोखलापन क्यों आ रहा है?
0: रिश्तों में जो हम कर रहे होते हैं और जो हम दूसरों को दिखा रहे होते हैं, दोनों में एक कॉन्ट्राडिक्शन आता है। जो वास्तविकता में अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें सोशल मीडिया पे जरूरत पड़ती है। लोग जरूर आंकते हैं लोगों को, ये बहुत गलत भी है कि इस इंसान ने अपने फादर्स डे के ऊपर अगर फादर के साथ फोटो नहीं डाली या नहीं डाली, इसका मतलब ये अपने फादर को उतना वैल्यू नहीं करता होगा। परंतु जो वैल्यू की जाती है वो अंदर से की जाती है, इंटरनल इमोशंस के साथ की जाती है, वो बाहर में दिखावे से नहीं की जाती है। जो दिखावा है सोशल मीडिया आने से, ये बड़ा है और उसको लोगों ने अपनी सोशल इमेज को करेक्ट करने का जरिया भी बना लिया है कि मेरी इमेज कैसी बन रही है, अच्छा ऐसी बन रही है, तो मैं इस तरह के पोस्ट डालूंगा तो शायद मेरी इमेज अच्छी हो जाएगी। दुखद बात यह है कि जो नेगेटिव चीजें हैं उनको बहुत जल्दी से ट्रोल किया जाएगा, पर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको लाइक्स भी कम मिलते हैं, उनको वैल्यू भी कम मिलती है। सामाजिक तौर पे ये ठीक नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, आपने मूल्यपरक बातें हमारे श्रोताओं को बताई। सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे हम नकार नहीं सकते। यह हमें जोड़ता भी है और कभी कभी दूर भी करता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद संतोष।
2: अभी आप सुन रहे थे सोशल मीडिया और संबंधों का मनोविज्ञान विषय पर भेंट वार्ता। इसमें भाग ले रहे थे डॉक्टर लोकेश सिंह शेखावत और संतोष द्विवेदी मनोज।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
4: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। नवदिल्ल्यां प्रधान

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतिना तो लाम इत्यमुना सह संभाषणं विहितवान्। अनेकानि संधिपत्राणि च विनिमयीकृतानि। टीवी के प्रमुखेन विजयेन तमिलनाडोः राज्यपालेन सह कृतं मेलनं। बहुमत संख्याभावे अपि प्रशासन निर्माणस्य प्रकटिता प्रतिबद्धता। असम राज्यस्य मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व शर्मा अद्य स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। नूतन प्रशासनस्य शपथ ग्रहण समारोहः प्रायः मई मासस्य एकादश दिनांकानन्तरं भविष्यति। अपि च भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य असम बिहार केरलम तमिलनाडु पुडुचेरी राज्येषु अतिवृष्टेः अनुमानं प्रकटितम्। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। भारत वियतनाम देशयोर्मध्ये अंकीय प्रौद्योगिकी दुर्लभ मृदा भेषज उत्पाद विनिमयनम् सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा अंकीय दान प्रणाली सहैव संस्कृति पर्यटन क्षेत्रेषु अनेकानि संधिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। अद्य अपराह्णे नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतिना तो लाम महोदयेन सह संभाषणानन्तरं सन्धिः अजायत। चर्चावधौ उभौ नेतारौ द्विपक्षीय संबंधानां सर्वेषु विषयेषु अथ च परस्पर हितस्य क्षेत्रीय वैश्विक प्रकरणेषु विस्तृतां चर्चां कृतवन्तौ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वीये संदेशे अकथयत् यत् वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतित्वेन निर्वाचितः सन् एकमासाभ्यन्तरे एव राष्ट्रपति तो लाम महोदयस्य इयं प्रथमा भारतयात्रा सूचयति यत् सः भारत वियतनाम संबंधाय प्राथमिकतां ददाति।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: सः अवोचत् यत् न्यासं जीवन्तं स्थापयितुं भारतं वियतनाम देशस्य प्राचीन चंपा सभ्यतायाः माइसन अथ च न्यान ताओ मंदिराणां जीर्णोद्धारं कुर्वत् अस्ति।
1: भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। हमारी साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मी सौन और नान टवर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करेंगे।
0: वित्तीय संपर्कं वर्धयितुम् अद्य उभाभ्यां देशाभ्यां केन्द्रीय वित्त कोषयोः मध्ये सहयोगः सुदृढः कृतः। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् भारतस्य UPI अपि च वियतनाम देशस्य फास्ट पेमेंट इति प्रणाली इत्येतौ अपि शीघ्रमेव सम्बद्धौ भविष्यतः। सः अवोचत् यत् भारतस्य एक्स्ट ईस्ट नीतेः तथा च विजन ओशन इत्यस्य वियतनामः एकः मुख्यः आधारस्तम्भो वर्तते। अस्मिन्नेव क्रमे वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतिः तो लाम महोदयः अवोचत् यत् वियतनाम देशः भारतेन सह 50 वर्षाणां राजनैतिक सम्बन्धानां अपि च 10 वर्षाणां व्यापक रणनीतिक सन्धिः इत्यस्य परिणामान् अतीव महत्वपूर्णान् मन्यते। तमिलनाडु राज्ये तमिलनाग वेत्री कजगम TVK इत्यस्य संस्थापकस्य सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे नूतनं शासनं निर्मातुं राजनैतिक वार्तालापः तीव्रः अभवत्। यतः तस्य दलस्य बहुमत संख्या 18-100 न्यूना अभवत्। राज्यपालः राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकरः अद्य अपराह्णे केरला चेन्नई नगरं प्राप्स्यति। नियुक्तः मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः अद्य सायं राज्यपालेन सह मिलित्वा प्रशासनं निर्माणार्थं आवेदनपत्रं समर्पयिष्यति। यावत् तमिलनाडु राज्ये विजयस्य नेतृत्वे टीवीके प्रशासनस्य समर्थनार्थं दलानां मध्ये अनैक्यं विस्तृतं भवति सहैव डीएमके कांग्रेस दलयोर दीर्घकालीनं मैत्रीभावमपि संकटग्रस्तम् अस्ति। कांग्रेस दलस्य यस्य पंच विधायकाः सन्ति टीवीके दलस्य समर्थनं कर्तुं निश्चिताः ते सन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। असम राज्यस्य मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा अद्य गुवाहाटी नगरस्य लोकभवने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य महोदयाय स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। विधानसभा निर्वाचन प्रक्रियायाः समाप्त्यनन्तरं मुख्यमंत्रिणा एतत् पदं त्यक्तम्। निर्वाचन परिणामानां घोषणानन्तरं राज्ये नूतन प्रशासनस्य निर्माणार्थं एतेन मार्गः प्रशस्तः अभवत्। त्यागपत्र समर्पणानन्तरं प्रसार माध्यमैः सह संभाषणं कुर्वन् डॉ. शर्मा अवदत् यत् राज्यपालेन मंत्री परिषदः त्यागपत्रं स्वीकृतम्, सहैव हि वर्तमान विधानसभा विखंडिता। नूतन प्रशासनस्य शपथ ग्रहण समारोहः प्रायः मई मासस्य एकादश दिनांकानन्तरं भविष्यति। आगामी मुख्यमंत्रिणः विषये पृष्टे सति सः स्पष्टीकृतवान् यत् भाजपा विधायक दलं नेतृत्व विषये निर्णयं विधास्यन्ति। तदनन्तरमेव नूतन मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषदः निर्माणं भवेत्।
2: जब तक नया मंत्री सभा का गठन नहीं होते है, तब तक मुझे और मेरा मंत्री सभा को केयरटेकर रूप से काम चलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिया। बीते 5 साल सरकार चलाने में हमारे राज्यपाल महोदय ने हमें जो मार्गदर्शन किया, इसके लिए भी मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद और हमारा ओर से अपना ग्रेटिट्यूड भी प्रस्तुत किया।
0: पश्चिम बंगे नूतन भाजपेति दल प्रशासनस्य शपथ ग्रहण समारोहः मई मासस्य नवम दिनांके कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड क्षेत्रे आयोजितो भविष्यति। राज्य भाजपा अध्यक्षः शमीक भट्टाचार्यः वार्ताहरैः सह संभाषणे अवोचत् यत् समारोहः प्रातः 10 वादने आरप्स्यते। अवधेयास्पदं वर्तते यत् अस्मिन् कार्यक्रमे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाहः अपि च भाजपा शासित राज्यानां अनेके मुख्यमंत्रिणः उपस्थिताः भविष्यन्ति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरीं समेत्य करैकल क्षेत्रे कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं विहितम्। ऋतु विज्ञान विभागेन सूचितं यत् अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु असमे, मेघालये, पूर्व राजस्थाने, हरियाणायां, चंडीगढ़े सहैव दिल्ली नगरे कतिपयेषु स्थानेषु विद्युत्पातेन सह झंझावातस्य तीव्र वायोः च संभावना वर्तते। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां अद्य सायंकाले सनराइजर्स हैदराबाद पंजाब किंग्स दलयोर्मध्ये क्रीडा भविष्यति। सायं 7:30 वादने क्रीडा आरप्स्यते। ह्यः दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलं 8 स्तोभैः पराजितम्। पुनरेकवारं मुख्याः वार्ताः। नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतिना तो लाम इत्यमुना सह संभाषणं विहितवान्। टीवीके प्रमुखेन विजयेन तमिलनाडोः राज्यपालेन सह कृतं मेलनम्। असमराज्यस्य मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व शर्मा अद्य स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान् इति वार्ताः।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: कार्यक्रम ग्राम संसार सुनने वाले हमारे सभी भाइयों बहनों को
1: राम राम।
0: लोकेंद्र भाई,
1: हाँ प्रीति बहन,
0: कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और कार्यक्रम में हम हमेशा कुछ ऐसा बताते हैं हमारे साथियों को कि ताकि उनका थोड़ा सा ज्ञानवर्धन भी हो और इसके अलावा हम कुछ ऐसी चर्चाएं लेकर आते हैं, कुछ ऐसी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हम जानकारी लेकर आते हैं जिससे कि हमारे जो भी साथी जन सुन रहे हैं कार्यक्रम, उन्हें कार्यक्रम सुन के बहुत अच्छा लगे।
1: बिल्कुल प्रीति बहन, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके साथ साथ आज हम एक महत्वपूर्ण दिन भी है, हम अपने भाइयों को बता दें कि आज है छत्रपति शाहू जी महाराज स्मृति दिवस। देखिए, जो हर साल 6 मई को मनाया जाता है, क्योंकि ये समाज सुधारक और प्रगतिशील शासक छत्रपति शाहू महाराज की पुण्यतिथि होती है। और उसके बारे में संक्षेप में हम अपने भाइयों को बता दें कि छत्रपति शाहू जी महाराज का जन्म 26 जून 1874 को हुआ था। वे कोल्हापुर के रियासत के शासक थे। वे सामाजिक और न्याय शिक्षा के समानता के बड़े समर्थक भी थे।
0: जी बिल्कुल, कितनी जानकारी आपने दी। और साथ में इनके योगदान पर अगर हम बात करें तो उन्होंने समाज में पिछड़े वर्गों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देने की पहल की।
1: हाँ हाँ।
0: और इसके अलावा सभी जातियों के लिए शिक्षा के द्वार खोलना उनका जो मुख्य लक्ष्य भी रहा और उसका इसमें योगदान, उनका इसमें योगदान भी काफी रहा। छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ मजबूत कदम उन्होंने उठाए। गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए कई योजनाएं हैं जो उन्होंने चलाई।
1: और इसके साथ इसका और भी हम अपने भाइयों को स्मृति दिवस का महत्व भी बता देते हैं कि ये दिन हमें सामाजिक समानता, शिक्षा और न्याय के प्रति जागरूक करता है। उनके विचार आज भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित हैं।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए अब हम करवाते हैं अपने साथियों का मनोरंजन और सुनवाते हैं कालू राम यादव और सतीश यादव से ये रागिनी।

0: प्रीति बहन,
1: जी
0: अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे, ये रागनी कलाकार थे कालूराम यादव और सतीश यादव।
1: और आइए अब जानकारी दिलवाते हैं सामान्य हड्डी एवं जोड़ों के रोग और उस पर क्या उपचार होगा, इस पर जानकारी देंगे डॉक्टर मोहम्मद अहमद जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, और इनसे बातचीत कर रही हैं नीलम मलकानिया। आइए सुनते हैं ये बातचीत।
2: नमस्कार, मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ। आपसे हम सामान्य हड्डी एवं जोड़ों के रोगों के बारे में तो पूछेंगे ही, साथ ही ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हमारी जीवन शैली से जुड़े हैं, आज उनका जवाब भी हमें डॉक्टर साहब से मिलेगा। सबसे पहले स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत।
3: जी शुक्रिया।
2: जैसा कि हमने कहा कि हड्डी के सामान्य रोग, हम ये अक्सर सुनते हैं फ्रेज, हड्डी के सामान्य रोग क्या होते हैं?
3: इसमें हड्डी और जोड़ों के जो रोग होते हैं, सबसे कॉमनली जो जोड़ों का दर्द, सूजन, ये बहुत कॉमन रहते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें कॉमनली है, जो किसी को भी हो सकता है, बट कॉमनली ज्यादा एज या लेडीज को अर्ली आजकल होने लगा है।
2: अगर हम जोड़ों के दर्द की बात करें तो हम सीधा इसे एक उम्र के ब्रैकेट से जोड़ते थे कि जैसे जैसे प्रौढ़ावस्था जो है आप उसकी तरफ बढ़ते हैं या बुजुर्गों में ज्यादा देखा जाता है, लेकिन आजकल हम बच्चों में भी पाते हैं और महिलाओं को भी बहुत कम उम्र से जोड़ों के दर्द जो है वो शुरू हो रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है?
3: बच्चों में हम ऑस्टियोपोरोसिस नहीं बोल सकते, कैल्शियम की कमी हो सकती है बच्चों में, बट जब हम वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं या लेडीज में खास तौर से जब उनका पीरियड्स बंद होने का टाइम, जिसे हम मेनोपॉज बोलते हैं, उसके नजदीक पहुंचती हैं, तब ये चीज ज्यादा तेज हो जाती है। तो उस दोनों में फर्क ये रहता है कि बच्चों में अगर हम उनको अच्छे से कैल्शियम, विटामिन डी और कुछ अच्छी डाइट दें और कुछ उनके एक्सरसाइजेस पे ध्यान दें तो वो रिकवर कर जाता है, पर वृद्धावस्था में या जो मैंने अभी चीजें बताई उनके मासिक जो बंद होने का टाइम आता है, तो उस टाइम पे वो इतना रिकवर नहीं कर पाते हैं उससे। तो उसके लिए भी रहेगा तो वही कि कुछ मेडिसिन्स हैं, कुछ एक्सरसाइजेस हैं, कुछ आपका जिसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल को चेंज करना है हमारा, उससे काफी कुछ चेंज हो जाता है।
2: तो डॉक्टर मोहम्मद, अभी आपने लाइफस्टाइल की बात की, तो हमारी लाइफस्टाइल अभी आजकल ऐसी हो गई है कि बहुत लंबे समय तक बैठना पड़ता है, चाहे वो काम के दौरान हो या फिर हम सफर कर रहे हैं, बहुत दूर कई बार ऑफिसेज होते हैं, वहां जाना होता है, तो बहुत लंबे समय तक बैठने से भी क्या हमारी हड्डियों पर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है?
3: बिल्कुल पड़ता है, और इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, हम बैठ सकते हैं, मना नहीं है, पर उससे पहले हम जिंदगी में अपने जो चेंजेस लाने हैं, हम एक्सरसाइजेस अच्छे से करें, पोस्चर्स को ठीक रखें, एक तो सोफे पे बैठना हो गया और एक बैठना चेयर पे बैठना हो गया, तो दोनों के में जो पोस्चर्स बिगड़ते हैं उससे रीढ़ की हड्डी में दर्द, कूल्हों में दर्द, ये बहुत कॉमन हो जाता है। अगर हम उन्हीं को पोस्चर्स के साथ ठीक कर रखें कि जैसे आपने कुर्सी पे बैठ गए, पीछे कुशन कुछ सपोर्ट लेकर के बैठेंगे तो, और जल्दी अपना पोस्चर बदल लें, तो उन सब चीजों से हम बच सकते हैं।
2: ये भी मैं जानना चाहूंगी कि हम लंबे समय तक कई बार मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे काम के लिए हो या फिर काम से फ्री होकर थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हो, तो ऐसे में हम देखते हैं कि गर्दन में अक्सर दर्द रहता है, सर्वाइकल पेन जिसे लोग कहते हैं, या स्पाइन भी जो है वो उसकी पोजिशन तो ठीक नहीं रहती पोस्चर की, तो इस बारे में आप क्या सलाह देंगे?
3: देखिए, भागदौड़ वाली लाइफ में और आज नेट की इतना ज्यादा योगदान है, तो उसमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी हम चीज उसको नहीं छोड़ सकते, तो सभी के ऊपर इसका इफेक्ट है बहुत ज्यादा। खास तौर से बच्चे आजकल मेरी ओपीडीज में बहुत आते हैं जिनको ये सारी गर्दन में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वो एक पोस्चर में बहुत देर तक, जैसे मैंने बताया था, क्योंकि वो पोस्चर सही नहीं होता, बैठ के पढ़ते हैं, बेड पे बैठ के पढ़ते हैं, बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं और सारे दिन फिर वो उसी एक जगह अपनी नजर को लगा के बैठे रहते हैं, चाहे वो कोई भी स्क्रीन है, चाहे वो आपका फोन है, चाहे वो आपका लैपटॉप है, तो उससे क्या होता है कि मसल्स धीरे धीरे धीरे वीक होती रहती हैं और उनके अंदर में सूजन या स्पैज्म आना शुरू हो जाता है, और फिर जब ये सब चीजें एक हद तक बढ़ जाती हैं तो फिर पेन आ जाता है। तो इसलिए ये भी कह सकते हैं कि अगर हमको इंटरनेट का फायदा भी है तो उसका दूसरा ये नुकसान भी हम ले रहे हैं जिंदगी में, कि फिर मैं एक बार से कहना चाहूंगा कि इसमें अच्छे पोस्चर्स, अच्छी एक्सरसाइजेस और अच्छी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब चीजें फॉलो की जाएगी तो हमारे लिए इंटरनेट भी या हमारा काम काज भी, जिसपे हम लैपटॉप पे बैठना है या कंप्यूटर पे बैठना है, तो हमें कोई नुकसान नहीं है।
2: अभी शुरुआत में आपने ऑस्टियोपोरोसिस का जिक्र किया था। आमतौर पर समझा जाता है कि हड्डी जो है वो अगर शरीर के अंदर ही घिसनी शुरू हो गई है, कैल्शियम कम हो रहा है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या हम इस अवस्था को ही ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं या इसके अलावा भी कुछ ऐसी फाइंडिंग्स हैं जिनका होना जरूरी है, और किस तरह से ये हमारे शरीर के बाकी हिस्सों को भी प्रभावित करता है?
3: इसमें समझने वाली बात यह है कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो एक वृद्धावस्था की तकलीफ कह सकते हैं उसे
2: जी।
3: तो हर व्यक्ति को जिसके थ्रू निकलना है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हमारी हड्डी है वो जवानी में बहुत अच्छे से मजबूत होती है, उसके अंदर बहुत कैल्शियम होता है, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वो उम्र बढ़ने का हम ये कह सकते हैं कि वो बीमारी नहीं है, उम्र के हिसाब से उस चीज में चेंजेस जो आते हैं उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है उसको बढ़ना और कम होना हम हमारे हाथ में है, पर रोक नहीं सकते उस ऑस्टियोपोरोसिस को। हाँ, किसी हद तक हम उसको कम कर सकते हैं। तो जैसे जो वृद्धावस्था में है और खास तौर से लेडीज हैं, जब उनका पीरियड्स बंद हो जाता है तो ये चीज हार्मोनल कमी के वजह से और फास्ट हो जाता है। तो उसमें बेसिकली होता वही है कि हड्डियां भुरभुराने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं, कैल्शियम निकलने लगता है। जो अभी तक हम कैल्शियम खाते थे वो वापस कैल्शियम में हमारी हड्डियों में जाता है, पर उस अवस्था में वो वापस निकलना शुरू हो जाता है। आज बहुत सारी क्लिनिक्स में इनका इलाज होता है और रोजमर्रा की ऑर्थोपेडिक क्लिनिक्स में ऐसे पेशेंट्स की, ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा तादाद है, पर उनको एक ही चीज बताई जाती है कि आप कैल्शियम लें, आप विटामिन डी खाएं, एक्सरसाइज करें। पर बहुत कॉमनली लोग जो हैं जो इस चीज को अभी भी इवन तक की बड़ी बड़ी क्लिनिक्स में नहीं बताया जाता कि प्रोटीन का इंटेक होना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रोटीन में नहीं लेंगे मात्रा में जितनी हमारा शरीर को चाहिए, तो वो हम कितना भी हम कुछ खाते रहेंगे विटामिन डी और कैल्शियम, तब तक हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी बोन का जो स्ट्रक्चर होता है अगर देखा जाए तो उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। और खासतौर से हमारे इंडियन कल्चर में जो है प्रोटीन बहुत कम खाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, पर जो वेजिटेरियन होने की वजह से तो वैसे भी उनके डाइट में जो है प्रोटीन नहीं होता है। तो इसलिए मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि आप जितना आपका वजन है उतना ही ग्राम प्रोटीन आपका रिक्वायरमेंट है डेली का, और साथ साथ में अपना विटामिन डी और कैल्शियम रखें, तो ये चीजों पे हम लोग काबू पा सकते हैं
2: जी। ये मैं आपसे

0: प्रोटीन ज्यादातर टिश्यूज के लिए माना जाता है, तो कैसे ये हमारी हड्डियों को सुरक्षित रखता है?
1: इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूंगा। जब हम अपना घर बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम कॉलम खड़ा करते हैं, तो कॉलम जब खड़ा होता है उसमें सबसे जरूरी चीज होती है, पहले होते हैं सरिया होता है जिसे स्टील कहते हैं, उसको बांध करके उसको सीधा खड़ा कर दिया जाता है। फिर उसके अंदर हम उसमें सीमेंट, गिट्टी या उसको हम कहें कि गारा जो होता है उसके अंदर भरते हैं। तो जो सरिया है वो हमारा प्रोटीन पार्ट है, और जो उसके अंदर हम गारा भर रहे हैं, जो उसके अंदर सीमेंट डाल रहे हैं, वो हमारा कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सब चीजें होती हैं। तो जब हमारा जब सरिया ही स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम उसमें कितनी भी उसमें डालते रहेंगे तो वो हड्डी में वो बात नहीं आएगी, वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो इसलिए हमको इस चीज पे भी जोर देना चाहिए कि हमारी अच्छी प्रोटीन डाइट जाए तो वो जो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है बोन का वो स्ट्रेंथ पकड़े।
0: और ऐसे में जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं वो कितने कारगर होते हैं?
1: सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं ऐसा मैं किसी के लिए नहीं कहूंगा, बट जरूरी चीज है क्योंकि जो वेजिटेरियन लोग हैं, क्योंकि उनकी डाइट में उतना प्रोटीन नहीं हो पाता, तो वो अपना सप्लीमेंट्स के रूप में बहुत सारे आजकल मार्केट में प्रोटीन्स मिलते हैं, तो अपने जिन भी डॉक्टर्स से मिलते हैं उनके परामर्श से वो अपना प्रोटीन को चूज करके और वो अपना प्रोटीन इनटेक बढ़ा सकते हैं।
0: तो डॉक्टर मोहम्मद अहमद, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बुजुर्ग जितने सक्रिय रहेंगे उनकी हड्डियां उतनी मजबूत रहेंगी, लेकिन अगर ऑस्टियोपोरोसिस की अवस्था है तो हड्डियां भुरभुरी हैं, तो ये भी डर रहता है कि एक्टिविटीज की वजह से कहीं फ्रैक्चर ना हो जाए, तो बहुत ही डिलेमा वाली ये सिचुएशन हो जाती है। ऐसे में किस तरह से बुजुर्ग एक्टिव भी रहें और चोट से भी बचे रहें?
1: देखिए, सबसे जरूरी चीज ये है कि जितना ज्यादा बोन्स को यूज करते हैं, अपने जॉइंट्स को यूज करते हैं, तो कैल्शियम ऑटोमेटिकली हमारी हड्डी के अंदर जाता है। जब हम जो भी कैल्शियम खाएंगे वो हमारी हड्डियों में पहुंचता है। हम जितना हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाएगी, मतलब कि जितना ज्यादा हमारी कम चलना फिरना, जितनी कम एक्टिविटी होगी, तो कैल्शियम हमारी हड्डियों में से बाहर आ जाता है। तो ये तो बहुत जरूरी बात है कि हम जितने भी बुजुर्ग हैं या उस स्थिति में पहुंच गए हैं तो उनका कम से कम इतना तो मूवमेंट होना चाहिए कि बैठे बैठे कुछ व्यायाम है या फिर उनको चलना है, जिसे वॉक करना कहते हैं हम, कि भाई सुबह शाम थोड़ा थोड़ा वॉक करें, तो वो जरूरी है। जो उनकी उम्र के हिसाब से जो उनको सूट करते हैं वो भी अपने वो डॉक्टर के परामर्श से पूछ सकते हैं उनसे कि उनको क्या क्या व्यायाम वो आराम से कर सकते हैं, जिसमें वो बैठ के भी कर सकते हैं, जिसमें वो चल के भी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है जो हमारे घुटने होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। तो क्योंकि वो चलेंगे तो एक दूसरी बात हो जाती है कि इधर तो हम उनको चलने के लिए कहते हैं, इधर उनके घुटने दुखते हैं। तो कुछ इस तरह के व्यायाम होते हैं जो बैठे बैठे भी कर सकते हैं, जिसमें वो अपने जोड़ों को, जैसे साइकिल चलाना, तो उसमें क्या होता है कि घुटने के ऊपर वजन नहीं आता पर उनकी एक्सरसाइज हो रही है, कि मसल्स जो है वो ताकत पकड़ती है। या फिर कुछ इस तरह से व्यायाम होते हैं जैसे अपने जो फिजियोथेरेपिस्ट उनको बैठ करके सिखा सकते हैं, तो उनके परामर्श से भी वो बैठ करके अपने व्यायाम कर सकते हैं।
0: यहाँ घुटनों का जिक्र आया है तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आर्थराइटिस, अक्सर हम सुनते हैं गठिया का रोग, ये कितनी तरह का होता है, आमतौर पर किस एज ग्रुप में होता है?
1: गठिया जो है बहुत कॉमनली हमारे देश में बहुत कॉमन है, और ज्यादा कॉमनली ये लेडीज में होता है, लड़कों में या मेल्स में बहुत कम मिलेगा। और इसकी जो उम्र है वो किसी की कोई फिक्स नहीं है, बच्चों में भी बहुत कॉमन है और लेडीज में एल्डर स्टेजेस में भी काफी कॉमन है। तो इसका कॉमन सिम्टम्स रहते हैं वो होता है हमारे जोड़ों का दुखना, उनमें सूजन आना और उनके अंदर में जकड़न रहना, और खास तौर से वो भी जब सुबह सो करके उठते हैं या आराम कर लेते हैं तो शरीर में सूजन आ जाना, सारे जोड़ों का दुखना। बट ये है कि अब इनको भी हम अपने डॉक्टर के परामर्श से और कुछ टेस्ट से इसका हम इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं और इससे हम इनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि भाई ये गठिया ही है या कुछ और तकलीफ तो नहीं है।
0: और ये दवाइयों से ठीक हो जाता है गठिया?
1: गठिया जो है वो दो तरीके से होती है, उसमें कुछ हम लोग सीरो पॉजिटिव बोलते हैं, यानी आपने खून का टेस्ट कराया और उसके अंदर में वो गठिया पॉजिटिव आ जाता है, और एक होता है सीरो नेगेटिव, जिसमें हम खून को टेस्ट करते हैं पर उसमें आपके लक्षण आपके शरीर में गठिया वाले होते हैं पर वो उसमें आपके खून में पॉजिटिव नहीं आता है। पर उन दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि जिनको पॉजिटिव आता है उन लोगों को जिंदगी भर दवा खानी होती है, उसी तरीके से उन लोगों को ध्यान रखना होता है कि हम अपनी दवा टाइम से खाएं और अपने डॉक्टर से परामर्श करके खाएं और रेगुलरली खाते रहें तो उनका जीवन स्वस्थ रहता है। बट जो अपनी मर्जी से खाते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है बीच में, क्योंकि इस तरह की बीमारियां जो होती हैं उन लोग परेशान हो जाते हैं कि हम दवा कब तक खाएंगे, तो उससे क्या होता है कि वो बीच में दवा छोड़ देते हैं, जब थोड़े दिन वो ठीक हो जाते हैं तो पर वो बीमारी फिर बढ़ के आती है।
0: घुटने से ही जुड़ा हुआ अगला मेरा प्रश्न है, नी रिप्लेसमेंट की कई बार जो है वो हालत हो जाती है पेशेंट्स की, तो अगर घुटने बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, मतलब चल नहीं पा रहे हैं पेशेंट, बहुत दर्द में हैं और या किसी चोट की वजह से, तो क्या नी रिप्लेसमेंट ही एकमात्र विकल्प है या ये स्थिति भी दवाइयों से और एक्सरसाइज से सुधर सकती है?
1: देखिए, जब हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस हम एक टर्म यूज करते हैं जो बेसिकली जो यूज होता है वो वृद्धावस्था में जब हमारे घुटने घिस जाते हैं अंदर, हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो ग्रीस खत्म हो जाती है, इसे बोलते हैं लोग, बोलते भी हैं, तो उसमें क्या हड्डी के कोने निकल जाते हैं, दोनों के बीच में

0: मेनिस्कस होता है, एक वॉशर होता है जो हम दोनों हड्डियों के बीच में घिसाव ना हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बना होता है, वो फट जाता है तो उसकी वजह से उनको दर्द बढ़ने लगता है। अब वो इसके चार ग्रेड होते हैं, तो शुरू के जो ग्रेड्स होते हैं उनमें इतना आपको दर्द नहीं होता और छोटे मोटे आप इलाज कर लेते हैं तो उससे आपको आराम मिल जाता है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और घिसाव बढ़ता चला जाता है तो वो दर्द नहीं जाता। तो सर्जिकल पार्ट या हम इसको नी रिप्लेसमेंट का पार्ट जब आता है, जब आपके सारे, जब मरीज को इतना दर्द हो कि वो किसी व्यायाम से, आपके आराम करने से, कुछ पेन की दवा खाने से भी आपको रिलीफ नहीं मिलता, तब हम उनको कहते हैं कि भाई आप रिप्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं।
1: स्पोर्ट्स इंजरी की बात करते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी जब होती है तो उसमें लिगामेंट टियर, हम अक्सर ये नाम सुनते हैं और बहुत लोग जो है वो बताते भी हैं, तो इसकी रिकवरी क्या दवाइयों से और खान पान से संभव है, या लिगामेंट अगर एक बार टियर हो चुके हैं तब उसके बाद जिंदगी भर वो दर्द जो है उसको सहना पड़ेगा पेशेंट को?
0: देखिए, लिगामेंट इंजरीज कॉमनली स्पोर्ट्स इंजरीज में आता है, जिसमें हमारे आजकल तो आप सब देखते हैं कि स्पोर्ट्स काफ़ी बढ़ गया है, हर बच्चा आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स को ले लें, चाहे हमारा क्रिकेट है, चाहे हमारा फुटबॉल है, बैडमिंटन है, तो ये बहुत स्ट्रेनुअस स्पोर्ट्स हैं जिनमें आपको चोट लगने के संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, और जब एक बार इंजरी हो जाती है तो अब वो डिपेंड करता है कि उसको किस तरह की इंजरी हुई, जिसको हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करके खास तौर से MRI में क्लियर कर लेते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर में लिगामेंट ऐसा हो गया कि वो बिल्कुल टूट गया है तो उसको हम संभव नहीं कि हम उसको दवा से ठीक कर सकें या व्यायाम से ठीक कर सकें, तो उसके लिए तो हमको उसको ऑपरेट करके उसको नया बनाना पड़ता है या उसको जोड़ना पड़ता है। और अगर छोटी मोटी कोई इंजरी होती है जिसमें डॉक्टर ही अपने परामर्श से उसको देख के बता सकता है या गाइड कर सकता है कि उसको किस तरह की इंजरी है, तो हाँ, बहुत सारी छोटी मोटी चोट हम दवा से, कुछ व्यायाम से और कुछ आराम से उसको ठीक कर सकते हैं।
1: एक शब्द जब हम सुनते हैं फ्रैक्चर तो बहुत डर लगता है इस शब्द से, शरीर में कहीं भी हड्डी के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि किसी पेशेंट को बताया गया कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है लेकिन प्लास्टर की जरूरत नहीं है और कुछ समय जो है वो शरीर के उस हिस्से को आप सीधा रखें या ध्यान रखें तो वो ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कैसे होता है कि हड्डी में चोट लगी लेकिन अपने आप वो हील हो गई?
0: शरीर में कोई भी चोट लगेगी तो हमारी नेचर ने, भगवान ने हमारे शरीर को इस तरीके से प्रोग्राम किया है कि वो आज चोट लगी और उसके अगले दिन से ही वो, नेक्स्ट टाइम से ही उसके कुछ मिनटों में ही वो रिकवरी भी स्टार्ट हो जाती है उसके अंदर में। पर हड्डी जुड़ने का जो प्रोसेस होता है वो कुछ हफ्तों से और कुछ महीनों तक का होता है। आपका डिपेंड करता है कि आपका फ्रैक्चर हेयरलाइन है या उससे ज्यादा बढ़ के है। अगर कुछ हेयरलाइन टाइप की इंजरी और पैर की चोट है तो वो ज्यादा टाइम लेती है बजाय के हाथ की चोट के, क्योंकि आपको सारे शरीर का वजन पैर पे देना होता है, उसकी रिकवरी में टाइम लगता है। तो कम से कम हम अगर हेयरलाइन भी कोई क्रैक मानते हैं या फ्रैक्चर मानते हैं तो उसको कम से कम 1.5 महीना कम से कम चाहिए ही चाहिए होता है उसकी रिकवरी के लिए। हाँ, ये भी है कि अगर कोई फ्रैक्चर है तो हमको उसको प्लास्टर लगवाना चाहिए।
1: प्लास्टर क्यों हमें लगवाना चाहिए, वो कैसे हेल्प करता है?
0: प्लास्टर जो है, प्लास्टर जोड़ने में हेल्प नहीं करता, क्योंकि प्लास्टर का काम जोड़ना नहीं है। प्लास्टर का काम सिर्फ उस अंग को या उस जिस भी जगह पे फ्रैक्चर हुआ है उसको हिलने से रोकना होता है। जितना ज्यादा उस पार्ट पे जिसमें फ्रैक्चर हुआ है अगर वो हिलता रहेगा, उसकी जो रिकवरी है वो स्लो हो जाएगी। तो जब स्लो हो जाएगी तो एक तो दर्द बढ़ जाएगा आपका और दूसरा आपकी जो हीलिंग टाइम है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि जब भी कोई फ्रैक्चर हो, चाहे वो क्रैक फ्रैक्चर ही है, उसको हम प्लास्टर करें।
1: पैरों का जिक्र किया आपने, मैं जानना चाहूंगी, कुछ बच्चों को हमने देखा है जो जन्मजात ही थोड़ा टेढ़े होते हैं पांव उनके, और बच्चों को बहुत स्ट्रगल इस दौरान करना पड़ता है, सीधे खड़े नहीं हो पाते और आगे पूरा लाइफस्टाइल जो है वो उसी से जुड़ा होता है, उनकी जिंदगी भी। ऐसा कैसे होता है कि कुछ बच्चे जो है पैदाइशी वो इस बीमारी के साथ आ रहे हैं, और कितने हमारे भारत में ऐसे चांसेस हैं कि ये ठीक हो जाता है?
0: इसमें दो बीमारियां आती हैं खास तौर से। एक तो होती है रिकेट्स, जिसमें हमारे माँ के पेट से ही कैल्शियम और विटामिन डी की कमी लेकर के बच्चा पैदा होता है। तो जब वो पैदा हो जाता है तब तक तो नहीं पता चलता, जैसे जैसे वो अपनी और उम्र लेता है तब वो उसके पैरों में गोलाई आनी शुरू होती है, पैर टेढ़े दिखने शुरू होते हैं। तब उसका उपचार भी बहुत आसान सी है, उसमें कुछ हमको उसके कुछ खून की जांच करनी होती है ये देखने के लिए कि उसको कितना विटामिन डी कमी है या उसका कैल्शियम कितना कम है। कुछ एक्सरेज हैं, उनसे देख करके हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बीमारी रिकेट्स है, और इसको हम डॉक्टर के परामर्श से, इनके साथ में कुछ एक्सरसाइजेज हैं और कुछ अच्छी डाइट है और कैल्शियम विटामिन डी खाते हैं, तो ये बहुत अच्छे से रिकवर कर जाते हैं और इनको कभी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आती। दूसरी तकलीफ होती है जिसे हम क्लब फुट बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो जो हमारे पैर की जो हड्डियां होती हैं या जोड़ होते हैं वो माँ के पेट से ही इस तरह से बनावट होती है उनकी कि उनको हम बहुत अच्छे से जो ट्रीटमेंट करेंगे तो ही उसका आगे जिंदगी में आराम मिलता है, नहीं तो ठीक हो सकते हैं। अदरवाइज उनको आने वाले स्टेजेस में, शुरू के टाइम जब वो पैदा होते हैं तो उनको पैदाइशी 7 दिन के अंदर अंदर हम लोग उसको प्लास्टर देना शुरू करते हैं। उसका जो कोर्स रहता है वो अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो वो प्लास्टर से ठीक हो जाते हैं, नहीं तो उनको अलग अलग पड़ाव पे अपनी उम्र में कई सर्जरीज करनी होती हैं तो वो भी रिकवर कर जाते हैं।
1: यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम कहते हैं

0: कि जब शरीर में विटामिन्स की कमी है, कैल्शियम नहीं है, तो हड्डी के रोग होना शुरू हो जाते हैं। इससे बचने के लिए कई बार सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, विटामिन डी सैशे हो या फिर कैल्शियम हो। क्या ऐसा भी होता है कि अगर जरूरत से ज्यादा हमने इनटेक किया है तो ये भी नुकसान करता है?
1: इसमें कैल्शियम और विटामिन डी, विटामिन डी को हमको ऐसे देखना है कि जब तक विटामिन डी हमारे शरीर में नहीं है या उसकी कमी है तो हमारा शरीर कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जो हम कोई भी कैल्शियम खाएंगे, खाने में जा रहा है, चाहे वो हम उसको डाइट्री सप्लीमेंट यानी गोली के रूप में ले रहे हैं कैल्शियम को, तो जो हमारे पेट में जाएगा वो वहां से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जो हमारे खून में चला जाए। उसको हेल्प करता है विटामिन डी। और विटामिन डी जो है, जब भी स्टार्ट करें अपने डॉक्टर के परामर्श से और उसको टेस्ट करवा करके कि उसकी कितनी वैल्यूज आती हैं, क्योंकि अगर हम ज्यादा खाएंगे तो उसके नुकसान आते हैं शरीर में, तो वो आपके डॉक्टर बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि उसको कितने डोज में खाना है। और कैल्शियम जो है, वो कैल्शियम के जो फॉर्मुलेशन हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके से आते हैं, जैसे बच्चों के लिए अलग है, जवान लोगों के लिए अलग है, वृद्धावस्था के लिए अलग रहता है, या मेनोपॉजल वुमेन है उनके लिए डिफरेंट फॉर्मुलेशंस रहती हैं, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं। पर कुछ कुछ फॉर्मुलेशंस ऐसी भी होती हैं जिनको अगर हम बिना उसके डॉक्टर के परामर्श से खाते हैं तो उसमें कभी कभार किडनी के स्टोन्स बन जाते हैं, तो इसलिए उन लोगों को जिनको पहले से किडनी स्टोन्स रहते हैं तो वो अपने डॉक्टर के परामर्श से वो सारी फॉर्मुलेशंस खरीदें या वो लें जिनसे किडनी स्टोन्स नहीं बनते। अगर वो बिना परामर्श के भी 2-4 महीने एक्स्ट्रा खाते रहते हैं तो उसे कोई नुकसान नहीं होता।
0: यहाँ मैं आपसे आहार के बारे में भी जानना चाहूंगी, ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं या सब्जियां हैं जिन्हें हम अपने खाने में शामिल करें तो कैल्शियम और विटामिन डी हमें मिलता रहेगा?
1: देखिए, कोई भी फ्रूट्स कहते हैं या सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, वो हमारी सब शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं, तो इसलिए खास तौर पे मैं किसी एक सब्जी का या फल का नाम नहीं लूंगा कि यही ज्यादा खाना चाहिए। सब सब्जियों को और सब फलों को अपनी डाइट में अच्छे से उनको इंक्लूड करना चाहिए। और फिर से मैं एक बार इस महत्व को डालूंगा कि इसमें प्रोटीन की बहुत जरूरत है, तो अपने प्रोटीन को भी अपने इस खान पान में बढ़ाएं।
0: कैल्शियम से स्टोन बन सकता है, ये हमने सुना है बहुत बार, इसलिए अक्सर ये भी सुना है कि सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम लेना चाहिए, रात में सोते समय नहीं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कितना सही है?
1: देखिए, इसमें वो नहीं है कि आजकल, फिर मैं आपसे ये बात कहूंगा कि फॉर्मुलेशंस बहुत सारे आ गए हैं जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खाने के साथ खा रहे हैं या कि खाने के बाद खा रहे हैं, पर हम ज्यादातर यही कहते हैं कि या तो दोपहर खाना खाने के बाद खाएं या रात के खाना खाने के बाद खाएं।
0: जी,
1: इससे नहीं फर्क पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या फॉर्मुलेशन खा रहे हैं, तो इसलिए ये ज्यादा बेहतर आपके डॉक्टर बता पाएंगे कि आपको कौन सा आपके शरीर के लिए सूट करता है।
0: जैसा कि कार्यक्रम में आपने जिक्र किया कि अगर हम किसी घर की बात करें तो उसकी जो फाउंडेशंस होती हैं उनका सही होना बहुत जरूरी है, तो ऐसे ही हमारा पूरा शरीर हमारे हड्डियों के ढांचे पर टिका है, और ये ढांचा सही रहेगा तो शरीर भी ठीक रहेगा। आज आपने हमें सही पोस्चर्स के बारे में बताया और साथ ही बहुत सारे ऐसे सवाल जो कई बार मन में होते हैं उनके जवाब हमें आपसे मिले। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत जरूरी बातें हमसे की हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया।
2: प्रीति बहन, अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे सामान्य हड्डी एवं जोड़ों के रोग, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मोहम्मद अहमद, हड्डी रोग विशेषज्ञ, और इनसे बातचीत कर रही थी नीलम मलकानिया।
3: तो इसी के साथ हमारी जो घड़ी है वो इशारा कर रही है कार्यक्रम संपन्न होने का, तो कार्यक्रम ग्राम संसार यही संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी भाइयों बहनों को राम राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशकम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय ने राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं। श्री विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, इसीलिए उन्हें 1 सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा। आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोडंकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवीके प्रमुख से मुलाकात कर 5 विधायकों का

0: समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमा वलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवी के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसी के डीएमके के साथ गठबंधन में है। इस पार्टी के 2 विधायक हैं। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों

0: एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और हाउन ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए भारत वियतनाम का आभारी है। नई दिल्ली में आज हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया

0: बताया है कि देश भर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति में कमी की कोई खबर नहीं मिली है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
1: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
0: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एआई में तेजी से हो रही प्रगति, विशेष रूप से क्लाउड माइथॉस जैसे एआई आधारित भेद्यता पहचान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों की जांच के लिए साइबर सुरक्षा एआई नामक एक समर्पित कार्यबल का गठन किया है। सेबी का कहना है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां लाभकारी हैं लेकिन बड़े पैमाने पर साइबर जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में पंजाब किंग्स शीर्ष पर और सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को
1: राम राम, राम।
0: कार्यक्रम हाजिर हैं और मैं हूं आपके साथ प्रीति
1: और मैं हूं लोकेंद्र।
0: कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और शुरुआत करते हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें से एक योजना है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर।
0: जी
1: देखिए प्रीति बहन, इस योजना ये केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य है देश में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया है। और क्या है ये योजना, हम अपने भाइयों को भी बता दें प्रीति बहन। यह योजना फल सब्जी फूल मसाले औषधि पौधे और बागवानी फसलों के उत्पादन गुणवत्ता और विपणन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।
0: और इसका अगर हम मुख्य उद्देश्य की बात करें तो भाई इसके मुख्य उद्देश्य हैं कि बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़े, आधुनिक तकनीक और उन्नत खेती को बढ़ावा मिलना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज और भंडारण सुविधा विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इन सबसे क्या होगा कि किसानों की आय बढ़ेगी, जो कि एक बहुत ही बड़ा ध्येय है हमारी सरकार का, और जो निर्यात है यानी कि एक्सपोर्ट जो है उसको प्रोत्साहन मिलता है।
1: बिल्कुल पृथ्वी बहन, और इसके साथ साथ देखिए योजना के प्रमुख घटक भी हैं, हम वो भी बता देते हैं। NHM यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, इसमें पूर्वोत्तर व हिमालय राज्यों के लिए है। और नेशनल बम्बू मिशन, इसमें कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर, ये स्कीम है और इसके लाभ भी हैं, आप बता दीजिए।
0: लाभ अगर हम बात करें तो किसानों को सब्सिडी यानी कि अनुदान मिलता है।
1: हाँ हाँ।
0: और पौधा रोपण, सिंचाई, ग्रीन हाउस, शेड, नेट आदि की सहायता मिलती है। और जैसे भंडारण है, प्रोसेसिंग है, इसके लिए आर्थिक मदद भी सरकार देती है। और नई तकनीक को सीखने के लिए जो शिक्षण है उसके लिए भी एक तरह से वो भी हमारे लिए लाभ ही है, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं वो पहले शिक्षण ले लें और उसके बाद अपनी जानकारी में इजाफा करके फिर उसको अपनी खेतीबाड़ी किसानी या बागवानी में उसको उसका जिम्मेदार उसका इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल प्रीति बहन, इसका देखिए किसको लाभ मिलता है, कैसे मिलेगा, हम वो भी बता देते हैं। देखिए किसानों को इसमें लाभ मिलेगा और उसके किसान समूह जो एक समूह बना लेते हैं, हाँ, उसके अनुसार भी मिलेगा और स्वयं सहायता समूह भी बना के मिल सकता है और उद्यमियों को भी मिल सकता है। तो ये तो रही योजना। अब देखिए शाम का समय है, हमारे भाई

0: किसान भाई बहन फ्री होकर इंतजार करते हैं हमारे कार्यक्रम का। तो क्योंकि इस कार्यक्रम में हम अपने भाइयों को सुनवाते हैं उपदेश, तो सबसे पहले आप किसको सुनवा रही हो?
1: हम सुनवा रहे हैं रुस्तम सागर को, उनसे सुनते हैं ये उपदेश। नहीं, ये उपदेश नहीं है, हम सुनवा रहे हैं उनको भजन, क्योंकि शाम का समय है, संध्या भजन से शुरू करते हैं।
0: बिल्कुल।

0: प्रीति बहन
1: जी
0: अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे ये भजन, कलाकार थे रुस्तम सागर।
1: और आइए अब आपको जानकारी दिलवाते हैं समर वेजिटेबल फील्ड डे, ये जो खास दिन है उस पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सी एच श्रीनिवास राव, जो कि डायरेक्टर हैं एवं कुलपति हैं IARI पूसा नई दिल्ली में। आइए जानते हैं ये जानकारी।
2: सबको नमस्कार, किसान भाई बहनों और हमारा साथी इंडस्ट्री और स्टूडेंट्स विद्यार्थी है, आज हमारा ये मीटिंग से एटलीस्ट दो किसान भाई बहनों को प्रेरित किया ये सब्जियों को ये बनाने के लिए, और FPO को थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया। एंड हमारा तो भारत का तो खाना बहुत नेचुरल है, एंड हमारा फूड सिस्टम अलग है, सभी देश अलग है, भारत अलग है, लेकिन जब भारत का भोजन अलग है तो सब्जी का फ्रूट्स का बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा भारत 100 ईयर्स होगा 2047 में, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जो सब्जियों का, फ्रूट्स का एंड फूल का जो ज़्यादा डिमांड है। फॉर एग्जांपल अभी हमारा चावल का डिमांड है अभी से 2026 में, सो अगले 20 साल में हमारा चावल रिक्वायरमेंट है ज़्यादा नहीं है, 80 मिलियन टन्स ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। दान भी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तीन गुना 300% ज़्यादा कंट्री का रिक्वायरमेंट है सब्जी में। 340 जो मिलियन टन्स हैं अभी हार्टिकल्चर का हमारा रिक्वायरमेंट है, लगभग 1000 मिलियन टन्स का रिक्वायरमेंट है। तो अभी डॉक्टर्स भी बोलते हैं न्यूट्रिशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड काफ़ी डिफिशेंसीज है, तो हम लोग सब्जी को, फूल को बढ़ाने में ये न्यूट्रिशन का नेशनल एजेंडा है, ये पूरा करना चाहिए। बाद में जब हम लोग का 1000 मिलियन टन्स रिक्वायरमेंट है तो क्या करना चाहिए? अकेले फॉर एग्जांपल पूसा संस्थान पूरा भारत में अलग अलग सब्जी है, अलग अलग मिट्टी है, अलग अलग खाना पीना तरीका है, अलग अलग भौगोलिक टेम्परेचर्स है, हम केवल दिल्ली में इधर बैठ के पूरा देश का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकता है? नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग अलग अलग स्टेट्स में जाना चाहिए। जो बीज हमारा आज बहुत अच्छा डिस्प्ले किया आपने, टमाटो, चेरी टमाटो, करेला एंड अलग अलग मस्क मिलन है, अलग अलग फ्रूट्स है, समर कैलीफ्लावर, सभी आप बहुत अच्छा से डिस्प्ले किया, लेकिन लोगों को पास पहुंचना है तो क्या प्लेटफॉर्म है हम लोग बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा पुणे हमारा रीजनल सेंटर है, हम टारगेट पुणे में सीड प्रोडक्शन का टारगेट करने से महाराष्ट्र से और तेलंगाना को टारगेट कर सकता है। अगर हमारा वेलिंगटन है ऊटी का पास में तो केरला, तमिलनाडु।

0: तमिलनाडु को टारगेट कर सकता है, हमारा एक सेंटर बिहार में है उधर ईस्टर्न पार्ट में कर सकता है, एक कलिम्पांग वेस्ट बंगाल पहाड़ में तो उस रीजन में कवर कर सकता है। तो हम लोग ये सोचने के लिए समय है, हम लोग किसान भाई बहन है ना एक संगठित हो ही करना है, नहीं तो भारत में एक समस्या है, मार्केटिंग का चैलेंज है। आपको जो पैसा मिलना चाहिए 30-40% भी नहीं मिलेगा, बीच में ये मिडिल मैन खा जाएगा जो आपको मिलना चाहिए। ऐसे भी फार्मर का समस्या बहुत है। दूसरा है कभी भी खाद खरीद करना, कोई इनपुट खरीद करना है तो वो ऐसा बताएगा आपको चाहिए ये कंपाउंड है ये भी खरीद करो बताएगा। इस तरफ का जो इनपुट खरीद करने में और बीज प्रोडक्शन करने में अकेले किसान मुश्किल होगा, संगठित होके एफपीओ रूप में करना चाहिए, मार्केटिंग भी अच्छा करना चाहिए। सबसे बेस्ट पाइनएप्पल असम में होता है, तो कहाँ तक असम में के बंगाल तक पहुँचता है, लेकिन गुजरात में नहीं जाता, मुंबई में इतना बड़ा मार्केटिंग नहीं जाता। जाने के लिए क्या करना चाहिए, आप है ना 50 लोग मिलके करने से मार्केटिंग ट्रक बुक कर सकता है, 10 सुपरमार्केट से आज पाइनएप्पल डिमांड इस 15 दिन में क्या होगा आप मार्केटिंग कर सकता है। बीज बहुत मुख्य है, मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग साइंटिस्ट हमारे तरफ से नहीं है, किसान का नजर में रख के करना है। प्राइम मिनिस्टर सिंचाई योजना, पहले वाटरशेड प्रोग्राम होते थे, उसके बाद सिंचाई योजना है। प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन जी भारत रत्न अवार्डी हमारा पुराना निदेशक, किस खेत में एक फार्म पॉन्ड हो, किस खेत में एक बायोगैस प्लांट हो, एक खेत सुरक्षित है। लेकिन किस लिए बताया स्वामीनाथन साहब, ये बताया 40 साल पहले, लेकिन आज स्वामीनाथन साहब का जो मैसेज आज ज्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब भी यही है, पानी कहाँ जाएगा, अगर मेरा एक फार्म में एक कुआ बनाया, टिपिकल एरिड डिस्ट्रिक्ट ऑफ अनंतपुर में 40% मूंगफली बढ़ाया, एक लाइफ सेविंग इरिगेशन। लेकिन प्रॉब्लम यही है, जब किसान पूछ रहे खेत में हमारा 3 एकड़ जमीन है, हमारा 3 एकड़ में हम कुआ बनाने के लिए हम तैयार है, लेकिन जब बारिश नॉर्मल है तो हमारा 10% एरिया खराब हो रहा है, हमारा लैंड एरिया कम हो रहा है ना। इसका मतलब है किसान देख रहे हैं एक एक इंच के लिए देख रहे हैं, तो इसलिए हमारा अनुसंधान होगा ये 10% फार्म पॉन्ड नहीं आना है, 5% में लेके आना। सो हम लोग सब्जियों में भी एक एक इंटेंसिव करेला प्रोडक्शन होगा, और थोड़ा ब्रीडिंग के साथ प्रॉपर एग्रोनॉमी होना चाहिए, ब्रीडिंग के साथ पानी का महत्वपूर्ण होना चाहिए, एक एक बिंदु से ज्यादा हम लोग ये करना है। एंड मल्च का मेन्यूरिंग का हमने जिक्र किया, हम लोग खाद डालने से खर्चा ज्यादा होगा, अगर म्यूरेटा पोटाश कॉस्टली फर्टिलाइजर है, कहाँ से आता है म्यूरेटा पोटाश, भारत में मैन्युफैक्चर नहीं होता, इजराइल से, कनाडा से, रशिया से आता है, इतना से हम पेट्रोल डीजल खर्च करके इधर लेके आ रहे हैं, लेकिन जो गिरा हुआ पत्ता इज नथिंग बट म्यूरेटा पोटाश। जो केला है 1000 किलो पोटाशियम लेता है, लेकिन केवल 1000 में 50 किलो इकोनॉमिक यील्ड में रहता है, 95% ये पत्ता में ये ऋषि अवशेष में रहता है, अगर उसको मिट्टी में लेके आयो तो पूरा खर्चा सेव हो जाएगा। इस तरफ का थोड़ा सा संक्षिप्त में ये एक सब्जेक्ट के रूप में हॉर्टिकल्चर काफी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है, कम जगह में कम पानी मैनेज करके एक्सपोर्ट, जो अभी हम लोग इतना हैप्पी हैं 60 बिलियन एग्री एक्सपोर्ट्स हैं, लेकिन अगर 60 एक्सपोर्ट उसी पानी को, उसी का फर्टिलाइजर को, उसी भूमि को लेके, उसी का वातावरण लेके सब्जी में मरने से हम लोगों को 100 बिलियन यूएस डॉलर्स एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इसलिए ये नेचुरल रिसोर्सेस और जो एक्सपोर्ट्स है बैलेंस करना चाहिए। एक बार मिट्टी जाने के बाद मिलेगा नहीं पानी, तो कभी कभी बारिश आ सकता है, एक बार मिट्टी निकलने के बाद फिर ये कुछ भी नहीं होगा। आज हम लोग काफी वेराइटीज कमर्शलाइज किया, करेला हमारा 160 हाइब्रिड्स वो डिस्प्ले किया, अलग अलग रीजन्स के लिए, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए, कंज्यूमर प्रेफरेंस के लिए काफी अच्छा डिस्प्ले किया, एंड सीड प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा प्रस्तुत किया। एक हमारा किसान आया, बीज अवेलेबल नहीं है, बीज अवेलेबल केवल पूसा संस्थान से नहीं होगा, सब हम लोग पार्टिसिपेटरी सीड प्रोडक्शन करना चाहिए, एग्रीकल्चर भी एक बिजनेस रूप में जाना चाहिए, बिजनेस रूप में जाना चाहिए, प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन चाहिए, सब्जियां इस तरफ हाई वैल्यू क्रॉप होना चाहिए, इसकी तरफ वैल्यूएशन प्रोसेसिंग लिंक करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए, देन ओनली किसान खेती हमारा भारत में खड़ा रहेगा। हम लोग गर्व से बताएंगे भारत ये कृषि संपन्न देश है, रहेगा, हमेशा रहेगा।
1: प्रीति बहन
2: जी,
1: अभी जानकारी सुन रहे थे हमारे

0: भाई बहन, समर वेजिटेबल फील्ड डे, इसमें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सी एच श्रीनिवास राव, जो कि डायरेक्टर एवं कुलपति हैं IARI पूसा नई दिल्ली से, और इसमें सहयोग था विशाल और अंकित का।
1: तो आइए अब सुनवाते हैं सत्यदेव सागर से ये उपदेश।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:30 हो चले हैं और ये समय होता है, हमारे श्रोता जानते हैं, गज़ल और कव्वाली के लिए समर्पित नगमों का। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में हम शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं जगजीत सिंह साहब की इस गज़ल के संग।

इसी के साथ गज़लों की इस महफिल को यहीं अंजाम देते हुए मैं दीप्ति आपसे इजाज़त चाहूँगी। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल शिक्षकों और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन में वृद्धि को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत प्रदान करने के लिए 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को रवाना किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में ढकेलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। और कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल शिक्षकों और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि विभिन्न विषयों में कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले लगभग 1130 वोकेशन

0: दिया गया है। इस वृद्धि से शिक्षकों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी और उनका मनोबल भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये निर्णय केवल शिक्षकों के लिए आर्थिक लाभ नहीं बल्कि शिक्षकों के समर्पण और कठिन परिश्रम का सम्मान है। अब समग्र शिक्षा अभियान के शिक्षकों को प्राइमरी और अपर प्राइमरी शिक्षकों के समान वेतन मिलेगा जिससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय से भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत प्रदान करने के लिए 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को रवाना किया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में लू की कार्य योजना पर लगातार काम चल रहा है। वहीं सरकार ने पूरे शहर के लिए लू की कार्य योजना जारी की है जिसमें सरकार ने हर वर्ग के व्यक्तियों को शामिल किया है। इस योजना पर एक पुस्तिका भी जारी की गई है और दिल्ली में भीषण गर्मी से निपटने के लिए 13 जिलों के लिए 13 वाहन तैनात किए गए हैं। इन वाहनों द्वारा वाटर कूलर, प्राथमिक चिकित्सा उपकरण, ORS और टोपी और तौले जैसी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी जिसमें भीषण गर्मी के दौरान चौराहों पर खड़े लोगों को राहत प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में अधिकारियों और बच्चों को पानी की कमी से बचाव के लिए जलपान अंतराल सहित व्यवस्थाएं विकसित करने के निर्देश दिए हैं।
1: दिल्ली सरकार बहुत ही ज्यादा कंसर्न्ड है श्रमिक भाई बहनों को लेकर के जो गर्मी के दौरान बाहर काम करते हैं उनके लिए हमने 1 से 4 रेस्ट भी दिशा निर्देशित किया है और बच्चों को भी स्कूल में हमने पूरी तरीके से डिहाइड्रेशन के लिए वाटर बेल से लेकर के उस पूरे सिस्टम को डेवलप करने के लिए स्कूल अथॉरिटीज को बोला है। हॉस्पिटल्स में हीटवेव से रिलेटेड सारी मेडिसिन की अवेलेबिलिटी, एक्स्ट्रा बेडिंग की फैसिलिटी, इस सबका भी समाधान दिल्ली सरकार ने किया है।
0: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स के वार्षिक दिवस समारोह में शामिल हुए। उपराज्यपाल ने छात्रों से AI और ज्ञान आधारित परिवर्तन के युग में गुरुवाणी के ज्ञान का अनुसरण करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जब किसी संस्थान का संकल्प राष्ट्र के साथ जुड़ा होता है तो उसकी उपलब्धियां राष्ट्र की उपलब्धियां बन जाती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सम्मान सभी विद्यार्थियों के मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि ये संस्थान उत्कृष्ट परंपरा के माध्यम से युवाओं में केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की भावना भी विकसित कर रहा है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित विश्वविद्यालय के अन्य लोग भी उपस्थित रहे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में धकेलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह आकर्षक विदेशी नौकरियों का लालच देकर भारतीय नागरिकों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भेज रहा था।
2: CBI ने मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, काशीपुर और उत्तर प्रदेश के गोंडा और सहारनपुर जिलों सहित 4 राज्यों में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई व्यापक राष्ट्रव्यापी जांच के बाद की गई जिसमें पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। एजेंसी ने इस गिरोह में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए क्रिप्टो करेंसी सहित वित्तीय लेन देन पर भी नजर रखी। इस दौरान उन्होंने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जिनमें महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। तस्करी में शामिल होने के आरोप में लखनऊ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह भारतीय नागरिकों को इन धोखाधड़ी केंद्रों में भेजने के लिए एजेंटों को रिश्वत देते थे। CBI ने लोगों को अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले नौकरी के प्रस्तावों, विशेष रूप से सोशल मीडिया या ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से साझा किए गए प्रस्तावों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। CBI ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव खतरनाक हो सकते हैं और गंभीर परेशानी का कारण बन सकते हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए दिशा निर्देश जारी किए। श्री प्रधान ने कहा कि ये समितियां विद्यार्थियों, शिक्षकों और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समग्र शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में विकेंद्रीकृत शासन के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में SMC के गठन पर विशेष बल दिया गया है। श्री प्रधान ने कहा कि जमीनी स्तर पर स्कूली शिक्षा को मजबूत करने में SMC की अहम भूमिका है।
3: बच्चों की चौमुखी विकास के लिए उनकी पढ़ाई, उनकी स्वास्थ्य, उनकी व्यवस्था, उनकी मेंटल हेल्थ, CWSN, इस सारा विषयों के ऊपर सरकार की दायित्व है व्यवस्था बनाना। लेकिन व्यवस्था की आगे जो हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है, मेंटरिंग की आवश्यकता है, उसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बहुत बड़ा भूमिका है। आने वाले दिनों में देश में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की एक संस्कृति बनानी पड़ेगी, एक जन आंदोलन बनानी पड़ेगी।
0: इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि नए दिशा निर्देशों से विद्यालय प्रबंधन समितियां SMC महज निगरानी करने वाली संस्थाओं से ऊपर उठकर एक वास्तविक विद्यालय समुदाय संचालन संस्था बन जाएंगी। श्री सूद ने कहा कि SMC अब बच्चों के सर्वागीण

0: विकास, शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थी कल्याण, डिजिटल प्रशासन और पारदर्शिता में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर से जुड़े एरावत रिसर्च फाउंडेशन एआरएफ के साथ एक समझौता करेगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि दिल्ली की पर्यावरण नीतियों को भरोसेमंद डेटा और व्यवहारिक नतीजों के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि सुशासन के जरिए लोगों को स्वच्छ हवा मिल सके और इस समझौते का उद्देश्य पर्यावरण विभाग और एआरएफ के बीच एक सहयोगी ढांचा तैयार करना है। सरकार ने बताया है कि देश भर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये जानकारी दी।
1: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
0: श्रीमती सुजाता ने बताया कि घरेलू एलपीजी और पेट्रोल तथा डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।
2: जो घरेलू कुकिंग एलपीजी सिलेंडर का प्राइस है वो चेंज नहीं हुआ है। जो आपने इंक्रीज की बात की वो सिर्फ कमर्शियल के सिलेंडर के लिए हुई है। मैं दोबारा से कहती हूँ कि डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर पर कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। इसी तरह जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल है उसके प्राइस में भी अभी कोई वृद्धि नहीं की गई है।
0: इस बीच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आज बकरवाला और नांगलोही में चल रहे अवैध एलपीजी रिफिलिंग मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कालाबाजारी और अधिक कीमत वसूलने के लिए जमा किए गए 96 अवैध एलपीजी सिलेंडर बरामद किए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 को संसद में पेश करने को मंजूरी दिए जाने की सराहना की है। इससे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़कर 37 हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम न्याय प्रक्रिया को नई गति देगा, लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाएगा और गरीब तथा दूरदराज के याचिकाकर्ताओं के लिए न्याय तक पहुंच को आसान बनाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने आज डॉक्टर आरपी नेत्र विज्ञान केंद्र में 40 दृष्टिबाधित व्यक्तियों को एआई से लैस स्मार्ट विजन चश्मे वितरित किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके माध्यम से वो ध्वनि के जरिए अपने आसपास के वातावरण को समझ सकेंगे।
3: एआई आधारित ये स्मार्ट चश्मे दृश्य जानकारी को बोली जाने वाली भाषा में परिवर्तित करते हैं, साथ ही ये वस्तुओं की पहचान करने, चेहरों को पहचानने, रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने और नेविगेशन में सहायता प्रदान करने में सक्षम होते हैं। यह उपकरण दृष्टि बाधित व्यक्तियों को उनके दैनिक कार्यों को बिना किसी बाधा के करने में मदद करता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में सामुदायिक नेत्र विज्ञान के प्रभारी डॉक्टर प्रवीण वशिष्ठ ने बताया कि एम्स ने दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में पहले से चिन्हित कम दृष्टि वाले बच्चों को ऐसे लगभग 1700 एआई सक्षम चश्मे वितरित करने की योजना बनाई है।
4: इस चश्मे में जो चीज दिखाई देनी चाहिए उसको सुनने में चेंज किया। जैसे चश्मा अगर किसी बच्चे ने लगाया हुआ है, ये कनेक्ट होता है स्मार्टफोन से और ये अपने आप बता देते कि आसपास सराउंडिंग में क्या क्या चीजें अवेलेबल। अगर बच्चे को कोई किताब पढ़नी है तो चश्मे की वजह से उसकी जो फोटोग्राफ आ जाती है और उसकी जो फोटो होने के बाद वो उसको सुन सकता है। किसी बच्चे को नोट की पहचान करनी है तो उसको नोट को चश्मे के सामने रख दे, चश्मा अपने आप बता देता है कि ये इतने रुपए का नोट।
3: आकाशवाणी समाचार से अपने अनुभव साझा करते हुए एक लाभार्थी ने एम्स की इस पहल की सराहना की और कहा कि ये स्मार्ट विजन चश्मे उनके जीवन में काफी मददगार साबित होंगे।
5: जब मेरे पास ये स्मार्ट ग्लास नहीं था तो टीचर्स आते थे जो कि बोर्ड पर लिख करके चले जाते थे, तो हमारे साथी जितने भी फ्रेंड्स थे नॉर्मल वो तो सब चीजें पढ़ लेते थे लेकिन हमें पता नहीं चलता था जब तक कि टीचर्स नहीं बताते थे। स्मार्ट विजन ग्लासेस से जो मुझे फेस करनी पड़ी प्रॉब्लम 9th to 12th में, वो मेरे आने वाले साथियों को फेस नहीं करनी पड़ेगी।
3: इससे पहले एम्स ऐसे 53 स्मार्ट विजन चश्मे वितरित कर चुका है जो लाभार्थियों को अपने दैनिक कार्य आसानी से करने में सहायता कर रहे हैं। आनंद कुमार के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी ने नई दिल्ली में अपने प्रमुख शोध पत्रिका संचार माध्यम का एक विशेष स्मृति अंक जारी किया। यह अंक भारत में हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने के अवसर पर प्रकाशित किया गया है। इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि 2047 तक विकसित देश बनाने के लक्ष्य में संचार, अनुसंधान और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। दिल्ली पुलिस ने आज छात्र पुलिस कैडेट प्रोग्राम के अंतर्गत जहांगीरपुर स्थित

0: के ब्लॉक के राजकीय बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में ई सुरक्षा पर 16वां सत्र आयोजित किया। इस कार्यक्रम में लगभग 80 विद्यार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा, सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं और डिजिटल खतरों से सावधान रहने के लिए जागरूक किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2026 के कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली अब खेलों के वैश्विक मंच पर नई पहचान दर्ज कराने जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने बताया कि यह प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। 7 दिनों तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों के रोमांचक मुकाबले आयोजित होंगे। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि आने वाले समय में टिकटिंग, स्वयंसेवकों की भागीदारी और विस्तृत खेलों की समय सारिणी से संबंधित जानकारियां भी जारी की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया सहित 35 से अधिक कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह प्रतियोगिता राजधानी के आधुनिक खेल सुविधाओं, बेहतर बुनियादी ढांचे और विश्व स्तरीय आयोजन क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगी। वहीं दिल्ली कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह प्रतियोगिता भारत के उभरते हुए टेबल टेनिस खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय मंच पर उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि राजधानी को देश की प्रमुख स्पोर्ट्स कैपिटल के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस महासंघ और भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नितिका गुप्ता।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया कल नई दिल्ली के कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। ये पहल 4 नए श्रम संहिताओं के माध्यम से किए गए परिवर्तनकारी सुधारों पर आधारित है, जो 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 व्यापक स्तंभों के अंतर्गत समेकित करती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गडकरी ने कहा कि जीवाश्म ईंधन के सर्वोत्तम विकल्पों के उपयोग और जनता के बीच इसके प्रचार प्रसार के लिए व्यापक शोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रूपये की लागत से सड़कों का निर्माण हो रहा है। राजधानी में आज दिन के समय हल्की धूप रही। अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल आसमान साफ रहेगा, साथ ही आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल शिक्षकों और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन में वृद्धि को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भीषण गर्मी और हीट वेव से राहत प्रदान करने के लिए 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को रवाना किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में ढकेलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। और कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। हेलो, सलाम, नमस्ते। फिल्म संगीत से सजी गीत मालिका की रोलर कोस्टर राइड लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ मैं, योर्स वेरी ओन दीप्ति। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ बातें और कुछ खास गीत। तो क्या कहते हैं, करें अपनी रोलर कोस्टर राइड को किक स्टार्ट विद अ सिंपल कप ऑफ कॉफी।

कभी सोचा है दोस्तों, एक सिंपल सी कॉफ़ी भी किसी के साथ हो तो उसका टेस्ट थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और स्पेशल क्यों लगने लगता है? शायद वजह कॉफ़ी नहीं, वो साथ होता है जो हर छोटी छोटी चीज़ को यादगार बना देता है, ठीक वैसे ही जैसे आपका और हमारा साथ। वैसे एक

और है मेरे दिमाग में। कभी कभी ना मुस्कुराहट भी एक कहानी कह जाती है, कभी कभी मुस्कान भी दिल में एक हल्की सी कसक छोड़ जाती है। जब हंसी में भी थोड़ा सा मलाल छुपा हो और जब दिल कुछ कहे और लफ्ज साथ ना दें, तो शायद वही एहसास बन जाता है एक गीत। सुनवाती हूँ आपको एक बहुत प्यारा सा गीत, जिसे सुनने से ज़्यादा अगर आप महसूस करेंगे तो शायद जो मैंने कहा वो समझ सकेंगे।

जी हाँ, आपसे ही कह रहे हैं हम। जरा मुस्कुरा दीजिए। वैसे दोस्तों, प्यार में ना एक बहुत क्यूट सी प्रॉब्लम होती है। क्यूट, हाँ क्यूट कह सकते हैं, क्योंकि ये जो दिल है ये तो किसी पर आ जाता है, लेकिन दिमाग जो है ना ये अपना काम करता रहता है, हल्का हल्का टीज करता ही रहता है कि यार सच में इसके काबिल हूँ भी या बस ओवर थिंकिंग चल रही है। और फिर हर छोटी बात में हम मीनिंग ढूंढने लगते हैं। उसकी एक स्माइल, एक रिप्लाई, एक नज़र, सब कुछ सडनली स्पेशल लगने लगता है। और बस इसी स्वीट सी कंफ्यूजन और दिल के हल्के फुल्के सवालों को लेकर सुनवाने वाली हूँ आपको ये अगला।

तो अगर आप भी कभी किसी के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचने लगे हों, उनकी एक हाई पर दिल ने थोड़ा सा ज्यादा धक धक कर दिया हो और सीक्रेटली ये सोचा हो कि काश मैं इसके काबिल बन जाऊं, तो जनाब ये गाना सीधा आपके दिल से कनेक्ट करेगा। थोड़ा सा ब्लश कीजिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए और इंजॉय कीजिए।

और दोस्तों कभी नोटिस किया है, कुछ फीलिंग्स ना बिना नॉक किए दिल में एंट्री ले लेती हैं, ना कोई प्लान ना कोई रीज़न, बस एक नज़र एक मुस्कान और दिल क्वाइटली बोल उठा है कि ओहो कुछ तो हुआ है। और फिर हर एक छोटी सी बात में वही शख्स नज़र आने लगता है। अच्छा सॉन्ग्स भी ना थोड़े ज़्यादा सडनली थोड़े से और ज़्यादा रिलेटेबल लगने लगते हैं। तो अगर आप भी कभी बिना वजह मुस्कुराए हैं, कभी आपने भी फील किया है कि किसी एक स्पेशल का नाम आते ही दिल ने थोड़ा ज़्यादा धक धक करना शुरू कर दिया है और आप खुद से ही पूछ रहे हैं कि भाई हुआ क्या है, तो जनाब ये गाना एग्जैक्टली आपके दिल की कहानी है। थोड़ा सा इश्क, थोड़ी सी शरारत और बहुत सारी फीलिंग्स के साथ सुनिएगा।

हाँ जी, तो अभी अभी आपने महसूस किया कि कुछ तो हो गया है, मतलब दिल ने क्वाइटली किसी को नोटिस तो कर लिया है, बिना परमिशन, बिना वार्निंग, बिना पूछे। और अब हालात ये हैं कि हर छोटी सी बात में, हर छोटी बड़ी बात में वही याद आ रहा है। एक रैंडम सी बात भी होती है ना, तो दिल कह उठता है, अरे यार उससे बतानी है, उससे ये बात कहनी है। और पता है क्या, यहीं से कहानी हो जाती है थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग। जब कुछ हो गया है से सफर बढ़कर सब कुछ उसी तक पहुंचने लगता है, मतलब दिल की हर बात, हर फीलिंग, हर छोटी बड़ी कहानी एक ही एड्रेस पर डिलीवर होने लगती है। तो अगर कभी आपने ये स्टेज भी क्रॉस की है, या अगर आप अभी इसी स्टेज पे हैं, तो ये जो नेक्स्ट सॉन्ग है ना, ये बिल्कुल आपके दिल की बात है। सुनिएगा जरा।

जी हाँ, तुम तक। अभी आपने महसूस किया ना? और ये कुछ ऐसी फीलिंग है जिसे आप सिर्फ फील ही कर सकते हैं। मतलब कहकर बता पाना, लफ्जों में बयां कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है ना? हर दिल की बात, मतलब दिल की हर एक बात, हर एक एहसास जब एक ही शख्स तक पहुंचने लगे, और जब ये फीलिंग थोड़ी और गहरी हो जाती है ना, तो दिल सिर्फ बताना ही नहीं चाहता है, बल्कि उस एहसास में थोड़ा थोड़ा खो भी जाना चाहता है। और फिर वही मोहब्बत, थोड़ी सी और नज़ाकत और थोड़ा और करीब आकर एक छोटी सी ख्वाहिश, एक खूबसूरत सी ख्वाहिश बन जाती है मीठी सी चाहत। तो भाई, अगर कभी आपने भी इस एहसास को दिल से महसूस किया है, या आप कर रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं, तो अब वक्त है उसी प्यार को थोड़ा सा और करीब से जीने का।

0: नहीं भाई, ये ना तो कॉमेडी है ना ये ट्रेजेडी है, ये तो है एक फीलिंग, एक एहसास जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, एक शुरुआत, एक हल्की सी चाहत जो दिल में चुपके से बिना पूछे बिना परमिशन के अपनी जगह बना लेती है, और जब यही चाहत थोड़ी बढ़ती है ना तो दिल सिर्फ महसूस नहीं करता, थोड़ा थोड़ा बेचैन भी होने लगता है, और फिर वही मोहब्बत थोड़ी सी नज़ाकत छोड़कर, थोड़ी सी शरारत, थोड़ी सी बेकरारी में बदल जाती है, जहाँ दिल हर पल उसी के बारे में सोचता है और खुद ही खुद मुस्कुराते रहता है। तो अगर आप भी इस प्यारी सी बेचैनी को महसूस कर पा रहे हैं ना, तो अब वक्त है इस एहसास को थोड़ा और करीब से समझने का, सुनने का।
1: जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा। Who is he?

जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है उनको हम बता दें कि आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग, कार्यक्रम चल रहा है गीत मालिका और मैं हूँ आपकी अपनी दीप्ति पाठक निधीश।

फिलहाल तो मेरे हाल का कुछ ऐसा सवाल है कि कार्यक्रम बढ़ रहा है अपने अंतिम पड़ाव की ओर, लेकिन अभी भी गुंजाइश है एक प्यारी सी बात और एक प्यारे से गीत की। तो कभी कभी होता क्या है ना दोस्तों, कि प्यार ना बहुत शोर से नहीं आता, वो बहुत हल्के से चुपके से दिल में उतरता है और फिर हर धड़कन को थोड़ा थोड़ा खास बना देता है। और जब ये एहसास अपने पीक पर होता है ना, तो ये जो दिल है ये बस हंसना चाहता है, जीना चाहता है और उसी एक फीलिंग में खो जाना चाहता है। तो बस आज के इस प्यारे से सफर को यहीं पर एक मीठी सी मुस्कान के साथ मैं छोड़ूंगी, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं ये गीत। मैं ये गीत आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ और हम बने हुए हैं फिलहाल आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पे। सुनिधि चौहान की आवाज़ में ये गीत मेरा फेवरेट है, मेरा पर्सनल फेवरेट है, आपको ज़रूर सुनवाएंगे। और इस गीत के तुरंत बाद हम सुनेंगे समाचार। तो क्या कहते हैं, दीजिए अपनी दीप्ति को इजाज़त कार्यक्रम गीत मालिका से और बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग।

0: इसी के साथ मैं दीप्ति पाठक निधीश आपसे गीत मालिका कार्यक्रम से इजाजत चाहूंगी। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमेरिका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने तथा होर्मुज जलडमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 30 में से 27 पदक पक्के किए। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते

0: की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति तोलम ने आज दोपहर गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण माहौल में व्यापक चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए दोनों नेताओं ने भारत और वियतनाम के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर शांति, स्थिरता, सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। दोनों नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और नौवहन तथा उड़ान की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विवादों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार और बिना किसी धमकी या बल प्रयोग के शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। दोनों पक्षों ने बाजार तक पहुंच आसान बनाने पर सहमति जताई, जिसमें कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: द्विपक्षीय वार्ता के बाद संवाददाताओं को नई दिल्ली में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
3: President Tholam conveyed Vietnam's support on the issue of
4: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
3: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
1: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बातचीत में भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर बल दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में वियतनाम के वित्त मंत्री नो वन त्वान से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने का स्वागत किया। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि वियतनाम ने प्रौद्योगिकी, नवाचार, ऊर्जा और फार्मा क्षेत्रों में गहन सहयोग में अपनी रुचि व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है।
2: आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोंडंकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमाव लवन ने कहा कि उनकी पार्टी टीवीके के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसीके डीएमके के साथ गठबंधन में है और इसके 2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। एक रिपोर्ट।
3: राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद बंगाल का सियासत में अब नई सरकार का शपथ ग्रहण सबसे चर्चे में है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड से ही नए युग का शुरुआत होगी। आज नवान्न में राज्य के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला के साथ लंबी बैठक के बाद बीजेपी राज्य अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह

0: अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित कई राज्यों की मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ सरकार बदलने का प्रतीक नहीं है, बल्कि बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। अभिरूप भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से।
1: इस बीच तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में पार्टी के विजयी उम्मीदवारों के साथ बैठक की। बैठक कालीघाट स्थित उनके आवास पर हुई, जहां 80 विजयी उम्मीदवारों में से 69 उपस्थित रहे। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया था। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एआई में तेजी से हो रही प्रगति, विशेष रूप से क्लाउड माइथॉस जैसे एआई आधारित भेद्यता पहचान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों की जांच के लिए साइबर सुरक्षा एआई नामक एक कार्यबल का गठन किया है।
2: सेबी का कहना है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां लाभकारी हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर साइबर जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। नव गठित कार्यबल में बाजार अवसंरचना संस्थानों MII, योग्य रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंटों QRTA, विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें AI संबंधित साइबर जोखिमों का आकलन करना, एक समान राहत रणनीतियां विकसित करना, खतरे की पूर्व जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करना और महत्वपूर्ण साइबर घटनाओं की प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्टिंग करना शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में धकेलने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह विदेशों में आकर्षक नौकरियों का लालच देकर भारतीय नागरिकों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भेज रहा था।
3: CBI ने मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, काशीपुर और उत्तर प्रदेश के गोंडा और सहारनपुर जिलों सहित 4 राज्यों में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई व्यापक राष्ट्रव्यापी जांच के बाद की गई, जिसमें पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। एजेंसी ने इस गिरोह में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए क्रिप्टो करेंसी सहित वित्तीय लेन देन पर भी नजर रखी। इस दौरान उन्होंने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जिनमें महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। तस्करी में शामिल होने के आरोप में लखनऊ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह भारतीय नागरिकों को इन धोखाधड़ी केंद्रों में भेजने के लिए एजेंटों को रिश्वत देते थे। CBI ने लोगों को अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले नौकरी के प्रस्तावों, विशेष रूप से सोशल मीडिया या ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से साझा किए गए प्रस्तावों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। CBI ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव खतरनाक हो सकते हैं और गंभीर परेशानी का कारण बन सकते हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG वितरण सामान्य रूप से जारी है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार घरेलू LPG सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
4: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू LPG उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग LPG का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% LPG सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
1: संयुक्त सचिव ने कहा कि घरेलू LPG और पेट्रोल तथा डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार कल किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब पहुंच गए हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्री समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के जाम किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्ष द्वारा होर्मुज जल डमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट।
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघारची ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। चीन ने ईरान अमेरिका युद्ध को अवैध बताते हुए व्यापक युद्ध विराम का आह्वान किया। ईरान ने कहा कि वो अमेरिका के साथ एक व्यापक समझौता चाहता है और अमेरिका के 14 सूत्रीय प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहा है। इस बीच ईरान ने संकेत दिया है कि खतरा कम होने पर होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पारागमन के लिए फिर खोला जा सकता है। संभावित समझौते की खबरों के बाद ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 8% से अधिक गिरकर लगभग $100 प्रति बैरल पर आ गई हैं और वैश्विक शेयर बाजारों में भी तेजी देखी गई है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कैरेबियन देशों की अपनी आधिकारिक यात्रा पर सूरीनाम पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी और बाबा तथा माई स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो सूरीनाम आने वाले पहले हिंदुस्तानियों के प्रतीक हैं। और अब खेल खबरें। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। भारत के युवा मुक्केबाजों ने आज अंडर 15 वर्ग में 30 में से 27 पदक पक्के कर आधिकारिक तौर पर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। अंडर 15 लड़कियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 में से 14 पदक पक्के किए हैं। वहीं अंडर 15 लड़कों ने भी 15 में से 13 पदक पक्के कर लिए हैं। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 19वें ओवर में 3 विकेट पर 217 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लेम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमरीका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 30 में से 27 पदक पक्के किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. India and Vietnam agree to enhance trade, investment and technological partnership. Prime Minister Narendra Modi and visiting Vietnamese President Tho Lam announce several measures to keep shared heritage of the two countries alive. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu. Swearing-in ceremony of BJP government in West Bengal to be held on Saturday at Brigade Parade Ground in Kolkata. US and Iran reported to be close to an agreement to end conflict and relax movement through Strait of Hormuz. And Indian boxers ensure 27 out of 30 medals at Asian Boxing Under 15 Championships in Tashkent. India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments, and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnamese President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions.
6: Culture कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ

0: And called for a comprehensive ceasefire. Iran, for its part, publicly stated it is seeking a comprehensive agreement with the United States, its clearest articulation yet of its negotiating position. Tehran is currently evaluating a 14-point U.S. proposal, with Washington expecting Iranian responses on several key points within the next 48 hours. The memorandum is being negotiated between U.S. envoy Steve Witkoff and Jared Kushner and several Iranian officials through mediators. Iran's Revolutionary Guard Corps indicated that the trade could reopen for transit once threats subside. Markets responded sharply to reports of a possible deal. This is Vinod Kumar for Akashwani News from Dubai.
1: The government has informed that domestic LPG distribution across the country is normal and no dry out has been reported at any LPG distributors. During the interministerial media briefing in New Delhi, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, informed that the government is making all efforts to ensure 100% supply of domestic LPG to the consumers for cooking and up to 70% to consumers of commercial cylinders. Director in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma, said all Indian seafarers continue to remain safe in the region, with no incidents involving Indian-flagged vessels reported in the past 48 hours. The dedicated special control room in the Ministry of External Affairs is also operational to respond to queries from Indian nationals and their families. The Central Bureau of Investigation, or CBI, has busted a network involved in trafficking Indian nationals to Southeast Asia for cybercrime-related activities under the guise of overseas jobs. Searches were conducted at 9 locations across multiple cities, including Mumbai, Delhi, Lucknow and places in Gonda and Saharanpur districts of Uttar Pradesh. The Securities and Exchange Board of India, SEBI, has formed a special task force called Cybersuraksha.ai to tackle rising cybersecurity risks linked to artificial intelligence. The move comes amid concerns that advanced AI tools such as Claude Mythos can rapidly identify and potentially exploit system vulnerabilities at scale. India's young boxers have ensured 27 medals in the Asian Boxing Under 15 and Under 17 Championships in Tashkent, Uzbekistan. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Vietnam agree to enhance trade, investment and technological partnership. Prime Minister Narendra Modi and visiting Vietnamese President Tho Lam announce several measures to keep shared heritage of the two countries alive. TVK Chief CEO Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu. Swearing-in ceremony of a BJP government in West Bengal to be held on Saturday at Brigade Parade Ground in Kolkata. US and Iran reported to be close to an agreement to end conflict and relax movement through Strait of Hormuz. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। भारत और वियतनाम ने तिजारत, सरमायाकारी और तकनीकी इश्तराक बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर तो लाम ने दोनों मुल्कों की मुश्तरका विरासत को जिंदा रखने के लिए मुख्तलिफ इकदामात का ऐलान किया है। टीवीके के सरबरा सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया है। मगरी बंगाल में बीजेपी हुकूमत की हलफबरदारी की तकरीब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हफ्ते के रोज होगी। अमरीका और ईरान जंग को खत्म करने और आबनाए हुरमुस के रास्ते बिला रुकावट नकलो हमल की खातिर एक माहदे के करीब हैं। और ताशकंद में 15 साल की उम्र तक की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स में भारतीय मुक्केबाजों ने 30 में से 27 तमगे जीत लिए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल टेक्नोलॉजी, नायाब मादनियात, तिब्बी साजो सामान, पब्लिक सेक्टर ऑडिट, डिजिटल अदायगी निज़ाम और सकाफत व सियाहत के शोबों में मुख्तलिफ मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। आज दोपहर नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर तो लाम के दरमियान बातचीत के बाद इन माहदों पर दस्तखत किए गए। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मामलात के अलावा बाहमी ताल्लुकात के वसीतर पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। अपने प्रेस बयान में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वियतनाम के सदर की जिम्मेदारी संभालने के एक महीने के अंदर सदर तोलाम

0: का भारत का पहला सरकारी दौरा इस बात को जाहिर करता है कि वो भारत वियतनाम ताल्लुकात को कितनी अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा कि मुश्तरक विरासत को जिंदा रखने के लिए भारत वियतनाम की कदीमी चंपा तहजीब के माइसन और नेहान ताओ मंदिरों का अहिया कर रहा है।
1: भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। हमारी साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मी सौन और नान टवर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करेंगे।
0: उन्होंने कहा कि मशरकी मुल्कों से राबते बढ़ाने की पॉलिसी और विजन सागर के तहत वियतनाम भारत के लिए एक अहम सुतून है। वजीर आजम ने कहा कि भारत पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत करने और दहशतगर्दी से निमटने के खातिर भारतीय अवाम के साथ यकजहती का इजहार के लिए वियतनाम का शुक्रगुजार है। वियतनाम के सदर तोलाम ने कहा कि वियतनाम 10 बरस की जामे कलीदी शराकतदारी समेत भारत के साथ 50 साल ताल्लुकात के नताइज को इंतहाई अहमियत की निगाह से देखता है। उन्होंने कहा कि तरफेन दुनिया की मौजूदा बिगड़ती हुई सूरत हाल के अजाले की खातिर बेहतर नजरिए और तरक्याती हिकमत अमलियों के साथ करीबी राबते में रहेंगे। आज नई दिल्ली में बाद में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में मशरक़ी उमूर के सेक्रेटरी पी कुमारन ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर तोलाम के दरमियान बातचीत में भारत और वियतनाम दो तरफा तजारत, सरमायाकारी और तकनीकी इश्तराक बढ़ाने के खातिर मुत्तफिक हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ने अपने यहाँ ज़रई अशिया समेत बाजार तक रसाई में सहूलत पैदा करने के सिलसिले में भी इत्तफाक किया है। अद्वियात की भारतीय सनत की तरक्की को तस्लीम करते हुए तरफेन ने 2027 से वियतनाम की अवामी सेहत देखभाल के खातिर भारतीय कंपनियों की शमूलियत के इम्कान से भी इत्तेफाक किया। जनाब कुमारन ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने करीबी इदारा जाति राबतों की हौसला अफजाई के साथ साथ मालूमात, तहकीक और बेहतरीन तौर तरीकों के तबादले के फरोग पर भी रजामंदी जाहिर की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा जनरल फैन वैंग जियांग के साथ मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि भारत वियतनाम के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को अहमियत देता है। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों रहनुमाओं की बातचीत में भारत और वियतनाम के दरमियान दिफाई तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज की गई। जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि हालिया पेशरफ से दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्बत सूरतेहाल की अक्कासी होती है। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के मंतजर हैं। मगरीब बंगाल में बीजेपी की नई हुकूमत की हलफ बरदारी की तकरीब 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। बीजेपी के रियासती सदर सामिक भट्टाचार्य ने नामानिगारों को बताया कि ये तकरीब सुबह 10 बजे शुरू होगी। पार्टी जराए के मुताबिक इसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के मुख्तलिफ वज़राए आला की शिरकत का इम्कान है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड के मकाम का इंतखाब अलामती है क्योंकि ये जगह बंगाल में अहम सियासी रैलियों और बड़े पैमाने पर लोगों के इज्तम का गहवारा रही है। इस तकरीब में मुल्क के आला रहनुमाओं की मौजूदगी से यह जाहिर होता है कि बीजेपी इख्तदार की मुंतकली को इंतहाई अहमियत दे रही है। टीवी के सरबराह सी जोसेफ ने तमिलनाडु में सरकार तश्कील करने का दावा पेश किया और रियासत के गवर्नर विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के ने दीगर पार्टियों से भी राबता किया क्योंकि उन्हें रियासत में सरकार की तश्कील के लिए मजीद हिमायत की जरूरत है। कांग्रेस ने अपने 5 एमएलएज होने के नाते टीवीके की हिमायत का फैसला किया है। उसने आज नामजद वजीर आला विजय से मुलाकात की और उन्हें अपनी हिमायत का मकतूब पेश किया। कांग्रेस ने अपनी देरीना इत्तेहादी पार्टी डीएमके का साथ छोड़ दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज रियासत में सियासी गहमागहमी का दिन था। मुख्तलिफ सियासी हलकों से तस्दीक और नई हुकूमत की तश्कील के तई पहले कदम का इंतजार जारी था। वाहिद सबसे ज्यादा अक्सरियत वाली पार्टी तमिलागा वैतरी कड़गम टीवीके ने 108 असेंबली सीटें हासिल की हैं और उसने कांग्रेस की 5 सीटों की हिमायत भी हासिल की है। टीवीके ने यूसीके और बाएं बहास की पार्टियों सीपीआई और सीपीआईएम को हिमायत की दावत दी है। एआईएडीएमके ने भी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एडापड्डी पलानीसामी की क़यादत में आज शाम एक मीटिंग की। टीवी के सरबराह को नई हुकूमत तश्कील देने के लिए पार्टियों की जानिब से हिमायत का मकतूब पेश करना होगा। उन्होंने अक्सरियत साबित करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए।

0: जुबिन अली खान।
1: ये आकाशवाणी है। हुकूमत ने मुत्तला किया है कि मुल्क भर में घरेलू एलपीजी की दस्तयाबी मामूल के मुताबिक है और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर इसके ख़त्म होने की कोई इत्तला नहीं है। नई दिल्ली में बैन वजारती मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने मुत्तला किया कि मगरबी एशिया बहरान के दरमियान हुकूमत खाना पकाने के लिए एलपीजी के घरेलू सारिफिन को 100% और कमर्शियल सिलेंडर के सारिफिन को 70% तक फराहमी की खातिर सभी इकदामात कर रही है।
2: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
1: पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान 5 किलोग्राम के तकरीबन 1,20,000 FTL सिलेंडर फरोख्त किए गए। उसने मजीद कहा है कि एलपीजी की जखीरांदोजी और कालाबाजारी की रोकथाम के लिए मुल्क भर में कार्रवाई का सिलसिला जारी है और कल इस सिलसिले में 2,100 से ज्यादा छापे मारे गए।
3: जो घरेलू कुकिंग एलपीजी सिलेंडर का प्राइस है वो चेंज नहीं हुआ है। जो आपने इंक्रीज की बात की वो सिर्फ कमर्शियल के सिलेंडर के लिए हुई है। मैं दोबारा से कहती हूँ कि डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर पर कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। इसी तरह जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल है उसके प्राइस में भी अभी कोई वृद्धि नहीं की गई है।
1: बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत में डायरेक्टर उपेश कुमार शर्मा ने कहा है कि खित्ते में सभी भारतीय मल्लाह खैर वाफियत से हैं और गुज़िश्ता 48 घंटे में किसी भारतीय परजंबरदार जहाज के सिलसिले में किसी वाकये की कोई खबर नहीं मिली है। जनाब शर्मा ने मुत्तला किया कि जहाजरानी के डायरेक्टोरेट में कायम करदा कंट्रोल सेंटर्स ने अब तक 8,570 कॉल और 18,732 से ज्यादा ई मेल मौसूल किए हैं। वजारत खारजा में भी एक मुतालिका खसूसी कंट्रोल रूम काम कर रहा है जो भारतीय शहरियों और उनके कुनबों के सवालात का जवाब दे रहा है। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि परवाजों के सिलसिले में मजमू सूरत हाल बेहतर हो रही है और खित्ते से भारत के मुख्तलिफ मकामात के लिए इजाफी परवाजें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा तेहरान में भारतीय सिफारतखाने ने जमीनी रास्तों से 2,520 भारतीय शहरियों के ईरान से निकलने में मदद फराहम की है। सालिसों के मुताबिक अमरीका और ईरान एक इब्तदाई माहदे के करीब हैं जो खलीज में जारी तनाज़े के खात्मे का सबब बन सकता है। मुज़ाकरात से वाकिफ ज़राए के मुताबिक फरीकैन एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 निकाती मफाहमतनामे पर काम कर रहे हैं। मुजव्वज़ा माहदे में ईरान की जानिब से न्यूक्लियर अफजूदगी को रोकने पर इत्तफाक करना शामिल है जबकि अमरीका को पाबंदियों में नरमी करनी होगी। मुजव्वज़ा माहदे में मुंजमद ईरानी फंड्स में से अरबों डॉलर जारी करना भी शामिल है। तवक्को है कि दोनों फरीक आबनाए हुरमुस के जरिए नकलो हमल पर पाबंदियों में भी नरमी करेंगे। हुकाम के मुताबिक इसके बाद वसी तर माहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए 30 दिन पर मुश्तमिल मुजाकरात का एक दौर होगा जिसके दौरान बहरी पाबंदियों और इलाके में अमरीकी बहरी फौज की मौजूदगी को भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए प्रोजेक्ट फ्रीडम में तवक्फ किए जाने के ऐलान के बाद रवैये में यह तब्दीली रोनुमा हुई है। पेश है एक रिपोर्ट।
0: तेहरान इस वक्त अमरीका के 14 नुकाती तजवीज़ का जायजा ले रहा है जबकि अमरीका को तवक्को है कि अगले 48 घंटे में कई कलीदी नुकात पर ईरान की जानिब से जवाब मौसूल होगा। इस मफाहमतनामे पर अमरीकी एलचियों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर और कई ईरानी हुकाम के दरमियान सालिसों के जरिए बातचीत की जा रही है। ईरान के सिपाह पासदारान इनकलाब ने इशारा दिया है कि खतरात कम होने के बाद आबनाए हुरमुस को महफूज आमदोरफ्त के लिए दोबारा खोला जा सकता है। मुमकिन समझौते के तनाजुर में मार्केट में तेजी आ गई है। ऐसा इस उम्मीद के पेश नजर हुआ है कि तवानाई की फराहमी को मुतासर करने वाली जंग शायद अपने इख्तिताम पर है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: भारत के मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में लागत में इजाफे के बावजूद साल 2025-26 की सहमाही में लगातार बढ़ोतरी हुई है। कॉमर्स और सनत की भारतीय फेडरेशन फिक्की के जरिए मैन्युफैक्चरिंग से मुतालिक एक सर्वे में 93% शुरका की राय में यकसां या ज्यादा पैदावार हुई जो गुज़िश्ता सहमाही में 91% थी। झारखंड के लातेहार जिले में शोरिश पसंदी की रोकथाम की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक ममनुआ इंतहा पसंद तंजीम झारखंड जनमुक्ति परिषद के दो कारिंदों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट कुमार गौर

ने कहा कि जंगलाती इलाके कुरुमखेटा में इंतहा पसंदों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात मिली थी। खबर मिलने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने इलाके की नाकाबंदी की और दो इंतहा पसंदों को गिरफ्तार कर लिया। जाए वाकया से बड़ी तादाद में हथियार और गोली बारूद भी बरामद हुआ है। सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड सेबी ने एक मखसूस टास्क फोर्स साइबर सुरक्षा तश्कील दी है, जो मसनूई जहानत एआई में हुई तेज रफ्तार तरक्की से पैदा होने वाले साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक खतरात का जायजा लेगी, जिनमें खामियों की निशानदही करने वाले एआई टूल्स शामिल हैं। सेबी के मुताबिक ये तकनीकें हालांकि बहुत फायदेमंद हैं, लेकिन इनकी तेजी से शिनाख्त करने और निजाम की खामियों का फायदा उठाने की सलाहियत के सबब खतरात में नुमाया तौर पर इजाफा हो सकता है। मरकजी जांच एजेंसी सीबीआई ने बैरून मुल्क नौकरियों का झांसा देकर साइबर जराइम से मुतालिक सरगर्मियों के लिए भारतीय शहरियों को गैर कानूनी तौर पर जुनूब मशरकी एशिया ले जाने वाले एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में मुंबई, दिल्ली और लखनऊ समेत मुख्तलिफ शहरों के 9 मकामात पर छापों की कार्रवाई अंजाम दी गई। एजेंसी ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन समेत कई माली राबतों का पता लगाया है और अहम इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद जब्त कर लिए हैं। भारत के महकमा मौसमियात आईएमडी ने अगले 2 से 3 दिनों तक केरलम के कुछ इलाकों माहे, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, वस्ती महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशगोई की है। भारत के नौजवान मुक्केबाजों ने उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स में 27 तमगे जीते हैं। आज अंडर 15 की लड़कियों की टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और 15 में से 14 तमगे हासिल किए, जबकि अंडर 15 लड़कों की टीम ने भी बेहतरीन खेल दिखाया और 15 में से 13 तमगे जीते। आईपीएल क्रिकेट में आज राजीव गांधी बैन अल्क्वामी स्टेडियम में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के दरमियान जारी मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए हैं और जीत के लिए 236 रन का निशाना रखा है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और वियतनाम ने तिजारत, सरमायाकारी और तकनीकी इश्तराक बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर तो लाम ने दोनों मुल्कों की मुश्तरका विरासत को जिंदा रखने के लिए मुख्तलिफ इकदामात का ऐलान किया है। टीवीके के सरबरा सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया है। मगरबी बंगाल में बीजेपी हुकूमत की हलफ बरदारी की तकरीब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हफ्ते के रोज होगी। अमरीका और ईरान जंग को ख़त्म करने और आबनाए हुरमुस के रास्ते बिला रुकावट नकल व हमल के खातिर एक माहदे के करीब हैं और ताशकंद में 15 साल की उम्र तक की एशियाई बॉक्सिंग चैम्पियनशिप्स में भारतीय मुक्केबाजों ने 30 में से 27 तमगे जीत लिए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: समय की धारा में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो भूगोल की सीमाओं से नहीं बल्कि विश्वास, संघर्ष और साझा सपनों से तय होते हैं। भारत और वियतनाम, दो देश, दो संस्कृतियां, लेकिन एक समान धड़कन, स्वतंत्रता, संप्रभुता और शांति की। इतिहास गवाह है कि जब दो सभ्यताएं बुद्ध के शांति संदेश और साझी विरासत से जुड़ी हों तो उनकी दोस्ती वक्त की हर कसौटी पर खरी उतरती है। आज भारत और वियतनाम के संबंध कुछ इसी मोड़ पर हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम अपनी पहली भारत यात्रा पर हैं और ये यात्रा केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि जज्बाती और रणनीतिक भी है। 1972 में स्थापित कूटनीतिक संबंध और 2016 में बनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी आज 2026 में ये एक नए पड़ाव पर खड़ी है। राष्ट्रपति तो लम की बोध गया कि पवित्र धरती से शुरू हुई ये यात्रा अब दिल्ली के सत्ता के गलियारों में इन्हेंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नई इबारत लिख रही है। रक्षा सौदों से लेकर सेमीकंडक्टर तक और चंपा सभ्यता के मंदिरों के संरक्षण से लेकर डिजिटल पेमेंट की जुगलबंदी तक, आज हम वियतनाम के साथ एक ऐसा भविष्य बुन रहे हैं जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि का आधार बनेगा। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चर्चा का विषय है। आज का हमारा विषय है भारत और वियतनाम

0: मजबूत संबंध। हमारे साथ आज के इस चर्चा में जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत आसियान के गुरजीत सिंह और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद
0: गुरजीत जी। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो भारत और वियतनाम के रिश्ते हैं, इनका बहुत समृद्ध इतिहास है, लेकिन राष्ट्रपति तो लम ने अपनी यात्रा की शुरुआत जो बोध गया से की, कूटनीतिक नजरिए से इस सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक जुड़ाव के क्या मायने हैं?
1: जैसे आप जानते हैं कि वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश है और प्रेसिडेंट तो लम उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी है। इसलिए जब एक कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अपना विजिट एक सांस्कृतिक जगह से शुरू करते हैं
0: जी,
1: तो थोड़ा अचंबा होता है, लेकिन यही दिखाता है कि वियतनाम भी कितना बदल गया है। पिछले दो साल में जब भारत से गौतम बुद्ध की कुछ रिलिक्स वहां भेजे गए थे तो जो पॉपुलैरिटी उनको वहां मिली वो देखने लायक थी। तो मेरे ख्याल अब वियतनाम के लीडर्स को भी ये पता चल गया है कि उनके देश में अभी तक बुद्धिज्म का प्रभाव काफी है, इसलिए जब बुद्धिज्म के जन्म स्थान भारत में आओ तो वहां पर ये बात जरूर करनी चाहिए। तो उन्होंने वहां से शुरू किया और अगर आप जो अग्रीमेंट्स हुई हैं वो देखें, उसमें भी बुद्धिज्म के ऊपर नालंदा से और अक्सर कई और जगह से संबंध बनाने की कोशिश की जा रही है।
0: जी बिल्कुल। भारत ने वियतनाम को INS कृपाण उपहार में दिया और अब लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC पर बात हो रही है। वियतनाम के लिए भारत एक भरोसेमंद रक्षा भागीदार के रूप में कैसे उभर रहा है? थोड़े हमारे श्रोताओं के लिए आसान शब्दों में इसे आप बता पाए।
1: जो आसियान के देश है वो अक्सर भारत को चीन के मुकाबले में एक बैलेंसिंग देश की तरह देखते हैं। वियतनाम उन देशों में से है जिसकी चीन के साथ एक रंजिश रहती है, खासकर क्योंकि जब से चीन ने जो कई टापू होते हैं उनको अपने घेरे में ले लिया और वहां जहां पर वियतनाम की लोग थे या कोई ऑयल ड्रिलिंग थी या कोई सेना की टुकड़ी थी उनको भगा दिया, जैसे वो अब फिलीपींस के साथ कर रहे हैं, उन्होंने पहले ये वियतनाम के साथ भी किया। तो वियतनाम की जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन विद चाइना है उसमें भारत एक अच्छी भूमिका निभाता है, क्योंकि भारत वियतनाम का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उसके बाद 10 साल पहले कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई और तब से ये जो सुरक्षा के संबंध हैं वो आगे बढ़े। 2023 में शायद एक इंडियो वियतनाम डिफेंस विजन डॉक्यूमेंट भी साइन किया गया। तो ये एक स्तंभ है भारत और वियतनाम के रिश्तों का जो बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, जिसमें भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट दी, जिससे उन्होंने भारत से छोटे पेट्रोल क्राफ्ट लिए, भारत ने INS कृपाण उनको भेंट में दिया और भारत अब प्रतीक्षा कर रहा है कि कई सालों से चली हुई बातचीत जो ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर है वो कब निर्णय दौर तक पहुंचेगी।
0: प्रोफेसर मिश्रा, वियतनाम ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन का विकल्प बन रहा है। सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भारत और वियतनाम एक दूसरे के पूरक कैसे हो सकते हैं?
2: देखिए, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में वियतनाम ये चाहता है कि 2045 तक, और इस साल उनके दो इमो रिफॉर्म्स के 40 साल पूरे हो रहे हैं, जो एक व्यापक पैमाने पे आर्थिक रिफॉर्मेशन जो वियतनाम में हुआ 1986 से उसका नतीजा है। तो अब वियतनाम चाहता है कि वो आर्थिक विकास के सेकंड स्टेज में पहुंचे और एक विकसित देश बने 2045 तक। इसको मद्देनजर रखते हुए वियतनाम की अपनी सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हैं, इन तमाम क्षेत्रों में वियतनाम की जो नीतियां हैं, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो भारत से मेल खाती हैं। भारत और वियतनाम की आकांक्षाएं इन तमाम क्षेत्रों में मेल खाती हैं। तो सेमीकंडक्टर चिप्स के क्षेत्र में भारत और वियतनाम दोनों साझा प्रयास कर सकते हैं कि भारत और वियतनाम दोनों ज्वाइंट प्रोडक्शन भी करें और दोनों ही देश सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में रीजनल हब्स बने, अपनी अपनी आवश्यकताओं और अपनी अपनी आकांक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए। साथ ही साथ सोलर और बैटरीज का प्रोडक्शन क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उसमें लिथियम बैटरीज का बड़ा योगदान है, निकल की उसमें बहुत ज़रूरत है। इन तमाम क्षेत्रों में वियतनाम एक महत्वपूर्ण और भरोसेमंद साझेदार हो सकता है। आसियान के बाकी देश भी हैं जिनके साथ भारत सेमीकंडक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, इसमें सिंगापुर भी है और मलेशिया भी है। पूर्वी एशिया के देशों को हम देखें तो उसमें ताइवान भी आता है, जापान और साउथ कोरिया हैं जो बड़े महत्वपूर्ण देश हैं। तो वियतनाम सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसमें भारत के साथ काम कर सकता है, चिप्स के प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग में भारत के साथ काम कर सकता है, क्योंकि भारत के पास टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है, हमारे पास वो चिप्स बनाने की क्षमताएँ तो हैं, लेकिन हमें वो रिसोर्सेज के लिए जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनानी हैं उनके लिए जो रिसोर्स चाहिए, उनके लिए जो माल और मिनरल्स चाहिए, उसके लिए हमें चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। तो अगर भारत और वियतनाम मिलकर काम करते हैं तो शायद इन क्षेत्रों में ये कमी पूरी की जा सकती है, जहां भारत की तकनीकी क्षमता और वियतनाम एक बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं लेकिन उनका मिनरल जो रिसोर्सेज हैं और मिनरल जो कैपेसिटीज़ हैं उनका हम फ़ायदा उठा सकते हैं और दोनों देशों का इसमें लाभ होगा।
0: आज प्रधानमंत्री ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आने वाले समय में भारत आसियान ट्रेड अग्रीमेंट यानी आईटिका को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर सहमति भी बनाई जा रही है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
3: हमने भारत आसियान ट्रेड अग्रीमेंट आईटिका को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई। इससे भारत और आसियान के सभी देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को नई ऊर्जा मिलेगी, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ और एनर्जी सहयोग में नई पहलों से हम दोनों देशों की इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस सुनिश्चित करेंगे।
0: गुरजीत जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि भारत आसियान ट्रेड अग्रीमेंट जो आईटिका है इसको अपडेट करने की बात चल रही है, इसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि इससे दोनों देशों के बीच जो पहल है वो किस स्तर पर जाएगी, क्योंकि इसमें क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं, रेयर अर्थ भी है और एनर्जी सहयोग पर भी चर्चा हो रही है।
1: आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट ये 2009 में शुरू हुई थी और 2019 से इसका रिव्यू होना था, लेकिन आसियान के देशों ने उसका रिव्यू काफी डिले किया और ये रिव्यू जाके 2023 में फाइनली शुरू हुआ और उम्मीद ये थी कि एक या दो साल में हो जाएगा। हम तो चाहते थे कुछ महीने में हो जाए, लेकिन आसियान ने बोला 2025। आप देखिए 2025 तो निकल गया और हम 2026 के बीच में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी वो रिव्यू कंप्लीट नहीं है। अब इस रिव्यू में अगर आप देखें तो वियतनाम जैसे देश जो भारत के इकोनॉमिक पार्टनर हैं उनको एक पॉजिटिव रोल करना चाहिए कि ये अग्रीमेंट जल्दी हो, लेकिन मेरे को लगता है कि सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस ऐसे देशों के अलावा जो बाकी भारत के पार्टनर्स हैं, खासकर इंडोनेशिया और वियतनाम जो बड़े पार्टनर, उनमें कोई दिलचस्पी कमजोर नजर आती है, तो वो डॉक्यूमेंट में तो डाल देते हैं कि हाँ इसे जल्दी होना चाहिए, लेकिन जब बातचीत होती है उस समय पीछे हट जाते हैं। सब जगह स्टेटमेंट में यही आता है कि वियतनाम भारत का बहुत बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है आसियान, लेकिन अगर आप देखें जो $16 बिलियन की ट्रेड है वो वियतनाम को पांचवें स्थान में रखती है आसियान के अंदर। भारत का आसियान का जो ट्रेड है $120 बिलियन है, उसका 10% से थोड़ा ऊपर वियतनाम का है, सबसे बड़ा इंडोनेशिया, फिर सिंगापुर, फिर थाईलैंड और मलेशिया, तो वियतनाम तो बीच में आता है और वियतनाम अब कह रहा है कि हम अगले 4 साल में इसको शायद $30 बिलियन तक ले जाए, हो सकता है। लेकिन जो ये ट्रेड बढ़ रही है इसमें वियतनाम की एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ रही है, भारत की एक्सपोर्ट कम बढ़ रही है, तो इसका कोई हल ढूंढना पड़ेगा। अब वियतनाम की दिलचस्पी आईटीका में तब बढ़ेगी जब वो समझता है कि उसके एक्सपोर्ट भारत की मार्केट में ज्यादा आ सके, लेकिन वो जो अपनी मार्केट एक्सेस देना चाहिए इंडोनेशिया और वियतनाम उन देशों में से हैं जो अपनी मार्केट एक्सेस भारत के लिए रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। अब देखिए जो वियतनाम है ना उसका GDP पर कैपिटा भारत से दुगना है, तो वो कोई ऐसा डेवलपिंग कंट्री नहीं है कि जैसे कि म्यांमार हो या कैम्बोडिया हो, तो उसका भी दर्जा आगे बढ़ चुका है और उसके देखिए क्या FTAs है यूरोप के साथ और जापान के साथ और अब वो CPTPP में भी शामिल है, तो वियतनाम FTA से डरता नहीं, वो आगे बढ़ता है, लेकिन उसको हमेशा दिलचस्पी वही होती है कि बड़ी मार्केट्स में मेरे को मार्केट एक्सेस। और जापानीज और चाइनीज इन्वेस्टमेंट के कारण उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल एरिया में काफी मजबूत है और उससे वो और देशों में अपना सहयोग बढ़ाना चाहता है। भारत से वो क्या चाहता है? भारत से वो चाहता है, पहले बफलो मीट जाता था, दवाइयां जाती हैं, अब उसको चावल की जरूरत पड़ गई। पहले तो चावल वो अपने आप काफी मंगा, चावल की जरूरत पड़ गई है, कुछ और खाद्य पदार्थ की जरूरत पड़ गई है। जो डिजिटल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी के लिए आसियान देशों के लिए भारत महत्वपूर्ण है और वियतनाम के लिए भी।
0: जी बिल्कुल। प्रोफेसर मिश्रा, आपसे ये समझना चाहेंगे कि भारत और वियतनाम के बीच व्यापार अब 16 बिलियन डॉलर को पार कर गया है और 2030 तक का जो लक्ष्य है वो 25 बिलियन डॉलर का है। ऐसे में आईटीका की समीक्षा कितनी महत्वपूर्ण हो गई है?
2: देखिए, भारत और वियतनाम के जो व्यापार संबंध है उनमें द्विपक्षीय जो आयाम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और वियतनाम के व्यापार संबंध पहले से ही, जब ये इंडिया आसियान एफटीए नहीं साइन हुआ था उसके पहले से ही काफ़ी मजबूत थे। उसकी अपनी सीमाएं जरूर थी, उसकी अपनी लिमिटेशन जरूर थी, लेकिन ये इवन कील पे चल रहा था, एक अलग पायदान पे चल रहा था। भारत आसियान एफटीए का जहाँ तक सवाल है, ये भारत और आसियान के 10 देशों के साथ व्यापार संबंधों का एक प्लेटफॉर्म है, तो उस लिहाज से तमाम जो देश हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस आईटीगा से या भारत आसियान एफटीए से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं और बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा है। वियतनाम उन देशों में नहीं है जिसके साथ भारत को इस व्यापार समझौते में दिक्कत है। समीक्षा होनी चाहिए उन क्षेत्रों में जहां भारत इन आसियान के देशों से इम्पोर्ट तो कर रहा है लेकिन उसे एक्सपोर्ट करने की पर्याप्त सुविधाएँ नहीं मिल रही, पर्याप्त अवसर नहीं मिल। वियतनाम के साथ जहाँ तक संबंधों का सवाल है, आज ही जो 13 MOU साइन हुए हैं उसमें बहुत स्पष्ट है कि क्रिटिकल मिनरल्स हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सोलर टेक्नोलॉजी हो या ईवी व्हीकल्स हो, वियतनाम ईवी व्हीकल्स में बहुत एडवांस लेवल पे है। और अगर भारत चाहता है कि चीन के साथ हमारे ईवी व्हीकल्स को लेकर के एग्रीमेंट्स में जो समस्याएं आ रही हैं उसको कोई देश रिप्लेस करे तो वियतनाम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। तो मुझे लगता है आईटीगा के संदर्भ में भारत की चिंताएँ दूसरे देशों से ज़्यादा हैं बनस्पत वियतनाम के, और उन देशों में वो देश आते हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भारत को ऐसे मौके नहीं दे रहे हैं जिससे भारत का व्यापार बढ़े। सर्विसेज सेक्टर एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें तमाम देश, सिंगापुर को और मलेशिया को छोड़ दीजिए, तो तमाम देश सर्विसेज सेक्टर में भारत को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे हैं। और ये वो जिसमें फिलीपींस आता है, एक बड़े पैमाने पर एक देश आता है। एग्रीकल्चर फिशरीज एक्सपोर्ट्स में भारत आसियान क्षेत्र में जगह बनाना चाहता है। सर्विसेज सेक्टर जैसा कि मैंने कहा उस क्षेत्र में भी समस्याएं हैं। तो आईटीगा का जो री एवेल्युएशन होता है उसमें इन चिंताओं को दूर किया जाएगा। और भारत सरकार ने भी कहा है कि आईटीगा का जो फिर से मूल्यांकन होगा उसमें हम उन समस्याओं को रेखांकित करेंगे। आसियान एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म के तौर पर उस समस्याओं को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। वियतनाम के साथ संबंध आगे बढ़ाते हुए हम इस काम को कर सकते हैं, आसियान के साथ इन चिंताओं को आपस में डिस्कस करके रिजॉल्व करने की कोशिश के साथ।
0: आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा इस विषय पर, और प्रधानमंत्री ने ये भी जानकारी दी कि आज किन किन समझौते पर भारत और वियतनाम के बीच हस्ताक्षर हुए।
3: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुँच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच MOU से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। भारत के एग्रीकल्चर, फिशरीज और एनिमल प्रोडक्ट्स का भी वियतनाम तक एक्सपोर्ट और सुगम होने जा रहा है। बहुत जल्द वियतनाम भारत के अंगूर और अनार का स्वाद लेगा और हम वियतनाम के ड्रियन और पोमेलो का।
0: आज प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि UPI और वियतनाम के फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की भी बात उन्होंने कही कि बहुत जल्द ये जोड़ने की चर्चा चल रही है। आप कैसे देखते हैं कि इससे दोनों देशों के पर्यटन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे लाभ होगा?
2: पिछले 5 सालों में भारत से जो आउटबाउंड टूरिस्ट है, भारतीय सैलानी जो वियतनाम जाते हैं, उनकी संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और जब एक भारतीय सैलानी वियतनाम जैसे देश में जाता है जहां उसे चीज़ों को समझने में और अपनी ख़रीदारी करने में, होटल्स में जाने में, जब उसे अपना UPI सिस्टम और अपना जो डिजिटल पेमेंट नेटवर्क है वो दिखता है, तो उसके लिए बड़ी आसानी होती है। ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का ही एक हिस्सा है, एक छोटे पैमाने पे जहां कंज्यूमर कस्टमर को की सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है। तो इससे मुझे लगता है दोनों देशों के पर्यटन को बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी, वियतनाम की तरफ से भी, क्योंकि वियतनाम की करेंसी को अगर हम देखें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तो बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन

भारतीय रुपए के मुकाबले भी काफ़ी वो कमज़ोर है। तो जब वियतनामी एक टूरिस्ट भारत आता है और ख़ास तौर पे बोध गया जैसे जो हमारे बुद्धिस्ट सेंटर्स हैं वहाँ जाता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना बहुत आसान होगा और इससे इन सैलानियों को भी ये समझ आएगा कि भारत में यात्रा करना काफ़ी आसान हो गया है और उनके लिए इस पूरे प्रोसेस में मुझे लगता है काफ़ी सुगम होगा और काफ़ी आसान होगा उनके लिए भारत में यात्रा करना या भारतीयों के लिए।

0: प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
1: पिछले वर्ष जब भारत से बौद्ध अवशेष वियतनाम गए तो उनके दर्शन 1.5 करोड़ से अधिक यानी पूरे वियतनाम की पॉपुलेशन के 15% लोगों ने किया था। हमारी साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मी सौन और नान टवर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करेंगे और इस अमूल्य धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करेंगे।
0: गुरजीत जी, इसी से जुड़ा एक सवाल है, जैसा कि प्रधानमंत्री भी अभी जिक्र कर रहे थे कि चंपा सभ्यता की पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और मंदिरों के संरक्षण के प्रयासों में भारत सहयोग देगा। आप भारत की विरासत और विकास की नीति को कैसे देखते हैं?
2: ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप वियतनाम की जो चंपा सिविलाइजेशन है उसके पुराने प्राचीन मंदिरों में जाएं, खासकर माइसौन के ऊपर एक अग्रीमेंट भी इस बार ही साइन किया गया डिजिटाइजेशन। अब माइसौन में शिव की जो मूर्तियां हैं और शिव के मंदिर हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वहां देखा जाता है कि भारत का प्राचीन जो एक इन्फ्लुएंस था वो कहां चंपा तक पहुंच गया। इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए भारत का सहयोग बड़ा जरूरी है, क्योंकि जैसे आपने कहा हमारे लिए वो केवल सहयोग नहीं, हमारी तो विरासत है
0: जी।
2: और हम वियतनाम के साथ उसको साझा करना चाहिए। यही अगर आप सांस्कृतिक प्रक्रियाएं अभी नए इस दौर में देखें तो आप देखेंगे जो पर्यटन है, टूरिज्म है, वो बहुत बढ़ गया। सबसे ज्यादा तो देखिए कि जो वियतनाम की एयरलाइंस हैं, वियतजेट और वियतनाम एयरलाइंस, वो भारत बहुत आ रही है और उसके बाद भारत की एयरलाइन ने वहां जाना शुरू कर दिया डायरेक्ट। अब यहाँ से हर हफ्ते 90 फ्लाइट भारत के शहरों से वियतनाम के शहरों में जाती है और ये सब बड़े शहरों में से ना शुरू होती है ना खत्म होती है। वियतनाम के छोटे शहरों में भारत के टियर 2 शहरों में जाते हैं। आजकल आम हिंदुस्तानी वियतनाम की छोटी छोटी जगहों का नाम जानता है क्योंकि बहुत सारे लोग वहां हो आए। तो पिछले साल तकरीबन 1 मिलियन टूरिस्ट भारत से वियतनाम गए। वियतनाम से यहाँ इतने को ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं, इसलिए बुद्धिस्ट सर्किट को उचित रूप से आगे बढ़ाना अभी हमारा काम है। लेकिन ये वहां से भारत की ओर आने वाले जो लोग हैं वो केवल टूरिज्म के लिए नहीं आए, तो आज की जो अग्रीमेंट्स हैं उसमें एजुकेशन की बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण रोल है, वो बढ़ाएगा पीपल टू पीपल करें और बिजनेस बढ़ाएगा। तो ये दो चीजें अगर आगे बढ़े तो मेरे को लगता है कि हमारी जो विरासत है उसका नया रूप भी आगे आएगा और वो वहां से आकर हमारी विरासत देख पाएंगे और हमारे लोग जाकर वहां पर चंपा की विरासत देख पाएंगे और देखेंगे उसमें भारत का कितना इन्फ्लुएंस।
0: प्रोफेसर मिश्रा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की जब हम बात करते हैं या फिर विजन सागर की बात करते हैं तो वियतनाम भारत के लिए कितना अनिवार्य है?
3: बहुत सालों पहले जब भारत की लुक ईस्ट नीति और एक्ट ईस्ट नीति नहीं आई थी तब भी भारत वियतनाम के साथ ऐसे ही मजबूती से खड़ा था जैसे आज है। जब उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में संघर्ष हो रहा था तब भारत ने होचिमिन का साथ दिया। होचिमिन 1959 में भारत आए और तब से लेके 1972 में जब वियतनाम का एकीकरण हुआ तब से भारत वियतनाम के साथ है। 1979 में भूतपूर्व विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी चीन की यात्रा बीच में रद्द करके इसलिए चले आए क्योंकि चीन ने वियतनाम पर आक्रमण किया था। ये सब एक्ट ईस्ट नीति से पहले ही हुआ था। तो भारत और वियतनाम की जो दोस्ती है वो मुझे लगता है कि आसियान के कॉन्टेक्स्ट में या एक्ट ईस्ट नीति के कॉन्टेक्स्ट में एक सेंट्रल पिलर है जिसमें भरोसा सिर्फ इस बात का नहीं है कि दोनों देशों का फायदा हो रहा है, भरोसा इन दोनों देशों के बीच में, जनता के बीच में है, नेताओं के बीच में है, पॉलिसी मेकर्स के बीच में है। और ये जो डीप ट्रस्ट है दोनों देशों के लोगों के बीच में, इनके पॉलिसी मेकर्स के बीच में, ये मुझे लगता है कि वियतनाम को एक्ट ईस्ट का सेंटर बनाता है। और भारत की जो सागर नीति थी अभी महासागर में परिवर्तित हो चुकी है उसको हम देखें या इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव देखें या एक्ट ईस्ट को ही देखें जिसमें सामरिक तौर पर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 साल पूरे हुए, 2026 में पूरे हो रहे हैं और अब हम ने इसे एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दिया जिसमें रक्षा का मामला हो या सामुद्रिक सुरक्षा का मामला हो, आर्थिक विकास हो या पर्यटन शिक्षा क्षेत्र हो या न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो, सभी क्षेत्रों में वियतनाम के साथ भारत साथ काम करना चाहता है, मिलकर काम करना चाहता है और इस न सिर्फ इन

0: पक्षी संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है, बल्कि साथ ही वो चाहता है कि वियतनाम की भी आसियान क्षेत्र में वियतनाम भारत के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद देश के तौर पे स्थापित रहे और इससे दूसरे देश भी सबक लें। जैसे भारत की रक्षा क्षेत्र में जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, इस बार भी हमने 500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की, जिससे भारत के जो रक्षा उपकरण है मेक इन इंडिया नीति के तहत जो भारत का रक्षा एक्सपोर्ट हो रहा है उससे वियतनाम फायदा उठा सके, क्योंकि वियतनाम की चिंताएं बहुत गहन है दक्षिण पूर्व चीन सागर में। चीन को लेकर के जो भी चीन की 9-लाइन है या दक्षिण पूर्व सागर में उसकी जो आक्रामक नीतियां हैं उससे निपटने के लिए भी वियतनाम को एक भरोसेमंद दोस्त की जरूरत है जो रक्षा के एक्सपोर्ट में उससे फायदा ना उठाए। सो प्रॉफिट मेकिंग भारत की विदेश नीति में या भारत के रक्षा एक्सपोर्ट में नहीं है। वियतनाम इसको समझता है, इसको अप्रिशिएट करता है और इसलिए भारत और वियतनाम के संबंधों में इतना ज्यादा ट्रस्ट लेवल है।
1: प्रोफेसर मिश्रा, आप रक्षा क्षेत्र की बात करें, दोनों देश सैन्य अभ्यास भी करते हैं जिसे विनबैक्स के नाम से जाना जाता है, इसके थोड़े प्रभाव के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: दोनों ही देशों के बीच में तमाम मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं, नेवी के बीच में हो रही है, एयरफोर्स के बीच में हो रही है। बीते दिनों में जंगल वॉरफेयर के क्षेत्र में दोनों देशों ने ज्वाइंट एक्सरसाइजेज की। ये जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं उसके कई उद्देश्य होते हैं, जिसमें चार सबसे महत्वपूर्ण है। पहला तो है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, कि आप जिस सागर में, जो हिंद महासागर और मलक्का स्ट्रेट आपको वियतनाम से जोड़ता है, उस क्षेत्र को समझना, जिसको हम कहते हैं कि सिचुएशनल अवेयरनेस करना, पहला उसका एस्पेक्ट है। दूसरा है थ्रेट अवेयरनेस, कि हम दोनों देशों के लिए ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में, दूसरे देशों से कोई हमें सामरिक चिंताएं हैं या मैरिटाइम पायरेसी है या गन रनिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, नार्कोटिक्स है, इन तमाम क्षेत्रों में दोनों देशों की साझा चिंताएं क्या है, उनको हम दूर करें। और तीसरी चीज है, इन तमाम चिंताओं से निपटने के लिए हम इंटर ऑपरेबिलिटी की ओर आगे बढ़ें। इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम दोनों ही देश ये जो कॉमन चैलेंजेस, ये जो साझा खतरे और चिंताएं हैं, उनको साथ मिलकर के कैसे, कंधे से कंधा मिला के हम कैसे इन चिंताओं को दूर करें। तो ये प्रमुख तौर पे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन साथ में ये भी होता है कि दोनों ही देशों की आर्म फोर्सेस, नेवी हो या एयरफोर्स हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या आर्मी हो, ये तमाम जो भारत और वियतनाम की जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे को समझें, कि इस तरह के आगे आने वाले समय में कभी ऐसी जरूरत पड़े कि भारत और वियतनाम को साथ मिलकर कोई युद्ध लड़ना हो या इस तरह की टेरेन में जाना हो, तो उनके लिए ये एक चौंकाने वाला एक्सपीरियंस ना हो। तो डोमेन अवेयरनेस जरूरी है, टेरेन अवेयरनेस जरूरी है, और साथ में इंटर ऑपरेबिलिटी जरूरी है, कि दोनों देश मिल करके कैसे एक साझा चिंता या चैलेंज या खतरे को से कैसे निपट सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि आने वाले समय में कई क्षेत्रों में भारत और वियतनाम आगे बढ़ने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: वैश्विक उथल पुथल और आर्थिक चुनौतियों के इस दौर में अपने टैलेंट, गुड गवर्नेंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बल पर भारत और वियतनाम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज के रूप में उभर रहे हैं। अब हमारी एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से हम एक दूसरे की रैपिड ग्रोथ के सहायक बनेंगे।
1: प्रोफेसर मिश्रा, युवा, तकनीक और स्किल डेवलपमेंट, क्या आपको लगता है आने वाले समय में ये तीन मजबूत स्तंभ हो सकते हैं भारत और वियतनाम के द्विपक्षीय संबंधों के बीच? चूंकि आज जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए उनमें शिक्षा भी एक है।
0: जी बिल्कुल, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक और प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को हर जगह कहते हैं, दूसरे हमारे तमाम मित्र देशों के साथ जो भी हाल के दिनों में समझौते हुए हैं उसमें युवाओं को लेकर के हमेशा एक स्पेसिफिक फोकस रहा है, क्योंकि भारत की आधी जनता ये युवा वर्ग है और जिसके कंधों पर सारी जिम्मेदारी है 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने की। तो युवाओं को कैसे उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनको कैसे रीस्किल किया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे वो दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटीज के और शिक्षा संस्थानों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीख सकें और उन्हें वापस आकर भारत के विकास में कैसे अपना योगदान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम देखते हैं कि हर मित्र देश के साथ एमओयू में ये शिक्षा का क्षेत्र या स्किल डेवलपमेंट का क्षेत्र दिखता है। नई जो तकनीक आ रही है ये युवाओं पर ही निर्भर है कि नई तकनीक को सीखा जाए, उसको विकास में और इंडस्ट्रियलाइजेशन में इनकलकेट किया जाए, उसको विकास और इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में कैसे जो नई स्किल्स को सीखा गया है उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए और उसको कैसे भारत के आर्थिक विकास में और आर्थिक प्रगति में कैसे उसको जोड़ा जाए। तो ये हमेशा से ही मुझे लगता है कि एक प्रमुख फोकस का मुद्दा रहा है और इसीलिए ये एमओयूज में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है।
1: गुरजीत जी आपसे बहुत संक्षेप में ये समझना चाहेंगे कि भारत वियतनाम संबंधों को

0: एक दशक में आप कहां देखते हैं?
1: मैं समझता हूं भारत वियतनाम के जो संबंध है उनको चीन का प्रिज्म से हटा देना चाहिए ना, हमको समझना चाहिए कि वो चीन से कभी लड़ने को तैयार होंगे, वो नहीं होंगे, और ना उनको समझना चाहिए हम चीन के अगेंस्ट बैलेंसर है। इसको अगर हमने हटा दिया तो फिर बराबरी के हिसाब से अगर देखें तो हमें न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू इन्वेस्टमेंट में ध्यान देना है। भारत की तकरीबन $1 बिलियन का निवेश है वियतनाम में, और वियतनाम का निवेश आस्ता आस्ता बढ़ रहा है, अभी तो तकरीबन 60 मिलियन तक पहुंचा है, लेकिन उनके पास नई आधुनिक टेक्नोलॉजी है और उससे वो समझ लीजिए आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो आजकल वियतनाम से भी इंडिया में बन रही है और बिक रही है। तो हमें ऐसी चीजों, हाई इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रेयर अर्थ, इन चीजों से मिलकर एक सप्लाई चेन बनानी चाहिए। हमारा फायदा है अगर हम आईटीगा के अंडर एक सप्लाई चेन बना ले वियतनाम के साथ, तो जो वियतनाम के इतने सारे एफटीज हैं उनका साझा करके भारत की कंपनियों को भी बहुत फायदा हो सकता है। मैं ये समझता हूँ हमारे आगे का दौर होना चाहिए।
0: गुरजीत जी, प्रोफेसर राहुल मिश्रा आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: भारत और वियतनाम, ये रिश्ता सिर्फ समझौतों और आंकड़ों का नहीं है, ये भरोसे, सम्मान और साझा मूल्यों का रिश्ता है। बोधगया की शांति से लेकर इंडो पैसिफिक की रणनीतिक गहराइयों तक दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हैं। आज जब दुनिया नए समीकरण गढ़ रही है तब भारत और वियतनाम एक स्थिर, संतुलित और भरोसेमंद साझेदारी का उदाहरण बनकर उभर रहे हैं। राष्ट्रपति तो लम की ये यात्रा सिर्फ एक शुरुआत है एक ऐसे भविष्य की जहां सहयोग, विकास और सुरक्षा तीनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे। जैसा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा कहती है, एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है और दोनों मिलकर अंधकार को दूर करते हैं। भारत और वियतनाम के बारे में यही कहा जा सकता है, दो राष्ट्र एक साझा रोशनी। ये कार्यक्रम आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
3: चर्चा का विषय है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
5: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और हान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
6: President Tho Lam conveyed Vietnam's support on the issue of
7: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
6: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
4: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि

उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वित्री कजगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवी के को समर्थन देने का निर्णय लिया और आज मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार कल होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह दोपहर 12:10 पर शुरू होगा। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया। मध्यस्थों का कहना है कि अमरीका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब है। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज किए हुए ईरानी कोष जारी करेगा। दोनों पक्षों द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। और खेल में उज्बेकिस्तान में ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। भारत के युवा मुक्केबाजों ने आज अंडर 15 वर्ग में 30 में से 27 पदक पक्के कर आधिकारिक तौर पर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कार्यक्रम माटी के रंग के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कलाकार माहेश्वरी प्रकाश की आवाज़ में गढ़वाली गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10:30 हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में आज हम आपको सुनवा रहे हैं दिशारी चक्रवर्ती का राग कोसी कानड़ा में संतूर वादन।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में अभी आप सुन रहे थे दिशारी चक्रवर्ती का राग कोसी कान्हा में संतूर वादन।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि की 11 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
2: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
3: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
4: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
1: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और आज मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा।

0: सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान कल जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह सम्मेलन साइबर, अंतरिक्ष और कॉग्निटिव वॉरफेयर जैसे उभरते क्षेत्रों में मौजूद चुनौतियों का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। साथ ही ये सशक्त और भविष्य के लिए तैयार सेना के निर्माण की आधारशिला रखेगा। इस सम्मेलन में आंतरिक रूप से विकसित भविष्योन्मुखी तकनीकों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। मध्यस्थों का कहना है कि अमरीका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स के सामने 236 रन का लक्ष्य रखा। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 187 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अपराजिता नायर। India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions. The Prime Minister said, to keep the shared heritage alive, India is restoring the My Son and Nan Tao temples of Vietnam's ancient Champa civilization. President Tho Lam said, Vietnam attaches great importance to the outcome of 50 years of relations with India, as well as 10 years of the comprehensive strategic partnership. Briefing the media after bilateral talks between Prime Minister Modi and the Vietnamese President, Secretary East in the Ministry of External Affairs P. Kumaran said both countries agreed to reinforce cooperation at the level of governments and businesses for increasing two-way trade, investment and technological partnership. Acknowledging the advancements made by the Indian pharmaceutical industry, the two sides agreed to explore ways for the potential participation of Indian companies in the procurement of medicines for Vietnamese public healthcare facilities from 2027. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today held talks with his Surinamese counterpart Melvin Bova in Paramaribo. The Indian and Surinamese delegations engaged in a comprehensive review of India-Suriname relations under the aegis of the 9th Joint Commission meeting. They covered trade, investment, defence and energy, development assistance and capacity building, health and mobility, culture and people-to-people exchanges. Dr. Jaishankar expressed confidence that the outcomes of their deliberations today will further deepen and diversify India-Suriname ties. In his statement to the press after the Joint Commission meeting, Dr. Jaishankar said the talks also touched on global multilateral issues. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay met Governor Vishwanath Arlekar and staked a claim to form the new government in the state. TVK has approached other parties also, as it is short of the majority mark by 11 seats. Vijay, who contested from 2 constituencies, will have to vacate 1 seat.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मिडे वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। सभी श्रोताओं को मेरा यानी प्रिया का नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम आपकी पसंद, जहां हर धुन में बसता है आपका एहसास और हर गीत होता है दिल के करीब। एक छोटी सी शायरी प्यार के नाम, दिल से दिल की बस यही कहानी है। मोहब्बत की दुनिया बड़ी सुहानी है, कभी हंसी कभी आंसू कभी यादों का सफ़र, पर हर एहसास में बस एक ही निशानी है। तो चलिए इसी प्यारे एहसास के साथ शुरू करते हैं आज का खूबसूरत सफ़र और सुनते हैं आपकी फरमाइश का पहला गीत।

दोस्तों, प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाला सबसे खूबसूरत पैगाम है। प्यार वो है जो बिना कहे सब कुछ कह जाता है, जो दूर रहकर भी आपको करीब महसूस कराता है। प्यार में शब्द कम और एहसास ज़्यादा होते हैं। जो समझ जाए वो अपना और जो ना समझे वो किस्सा बन जाता है। लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म मैंने प्यार किया से। इस गीत की फरमाइश की थी एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज, नावेद, सुहेल, रसीद, अनम, यशफ और राव से मुबीन अब्बासी ने, और तहसील से दिल्ली से वेदांशी, प्रियाशी, नीलम, मनीष, सपना, तनिष्का और रणवीर ने। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और आप हमें मेल कर सकते हैं अपनी फरमाइशें, हमें भेज सकते हैं मेल द्वारा। पता नोट कीजिए, ipradiodelhi@gmail.com।

जी हाँ दोस्तों, और क्या चाहिए जब तुम्हारे आने से फिज़ा में रंग सा घुल जाता है, हवा भी अब कुछ मीठी सी लगने लगती है। शायद यही एहसास है प्यार का, जो हर पल को खास और हर लम्हे को यादगार बना देता है। अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से। इस गीत की फरमाइश की थी छत्तीसगढ़ से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल, यश सफी और जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ। साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार ने।

जिए तो जिए कैसे बिन आपके, ये महज एक गीत की पंक्ति नहीं है दोस्तों, ये उस दिल की पुकार है जो किसी को सच्चे दिल से चाहता है। जब कोई खास हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है तो उसके बिना हर खुशी अधूरी सी लगती है, हर मुस्कान में भी एक कमी महसूस होती है। तेरे बिना जिंदगी में कोई शिकवा तो नहीं, पर तेरे बिना जिंदगी जिंदगी भी नहीं। एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म साजन से। चंडीगढ़ से इस गीत की फरमाइश की थी टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप ने। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कंगरेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित। और संबल से छोटे अंसारी और आलम अंसारी ने।

दूरी चाहे कितनी भी क्यों ना हो, मोहब्बत कम नहीं होती। बस दिल थोड़ा सा चुप हो जाता है और आंखें बातें करने लगती हैं। अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म लव स्टोरी से। इस गीत की फरमाइश की थी नजफगढ़ से शाहरुख फारूक, शबनम शहनाज, पहाड़गंज दिल्ली से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और हरियाणा से मधु नायक ने, और राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी ने। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद और ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियो वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अभी वक्त हुआ है 11:40। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, प्यार किसी मौसम का मोहताज नहीं होता। ये तो हर मौसम में खिलता है, कभी बारिश की बूंदों में, तो कभी सर्द हवाओं में, तो कभी धूप की गर्माहट में अपने एहसास छोड़ देता है। क्योंकि सच्चा प्यार हालात नहीं देखता, वो बस दिल से दिल तक का एक खूबसूरत रिश्ता होता है। मौसम बदलते रहे, वक्त गुजरता रहा, पर एक चीज़ कभी ना बदली, वो है तेरे लिए मेरा प्यार। लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म सिंदूर से। इस गीत की फरमाइश की थी उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, और मध्य प्रदेश से नियमित छोड़ एक ही पांडे, और साथ ही शास्त्री नगर भीड़ शहर से किशन सपाल, आशा सपाल, सोनिया सपाल, साहिरा सपाल, विशाल सपाल, और दिल्ली से इस गीत की फरमाइश की थी मनीष, गीतांजलि और राखी और मन्नू ने।

दोस्तों, प्यार में सबसे पहले जो चीज़ आँखों से दूर होती है वो है नींद, क्योंकि जब कोई दिल में बस जाता है तो रातें भी उसकी यादों में जागने लगती है। हर खामोशी में उसी की आवाज़ सुनाई देती है, हर जागती हुई रात एक कहानी बन जाती है। इस पर एक छोटी सी शायरी, नींद भी अब हमसे रूठ सी गई है, नींद भी अब हमसे रूठ सी गई है, जब से दिल ने किसी को अपना कहा है। रात भर जागते हैं उसकी यादों में और सुबह को भी उसका इंतज़ार रहता है। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म दिल से। इस गीत की फरमाइश की है रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायब और लड्डू ने।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म करण अर्जुन से। इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। मैं आपकी दोस्त प्रिया अब आपसे विदा लेती हूँ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियो वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 12 बजने को है मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24/7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
2: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
3: President Tho Lam conveyed Vietnam's support on the issue of
4: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
3: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
1: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि यह क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह

0: 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जयपुर में संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन के दूसरे संस्करण में आज शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित हो रहा है। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्षों द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 235 रन बनाए। हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासेन ने 69 और ईशान किशन ने 55 रन की पारियां खेली, जिसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 202 रन ही बना सकी। पंजाब किंग्स के लिए कूपर कोनली ने 107 रन की पारी खेली। पैट कमिंस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अपराजिता नायर। India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments, and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced, comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions. President Tho Lam said, Vietnam attaches great importance to the outcome of 50 years of relations with India as well as 10 years of the comprehensive strategic partnership. President Draupadi Murmu received her Vietnamese counterpart Tho Lam at Rashtrapati Bhavan last evening. She also hosted a banquet in the honour of the visiting dignitary. The president said, The elevation of India-Vietnam ties to an enhanced comprehensive strategic partnership will not only provide momentum to the bilateral cooperation, but also contribute to peace and prosperity in the region. She said that India and Vietnam share a deep friendship rooted in historical, civilizational and cultural ties. Meanwhile, Union Minority Affairs Minister Kiran Rijiju also met Minister of Ethnic and Religious Affairs of Vietnam Nguyen Dinh Khang at Parliament House in New Delhi yesterday. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal has reviewed the progress of the National Maritime Heritage Complex in New Delhi. NMHC is under construction at Lothal, Gujarat. It is a landmark initiative to showcase India's rich maritime legacy and civilizational connect with the seas. Mr. Sonowal has set July this year as the target for the completion of phase one of the project. During the meeting yesterday, the Union Minister stressed on the need for collaboration with neighbouring and maritime nations, including countries from ASEAN, to showcase shared oceanic heritage and historical linkages with India. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay met Governor Vishwanath Arlekar and staked a claim to form the new government in the state. The 51-year-old leader met the governor along with senior leaders of the party. TVK has approached other parties also as it is short of the majority marked by 11 seats. Vijay, who contested from 2 constituencies, will have to vacate one seat. The swearing-in ceremony of the new BJP government in West Bengal will be held on the 9th of this month at Brigade Parade Ground. Our correspondent reports, preparations within the state administration have reached a peak following the declaration of the election results and ahead of the swearing-in of the new government. Border Security Force has seized an abandoned Pakistani boat along the Kutch border. The recovery was made during routine patrolling in the sensitive Creek and Harami Nala areas of the international border in Kutch district. During preliminary inspection, fishing equipment and nets were recovered from the boat, though no explosive material was found. सिक्योर

0: agencies are further investigating the matter. Union Minister for Science and Technology Jitendra Singh has said that India stands at a critical juncture, with its scientific ecosystem making global contributions in areas ranging from space exploration and vaccine development to quantum technologies and deep-sea missions. He made these remarks while addressing the valedictory session of the first Indian National Science Academy and the Capacity Building Commission Administrative Training Programme in New Delhi yesterday. Defence Research and Development Organisation has inaugurated the Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Field Training and Demonstration Centre at Burari Plains in Delhi. The Ministry of Defence yesterday said the centre aims to further enhance preparedness for radiological and nuclear exigencies. It added that the Training and Demonstration Centre will be a unique DRDO-CBRN centre of excellence comprising various state-of-the-art facilities. Centre has signed reform-linked MOUs with Mizoram and Ladakh under Jal Jeevan Mission 2.0 in New Delhi. The MOUs were signed in the virtual presence of the Union Minister of Jal Shakti C.R. Patil and Minister of State for Jal Shakti V. Somanna yesterday. The ministry said the reform-linked MOU mandates a Gram Panchayat-led service-based and community-centred model of rural water governance aligned with the objectives of Jal Jeevan Mission 2.0. In IPL, Sunrisers Hyderabad defeated Punjab Kings by 33 runs at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad. Batting first, Sunrisers Hyderabad posted 235 for 4 in their 20 overs. Pat Cummins was named player of the match. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। साथियों, समय है 12:10 और 10 सेकंड। साथियों, ये समय होता है बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, खूबसूरत कार्यक्रम का। जी हाँ, सुरों का सफरनामा। साथियों, आज मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार, और मेरे साथ हैं
2: मैं हूँ मनोज कुमार।
1: या दोस्तों, कहते हैं कि अनाउंसर, जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही सुंदर हैं, लाजवाब हैं। जी हाँ, हम दोनों ही, हमारे साथी भी एक आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले बस कहना चाहेंगे, क्या कहें, तो बस यही है कि अल्फाज जब इबादत बन जाए और मोहब्बत जब नगमों में ढल जाए, तो समझ लीजिएगे कि कहीं ना कहीं शकील बदायूनी मुस्कुरा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आकाशवाणी की इस खास प्रस्तुति में आपका स्वागत है। सुरों का सफरनामा आज का यह बहुत ही सुंदर खूबसूरत कार्यक्रम होने वाला है। समर्पित है उस शायर को जिसने इश्क को आवाज दी, दर्द को लफ्ज़ दिए और संगीत को रूह दी। जी हाँ जनाब, शकील बदायूनी। तो सबसे पहले एक गीत हम सुनवा रहे हैं, उसके बाद चर्चा होगी, जी हाँ, शकील बदायूनी जी की। उसके बाद सिलसिलेवार जितनी भी जानकारियां हैं हमारे पास, तो आपको ज़रूर साझा करेंगे, साथ में गीत भी सुनने का आनंद भी दिलवाएंगे।

तो श्रोताओं, हम बात कर रहे थे शकील बदायूनी पर। श्रोताओं, शकील बदायूनी का जो जन्म है वो 3 अगस्त 1916 को उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम था मोहम्मद जमाल अहमद सोख्ता कादरी। इनकी आरंभिक शिक्षा का इंतजाम इनके पिता ने इनके घर पर ही किया था। श्रोताओं, शकील बदायूनी का जो झुकाव है वो कविताओं की तरफ बचपन से ही था, और इनकी जो शायरी थी वो दूसरे शायरों की तरह किसी परंपरा का अनुसरण बिल्कुल भी नहीं करती थी। ये बिल्कुल ही अलग तरह की शायरी किया करते थे। इनकी शायरी में एक रोमांटिकपन हुआ वो करता था। इनके एक रिश्तेदार जिनका नाम जियाउल कादरी था और वो ख़ानदानी शायर थे, उन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचाना। इनकी कविताओं और शायरी से वो बहुत प्रभावित हुए, और इनसे प्रभावित होकर जियाउल कादरी ने इन्हें कविता लिखने के लिए एक उचित माहौल दिया, जिससे इनकी प्रतिभा में बहुत निखार आया। धीरे धीरे शकील बदायूनी अच्छी शायरी और कविताएं लिखने लग गए, और उसी का यह नतीजा है कि आज कि इतने जो बेहतरीन गीतकार हैं वो हमें मिले। तो उसी बेहतरीन गीतकार का ये बेहतरीन गीत सुनते हैं फिल्म मुगले आजम से।

श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि ये गीत आपको वाकई बहुत पसंद आया होगा, और पसंद भी क्यों ना आए, आखिर गीतकार जो इतने बेहतरीन थे शकील बदायूनी। श्रोताओं, 1936 में शकील बदायूनी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया था, और कॉलेज के दिनों से ही इन्होंने यूनिवर्सिटी और कॉलेज के मुशायरों में भाग लेना, कविताएँ लिखना और पुरस्कारों को जीतना भी शुरू कर दिया था। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद सन 1940 में इन्होंने सलमा नाम की एक लड़की के साथ शादी कर ली, जो कि असल में इनकी पड़ोसी

भी थी और एक दूर की रिश्तेदार भी थी। इनके घर में पर्दा प्रथा का बहुत सख्ती से पालन किया जाता था और इनकी वाइफ यानी इनकी पत्नी जो है उस पर्दा प्रथा का बहुत सख्ती से पालन किया भी करती थी। देखा जाए तो शकील बदायूनी की जो मैरिड लाइफ है, हालांकि वो कुछ ही साल चली थी, उसके बाद फिर वो बॉम्बे चले गए थे, लेकिन उनमें उनकी प्रतिभा में निखार जो आया था वो बॉम्बे जाने के बाद ही आया था। तो इसी के साथ सुनते हैं शकील बदायूनी का लिखा हुआ ये मतवाला संगीत।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत अभी आपने सुना, वाकई लाजवाब। साथियों, हम बात कर रहे थे शकील बदायूनी की। जी हाँ, शकील बदायूनी एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी गीत जिसे आज भी दुनिया कायल है, सुनती है, और क्या कहें। साथियों, उनकी जो शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो वाकई बहुत ही बढ़िया शिक्षा है। और सबसे पहले बदायूं की गलियों में पला वो बच्चा जिसके लफ्ज़ों में आगे चलकर पूरी दुनिया बसी। शिक्षा की हम बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शुरुआती रुचि उर्दू शायरी मुशायरे से हुई, और जो साथ साथ एक बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत भी हैं जो लिखा था पहला।

गीत जो था इस जो बातचीत जो चल रही थी हमारी, तो उसी के अनुसार तो पहला गीत जो चल रहा था तो वाकई बहुत ही शानदार था। और शकील बदायूं ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1944 से की थी। ये बॉम्बे जाकर फिल्म प्रोड्यूसर ए आर करदार और संगीत निर्देशक नौशाद साहब से मिले। दोनों ने उन्हें केवल एक लाइन में अपनी कविता लिखकर दिखाने को कहा। शकील बदायूं ने तुरंत एक लाइन लिखी जो यूं थी कि हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। जी हाँ, वाकई बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, लाजवाब लाइनें, कमाल कर दिया। और ये देखते ही नौशाद साहब ने तुरंत प्रोड्यूसर करदार की फिल्म दर्द के लिए शकील बदायूं का चुनाव कर लिया। जी हाँ, फिल्म दर्द में उमा देवी अभिनेत्री टुनटुन, यानी कि उमा देवी उनका नाम था लेकिन प्यार से उन्हें टुनटुन पुकारा जाता था, तो उनको गाना गाया, गीत और अफसाना लिख रही हूँ उन्होंने ही लिखा था। आइए सुनते हैं ये बहुत ही सुंदर फिल्म दर्द। जी हाँ, दर्द से गीत आ रहा है, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का। तो आइए सुनते हैं ये एक सुंदर और बहुत ही खूबसूरत गीत।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत, ये ऑल टाइम फेवरेट गीत रहा है। जी हाँ, टुन टुन यानी कि उमा देवी की आवाज़ में शानदार बेहतरीन गीत। साथियों आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे थे हम शकील बदायूनी की। तो शकील बदायूनी अलग ही तरह की शायरी किया करते थे। उनकी शायरी अक्सर रोमांटिक और दिल के करीब हुआ करती थी। शकील अक्सर अक्सर कहा करते थे, मैं शकील दिल का हूँ, मैं शकील

दिल का हूं तजुमन तंजुमन तंजुमन कह मोहब्बतों का हूं राजदा। मुझे अब फ़ख्र है मेरी शायरी, मुझे फ़ख्र है मेरी शायरी मेरी ज़िंदगी से जुदा नहीं। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर लाइन है, क्योंकि इनकी शायरी बिल्कुल ज़िंदगी से बिल्कुल भी जुदा नहीं हो सकती है। क्योंकि जी हाँ, जो आपके गीत हैं बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत, रूह में बस जाने वाली खूबसूरत रचनाएँ होती हैं। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर, खूबसूरत गीत, घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे, बहुत ही सुंदर, लाजवाब, बेहतरीन गीत, क्या कहें, एक से एक गीत लिखे हैं शकील साहब ने। जी हाँ दोस्तों, साथियों, एक बहुत ही प्यारा गीत आने वाला है, और ऐसा नहीं है कि भाई केवल रोमांटिक ही गीत शकील साहब लिखा करते थे, है ना, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। एक फिल्म है बैजू बावरा, जो 1952 प्रदर्शित फिल्म रही है, और शकील जी ने भक्ति भी और प्रेम भी, दर्द भी, और शकील के शब्द हर रंग में ढल जाते थे। अनसुना किस्से की हम बात करें तो कहा जाता है कि बैजू बावरा के गीत लिखते समय शकील साहब ने खुद को पूरी तरह से आध्यात्मिक माहौल में डुबा दिया था। जी हाँ, आध्यात्मिक माहौल में डुबा दिया था। तो फिलहाल हम सुनवाते हैं एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत। जी हाँ, मन तड़पत जाए हरि दर्शन को आज, तो आइए सुनते हैं ये शानदार बेहतरीन गीत।

जी हाँ श्रोताओं, वाकई बहुत ही सुंदर गीत, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, वाकई बहुत ही शानदार। श्रोताओं, 50 और 60 का दशक जब हर जुबां पर बस एक ही नाम था, नौशाद और शकिल। जी हाँ, नौशाद और शकिल, सुपरहिट जोड़ी। इस जोड़ी ने बहुत ही सुंदर सुंदर गीत दिए हैं। मुगले आजम जो 1960 प्रदर्शित फिल्म रही, गंगा जमुना जो 1961 प्रदर्शित फिल्म रही, और मेरे महबूब जो 1963 प्रदर्शित हुई, वाकई बहुत ही सुंदर। और जो गीत जो अभी हमने सुनवाया था, प्यार किया तो डरना क्या का, मुगले आजम फिल्म का, प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम का शानदार बेहतरीन गीत अभी आपने सुना। और साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत रहा। तो बढ़ते हैं एक और सुंदर और बेहतरीन गीत की ओर। आइए सुनवाते हैं ये प्यारा सा खूबसूरत नगमा।

0: जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आपने सुना, वाकई लाजवाब। और साथियों आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर गीत लिखे हैं उन्होंने, तो उनमें से कुछ बातें हम बता रहे हैं। उनकी ख़ास बातें जो थी वाकई बहुत ही अलग, बहुत ही बेमिसाल और सुंदर थी। जी हाँ, मेरे महबूब मेरी मोहब्बत की कसम, वाकई बहुत ही सुंदर गीत हैं। और कुछ ख़ास बातें उनमें जो देखी गई है, अक्सर सरल उर्दू भाषा, जी हाँ, गहरी भावनाएं, रोमांस और सूफियाना रंग का अद्भुत मिश्रण। और अगर हम उनकी अनसुने किस्से की बात करते हो, मुगले आजम के गाने के लिए शकील साहब ने ऐतिहासिक, अच्छा वो तो हमने बताई दिया था, लेकिन उसके साथ साथ अंतिम वर्षों की झलक जो 1960 के दशक में, 60 के बाद भी लगातार हिट, लेकिन स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होता चला गया शकील बदायूनी जी का, और 14वीं का चांद, उनकी विरासत। जी हाँ, अगर हम उनकी बात करें विरासत की, तो लेकिन विरासत के पहले ही एक गीत हम एक और सुनवाना चाहते हैं, और ये गीत है वाकई बहुत ही सुंदर, बेहतरीन खूबसूरत गीत।
1: लागा गोरी गुजरिया से

जी हाँ श्रोताओ, वाकई बहुत ही सुंदर, मस्ती भरा, लाजवाब खूबसूरत गीत। साथियों, बहुत सारी दरअसल प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा लेंदी होता है, लेकिन एक छोटे से प्रोग्राम में सब कुछ समाहित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें भी बड़ा अजीब लगता है कि भाई कम से कम 2 घंटे 3-2.5 घंटे कम से कम कार्यक्रम चलना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता है ना। आज भी जब मोहब्बत की बात होती है तो शकील के अल्फाज खुद ब खुद जुबां पर आ जाते हैं। उन्होंने 500 से ज़्यादा गीत लिखे हैं, हिंदी सिनेमा के सबसे संवेदनशील गीतकारों में गिने जाते हैं। अगर हम और बात करें तो कहा जाता है कि अंतिम दिनों में भी वो शायरी लिखते थे जैसे शब्द ही उनकी सांस हो, है ना। तो फिलहाल हम एक गीत सुनवा रहे हैं, उसके बाद बस समापन की ओर बढ़ेंगे, एक छोटा सा गीत, उसके बाद फिर समापन।

0: हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर गीत चौधरी का चांद, ऑल टाइम फेवरेट लाजवाब खूबसूरत गीत। साथियों, यदि हम बात करें शकील बदायूनी की, तो सच में उनको मुगले आजम के लिए पुरस्कार से सम्मान पुरस्कृत किया गया, फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट लिरिक्स के लिए, जो 1961 में ये फिल्म आई थी। और फिल्म फेयर अवार्ड की कैटेगरी में और 1962 में लगातार कई वर्षों तक नामांकन रहा। और उनकी जो उनकी शायरी में एक अजीब सा सुकून था, नज़रों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम आ गया, वाकई बहुत ही सुंदर लाजवाब खूबसूरत गीत है। और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनके जो गीत हैं, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, और ख़ास बात की बात करें तो सरल उर्दू भाषा, गहरी भावनाएं, रोमांस और सूफियाना रंग, अद्भुत मिश्रण, और अंतिम वर्षों की झलक की बात हम करें तो 1960 के बाद भी लगातार हिट गीत, और स्वास्थ्य धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी गीत लेखन कभी भी कम नहीं किया। और क्या कहें, अब कुछ लोग जाते नहीं हैं, बस यादों में बस जाते हैं। शकील बदायूनी भी उन्हीं में से एक हैं। उनके लफ्ज़, उनकी मोहब्बत, उनके नगमे हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। साथियों, छोड़े जा रहे हैं एक सुंदर खूबसूरत गीत के साथ। आप सुन रहे थे सुरों का सफ़रनामा। आज का विशेष कार्यक्रम समर्पित था अल्फाज के जादूगर शकील बदायूनी की द्वारा। मैं यानी कि आपका दोस्त ललित कुमार मेजबान, और मेरे साथ हैं,
1: मैं हूं मनोज कुमार।
0: तो अब हम दोनों को दीजिए इजाज़त, छोड़े जा रहे हैं एक छोटे से गीत के साथ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों पर विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति को लाम का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान होगा। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्यम ग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दीं। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में आज शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिवो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा से बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास, सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्षों द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉयंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions.
2: कल्चर कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर $16 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $25 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
1: इंडिया एंड वियतनाम हैव अग्रीड ऑन अ न्यू ट्रेड गोल ऑफ $25 बिलियन बाय 2030 एंड आर लुकिंग टू री एनफोर्स कोऑपरेशन एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स एंड बिजनेसेस फॉर इंक्रीजिंग टू वे ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप. The joint statement on enhanced comprehensive strategic partnership between India and Vietnam said Prime Minister Narendra Modi and President of Vietnam Tho Lam have emphasized the need to further enhance bilateral trade in a balanced and mutually beneficial manner. President Draupadi Murmu received her Vietnamese counterpart Tho Lam at Rashtrapati Bhavan last evening. She also hosted a banquet in the honor of the visiting dignitary. The president said the elevation of India-Vietnam ties to an enhanced comprehensive strategic partnership will not only provide momentum to the bilateral cooperation but also contribute to peace and prosperity in the region. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has held talks with his Surinamese counterpart Melvin Bua in Paramaribo. The Indian and Surinamese delegations engaged in a comprehensive review of India-Suriname relations under the aegis of the 9th Joint Commission meeting. They covered trade, investment, defence and energy, development assistance and capacity building, health and mobility, culture and people-to-people exchanges. Dr. Jayashankar expressed confidence that the outcomes of their deliberations will further deepen and diversify India-Suriname ties. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay met Governor Vishwanath Arlekar and staked a claim to form the new government in the state. The 51-year-old leader met the governor along with senior leaders of the party. TVK has approached other parties also, as it is short of the majority mark by 11 seats. Vijay, who contested from 2 constituencies, will have to vacate 1 seat. The swearing-in ceremony of the new BJP government in West Bengal will be held on the 9th of this month at Brigade Parade Ground. Our correspondent reports preparations within the state administration have reached a peak following the declaration of the election results and ahead of the swearing-in of the new government. West Bengal BJP leader Suvendu Adhikari's personal assistant Chandranath Rath has been shot dead at Doharia in Madhyam Gram, North 24 Parbhani.

0: Benaz. According to eyewitness accounts, miscreants on a motorcycle followed his car and opened fire at him. Chandranath was rushed to a nearby hospital where doctors declared him brought dead. The driver of the vehicle was also sustained injuries in the attack. Meanwhile, Subhendu Adhikari and other BJP leaders reached the spot. Newly elected MLA from Barakpur Assembly constituency, Kaustav Bagchi, has alleged that this murder was planned by Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee. The Ministry of Tribal Affairs has convened a national review meeting with senior officials from central line ministries and principal secretaries of state tribal welfare departments to assess the progress of key tribal development initiatives, including the Dharti Aba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan and Pradhan Mantri Janjati Adivasi Mahanyay Abhiyan. Centre has signed reform-linked MOUs and with Mizoram and Ladakh under Jal Jeevan Mission 2.0 in New Delhi. The MOUs were signed in the virtual presence of the Union Minister of Jal Shakti C.R. Patil and Minister of State for Jal Shakti V. Somanna yesterday. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad defeated Punjab Kings by 33 runs at Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIRI न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 1:10 और 10 सेकंड। साथियों, एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का समय होता है। जी हाँ, गीत सुनहरे, गोल्डन एरा फिल्म संगीत, ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ गोल्डन एरा। साथियों, ये गीत ऐसे होते हैं जो आज तक सुने जाने वाले गीत हैं। एक से एक बेहतरीन, लाजवाब, जस्ट लाइक सोना, एकदम खरा सोना जैसा खूबसूरत संगीत, खूबसूरत गीत, खूबसूरत गायक, खूबसूरत संगीतकार, खूबसूरत गीतकार, सभी अनमोल एक ही जगह इकट्ठे होकर, यूं कहिए कि एक से एक सुंदर, बेहतरीन, लाजवाब, अनमोल, खूबसूरत रचनाओं का कार्यक्रम होने वाला है। गीत सुनहरे, तभी तो कहा जाता है गीत सुनहरे, बिल्कुल गोल्डन एरा फिल्म, म्यूजिक ऑफ गोल्डन एरा। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार, और मेरे साथ हैं,
2: मैं हूँ मनोज कुमार।
1: तो आइए आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की पहली और बेहतरीन, लाजवाब, खूबसूरत गीत के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। तो हो जाइए तैयार, बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत गीत फिल्म भक्त सूरदास से, ये शानदार, माफ़ कीजिएगा, भक्त सूरदास एक फिल्म है, बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब, और खुर्शीद की आवाज़ में शानदार रचना है। भक्त सूरदास 1942 प्रदर्शित फिल्म रही है, और इस गीत को संगीत से सजाया है ज्ञान दत्त ने। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की पहली और खूबसूरत रचना।

श्रोताओं, अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म रतन से जोहरा अंबाला और साथियों की मधुर आवाज में। संगीतकार हैं नौशाद साहब।

श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। आइए अगला गीत सुनते हैं सुरैया की मधुर आवाज़ में, फिल्म अनमोल घड़ी से। संगीतकार हैं नौशाद साहब।

श्रोताओं, गायिका सुरैया की आवाज़ में ये मधुर गीत अभी आपने सुना। अगला गीत भी सुरैया की ही आवाज़ में हम आपको सुनवाते हैं, फिल्म दर्द से। गीत के बोल हैं, चले दिल की दुनिया। संगीत दिया है नौशाद साहब ने।

जी हाँ, श्रोताओं, वाकई बहुत ही सुंदर गीत अभी आप सुन रहे थे, लाजवाब, बेहतरीन, ला खूबसूरत रचना। साथियों, गीत आ रहा है, बहुत ही प्यारा गीत है और ये गीत वाकई अपने आप में बहुत ही अनमोल है। और जैसे कि हमारे साथी ने बताया था कि हाँ, ये गीत वाकई बहुत ही शानदार है, क्या कहते हैं आप? तो वाकई हम कहाँ और तुम वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत है। और फिल्म शहीद से 1948 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत गाया है, यानी कि गायक हैं सुरेंद्र जी, और संगीत से सजाया है इस खूबसूरत गीत को गुलाम हैदर ने। तो आइए सुनते हैं शानदार बेहतरीन रचना।

जी हाँ जी हाँ श्रोताओं, वाकई बहुत ही सुंदर ऐसा लग रहा है कि सारी रात प्रोग्राम सुनते रहे हैं। वाकई गीत संगीत का वाकई बहुत ही लाजवाब अनमोल गीत अभी आप सुन रहे हैं, और इसी कड़ी में एक और गीत आ रहा है आपके पास, और ये गीत वाकई बहुत ही सुंदर है, बेहद खूबसूरत है। जी हाँ दोस्तों, तो ये गीत सच में जब आप सुनेंगे, ऐसे तो हमारे बहुत सारे साथी हैं जो श्रोता साथी होते हैं, रात को जिनको नींद नहीं आती है तो वाकई करवटें बदलते रहते हैं, और ऐसे में उनका एक सहारा बनता है गीत संगीत, है ना। दिल हमसे वो ले गए, जी हाँ

दिलहम से वो ले गए। फिल्म बारादरी से शानदार खूबसूरत गीत हैं और आवाज़ से सजाया है मुबारक बेगम, लता मंगेशकर और साथियों ने। ये फिल्म 1955 प्रदर्शित फिल्म रही है और कैटेगरी की हम बात करें तो ये कव्वाले नुमा एक खूबसूरत रचना है और इसे गीतकार हैं इसके खुमार बाराबंकी भी और संगीत से सजाया है नौशाद साहब ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार बेहतरीन अनमोल रचना।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर, अनमोल, बेहद खूबसूरत रचना। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत आ रहा है बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत, और ये गीत नैन खोए खोए। जी हाँ, ये गीत के बोल हैं और मुनीम जी फिल्म, जी हाँ मुनीम जी फिल्म से, जो 1955 प्रदर्शित फिल्म रही, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में शानदार, बेहतरीन रचना। संगीत से सजाया है इस खूबसूरत गीत को SD बर्मन साहब ने। तो आइए सुनते हैं बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर लाजवाब। मन नहीं कर रहा है, प्रोग्राम बहुत ही प्यारा है, तो मन नहीं कर रहा है कि इस प्रोग्राम को हम समापन की ओर लेके चले। लेकिन हाँ, फिलहाल एक और गीत सुनवाना चाह रहे हैं आपको, और ये है चैन मेरा लूटा। ये टाइटल है, यानी कि गीत के बोल हैं, चैन मेरा लूटा। एक फिल्म है दुर्गा माता। जी हाँ दोस्तों, दुर्गा माता फिल्म से एक शानदार बेहतरीन रचना आ रही है, जो 1960 प्रदर्शित फिल्म रही है, और एस जानकी की आवाज़ में सुंदर रचना है, और गीत विक्रम प्रोडक्शन द्वारा है, और संगीत से सजाया है इस खूबसूरत गीत को जी के वेंकटेश ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार और बेहतरीन अनमोल रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत। सुनो जी सुनो जी, क्या अदायगी थी, क्या वेरिएशंस थी, वाकई लाजवाब अनमोल। साथियों, आज के कार्यक्रम की यानी कि गीत सुनहरे कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आ रही है, तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारी, सुंदर, खूबसूरत और बेहद अनमोल खूबसूरत रचना। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हम बता देते हैं, ये फिल्म है दुल्हन है। जी हाँ, दुल्हन है। हाँ माफ़ कीजिएगा, ये फिल्म है अनपढ़, जो 1962 प्रदर्शित फिल्म रही, फिल्म अनपढ़। और एक टाइटल गीत है दुल्हन है। जी हाँ दुल्हन है, और मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में शानदार बेहतरीन रचना है। अनपढ़ फिल्म 1962 प्रदर्शित फिल्म रही, और संगीत से सजाया इस शानदार गीत को मदन मोहन जी ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार बेहतरीन रचना, आज के कार्यक्रम की अंतिम और बेहद खूबसूरत रचना।

0: तशरीफ का मैं टोकरो
1: केम छे
0: सागु छे
1: सू छे
0: एक दो तीन चार पांच छे
1: हट
0: गया।

0: श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनपढ़ से। घड़ी की सुई अब इशारा कर रही है कि अब ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, क्योंकि थोड़ी देर में 2 बजने वाले हैं और 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार। तो इसी के साथ श्रोताओं, आइए सुनते हैं हिंदी समाचार और उसके बाद 2:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पादन विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
2: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान होगा। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC की प्रगति की समीक्षा की। NMHC का निर्माण गुजरात के लोथल में चल रहा है। ये भारत की समृद्ध समुद्री विरासत और समुद्रों के साथ उसके सभ्यागत जुड़ाव को प्रदर्शित करने की एक ऐतिहासिक पहल है। श्री सोनोवाल ने इस परियोजना के पहले चरण को पूरा करने के लिए इस साल जुलाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने ईरान के पास गल्फ ऑफ स्ट्रेट में स्थिति की भी समीक्षा की और भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए उठाए जा रहे कदमों का जायजा लिया। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्यम ग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दी। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में आज शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिवो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउबाज के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

0: तीन बजने को हैं। अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
2: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह दोपहर 12:10 पर शुरू होगा। वहीं तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्यग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दीं। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिवो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के एकाना स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर ज्वाइंट से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और करैकल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना

0: under active discussion. The reported one-page 14-point framework would open a 30-day window for negotiations toward a wider agreement. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 3:10 और यह समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम गजलों और गीतों का। आई श्रोताओं, सुनते हैं सबसे पहले ये गजल पंकज उधास साहब की आवाज में।

श्रोताओं, अभी ये गज़ल आपने सुनी पंकज उधास साहब की आवाज़ में। आइए सुनते हैं अगली गज़ल पंकज उधास साहब की ही आवाज़ में।

श्रोताओं, पंकज उधास साहब की आवाज में अभी आपने ये गजल सुनी। आइए सुनते हैं अगली गजल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की मधुर आवाज में।

श्रोताओं, ये गजल अभी आपने सुनी जगजीत सिंह की आवाज में। आइए सुनते हैं अगली गजल चित्रा सिंह की मधुर आवाज में।

0: जी हाँ साथियों, बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, लाजवाब, खूबसूरत गज़ल अभी आप सुन रहे थे। यूँ ज़िंदगी की राह में मजबूर हो गए, वाकई बहुत ही शानदार। मजबूरी भी ना जाने क्या क्या कर जाती है इंसान के जीवन में, है ना। तो वाकई बहुत ही दर्द भरी, लाजवाब, खूबसूरत गीत ओ गज़ल थी, यूँ ज़िंदगी की राह में मजबूर हो गए। इमोशंस जो थे तो बाकी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के थे, और मेन जो आर्टिस्ट रही वो थी चित्रा सिंह। वाकई बहुत ही लाजवाब गीत और गज़ल। आइए बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गज़ल आज के कार्यक्रम गीत गज़ल कार्यक्रम के अंतर्गत, आज की आखिरी सुंदर और बेहतरीन गज़ल।
1: गजल गायकी का ये अंदाज अभी तक छाया हुआ है। कई नए नए फनकारों ने इस अंदाज को बरकरार रखा है, जैसे छाया गंगोली और आबिदा परवीन।

0: भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद कल ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अर्चना।
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 मई सन 2026। सुबह के 4:54 हुए हैं, 4:54 और 5 सेकंड हुए हैं, हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर में ठीक 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार 5:05 पर। आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार 5:10 पर। समय होगा कार्यक्रम आओ योग करें का। 5:20 पर आप सुन सकेंगे देशभक्ति गीत। और 5:30 पर समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। ठीक 6 बजे यानी प्रातःकाल के समय आप सुनेंगे हिंदी समाचार। 6:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी समाचार। और 6:10 पर समय होगा कार्यक्रम वंदना का, जिसमें आप सुन सकेंगे भजन। और 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन।

0: 6:45 पर समय होगा रामचरित मानस का, जिसमें आज आप सुनेंगे बालकांड का भाग 48। 6:55 पर समय होगा संस्कृत समाचारों का। 7 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी समाचार। 7:10 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम संगीतिका और 7:30 पर आप फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरी का आनंद उठाएंगे। 8 बजे आप समाचार प्रभात सुनेंगे और 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार। 8:30 पर समय होगा उर्दू समाचारों का और 8:45 पर आप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा सुन सकेंगे। 9:15 पर समय होगा कार्यक्रम उद्योग पत्रिका का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अभी 5 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मुद्रा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।

0: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और नहान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बिहार में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह दोपहर 12:10 पर शुरू होगा। वहीं तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशकम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की है। टीवी की पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब है। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिबो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बौवा के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधि मंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वावधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के इकान स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के दौर में ऐसा लगता है कि मानो तनाव हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। जिसे देखो वह तनाव से पीड़ित है। यहाँ तक कि आजकल बच्चे भी तनाव का शिकार होते जा रहे हैं। यदि तनाव से मुक्त पाना है तो इसका एक ही प्रभावी तरीका है और वह है योग। वैसे तो हर योग की अधिकतर क्रियाएं करने से आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं, परंतु प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम सबसे ज्यादा इफेक्टिव यानी सर्वश्रेष्ठ माना गया है तनाव को कम करने के लिए। तो भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आइए सीखते हैं कि किस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। भ्रामरी शब्द भ्रमर से लिया गया है, जिसका मुख्य अर्थ है भंवरा। इस प्राणायाम के अभ्यास के समय निकलने वाला स्वर यानी निकलने वाली आवाज भ्रमर के गुंजन के स्वर की तरह ही होती है। आइए सीखते हैं अभ्यास विधि। सबसे पहले आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। उसके पश्चात आप शंखमुखी मुद्रा धारण करें। यदि आप शंखमुखी मुद्रा नहीं जानते तो आप अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। धीरे धीरे नियंत्रण रूप से श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास भरें और छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज को निकालने का प्रयास करें। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र माना जाता है और हर बार जब भी आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इस अभ्यास को कम से कम 4 से 5 बार अवश्य दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और चिंता, क्रोध और अति सक्रियता को घटाता है। भंवरे जैसी आवाज का प्रतिध्वनि प्रभाव आपके मस्तिष्क और आपकी कोशिकाएं, आपकी तंत्रिकाओं पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। यह महत्वपूर्ण शांतिकारक अभ्यास है, मतलब इस अभ्यास को करने से आपका तनाव काफी हद तक कम होता है और आपको एक शांति का अनुभव होता है। यह एकाग्रता और ध्यान की भी आरंभिक अवस्था मानी जाती है। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि भ्रामरी प्राणायाम से आप किस प्रकार अपने तनाव को कम कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग।

दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखंद। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कमर दर्द की समस्या बहुत ही आम होती जा रही है। युवावस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक कमर के दर्द की प्रॉब्लम पाई जाती है, जिसके लिए आज हम एक आसन करेंगे, उसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं और अपने दोनों हाथों पर सिर को टिकाए रखें और शरीर को शिथिल करें, यानी रिलैक्स कर दें। अब अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, हाथों को खींचकर

आगे की ओर लेकर जाएं और माथा यानी फोरहेड आपके आसन पर टिकाए रखें। अब हाथों को धीरे धीरे वक्षस्थल यानी चेस्ट रीजन के पास लेकर आएं और ध्यान रहे कि आपकी दोनों कोहनियां ऊपर की ओर उठी हुई हों, यानी आसमान की ओर उठी हुई हों। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाने का प्रयास करें। दोनों कोहनियों को समांतर रखें और इसी स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक श्वास पर श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। दोनों कोहनियों को समानांतर रखें और 10 से 30 सेकंड सामान्य श्वास पर श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहे। इस अभ्यास को भुजंगासन कहा जाता है। पुनः श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं और अपने माथे को जमीन पर टिकाएं और मकरासन की स्थिति में कुछ क्षण विश्राम करें। ध्यान रखें दोस्तों, जब आप यह आसन करें तब पैरों को उतना ही तान कर रखें कि कमर पर किसी भी प्रकार का कोई तनाव पैदा ना हो। भुजंग आसन का अभ्यास एक सेशन में कम से कम 3 से 4 बार दोहराएं। यदि आपको कोई हर्निया की प्रॉब्लम है और पेट की कोई रिसेंटली सर्जरी हुई है तो यह आसन अवॉइड करें। यह आसन आपकी कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और कुछ हद तक तनाव को भी दूर भगाता है। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 5:18 हुए हैं। 5:20 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। उसके बाद 5:30 पर आप सुन सकेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। स्वर रंजनी कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुष्मिता राग और बैरागी, जो बैरागी भैरव पर आधारित है।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है सुबह के 5:20। ये समय है देशभक्ति गीतों का। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।